जाएंगे और उनकी खबर लेने के लिए लोहे के गुर्ज होंगे। जब कभी वो घबरा कर जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे फिर उसी में धकेल दिए जाएंगे कि चखो अब जलने की सजा का मजा। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनको अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वो सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता किए जाएंगे और उनके लिबास रेशम के होंगे। उनको पाकीजा बात कबूल करने की हिदायत बख्शी गई और उन्हें खुदाए सतूदा सिफात का रास्ता दिखाया गया। जिन लोगों ने कुफ्र किया और जो आज अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं और उस मस्जिद हराम की जियारत में माने हैं जिसे हमने सब लोगों के लिए बनाया है, जिसमें मकामी बाशिंदों और बाहर से आने वालों के हकूक बराबर हैं, उनकी रविश यकीनन सजा की मुस्तहक है। इस मस्जिद हराम में जो भी रास्ते से हटकर जुल्म का तरीका इख्तियार करेगा उसे हम दर्दनाक आदाब का मजा चखाएंगे।

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

उसकी किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy, Health for All. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Health for All mein khush aamdeed. Listeners, hamari sehat ka ek bahut hi ahem raaz hai. और वो ये है कि एक्टिविटी होनी चाहिए और एक जबरदस्त सा नुस्खा भी है, आसान भी है और सबके लिए है, लेकिन अफसोस ये है कि हम में से अक्सर इसे नजरअंदाज करते हैं। तो जी हाँ, बात क्या है? वो बात ये है वर्जिश की, यानी वर्जिश एक्सरसाइज के भी शुमार फायदे हैं। हम मुख्तलिफ जो तरीकों से एक्सरसाइज का जिक्र करते हैं कि किस तरह होनी चाहिए, कितने मिनट करनी चाहिए, मगर ये कि रोजाना सिर्फ 30 मिनट की वॉक दिल के अमराज का खतरा आधा कर देती है। एक्सरसाइज से खून की रवानी यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, तो उससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है। इसी तरह हमारे दिमाग में कुछ ऐसे मादे अल्लाह ताला ने बनाए हैं जो कि हमारे लिए खुशी के जो हार्मोन्स हैं वो पैदा करते हैं, जैसे एंडोर्फिन है, तो इससे डिप्रेशन और टेंशन जो है वो कम होती चली जाती है। यानी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मूड बेहतर हो जाता है, कभी एंजाइटी या टेंशन होती है तो वो भी कम होती चली जाती है। अब जो कुव्वत मुदाफ़त है या जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे इम्यूनिटी जो है हमारे जिस्म में ज़्यादा होगी और फिर हम बहुत से मसाइल जो सेहत के हवाले से हैं उससे दूर रहेंगे। ऐसे ही जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसमें भी वर्जिश मजबूत करती रहती है। वर्जिश सिर्फ जिम जाने का नाम नहीं है, जो ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, आप साइकिलिंग कर लीजिए, और ये है कि आप रनिंग कर सकते हैं, हल्की भी कर सकते हैं, या घर के काम भी बेहतरीन वर्जिश हैं। अहम बात ये है, यानी अगर आप बाकायदगी से वर्जिश करेंगे तो तभी फायदा जो है वो होगा। इसी तरह एक साहब जो कि दफ्तर में काम करते थे, हमेशा थके थके रहते थे, दिन भर कुर्सी पर बैठे रहने से उनका वजन भी बहुत ज़्यादा हो गया था और डायबिटीज की जो अलामत हैं वो भी शुरू हो गई थी। फिर जैसे ही उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उनसे मशवरा लिया, तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक उन्हें रोजाना 30 मिनट की वॉक करनी थी, जैसे कहा गया। तुम्हें तो बहुत मुश्किल लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत बन गई। अब चंद महीनों बाद ना सिर्फ उनका वजन कम हो गया बल्कि वो ज्यादा खुश और मुतहरक नजर आने लगे। तो इसका मतलब यह है कि वर्जिश हमारी सेहत का वो नुस्खा है, दवाइयों से बहुत बेहतर है। दिल चाहे तो अभी सेहत कर लीजिए, ताना कम से कम आधा घंटा अपनी सेहत के लिए जरूर निकालिए, क्योंकि सेहत ही सब कुछ है और जो वर्जिश है वो सेहत की चाबी है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
3: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से दे

0: करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मैतराश ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियां नेहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहा करता था। उस लड़के का नाम था अहमद और वो रोजाना अखबार बेचकर अपने स्कूल की फीस और घर का खर्चा पूरा करता था। अहमद की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात थीं, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। वो हमेशा ईमानदारी से मेहनत करता और लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करता था। एक दिन अहमद अखबार बेचते हुए बहुत थक गया था। वो शदीद भूख महसूस करने लगा। उसने फैसला किया कि वो अगले घर जाकर कुछ खाने के लिए मांगेगा। अहमद ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी और बहुत अदब से कहा, सर जी, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? पहला शख्स जिसने दरवाजा खोला वो काफी सर्द मिजाज का था, बहुत रूड, और उसने फौरन इनकार कर दिया। अहमद ने वहां से मायूस होकर अगले घर का रुख किया। वहां भी लोगों ने उसे खाने के लिए कुछ ना दिया और मुंह भर के इनकार कर दिया। अब वो बहुत थका हुआ था और अफसरदा हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत ना हारी, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। आखिरकार एक घर के दरवाजे पर एक लड़की ने अहमद को देखा। उस लड़की का नाम सलीमा था। सलीमा ने अहमद को दरवाजे के सामने खड़ा देखा और उसकी हालत समझते हुए कहा, रुको जरा, क्या तुम्हें भूख लग रही है? मैं तुम्हें कुछ खाने को दे सकती हूँ। अहमद की आंखों में हैरत और शुक्रिया की चमक उठी। सलीमा ने अपने फ्रिज से उसे एक गिलास दूध निकाल कर दिया। अहमद ने दूध पिया और सलीमा का दिल से शुक्र अदा किया। सुनो, तुम्हें इस दूध के पैसे नहीं देने होंगे, ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है, अहमद ने झिझकते हुए कहा। शुक्रिया, लेकिन आपकी ये मेहरबानी मुझे हमेशा याद रहेगी। अहमद ने दूध का ग्लास खत्म किया और वहां से चला गया, और वो दिन उसके दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। सलीमा की मोहब्बत और मेहरबानी ने अहमद की दुनिया बदल दी थी, और उसने इस दिन के बाद कभी भी किसी की भी मदद करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की। इस बात को सालों गुजर गए साथियों। सालों बाद सलीमा की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब वो शदीद बीमार हो गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि गांव के तमाम डॉक्टरों ने इलाज करने से इनकार कर दिया। वो एक बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गई थी, जिसका इलाज मुश्किल था। सलीमा ने सोचा कि वो शहर के सबसे बड़े और मशहूर डॉक्टर के पास जाएगी, क्योंकि वहां उसके मर्ज का कोई भी इलाज करने से मना नहीं करेगा। कुछ वक्त बाद सलीमा शहर पहुंच गई। सलीमा ने डॉक्टर को बताया कि वो गरीब है और उसके पास इलाज के लिए इतने पैसे नहीं है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे किसी ना किसी तरह अपना इलाज करवाना था। डॉक्टर ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, तुम फिक्र ना करो। डॉक्टर ने कई महीनों तक सलीमा का इलाज किया। डॉक्टर का इलाज बहुत महंगा था और सलीमा के पास इतने पैसे थोड़ी थे कि वो आखिर तक उसका बिल अदा कर सके। आखिरकार सलीमा का इलाज मुकम्मल हो गया और वो ठीक हो गई, और आखिर में उसने डॉक्टर से इसका बिल तलब किया। और जब सलीमा ने बिल खोला तो उस पर एक नोट लिखा था, बिल मुकम्मल तौर पर अदा हो चुका है, एक ग्लास दूध के बदले। ये पढ़कर सलीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो याद करने लगी कि एक मर्तबा उसने एक अहमद नाम के लड़के को एक ग्लास दूध पिलाया था, और आज वही लड़का उसके इलाज का मुकम्मल बिल भरकर जा चुका है। दोस्तों, ये एक इत्तेफाक था कि शहर के अस्पताल में सलीमा को अहमद ने देख लिया था, और अहमद ने दिल में सोचा कि सलीमा के एहसान का बदला चुकाने का ये बिल्कुल बेहतरीन मौका है। सलीमा ने अहमद के लिए दिल से दुआ की और सोचा कि अच्छे अमल कभी भी जाया नहीं जाते। अहमद की मेहरबानी आज उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे गई थी। उस दिन से सलीमा ने ये सीखा कि जब हम किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो वो अमल कभी भी बेअसर नहीं जाता, बल्कि कहीं ना कहीं वो घूम फिर कर हमारे लिए दोबारा वापस आता है। तो दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा कि अच्छे अमल हमेशा इनाम पाते हैं।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है, किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाअत कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: दोस्तों, आज बात करेंगे एक और नए इकोनॉमिक टर्म की जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है जब आप किसी चीज को चूज करते हैं और जब दूसरी चीज या ऑप्शन को छोड़ देते हैं तो उसकी वैल्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए अगर आपके पास 30 कतरी रियाल है और ये 30 कतरी रियाल आप मूवी देखने में स्पेंड करना चाहते हैं, जबकि पहले आपका आइडिया था कि 30 कतरी रियाल के आप कुछ स्नैक्स खरीद लेंगे, लेकिन अब मूवी का आइडिया आने के साथ स्नैक्स का आइडिया आपको ड्रॉप करना पड़ा, तो ये हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि हर डिसीजन के साथ आपको कुछ ना कुछ ड्रॉप या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वहीं अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो जो आप अपॉर्चुनिटी छोड़ते हैं उसकी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो चलिए, बेहद सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मुझे नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्लाह।
0: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
3: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, इस्लाम में खुवत और भाईचारे की बुनियाद सिर्फ रिश्ते और ताल्लुक पर नहीं बल्कि इंसाफ और खैरखाही पर रखी गई है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कहा, या रसूलल्लाह, हम मजलूम की मदद करें तो समझ में आता है, मगर जालिम की कैसे मदद करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका हाथ पकड़ लो, यानी उसे जुल्म से रोक दो। इस हदीस में एक अनमोल उसूल है, ये है कि मदद का मतलब सिर्फ सहारा देने में नहीं बल्कि इस्लाह में भी है। मजलूम की मदद उसका दिफा करना, उसके हक के लिए खड़ा होना, और जालिम की मदद उसको जुल्म से रोकना ताकि वो अपने अंजाम बद से बच जाए। यही हकीकी उखुवत है कि हम एक दूसरे को भटकने न दें। तो ये थी आज की सुन्नत नुसरत और उखुवत की। आइए हम भी अपनी जिंदगी में सुन्नत को अपनाएं, मजलूम के साथ खड़े हों और जालिम को जुल्म से रोकें।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
3: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान, इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
4: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

ਦੀ ਉਸ਼ਾਨ ਥਾ ਜੋਸਫ ਚਾਮਿੰਡਾ ਵਾਸ ਨਾਮ ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਲੇਕਿਨ ਯਹਾਂ ਨਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਬਿਕ ਬਾਏ ਹਾਥ ਕੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਉਨਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਵਾਸ ਵਾਸ ਫਾਸਟ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਬੇਹੱਦ ਕਾਮਯਾਬ। ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਵਿੰਗ ਐਂਡ ਸੀਮ ਦ ਬਾਲ ਵਿਦ ਸਕਿੱਲ। ਹਿਸ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਸ ਦ ਲੇਟ ਇੰਡੇਪਰ ਔਰ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਖਤਰਨਾਕ ਆਫ ਕਟਰ। इसके अलावा उन्होंने अपने आर्मरी में रिवर्स स्विंग का इजाफा किया, एक ऐसी टैलेंट जिसके जरिए वाज इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हल्की पिचों पर भी मुसलसल विकेट लेते रहे। ना सिर्फ अपने मुल्क ही नहीं बल्कि वाज ने नेपियर में ग्रीन विकेट पर न्यूजीलैंड को आउट बोल करके श्रीलंका को 1994-95 सीरीज में इंटरनेशनल टेस्ट में पहली जीत दिलाई। साउथ अफ्रीका में 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान वास ने 23 विकेटें लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने और इसमें बांग्लादेश के खिलाफ 6/25 का बेहतरीन बॉलिंग रिकॉर्ड शामिल था, जहां वास ने इनिंग्स के पहले ही 3 गेंदों के दौरान हैट्रिक लिया। व्हाट अ रिकॉर्ड। और वास के पास फिलहाल ओडीआई क्रिकेट की तारीख में बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड भी शामिल है और वो वनडे में 8 विकेटें लेने वाले वाहिद बॉलर हैं। एक और बात, ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के बाद वो श्रीलंका के सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर हैं एंड इन बोथ टेस्ट एंड ओडीआई मैचेस।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। Assalamualaikum, मरहबा, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आज के लाइफ हैक्स बड़े कमाल के हैं। और सबसे पहला लाइफ हैक आज का है द ग्रोसरी गुरु। यस, तो क्या होता है कि ग्रोसरी स्टोर जाते टाइम हम हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमेशा लिस्ट बना लो, पर कभी कभी लोग लिस्ट भी नहीं बना पाते। तो बहुत ही टाइम सेविंग सिंपल सा फंडा है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहीं भी जाने से पहले जल्दी से फ्रिज, पैंट्री, जहां जहां पे आपके सामान है वहां की तस्वीर ले लो। एंड इससे क्या होगा, लिस्ट बनाने की झंझट भी नहीं रहेगी और आपके फोन पर ही फुल ग्रोसरी लिस्ट होगी, क्योंकि इससे आपको पता होगा इन तस्वीरों के जरिए कि कौन सी चीज आपको खरीदनी है और कौन सी नहीं। इट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट वे और अभी हाल ही में मैंने ट्राई किया है, आप भी ट्राई करो, काफी मदद मिलेगी। उसके बाद आज का दूसरा लाइफ हैक है दिल से कनेक्शन हैक। डेफिनेटली वीकेंड्स के टाइम पर अक्सर ये होता है कि जब हम दोहा में रहते हैं और हमारी फैमिलीज दूर रहती हैं, तो वो फीलिंग होती है ना कि बाद में कॉल करेंगे, हम थक गए हैं, तो ये बोलने की जगह हम स्केड्यूल कर सकते हैं, यानी कि अपने फोन कैलेंडर में चाय विद मॉम या संडे चैट विद डैड, इस तरह के इवेंट्स बना सकते हैं ताकि वो एक एंटरटेनमेंट फैक्टर भी रहे और जब हमें बात करनी हो तो हम सीधा उन्हें कॉल करें, उनका भी टाइम ले लें और ये एक अपॉइंटमेंट की तरह रहेगा जिससे ना वो आपकी कॉल मिस करेंगे और ना आप अपनी कॉल मिस करोगे और रिश्ते भी बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। डू ट्राई इट एंड डू शेयर इट। फॉर मोर लाइफ हैक टिप्स स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।
3: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
4: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ग्रीन पाथ, एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में। हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आज हम अर्बन फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। शायद आप सोच रहे हो कि शहरों में फार्मिंग करना मुश्किल है, लेकिन आजकल ये बहुत आसान हो गया है। अगर आपके पास रूफ स्पेस है तो आप रूफ टॉप गार्डन बना सकते हैं, जहाँ पे हर्ब्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स ग्रो कर सकते हैं। छोटे स्पेस में वर्टिकल गार्डन्स लगाएं, जो एफिशिएंट स्पेस यूज करते हैं और आपको फ्रेश प्रोड्यूस दे सकते हैं। एक्वापोनिक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फिश और प्लांट्स का कॉम्बिनेशन होता है और आपको नेचुरल फर्टिलाइजर मिलता है। अगर आपके एरिया में कम्युनिटी गार्डन है तो आप वहाँ अपने प्लांट्स लगाकर फ्रेश फ्रूट पा सकते हैं। अर्बन फार्मिंग से आप अपने एनवायरमेंट को ग्रीन बना सकते हैं और हेल्दी फूड भी हासिल कर सकते हैं। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है एक बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज़।

कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं।

लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते।

नसीहत की और फिर मजलिस में मौजूद एक शख्स से कहा, उसे अपने साथ रखो और जब तक ये कुरान याद न कर ले उसे अपने से जुदा न होने देना। कुछ देर बाद एक दूसरा शख्स आया, उसने भी कर्ज की अदायगी की दरख्वास्त की। खलीफा ने वही सवाल किया, क्या तुम कुरान जानते हो? उसने जवाब दिया, जी हाँ। अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने फरमाया, ऐसे लोगों के कर्ज हम अदा करते हैं, ऐसे लोगों से सिला रहमी करते हैं और ऐसे लोगों की मदद करते हैं। सामने किराम, गोया कुरान उनके नज़दीक इंसान की शख्सियत का मेयार था। वो समझते थे कि जो शख्स अल्लाह के कलाम से जुड़ गया वो इज्जत का मुस्तहिक है, जो कुरान से दूर हो गया उसने अपनी असल दौलत खो दी। इसलिए उनके मुआशरों में कुरान इंसान की शनाख्त हुआ करता था। मशहूर शायर फरजदक का वाकया इस सिलसिले में बड़ा दिलचस्प है। एक मरतबा उसने खलीफा सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक के सामने कुछ अशआर पढ़े जिनमें एक नामुनासिब वाकये का जिक्र था। खलीफा ने सुनकर फरमाया, तुम तो गोया अपने ऊपर खुद जुर्म का इकरार कर रहे हो और मैं हाकिम हूँ, मुझे तुम पर हद नाफिज करनी चाहिए। फरजदक फौरन बोला, अमीर मोमिनीन, कुरान मुझे इस सजा से बचा लेगा। खलीफा ने पूछा, कैसे? उसने सूरह शुआरा की आयत पढ़ी, वश्शुआरा यत्तबिउहुमुल गावून, यहाँ से वअन्नहुम यकूलूना मा ला यफअलून तक पढ़ी उसने। इसका खुलासा यह कि शायर ऐसे बातें भी कह देते हैं जो उन्होंने अमलन नहीं की होती। समझने के लिए हम देखिए कि फरजदक जो एक शायर के नाम से मशहूर है वो भी अपनी दलील कुरान से दे रहा है। उसकी ज़बान पर भी कुरान है, उसकी सोच का मरकज़ भी कुरान है। सामने किराम, असल खिदमत वो है जो कुरान के साथ अमली ताल्लुक पैदा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबे में एक अजीम हकीकत बयान फरमाई। अय्याज़ इब्न हिमार रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों पर नज़र फरमाई, अरब हों या अजम, उनके बेशतर लोग गुमराही में मुबतला थे सिवाय चंद अहले किताब के जो हक पर बाकी थे। फिर अल्लाह सुबहाना व ताला ने यह अजीम किताब नाजिल फरमाई यानी कुरान उतारा। तो सामिन किराम, इस खुतबे में इस अजीम हकीकत की तरफ इशारा है कि ये बहुत बड़ा शरफ है हमारे लिए, साथ साथ ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर हम वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिस्सा हैं तो हमें कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा, क्योंकि यही वो किताब है जिसने कल दुनिया बदली थी और यही वो किताब है जो आज भी दिलों को जिंदा कर सकती है। सामने किराम, अब हम उस आयत की तरफ लौटते हैं जिसकी तिलावत हमने की थी, या अय्युहन्ना सुकज्जातकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में कुरान को मौइज़ा कहा है, नसीहत कहा है, दिलों का इलाज कहा, हिदायत कहा और रहमत कहा। सवाल यह है कि नसीहत लोगों में क्या तब्दीली लेकर आई? इसका जवाब समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि कुरान के नज़ूल से पहले इंसानों की हालत क्या थी, क्योंकि जब तक हमें बीमारी का अंदाज़ा ना हो दवा की अजमत भी पूरी तरह समझ में नहीं आती। समझने के लिए, अरब माशरे में बहुत से अच्छी सिफात मौजूद थी, सखावत थी, मेहमान नवाजी थी, वादा निभाने का जज्बा था, बहादुरी थी, इज्जत नफ्स थी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق, मुझे बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। और कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकमील के लिए भेजा गया हूँ। तकमील उस चीज की होती है जो पहले से मौजूद हो मगर नाकिस हो। अगर कोई चीज सिरे से मौजूद ही ना हो तो उसे मुकम्मल नहीं किया जाता बल्कि नए सिरे से पैदा किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अरबों में बहुत सी अच्छी सिफात थी लेकिन वो सिफात इंसानियत को कामिल इंसान बनाने के लिए काफ़ी न थीं, क्योंकि इंसान सिर्फ अखलाक के चंद मज़ाहिर का नाम नहीं। इंसान की असल ज़िंदगी उसके दिल, उसकी रूह, उसके ईमान और उसके रब से ताल्लुक में होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में फरमाया, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, और इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से एक रूह वही भेजी। यहाँ कुरान को रूह कहा गया है। रूह के बगैर जिस्म जिंदा नहीं रह सकता। जिस्म हरकत कर सकता है, चल फिर सकता है, लेकिन रूह निकल जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसी तरह कुरान के बगैर इंसान बज़ाहिर जिंदा नज़र आता है, खाता है, पीता है, तिजारत करता है, तालीम हासिल करता है।

लेकिन हकीकत में उसकी रूह मुर्दा होती है। कुरान आया तो इंसानों में हकीकी ज़िंदगी पैदा हुई, इसलिए अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया है, استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم। अल्लाह और उसके रसूल की दावत कबूल करो जब वो तुम्हें उस चीज की तरफ बुलाएं जो तुम्हें जिंदगी अता करती है। वह कुरान जिंदगी बख्शता है, कुरान दिलों को जिंदा करता है। सामने कराम ये ना समझा जाए कि अरब जाहिल थे या अकल से महरूम थे, हरगिज नहीं, वो बहुत ज़हीन लोग थे। सहरा में सफ़र करते हुए सितारों से रास्ते पहचान लेते थे। सामने कराम तारीख़ में एक अजीब वाक़या बनू हनीफा कबीले का भी मिलता है। ये वही कबीला था जिससे बाद में मुसैलमतुल कज़्ज़ाब का ताल्लुक था। रिवायात में आता है कि उन्होंने एक मरतबा खजूरों और दीगर खाने की अशिया से एक माबूद तैयार किया, फिर कुछ अरसा उसकी इबादत करते रहे, उसके सामने झुकते रहे, उससे उम्मीदें वाबस्ता करते रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि कहत पड़ गया, भूख शदीद हो गई, खाने को कुछ न मिला, तो उन्होंने क्या किया, अपने उसी माबूद को खा लिया। जी हाँ, जिसकी इबादत कर रहे थे उसी को खा गए, जिससे कल सजदे किए जा रहे थे आज वो मैदे में पहुंच गया, जिससे रिज़्क मांगा जा रहा था आज वो खुद रिज़्क बन गया। अरब शुआरा ने बाद में इस वाक़े पर तंज करते हुए कहा, बनू हनीफा ने कहत के ज़माने में अपने रब ही को खा लिया। ये दरअसल अकलों की उस बेबसी और फिक्री अंधेपन की तस्वीर थी जिसमें इंसान मुब्तला हो सकता है जब वो वही की रोशनी से दूर हो जाए। सामने कराम कुरान आया तो उसने इंसानों को इबादत सिखाई, सोचना सिखाया, सवाल करना सिखाया, हक और बातिल में फ़र्क करना सिखाया। उसने इंसान को बताया कि माबूद वो नहीं जिसे तुम बनाओ, माबूद वो है जिसने तुम्हें बनाया है। माबूद वो है जो पूरी कायनात को संभाले हुए है। माबूद वो है जिसके रहम करम पर पूरी कायनात कायम है। माबूद वो है जिसने सहरा के बिखरे हुए कबाइल को इंसानियत का उस्ताद बना दिया। सभी निकलाम प्रोग्राम के इख्तिताई मरहले पर एक मरतबा फिर हम कुरान करीम की उस अजीम तासीर पर गौर करेंगे जिसने इंसानों के दिल, फिक्र, अकल और ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। उस कुरान की तासीर के हवाले से जिसने इंसान की पूरी शख्सियत को तब्दील कर दिया, वो गुमराही को रुश्द में, जहालत को बसीरत में और अंधेरे को नूर में बदल देता है। तारीख में एक नहायत ईमान अफरोज वाकया मिलता है। सहाबी रसूल राशिद इब्न अब्द रब्बह अस-सुलमी रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम से पहले बुतपरस्त थे। उनके तमाम बेटे मुसलमान हो चुके थे लेकिन वो खुद अपने आबाई दीन पर कायम थे। उनके घर वाले बार बार उनके बुतों को घर से निकाल कर बाहर फेंक देते और वो हर मरतबा उन्हें वापस ला कर अपनी जगह रख देते। ये सिलसिला काफ़ी अरसा जारी रहा। एक दिन उन्होंने देखा कि उनका माबूद घर के बाहर पड़ा हुआ है और एक लोमड़ी उसके सर पर पेशाब कर रही है। वो ये मंजर देखकर साकित रह गए। उनकी अकल जाग उठी, फितरत बेदार हो गई और वे इख्तियार उनकी जबान से शार जारी हुए, अरबुन यबूल सुअलबानु बिरअसिही लकद हाना मन बालत अलैहि सालिबु। क्या ये माबूद है जिसके सर पर लोमड़ियाँ पेशाब कर रही हैं? यकीनन वो हस्ती बड़ी हकीर है जिस पर लोमड़ियाँ पेशाब कर जाएं। फिर उन्होंने कहा, लौकान रब्बन कान यमनउ नफ्सहु फला खैर फी रब्बिन तातीहि थालिबु। अगर ये वाकई रब होता तो कम से कम अपने आप को तो बचा लेता, ऐसे रब में क्या खैर जिसे लोमड़ियाँ आकर जलील कर जाएं। फिर उन्होंने बुत तोड़ दिया, इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया, गावी बिन अब्दुल अज़्ज़ा, यानी गावी गुमराह शख्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आज से तुम राशिद बिन अब्द रब्बह हो, यानी गुमराह नहीं बल्कि हिदायत याफ्ता बंदा राशिद। सामने कराम ये सिर्फ नाम की तब्दीली नहीं, ये शख्सियत की तब्दीली थी, ये फिक्र की तब्दीली, ज़िंदगी की तब्दीली थी। इसीलिए बंदे को हमेशा अल्लाह ताला से हिदायत मांगते रहना चाहिए। हम हर नमाज में दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्योंकि हिदायत अल्लाह के हाथ में है और जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो

0: चुन लेता है, उसका इंतखाब कर लेता है और गुमराही से निकाल कर रुश्द व हिदायत के रास्ते पर ले आता है। सामने कराम, अगर कोई शख्स अपनी आखिरत के बारे में जानना चाहता है, अगर वो ये देखना चाहता है कि उसका अंजाम अच्छा होगा या बुरा, तो सबसे पहले उसे अपनी मौजूदा हालत को देखना चाहिए। अपने आप से सवाल करे कि आज मेरे दिल में कुरान का मकाम क्या है। जो ये जानना चाहता है कि अल्लाह के यहाँ उसकी क्या कदर है, वो देख ले कि उसके दिल में अल्लाह की क्या कदर है। मन अरादा यअलम मा लहु इंदल्लाह फलियंजुर मा लिल्लाह इंदा। सामने किरामा, कुरान जब अरब के उस माशरे में नाजिल हुआ तो उसने सोचने का अंदाज ही बदल दिया। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का मशहूर वाकया देखिए। वो हजरे अस्वद को बोसा देते हुए फरमाते थे, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, न नफ़ा पहुँचा सकता है और न नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए न देखा होता तो मैं तुझे बोसा न देता। समय ग्रामी, यह है कुरान की तरबियत, यह है अक्ल की बेदारी, यह है ईमान की रोशनी। कुरान आया तो इंसान को सिखाया कि नफ़ा नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुरान ने अखलाक और माशरत भी बदल दी। समझ कर आज भी वही कुरान हमारे दरमियान मौजूद है, वही आयात हैं, वही पैगाम है, वही नूर है। अगर कुरान ने राशिद इब्न अब्द रब्बह रज़ियल्लाहु अन्हु को गुमराही से हिदायत तक पहुँचाया, उमर इब्न ख़त्ताब को जाहिलियत से अदल तक पहुँचाया और एक पूरी उम्मत को अंधेरों से रोशनी तक पहुँचाया, तो यकीनन वो कुरान आज भी हमारे दिलों को बदल सकता है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उसके नूर से हमारे दिलों को रोशन फरमाए और हमें हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के इस हलके से साउंड डिज़ाइनर शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफ उज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मासलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: हवा के झोंके आज मौसम से रूठ गए।
4: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
5: द रिक्वेस्ट शो
4: हर शाम 4 to 5
5: फजील के साथ
4: संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
6: दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं। इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए। याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
7: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, दी अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
8: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
9: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो।
10: बहुरानी, ठाकुर तो कियो।
9: FM 107.

Assalamualaikum and good morning Qatar. आप सुन रहे हैं summer morning with RJ भावेश खान और मैं आ गई हूँ 6 बज के हो गए 2 मिनट. मेरा आपके साथ रहना है 9 बजे तक और आज भी बहुत कुछ है मेरे पास. आज ट्यूजडे है ना. हाँ ट्यूजडे आ गया. ट्यूजडे शुरू हो गया तो तीसरा दिन हफ्ते का आगाज़ हो गया इसका और मुझे उम्मीद है कि आपकी सुबह का आगाज़ हो गया होगा अच्छा सा और आपने जो है वो अच्छा सा नाश्ता वाश्ता कर लिया होगा. अच्छा नाश्ते भी मैं बड़ा जोर देती हूँ सुबह के वक्त में.

लेकिन इसके बावजूद मतलब हमारी यहाँ स्कूल और यूनिवर्सिटी तकरीबन ऐसी 8:15 तक शुरू होती हैं, इतना ज़्यादा अर्ली नहीं शुरू होता, लेकिन इसके बावजूद भी जो ना हालात यही होते थे कि कुछ खा के नहीं गए और मतलब ऐसे ही चले गए, फिर उसके बाद जब ब्रेक हुआ तो ब्रेक में कुछ ले वे के खा लिया, ये वाला सीन रहा पूरी लाइफ। लेकिन मुझे याद आ गया कि हमारे मतलब यूनिवर्सिटी के टाइम पर ख़ास तौर पर ना हम लोग जा रहे होते थे कॉरिडोर वगैरह से, तो एक क्लास वाला ही था हमारा, बाद में पता चला था कि हमारी क्लास में, तो रोज़ाना जब नए नए हम लोगों ने ज्वाइन किया था रोजाना सुबह सुबह नाश्ते के फजाइल के ऊपर बात कर रहा होता था कि अंडा पराठा ये तो लाजमी होना चाहिए, और हमें उसका नाम नहीं पता था, हमने उसका नाम ही अंडा पराठा रख दिया था शुरू में। तो खैर होते हैं मतलब कुछ लोग शुरू से ही इतने ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, और होना चाहिए क्योंकि एक सर्टन एज होती है जहां पे आपका खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब खासतौर पर जो बच्चे होते हैं, बच्चों को मतलब जो है ना जितना जरूरी हो मतलब जितना अच्छा हो सके उनकी खुराक होनी चाहिए शुरू से ही, अगर वो अच्छी डाइट के मुतवाजन सब चीजें लेने के आदि होंगे, अच्छी तरीके से खा पी लेंगे, तो मतलब पेरेंट्स को भी एक तो मुश्किल नहीं होती है, उनको जो है ना झंझट का सामना नहीं करना पड़ता कि भाई ये बच्चा तो कुछ खा ही नहीं रहा, और दूसरी चीज़ ये कि ग्रोथ भी अच्छी होती है। और अमूमन ये होता है कि मतलब हम जैसे लोग, जैसे मैंने जो प्रॉपरली खाना शुरू किया है ना लिटरली, मतलब जिसको वाकई आप कह सकते हैं कि खाने पर आई हूँ मैं, वो 20 साल के बाद आई हूँ। उससे पहले मैं खाना खाती ही नहीं थी, मतलब यही होता था चिप्स के ऊपर गुजारा हो गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन फिर होता ये है कि आप एक मतलब आता है हर बंदा जो पहले कभी नहीं खाता वाता वो एक ज़माने में खुश खुराक हो जाता है, लेकिन फिर उसके साथ आपका आ जाता है मोटापा। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि मतलब आप पहले से ही ना मतलब खाते पीते हों। तो वो लोग मैंने देखा, अच्छा हमारे साथ जितनी भी वो मोटी मोटी वाली लड़कियाँ थी ना वो आज मोटी नहीं है, मतलब ये एक अजीब सी बात है कि मतलब जो पहले से थोड़े से बल्कि थोड़े हेल्दी होते हैं वो बाद में जो है ना सेट हो जाते हैं, ये एक अजीब सी बात है। और फिर जो हम लोग जैसे मतलब बिल्कुल ही हैंगर पे कपड़े वाली वाली बात होती थी ना, हमें अब फौरन से खाना लग जाता है, हमें एहतियात करना पड़ती है, तो ये वाला कुछ अजीब सा सीन है। खैर जी कहाँ से कहाँ निकल गई हूँ मैं, हम आ जाते हैं अपने असकार से। पहले आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़, अच्छा मैं जिस परसों वीडियो के बात करी थी ना उसी में मैंने ये वाली बात भी सुनी थी, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके हवाले से बात किया जाए क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत एस्पेक्ट है जिसके बारे में यूजली हम सोचते नहीं है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम देखें अल्लाह ताला हम पे कितना मेहरबान है, कभी हमने रुक के गौर किया है कि अल्लाह ताला ने हमें जो अहकाम दिए हैं उनमें आखिर हिकमत क्या है? बज़ाहिर बास अहकाम हमें इबादत या फिर कवानीन नज़र आते हैं, लेकिन जब हम उन पर गहराई से गौर करते हैं तो मालूम होता है कि उसका असल फ़ायदा ख़ुद हमें यानी इंसान को पहुँचता है। अल्लाह ताला को ना हमारी इबादत की ज़रूरत है ना हमारे माल की, बल्कि उसने हर हुक्म हमारी भलाई, हमारी पाकीज़गी, हमारे सुकून और एक आदलाना माशरे के क़याम के लिए दिया है। कुरान करीम बार बार इंसान को गौर व फ़िक्र की दावत देता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या ये लोग गौर व फ़िक्र नहीं करते? इस्लाम का हर हुक्म अपने अंदर बेशुमार हिकमतें रखता है। नमाज सिर्फ चंद रकात का नाम नहीं है बल्कि इंसान की तरबियत है। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है बल्कि नफ्स की असलाह है। हज सिर्फ एक सफ़र नहीं है बल्कि उम्मत मुस्लिमा की वहदत की अलामत है। इसी तरह इस्लाम का जो माली निज़ाम है जिसको आप फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं वो भी महज दौलत जमा करने या तकसीम करने का कानून नहीं है बल्कि एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम है जो इंसान के किरदार, माशरे की फलाह, माशी इंसाफ और इज्तमाही खुशहाली की बुनियाद रखता है। आज की दुनिया में अगर आप देखें ना तो इकॉनमी को सिर्फ मतलब ये नंबर्स, मुनाफा, टैक्स और सरमायाकारी के जाविये से देखा जाता है। किसी मुल्क की तरक्की का मयार उसकी जीडीपी है, स्टॉक मार्केट या बैंकिंग सेक्टर को समझा जाता है, लेकिन इस्लामी जो मईशत है वो सिर्फ दौलत का खेल नहीं है बल्कि उसे अखलाक, इंसाफ, ज़िम्मेदारी और अल्लाह की अमानत से जोड़ा जाता है। आज अगर हम ज़्यादातर दुनिया में देखें, माशी निज़ाम देखें वहाँ का, तो हमें अंदाज़ा होता है कि अमीर अमीर से अमीर तरीन होता जा रहा है जबकि गरीब मज़ीद मुश्किलात का सामना कर रहा है, और दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ भी गुरबत, बेरोज़गारी, कर्ज़ों, महंगाई और दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम जैसे मसाइल से दुचार हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्लाम ने इन मसाइल का कोई हल पेश किया है? तो जवाब यह है कि जी हाँ, और वो भी 1400 साल पहले। इस्लाम का माली निज़ाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक रहमत है। यही वजह है कि इस्लाम को दीन सलामती कहा जाता है। सलामती सिर्फ जंग ना होने का नाम नहीं है बल्कि माशी सलामती, समाजी सलामती, अखलाकी सलामती और इंसानी वक़ार की हिफाजत भी सलामती का हिस्सा है। इस्लाम सबसे पहले इंसान के जहन को दुरुस्त करता है।
دنیا کے بیشتر جو جو آپ دیکھیں گے کہ فائنینشل جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ انسان کو مال کا مال

0: ये दिन कहलाता है, मतलब ये सालगिरह भी है बेसिकली इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन की, आईपीयू की, उनके कयाम की सालगिरह भी है और ये दिन हर साल मनाया जाता है 30 जून को। तो ये हो गया एक दिन। इसके अलावा एक और जो दिन मनाया जाता है वो है वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। और मुख्तलिफ इदारे और ऑर्गेनाइजेशन इस दिन जो गांव देहात के जो इलाके होते हैं उनकी तरक्की की अहमियत को जागर करते हैं बेसिकली, और इसका फोकस बेहतरीन तालीम, सेहत, साफ पानी, रोज़गार के मौके और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर होता है। और रूरल कम्युनिटीज़ को मजबूत बनाना भी किसी भी मुल्क की जो मुस्तहकम तरक्की के लिए कितनी बुनियादी अहमियत रखती है, तो इस चीज़ को इन्हेंस किया, इस चीज़ को मतलब क्या कहना चाहिए, इस चीज़ को अहमियत को उजागर किया जाता है। ये बेसिकली आज के दिन का मकसद होता है। अच्छा, इसके साथ ही वो दिन आ गया जिसके बारे में भी मैं बात कर रही थी, ये बेसिकली है नेशनल मेटियोर वॉच डे, और ये यूनाइटेड स्टेट्स में मनाया जाता है। ये ऑब्जर्वेंस लोगों को रात के आसमान का मुशाहिदा करने और मेटियोर्स, कॉमेट्स, स्पेस साइंस में दिलचस्पी पैदा करने की तरकीब देता है। एस्ट्रोनॉमी क्लब्स और साइंस के जितने भी मतलब जो दिलदादा लोग हैं इस दिन ख़ास तौर पे स्काई वॉचिंग एक्टिविटीज़ करते हैं और एजुकेशनल प्रोग्राम्स का एहतराम करते हैं। तो इस तरह से 30 जून अगर देखा जाए तो साइंस, टेक्नोलॉजी, डिजिटल कनेक्टिविटी से मुतालिक है और ख़ास तौर पे दिन मनाया जाता है। उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो डेफिनेटली ये नेशनल मेटियोर वॉच डे। मज़े का वक्त है अगर आपको आसमान बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आता हो, जहाँ पर आपको सितारे बड़े ईजिली नज़र आते हो, तो आपको डेफिनेटली इस दिन को तो मनाना ही चाहिए। क्या मज़े का दिन है, मतलब रात के वक्त आसमान, खुला आसमान, तारे ही तारे और आप अकेले, वाओ ज़बरदस्त। फिर जी, तो ये जो है कुछ दिन मनाए जाते हैं। इसके साथ ही हम मूव करते हैं ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और आपको बताती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में।
4: एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में
3: वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
4: सब कुछ मिलेगा यहाँ।
3: ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 बजे FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it.
4: Don't miss it.
5: दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
6: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट. दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
5: दोस्तों, आपका ट्रेन से मुताल्लिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है. हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं. आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं. कीप क्रॉसिंग क्लियर. ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें. इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है. ट्रैम वे लुक बोथ वेज. ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है. क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है. ट्रैम ओनली लेन. ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं. ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं. शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स. ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें. कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर. ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें. अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.

0: मैसेज और आपको ये बता दें कि आज का सवाल ये है कि कौन सा ऐसा चेंज आप अपनी जिंदगी में लेकर आ चुके हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बहुत हद तक बदल चुकी है। अभी तक हमने आपसे ये पूछा है कि कौन सा चेंज लाना चाहेंगे, लेकिन आज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कौन सा छोटा सा चेंज बेशक लेकिन आप अपनी जिंदगी में ला चुके हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी जो है वो बहुत हद तक बदल चुकी है। ठीक है, तो इस सवाल का आपने देना है मुझे जवाब। कॉल कर सकते हैं आप या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो आप हमें कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अच्छा जी, मेरे पास है अस्सलाम वालेकुम मामा जी, कैसे हैं आप? मूवी नेम कयामत से कयामत सॉन्ग यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने में। ये भाई कहाँ से, मतलब दो गाने आपने बताए, मतलब दो चीज़ें अलग अलग बताई, कयामत से कयामत में कब ये गाना है? ये तो हो उसमें है, हम है राही प्यार के, मतलब थोड़ी सी कुछ वो बताएं मुझे कि ये सुनना है, कब सुनना है, लेकिन गाना तो सही बताएं ना। अच्छा जी, तौफीक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अलवकरा से मैसेज किया आपने, क्या हाल चाल है तौफीक भाई, ठीक ठाक हैं आप? तो खैर जी, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं 6622107 पे और साथ ही साथ 4344377 पे आप हमें कर सकते हैं कॉल और बता सकते हैं कि कौन सा छोटा सा चेंज है जो अपनी ज़िंदगी में आप ला चुके हैं। ठीक है, ला चुके हैं और ज़िंदगी चेंज हो गई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है फैजान।
0: यस फैजान, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा आगाज हुआ सुबह का?
1: जी हाल वाल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज अपने टेम्परेचर ने मेरा ख्याल बताया,
0: इस वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड है।
1: और मैक्सिमम कितना जाएगा?
0: मैक्सिमम 42 तक कह रहे हैं, लेकिन वैसे मुझे लग रहा है ज्यादा ही जाता है, फील्स लाइक तो ज्यादा होता है।
1: अच्छा, आज का जो सवाल है उसके हवाले से ये है कि मैंने ना ये तकरीबन साल हो गया है डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दिया।
0: वाओ गुड, किस किस्म
1: के तौर पे? सबसे जो बड़ी है ना इंसान की डिस्ट्रैक्शन वो यही है कि जब आपको थोड़ी सी फरागत मिलती है ना तो आप फिर मोबाइल पकड़ लेते हैं, वो फिर स्क्रॉलिंग खत्म ही नहीं होती आपकी। या आप कुछ सीरियल देख रहे हैं या आप दोस्तों के साथ बैठे हैं तो फिर मतलब इस तरह होता है कि आप घंटा घंटा दो दो घंटे बैठे रहते हैं और स्टार्ट में तो काम की बातें होती हैं, जरूरी बातें होती हैं, हाल अहवाल, उसके बाद फिर गइबतें स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब कोई भी चीज है ना ऐसी जिसमें जब मैं देखता हूँ ना थोड़ा सा मुझे मजा आने लग गया चीज में तो मैं उसको ना छोड़ देता हूँ, वहां पे तर्क कर देता हूँ।
0: जबरदस्त, ग्रेट।
1: मिसाल के तौर पे अभी क्या कहते हैं, कोई भी चीज है, अब फोन पकड़ा है साथ, अपना काम किया, कॉल किया, उसके बाद डाटा को बंद करके रख दिए। तो अगर साथ किसी ने कोई वीडियो भेज दिया, कोई लिंक भेज दिया होता ना, अक्सर हम शेयर करते हैं फनी वीडियो कोई किसी, तो वो अगर जाके देख लिया टिकटॉक पे या कहते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और क्या होता है फिर एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, दूसरे के बाद चौथी, इस तरह ना जो इंसान है उसमें एडिक्टेड हो जाता है।
0: हाँ, ऐसे
1: तकरीबन साल होने वाला, बल्कि साल से ज्यादा ही हो गया, मैंने अपनी जो डिस्ट्रैक्शंस है ना मैंने इनको बहुत हद तक कम किया है। 24 घंटे सबके पास होते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन मुझे लगता था यार मेरे पास टाइम ही नहीं, टाइम बचता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला जाता है टाइम। अभी ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतनी चीजें मेरी पेंडिंग थी वो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मेरी मतलब उसमें आ रही है, रूटीन में आ रही हैं और आ चुकी हैं काफी ज्यादा। अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इंसान कुछ करता है, कुछ सर्टिफिकेशन करता है, वो भी मैंने किए हैं।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट। तो काफी मुश्किल फैजान, मतलब है तो मुश्किल क्या आप, मतलब सारी आपने सिर्फ, अच्छा ये नहीं बोला, आजकल सब लोगों के जहन में होता है सोशल मीडिया, आपने सोशल मीडिया से हटकर भी डिस्ट्रैक्शंस बताई हैं।
1: जी जी जी जी जी, क्योंकि ये है ना मिसाल के तौर पे अभी वो दोस्त हैं मिलते हैं कहीं, आओ यार चाय पीने चलें, ठीक है चाय पीने चलते हैं, अब क्या है चाय पियेंगे मैक्सिमम आपको 10 मिनट लग जाएंगे या 20 मिनट लग जाएंगे, उसके बाद फिर क्या होता है और सुनाओ, जब बंदा दो चार बातें करते उसके बाद ना बात पीछे कोई रह नहीं जाती, फिर गइबतें स्टार्ट होती हैं, यार तुम्हें उसका पता है वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, वो ये हो गया, वो फलाना हो गया, तो फिर इंसान जो है ना गइबतों पे आ जाता है या इंसान कंपैरिजन पे आ जाता है। तो हमें क्या जरूरत है किसी का कंपैरिजन जो है वो अपने साथ करने की या किसी की बदखोइयां सुनने की।
0: Exactly.
1: अच्छा बस जाओ मिलो, मुख्तसर मिलो और उसके बाद वहां से भागो।
0: सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जबरदस्त स्ट्रेटजी, मुश्किल काम है, तो आपको बड़ी मुबारकबाद भाई कि आपने एक साल मुकम्मल कर लिया इसके साथ।
1: जी जी जी, और मैं जब आया था कतर तो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी नो कहने में पहले। मतलब मैं कहा नहीं जाता था, कोई काम करता था, कोई सीनियर काम करता था, दोस्त काम करता, तो अच्छा जी ठीक है, नाइस के चक्कर में ना मैं कर दिया करता था वो भी मैंने खत्म कर दी। कोई बात बंदा बात कहता है तो ना सम टाइम क्या होता है, मैं कहता हूँ अच्छा आपको बताता हूँ ठीक है, 10-15 मिनट अच्छे से सोच के ना, जज्बाती फैसला नहीं करता कि मुंह पे मैं नो कर दूं तो अगले बंदे को बुरा लगे, मैं कहता हूँ मुझे 5 मिनट दें मैं जरा कॉल कर लूँ, इस तरह करके ना मैं बहाना करता हूँ और मैं अच्छे से सोच लेता हूँ आया कि अगर कोई आदमी पैसे मांग रहा है, कोई हेल्प मांग रहा है, कुछ कर रहा है कुछ या नहीं कर रहा, तो मैं सोच के जब मैं उसको 5 मिनट देता हूँ ना 10 मिनट देता हूँ तो मुझे समझ आती है कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना, मैंने नो करना है या नहीं करना, फिर वो मुझे जो 10 मिनट मिल जाते हैं ना उसमें मेरी डिसीजन की जो है ना वो मैं पहुंच जाता हूँ वहां तक, तो मैं फिर नो कर देता हूँ।
0: ग्रेट, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस।
1: नो करना बहुत मुश्किल काम है,
0: मुश्किल काम है लेकिन आना चाहिए आपको, बहुत सारी जगहों पे आपको नो बोलना पड़ता है। बाउंड्री बना ली है जहाँ पे आपको नो कहना भी आ गया है, जहाँ पे अपने डिस्ट्रैक्शंस को भी अवॉइड कर दिया है, तो जबरदस्त। और इससे काफी मतलब फर्क पड़ा होगा आपकी लाइफ में, मतलब आप जैसे कह रहे हैं अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कोर्सेस वगैरह भी आपने किए हैं, फैमिली लाइफ भी बेहतर हुई होगी।
1: क्योंकि देखे ना कि एट द एंड आपकी फैमिली आपका सब कुछ होती है, दोस्त आज होते हैं कल नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते तो दोस्त भी नहीं होते, पैसे होते हैं तो फिर बस वो मतलब जो ना वो कामयाबी की जो ना हर कोई दोस्त होता है और नाकामी जो है वो बेचारी लावारिस होती है कहते हैं ना
0: सही बात है, सही बात है, ये वाला है। अच्छा ये जो चीजें है ना ये यूजुअली आपको बहुत सी मुश्किलात अगर देखी हुई हो और दोनों तरह के वक्त देखे हो ना बेसिकली, तो ये जब चीजें आपको समझ में आती हैं, अगर एक ही तरह का वक्त चलता रहो फिर नहीं समझ में आती है ना।
1: मैंने तो कल परसों आपको बताया भी था मैंने बहुत स्ट्रगल किया
0: है। हाँ ना वही मुझे बिल्कुल याद है, परीजात जी जी बिल्कुल मुझे याद है, तो वही है, तो उसी पे मैं कह रही हूँ कि वो डेफिनेटली आपने जब स्ट्रगल भी की होती है और फिर अच्छा वक्त भी देखा होता है और दोनों में लोगों का रवैया देखा होता है, असल चीज़ जो होती है ना वो ये होता है रवैये कैसे चेंज होते हैं। अच्छा कल मतलब अभी वो ड्रामा चल रहा है, कल बहुत मजा आया, आप देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामास?
1: जी मैं देखता हूँ लेकिन आजकल
0: नहीं देख रहे। अच्छा ये अभी ना दो चल रहे हैं, एक तो जंजीरें हैं, जंजीर अगर आपने थोड़ा सा रोना धोना है तो देख लीजिएगा, दूसरा जो है ना एक और चल रहा है बस तेरा साथ हो, तो शुरू के एपिसोड्स इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लग रही थी लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ना बड़ा ही मज़े का होता जा रहा है। तो कल की एपिसोड में ना वो सीन्स थे कुछ कि जिसमें होता ये है कि वो बेसिकली मतलब ये ताए अब्बू दिखाए हैं और उनका जो भतीजा है वो उससे बहुत ही नफरत करते हैं, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या रीजंस हैं। फिर वो शादी करके लड़की को लेकर आता है तो ये लोग इस चक्कर होते हैं कि घर अपने नाम करवा लें और उसको मारते पीटते भी हैं, बकायदा उसका सर फाड़ देते हैं। खैर फिर होता क्या है कि लड़की के ना जिससे वो शादी करके लेकर आया है वो भी एक स्टोरी है पूरी आप देखिएगा, तो वो उसके मेहमान आते हैं तो ये लोग पहले जाते हैं इस चक्कर में कि मेहमानों को बिल्कुल ना जलील करके घर से बाहर निकालते हैं, हमारे घर में कैसे घुसे और ये सब कुछ, तो ये जाते हैं देखते नहीं है कि कौन बैठा हुआ है। फिर थोड़ी देर के बाद ये वो एक बंदा मुड़ता है उसमें, वो कहता है कि ये क्या आप मतलब आपसे तो ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि आप इस तरह के इंसान होंगे, तो ये एकदम से बदल जाते हैं और ऐसा बदलते हैं क्योंकि वो मतलब बंदा उससे इनको मतलब लेना देना है उनको उससे काम पड़ सकते हैं, तो ये बंदा ऐसा बदलता है कि फिर अब तो आपने मेरी बीवी के हाथ के कबाब खाए बगैर नहीं जाना और पता नहीं क्या क्या, तो इतनी मुझे हंसी आ रही थी, बड़े मजे का चल रहा है, जरूर देखिएगा फैजान आप इंजॉय करेंगे।
1: एक दो ड्रामे मैंने देखे हैं रिसेंटली वाइफ के साथ ही देखे थे, एक तो ड्रामा है वो पागल सी, शायद आपने भी देखा।
0: नहीं मैंने नहीं देखा।
1: वो पागल सी ड्रामा है, हारून साहब है कोई उनका।
0: अच्छा अच्छा सही।
1: और उसमें हिना है जो मेन करेक्टर है लड़की का, वो वो पागल सी ड्रामा बहुत ही अच्छा है।
0: अच्छा अच्छा नहीं मैंने नहीं देखा।
1: और एक और है उसका जो है ना गाना वो मुझे थोड़ा आ रहा दिन में, तेरे बाद फिर जिया नहीं इस तरह करके उसका गाना है।
0: आप जियो के तो नहीं देखते यूजुअली ड्रामा?
1: हाँ जी
0: जियो के तो नहीं देखते आप यूजुअली? आई थिंक मैंने इसलिए नहीं देखे क्योंकि मैं यूजुअली जियो के नहीं देखती। अच्छा
1: क्यों आपको जियो नहीं पसंद?
0: जियो की बात नहीं है, उनके ना वो उनके ड्रामों में क्या होता है कि वो वाला थोड़ा सा होता है जो इंडियन सोप्स में होता था ना, स्टार प्लस वाला इमोशंस हाइप और ये वाला, मैं वो वाले नहीं देखती। मैं थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा सा स्टोरी बेस हो या इस तरह का कुछ हो तो फिर वो देखती हूँ। तो ये दोनों आप देखिएगा, आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे फजान। बस हाँ, तेरा साथ हो और दूसरा जंजीर, ये दोनों देखिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे।
1: और ये वाला ड्रामा रिसेंटली देखा था नकाब, नकाब देखे आपने?
0: नहीं वो भी नहीं देखा।
1: इसमें होता है लड़का जो है वो क्या कहते हैं भाई का बेटा होता, तो उसको उन्होंने घर में ना नौकर बनाया हुआ होता है।
0: अच्छा,
1: तो वो क्या करता है सारी रात को वो जाना पड़ता है अपने छोटे से कमरे के अंदर, स्टडियो के नीचे उसको रूम दिया होता है उन्होंने। उसके नीचे वो अपना पढ़ता है, स्टडी करता है, ऑनलाइन ट्यूशन करवाता है और वो कमिश्नर बन जाता है।
0: ये अच्छा होगा,
1: ये बहुत ही शानदार है ड्रामा पाकिस्तान का।
0: कौन एक्टर, कौन है
1: एक्टर इसमें? अली है और
0: अली कौन?
1: काफी बड़े बड़े एक्टर्स हैं इसमें। नकाब ड्रामे का नाम है
0: अली। कौन सा वाला अली?
1: अली एक स्मार्ट सा ही लड़का है वो, मतलब
0: पूरा नाम नकाब देखती हूँ मैं कौन सा है ये। अच्छा कहानी जो आप बता रहे हैं ना, ये बस तेरा साथ हो की भी तकरीबन यही वाली कहानी है, यही मतलब ताया ने घर पे रखा हुआ है, नौकर ही बनाया हुआ है, यही सारा मतलब सिलसिला है। लेकिन ये बड़े मजे का चल रहा है, मतलब कल भी। हाँ अच्छा अच्छा सही है वाला।
1: इस ड्रामे में जो गाना भी है जो एक्ट्रेस नहीं पाकिस्तान की वो भी है।
0: अच्छा,
1: और उसमें न्यू कैरेक्टर्स भी हैं पुराने, लेकिन बहुत ही शानदार है। और इसका जो ओएसटी है वो मेरे ख्याल आपने प्ले किया हुआ यहाँ पे।
0: अच्छा हाँ हो सकता है।
1: तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर ये गाना भी प्ले करें आज सात के बाद।
0: अच्छा चले मैं देख लेती हूँ कौन सा है, क्योंकि ड्रामा मैंने देखा नहीं। अली अंसारी, हाँ मैं वो तो मैं समझ गई, मैंने देख लिया, तो मैं बिल्कुल ये चलाने की कोशिश करती हूँ। बाकी आप मेरी रिकमेंडेशन पे ना ये दोनों ड्रामे देखें, आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे, बड़ा मजेदार है। ठीक है चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान आपका, और बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बात करके। ख्याल रखिएगा, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी तो हमारे साथ थे फैज़ान, और फैज़ान के साथ ही जो है आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करने के लिए नंबर 4434377 है, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप कॉल कीजिए, मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी छोटी सी आदत है जो आपने चेंज की है और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक फ़र्क आया है। ठीक है, आप खुद महसूस करते हैं कि इससे तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। जैसे भी फैज़ान ने बताया ना कि उन्होंने दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चेंज की, एक तो डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया है बिल्कुल, और दूसरा उन्होंने जो है एक और काम ये किया है कि उन्होंने नो बोलना सीख लिया है। तो दोनों ही बेहतरीन आदतें हैं भाई, होना चाहिए। तो आप भी मुझे बताएं कि आपका ऐसा क्या सिलसिला है जो आप करते हैं और आपको लग रहा है कि ये चेंज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
0: जी कौन बात कर रहे हैं?

0: नौशाद अहमद, क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं कैसे हैं, कहाँ हैं? काफी अरसे के बाद बात हुई है आपसे.
1: जी, ज्यादातर मैं सुनता ही रहता हूँ. हर रोज मैं जब निकलता हूँ ड्यूटी के लिए शुरू कर देता हूँ आपका प्रोग्राम. अभी ड्यूटी से बिल्कुल करीब हूँ. अलखोर से दोहा का सफर होता है रोज.
0: अच्छा अच्छा, सही. तो बस ये फिर सिलसिला इस वजह से है कि आप कॉल नहीं कर पाते लेकिन सुनते हैं.
1: बहुत जरूर सुनता हूँ मैं.
0: सही सही,
1: गाड़ी में बैठते ही बस स्टार्ट कर देता हूँ मैं.
0: हाँ सही, गुड. जब चले अच्छी बात है आप सुन रहे हैं. कभी कभी जब मौका लगा रिकॉल भी कर लिया करें, आज जैसे किया. अच्छा ये बताएं कि
1: कॉल लंबी हो जाती है ना किसी की, तो गाड़ी में रहता हूँ.
0: सही सही सही सही. तो अभी आपने सवाल सुना आज का हमारा?
1: जी जी.
0: तो क्या कहेंगे?
1: मैं तो ये कहूंगा कि मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया.
0: सेम सेम मेरा वाला.
1: बहुत ही गुस्सा आता था. सब पे बच्चों पे भी आता था, लेकिन बच्चे को मैं बहुत ही प्यार करता हूँ. तो खास तौर से बच्चियों पे तो नहीं, बस अपने बेटे पे ज्यादा आता था, लेकिन अभी उसको भी इग्नोर कर दिया.
0: अच्छा.
1: जब भी किसी से मिलता हूँ तो बस मतलब सॉफ्टली, नरमी के साथ, कोई गुस्सा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आराम से.
0: सही सही, तो ये कर लिया आपने. सही, मुश्किल काम है भाई. सही, ये भी बड़ा मुश्किल काम है. हाँ ये है,
1: बहुत ही मुश्किल काम है. अपने आप पे काबू पाना ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है.
0: हाँ, गुस्से पे ना मतलब आपका जोर नहीं चल रहा होता, यूजली यही होता है. तो अब कैसा लगता है, मतलब जब गुस्सा आता है तो करते आते तो अभी भी होगा, क्या करते हैं उस वक्त?
1: जी
0: कह रही हूँ, गुस्सा आता तो अभी भी होगा, क्या करते हैं?
1: तो अभी भी है, लेकिन बस उसको जब्त कर लेते हैं, अपने बस में कर लेते हैं.
0: अच्छा.
1: अगर कॉल पे है तो डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर के लिए सब कर लेते हैं.
0: अच्छा.
1: थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा कॉल लगाते हैं.
0: अच्छा.
1: ऐसा होता है. साथ ही हुआ मेरे साथ, किसी बात पे गुस्सा हो गया तो पर डिस्कनेक्ट कर दिया, आधे घंटे के बाद फिर लगा लिया.
0: सही सही. सही है. तो ये सीन है, इस तरह से आपने गुस्सा इंशाल्लाह इंशाल्लाह. कितना अरसा हो गया वैसे इस हैबिट के साथ?
1: तकरीबन 2 साल से 2.5 साल से इस तरह से हो रहा है, बढ़िया हो रहा है.
0: हाँ हाँ सही सही, मतलब टाइम गुजार लिया आपने काफी हद तक, तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे गुस्से को कंट्रोल करने के.
1: हाँ, इससे मेरा फायदा ये हो रहा है कि मैं हमेशा जो है सोचता रहता था, एक ही चीज पे फोकस रखता था और उसके बाद सर में दर्द होता था. ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बढ़िया है. जो मामला होता है इत्मीनान और सुकून के साथ होता है.
0: हाँ सही बात है, सही बात है बिल्कुल. तो ये अच्छी चीज हो गई माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने कॉल भी किया. और कुछ कहना चाहेंगे भाई?
1: नहीं, मैं पाकिस्तानी ड्रामों के सिलसिले में कह रहा था कि बिलाल अब्बास का कोई ड्रामा अभी आ रहा है नहीं फिलहाल?
0: बिलाल का इस वक्त में, अच्छा बिलाल के ही देखते हैं. अच्छा अच्छा, तो अभी फिलहाल अभी एक उनका खत्म हुआ है कुछ अरसे पहले, लेकिन अभी नया मुझे नहीं पता है. वो देख लिया था आपने जो हानिया मेरे के साथ आया था?
1: जी जी जी.
0: सही सही, मेरी जिंदगी है तू.
1: हाँ लास्ट में और टिकनी चाहिए था, मतलब बढ़िया होनी चाहिए, तो इसी जगह पे हुआ कि.
0: हाँ बिल्कुल. अच्छा मेरे साथ भी यही वाला सीन है कि मैं भी ना, जैसे अभी फैजान कह रहे थे ना कि ये वाला ड्रामा, मैं भी कास्ट देख के ही ड्रामा देखती हूँ. और यूजुअली मेरे भी कोई फिक्स 2-4 लोग हैं जिन लोगों के मैं ड्रामे देखती हूँ कि ये इनका आ रहा है तो इनका तो देखना बनता है, ये वाला देखेंगे. हाँ तो यही है. नहीं अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा. अभी पिछले दिनों मैंने उस पे देखा था, हज के दिनों में ना माशाल्लाह हज पे गए हुए थे. और इनकी मुझे ये बिलाल की बड़ी अच्छी बात लगती है, ये अक्सर हज उमरे पे जाते हैं लेकिन ये बिल्कुल उस चीज़ को ना मतलब लोगों के सामने ना सोशल मीडिया पे ना कहीं, बल्कि हर जगह वो लगाया हुआ होता है, मास्क लगाया.

0: किया हुआ होता है, तो थोड़ा सा अपने आप को इस चीज को दुनिया के सामने हाँ फेम के लिए यूज नहीं करते, ये अच्छी बात है। ये है, तो इंशाल्लाह कोई आता है तो मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है अभी, लेकिन जो मैंने दो बताए ना, ये आप देखें आप मायूस नहीं होंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जंजीरें भी हो और दूसरा बस तेरा साथ हो।
1: अच्छा बस तेरा साथ हो, ये किसका है? बस तेरा साथ,
0: बस तेरा साथ हो। आपने आप फरहान सईद को जानते हैं जो सिंगर भी हैं?
1: हाँ,
0: तो फरहान सईद है उसमें और दूसरा उसमें सना है और एक हॉलीवुड के एक्टर है, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था, वो उसमें ताया वही बने हुए, तो बड़े मज़े की कमाल एक्टिंग कर रहे हैं। सबा हमीद है उसमें, तो बहुत अच्छी कास्ट है। हारिस वहीद मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो जो ताया का बेटा बना है, जब आप देखेंगे ना तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे मज़े की। अब शुरू की किस्तें आपको ना शायद इतनी मज़े की ना लगे, आप दो चार किस्तें देखेंगे आप कहेंगे वही कहानी है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। कल की तो बहुत ही मजे की आई है, जब भी मैंने आज जिक्र किया,
1: ये शुरू करता हूँ, देखता
0: हूँ। हाँ जरूर देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा।
1: ठीक है
0: चले नौशाद साहब, ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह फिर बात होती है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू रोहित जी। तो हमारे साथ थे नौशाद, और इसी के साथ चलते हैं हम एक ब्रेक की तरफ।
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।
3: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
4: दोस्तों, ट्रैफिक साइन का ख्याल करने से सड़क की हिफाजत बढ़ती है और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रैफिक साइंस को समझना और उन पर अमल करना सड़क पर सफर को ज्यादा सिक्योर और आसान बना देता है। ये साइंस हमें स्पीड, रास्ता और खतरे के बारे में आगाही देते हैं, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। अगर हम इन निशानियों का एहतमाम करते हैं तो ना सिर्फ हम खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम अपनी मंजिल पर आसानी से और कम वक्त में पहुंच सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ट्रैफिक साइंस का इस्तेमाल करना ना सिर्फ हमारे सफर को आसान बनाता है बल्कि ये हमारी जिंदगी की हिफाजत भी करता है। हर साइन का अपना एक मकसद होता है, जैसे कि स्पीड लिमिट, नो एंट्री या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जो हमें सड़क पर हो रही हर हालात के लिए तैयार रखती है। अगर हम इन साइंस को ध्यान से देखें और इनके मुताबिक चलें, तो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी खतरा कम कर सकते हैं। ये सफर को ना सिर्फ आसान बल्कि ज्यादा अमन और मुश्किलात से बचाने वाला बना देता है। हर एक ट्रैफिक साइन का अपना अहम रोल है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
5: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
3: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, देसी।
4: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
6: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

मैंने आज आपसे सवाल किया है कि वो कौन सी ऐसी आदत है जो आपने छोड़ दी है और उसके बाद फिर आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, तो ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए जी, इसके साथ ही मैं आपसे शेयर करती हूँ आपके मैसेजेस की तरह, पहले आती हूँ फिर उसके बाद आपसे अपडेट शेयर करती हूँ। मैसेजेस मेरे पास हैं कुछ ये कि ये है समवन, और समवन कहते हैं स्टॉप्ड स्मोकिंग। जबरदस्त भाई, कमाल है भाई, ये तो बड़ा अच्छा कर लिया आपने। और इसके साथ ही जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग FM 107, नफीस हियर, और सॉन्ग है जीना क्या जीवन से।

0: और ये वाला भी देखिएगा
1: इंशाल्लाह ताला देखूंगा। तो सवाल पे आपके लौट के आते हैं। सवाल तो ये है कि देखिए जिंदगी में समझने के लिए और समझाने के लिए बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक चीज को देखिए एने आर्टिस्ट इस वक्त में बात करूं, मेरी जॉब तो कुछ और है लेकिन मैं एक आर्टिस्ट, हम एक आर्टिस्ट या आप एक आरजे हैं, हम लोगों से बहुत तवक्कोआत रखते हैं, ठीक है, कि लोग मेरे काम को पजीराई करेंगे, मेरे बोलने के अंदाज को, मेरे मौजू पर, मेरी चीजों को। सबसे पहले तो मैंने इसको खत्म कर दिया टोटली। कोई कहता है तो तेरा शुक्रगुजार, नहीं कहता तब भी तेरा मजीद शुक्रगुजार, क्योंकि आप मेरी इसलाह कर रहे हैं अगर आपने कुछ नहीं कहा तो। कह के तो इंसान बोल लेता है। दूसरा, शिकवे और शिकायतें, मैं विश ये टोटल, मैं मतलब हल्फन ये चीज कहता हूँ कि शिकवा शिकायत तो मैंने अपनी जिंदगी से वो हर्फ खत्म कर दिया हुआ है। किसी से शिकवा नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। आप मुझसे अच्छे तरीके से बात करते हैं, खुश रहिए, नहीं करते खुश रहिए, शिकायत बिल्कुल बंद कर दी मैंने, शिकवा भी नहीं करता। बात वहीं पर आ गई, क्योंकि कोई आपको प्रॉपर 100% समझ नहीं सकता और आप किसी को नहीं समझ सकते। इसलिए जिस तरह आप दूसरे को जिस तराजू में तोलते हैं, अपने आप को भी वहीं पर रखा करें, तो इंसान की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आती है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही है। और वाकई ऐसे ही मैंने भी ना वैसे ये चीज़ कम कर दी है। पहले एक तो ये होता था कि मेरे अंदर जो चीज़ थी, जैसे आप कह रहे ना शिकवे शिकायत वाला मामला नहीं था मेरे साथ, ये था कि किसी ने कुछ बोला है ना। अच्छा, ये भी बाय द टाइम आता है जावेद साहब, हम हमेशा से ऐसे नहीं होते। हम ना आहिस्ता आहिस्ता लोगों के रवैयों को देखते हुए और सब चीज़ों की वजह से हम थोड़े से ऐसे तल्ख से हो जाते हैं। फिर हमें लगने लगता है कि किसी ने कुछ हमारे साथ किया ना तो हमें फ़ौरन से बदला लेना चाहिए, इसने कुछ बोला फ़ौरन जवाब दो। तो मेरे अंदर ये चीज ना बहुत ज्यादा आ गई थी, बहुत ज्यादा, कि मैं फौरन से डिफेंसिव हो जाती थी कि किसी ने कुछ बोला है बस मैंने फौरन जवाब देना, यही की यही बात खत्म करनी है। तो मैंने इस पे कंट्रोल किया और गुस्से पे कंट्रोल किया, ये दो चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि मतलब फिर आप जब रियलाइज करते हो ना बेसिकली कि एक तो ये है कि बदला आप ले लो और दूसरा ये है कि छोड़ दो, तो फिर अल्लाह ताला उससे बेहतर तौर पर बदला लेते हैं। तो फिर ऐसा ऐसा ये चीज आपको जैसे जैसे मुझे लगता है मैच्योर आप वक्त के साथ होते हो, और जैसे जैसे मैच्योर होते हो तो आप बहुत सारी चीज तब्दीलियां अगर गौर और फिक्र करने के आदी हो तो आप तब्दीलियां आती हैं
1: वक्त के साथ। मैं भी बहुत से लोग मैच्योर भी हो जाते हैं और बहुत से अहमक भी हो जाते हैं, मतलब है कि मैं सही कह रहा हूं, बिल्कुल
0: हां सही कह रहे हैं, क्या सही रहे।
1: तो दूसरी बात यह है कि जिस तरह अगर आपने कहा कि गुस्सा और शिकवा शिकायत, अब ये देखिए कि आपका जमीर कितना मुतमईन है, आपका जहन कितने सुकून के अंदर है। हर तरफ आपको मामला, आपको साफ, आपको फिक्र नहीं होगी कि यार कोई कौन क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, कैसे बोल रहा है, आप उसकी पर उसकी बात को आप बिल्कुल कुछ समझते नहीं। और यही सुकून है, क्योंकि आजकल नफसा नफसी का दौर है, इसलिए ना शिकवे करो ना शिकायतें करो। भाई जिससे मिले अभी, वो जो फैजान भाई, मैं उनको नहीं जानता, तो वो तो जिस तरीके से वो अच्छी बात उन्हें कही कि पैसे और माल को जो लोग समझते हैं, दोस्तों के साथ चाय पीते हैं, मुझे तो लगता है आज उनकी चाय भी गई,
0: अब नहीं पिलाएगा कोई चाय। सही है।
1: आज आपकी वजह से आज 5:08 हो गए, 5:08 आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं थी। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू जी, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना और ऐसे ही हंसते रहें हंसाते रहें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो हमारे साथ थे जावेद साहब और इसके साथ ही एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी जमाल भाई, क्या हाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक छोटा सा शिकवा आपसे है कि क्या कहते हैं, एक वो आपके मौजू के ताल्लुक से जो बात अचानक से दफातन ज़हन में आई थी, तो उसका मुकम्मल तजज़िया तो आपने ही कर दिया।
0: कौन सा वाला?
2: फिर मैंने क्या कहना है, मेरे लिए क्या छोड़ा आपने?
0: कौन सा वाला कर दिया?
2: मौजू बेहतरीन है, बेहतरीन मौजू है,
0: बहुत शुक्रिया, टॉपिक है। हाँ, लेकिन कौन सी बात कर दी मैंने जो आपने करनी थी?
2: जो वो बात कही ना कि अगर आपके अंदर एहसास होता है तो आप धीरे धीरे फिर मैच्योर जब होते हो, और मैच्योर होने के साथ साथ अगर एहसास होता है ना, तब आप बहुत सारी चीजें तब्दील कर लेते हो।
0: यही है, ऐसा ही है,
2: बदल देते हैं आप, वो सही बात भी है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि कुछ क्या बल्कि मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे गांव वाले, आसपास वाले जितने भी लोग थे, वो मेरे वाले

0: कहा करते थे कि ये बहुत गैर जिम्मेदार लड़का है।
1: अच्छा,
0: मैं मतलब किसी चीज की परवाह नहीं करता था। अगर एक बार मेरे हाथ में बल्ला आया तो मैं फिर खाने की परवाह नहीं करता था। तीन तीन गेम सिर्फ बच्चों के साथ खेल के आता था, एकदम मेरी हालत गैर होती थी। लेकिन वो कहते हैं नहीं कि अगर किसी चीज से बहुत बेपनाह इश्क हो जाए तो उसके दर पर्दा कितनी सारी चीजें आपके हाथ से छूट जाती हैं, पता नहीं होता आपको। और तो फिर ऐसे वक्त में है, ऐसे हालात में फिर लोगों की बहुत सारी चीजें है ना, वो आपको सुनने को मिलती है। तो ऐसा था मेरे साथ।
1: सही।
0: लेकिन और ये कौन सा वक्त था, मतलब ऐसा नहीं था कि तकरीबन मुझे लगता है कि मेरी शादी हुई और एक दो तीन बच्चे हो गए, तब तक तो मैं पढ़ ही रहा था।
1: अच्छा।
0: मैं मेरी शादी के बाद भी मैंने तीन बच्चे हो गए जब तक मैं पढ़ रहा था।
1: अच्छा।
0: तो उतने

0: वक्त होना चाहिए था कि मैं थोड़ा वाले साहब का हाथ बटाता गया घरेलू कामों में, उन सब चीजों से बिल्कुल एकदम हटके ऐसा होता था कि मैं अकेले निकल जाता था, कोई कुछ बोलता था मैं इधर से सुनता था उधर से निकाल देता था, कुछ कोई परवाह ही नहीं होती थी मुझे। और एक बार की जब पूरे घर की जिम्मेदारी का बोझ आया सर पे, तो तभी से लगता है मुझे कि उसी जमाने की सजा मुझे मिल रही।
1: सही सही, मतलब ये पहले लाओबालीपन था, फिर बहुत एक जिम्मेदारी का दौर शुरू हो गया।
0: और ऐसा शुरू हुआ, ऐसा शुरू, मतलब वो चीज है ना कि आपने कहा ना कि कौन सी चीज खत्म हो गई, तो मैं कहता हूँ कि वो एक खराब आदत थी जो खत्म हो गई, और वो अचानक ऐसी खत्म हुई, और फिर एकदम बिल्कुल सडनली ही ऐसा हुआ मेरे साथ कि फिर मुझे लगता है कि मैं एक एक छोटी छोटी चीजें जो महसूस करता था, जिसका एहसास होता था घर पे, उन सब चीजों का ख्याल रखने पे उतर गया। और फिर ऐसा लगा कि मैं अपने आप में ही नहीं हूँ।
1: सही, लेकिन ये वही है, इसके लिए बात वही है, एहसास की जरूरत है। अगर एहसास होगा तो बंदा अपने अंदर तब्दीली भी लेकर आएगा, अपने आप को चेंज भी करेगा, और फिर वो जाहिर सी बात है, मतलब अगर आप सोचें कि अगर ये वाला सिलसिला चल रहा होता कि आज भी वही वाला मामला होता, तो नहीं, डेफिनेटली जिंदगी नहीं गुजर सकती ऐसे।
0: नहीं नहीं, गुजरने को तो छोड़िए, फिर आप बहुत सारी चीजें, मतलब समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजें खो देते आपको, मतलब हर पल हर चंद लम्हे पर आपको जलील होना पड़ता, ये फैक्ट है। और फिर वही मैंने आपसे बताया कि जब मैं जब हालात मतलब मेरे सुधरे, और मैं अपने कंधे पर जब बोझ को महसूस करने लगा, और उसके लिए मैं तगोदो करने लगा, उसके जब मेरी उसके लिए जब मेरी जद्दोजहद शुरू हुई, तो बहुत चंद एक सालों के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हुआ कि एक दो साल में ही वालिद साहब को यह एहसास हो गया था कि अब जो दोनों नीचे छोटे भाई हैं मुझसे, वो लोगों का भी इंशाल्लाह जो है क्या कहते हैं वो नैया पार लग जाएगी, और हुआ वही। आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों भाई माशाल्लाह से यही रहते हैं साथ में।
1: अच्छा।
0: और सारी चीजें कुल बहुत वो हुई, और बाद में फखरिया अंदाज में वाले सामने भी लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या फिर बहने चाह रहे हैं वो सब, अल्हम्दुलिल्लाह 27 मिली, कभी ये नहीं मिला कि हाँ कोई लावाबाली है या किसी तरह की कोई लापरवाही है, इस तरह का
1: वक्त पे अकल आ गई ना, वो वक्त पे अकल आ गई, बहुत ज्यादा भी लेट नहीं हुए आप।
0: हाँ नहीं लेट हुआ सच में, जब मतलब ये देखता था ना कि यार हमारे रिश्तेदारों में, जाहिर है हर किसी के रिश्तेदार कोई कुछ गरीब होते हैं कुछ अमीर होते हैं, तो जब मैं ये देखता था कि यार जो थोड़े आम से मतलब क्या कहते हैं कहीं ज्यादा लोग बेहतर हैं माली एतबार से, तो उनके बच्चों के जो रहन सहन का तरीके कार था या जिस तरह से उनका मतलब अपना लिबास सारी चीजें पढ़ाई लिखाई से लेके, तो वो एक जज्बा दिल में कहीं ना कहीं इस तरह से मतलब वो पुख्ता हो गया कि नहीं यार बहुत खेल लिए क्रिकेट,
1: अब कुछ करना पड़ेगा। सही हो गया, चले जी, गुड, जबरदस्त जमाल।
0: आपकी बात में मुझे मतलब फौरन से हो गई यार, ये तो मेरे ही मजमून का खुलासा करते बैठ रहे मैं आगे मैं क्या।
1: नहीं, अच्छा कि आपने कॉल की, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छी तब्दीली लेकर आया आप अपने अंदर। ये बहुत सारे लोग अभी भी जमाल ऐसे हैं जिनको इस तरह की तब्दीलियों की जरूरत है, और मैं सोच रही होती हूँ कि अक्सर लोग मतलब इस चक्कर में, लेजीनेस में या किसी भी चक्कर में, इतनी खूबसूरत जिंदगी जो एक दफा मिलती है, जो आप अपने अपने बलबूते पे गुजारो, कितना अच्छा लगता है। तो आप कितनी खुशी से बता रहे हैं कि बहनों की शादियां भी की, ये सारे काम भी हुए,
0: ये तो जिंदगी ने सबक दिया है। जो बचपन में लोग कहते थे ना, पढ़ाते थे, पढ़ते वक्त जो ये सुना गया था कि अलवक्त कसैफ, अलवक्त कसैफ, मेहनत तेज काटने वाली तलवार है।
1: बिल्कुल,
0: और अगर आपने उससे अपना बचाव नहीं किया या उसको इस्तेमाल में नहीं लिया, तो यकीनी तौर पर वो आपके बहुत सारे ख्वाबों को, आपके मुस्तकबिल के बहुत सारे शोबाजात जो आपकी जिंदगी से मुंसलिक है, वो सबको काट के आगे निकल जाएगी, जहाँ पछतावे और के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा।
1: सही बात है, बिल्कुल। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे सामने अपने मौजूद हैं, जो जिनको सब समझ में आ रहा होता है, लेकिन फिर भी एक नासमझी के तहत पूरी जिंदगी गुजार देते हैं इसी लाओबालीपन में। जबकि मैं ये सोच रही होती हूँ कितनी अच्छी जिंदगी है, आप अगर थोड़ा सा मतलब कुछ जिम्मेदारी लो चीज़ों की, तो आपको खुद और अच्छा लगेगा और फील अच्छा होगा, इंडिपेंडेंट हो गए आप और सब कुछ, लेकिन फिर भी पता नहीं मतलब होता है बहुत सारी जगहों पर ऐसा, तो गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप वक्त पे निकल आए। हाँ, वक्त पे आपने समझ
0: लिया। मैं सुधारने की दो तीन सालों से तो खुद अपने छोटे वाले भाई की कोशिश कर रहा हूँ, यहीं पे है, मैं हर चंद उसको मतलब रात में दोपहर को खाना खिलाने के लिए उसका मैं घंटों इंतजार कर लेता हूँ अभी भी।

0: जबकि मेरी इतनी सख्त ड्यूटी होती है कि जाने के बाद मुझे फ्रेश होके खा के सो जाना चाहिए, लेकिन मैं जब उससे पूछता हूँ फोन करके कितना टाइम लगेगा, अगर उसने कहा आधा घंटा तो मुझे पता होता है 45 मिनट से पहले नहीं आएगा, तो फिर भी मैं वेट कर लेता हूँ, क्योंकि जब साथ में बैठ के वो खाना खाता तो मुझे कुछ मौका मिलता है उसको थोड़ा सा इधर उधर की बातें घर की बच्चों के ताल्लुक से यह सारी चीजें, क्योंकि ऐसा है ना कि अभी वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, 2-4-6 महीने हुए हुए हैं पिछले रमजान में वालिद साहब का इंतकाल हो गया, थोड़ा सा मैं मतलब भाइयों के ताल्लुक से लापरवाह था समझाने के मामले में, बाकी और किसी चीज में नहीं, लेकिन अब उनके जाने के बाद वो जिम्मेदारी भी मेरे सर पे है, तो मैं सोचता हूँ कि नहीं उसको भी निभाना मेरा काम है,
1: लेकिन बस यही जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट करें जो असल चीज है ना, मतलब हम ये ना पूरी जिंदगी ही जिम्मेदारियां निभाते रहे, हमारी अपनी भी डेफिनेटली जिम्मेदारी है, तो वो थोड़ा सा जल्दी जितना जल्दी हो सके भाई को ना मतलब इस तरफ लेकर आए कि वो अपनी जिम्मेदारी भी खुद समझे और खुद ही निपटाए उन चीजों को।
0: नहीं कर तो रहे अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी भी निभा रहे, बट यह है कि वो छोटा वाला भाई है ना, तो एक तो तालीम से थोड़ा दूर है और दूसरा यह है कि जरा थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें बचपना है, तो मैं कोशिश करता हूँ दिमाग में वो चीजें डालने की, एक मिसाल तमसील के तौर पर दिखाने के बाद इस तरह से होना चाहिए, ऐसा करके बहरहाल अल्लाह ताला
1: इंशाल्लाह आसान करें इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, ये बहुत अच्छा लगा जमाल आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, फिर इंशाल्लाह बात होती है, ठीक है, चले जी, थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा।
0: सिर्फ आपकी वजह से होती है ये जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं निकल जाती हैं, हमको भी लगता है कभी कभी कि हम लोगों से सुन लेते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें या बता देते हैं या क्या कहते हैं आपसे जो एक वो मिल जाता है संग मील है ना, रास्ते का जो होता नहीं, आप चलते हो रास्ते पर तो कभी कभी जब भटकते हो तो एक पत्थर आपको बताता है कि आपकी मंजिल अभी इतनी दूर है, तो कहीं ना कहीं शाहराह के तौर पर आप लोगों की बातें होती है, अल्लाह ताला आप लोगों को जजाए खैर के साथ साथ
1: अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना बहुत बहुत, ठीक है, चले जी, फिर बात होती है इंशाल्लाह आपसे, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज,
0: अल्लाह
1: हाफिज। रही जी, तो इसके साथ ही एक मैं आपसे अपडेट शेयर कर लूँ, वो ये कि कतर चैरिटी की तरफ से खबर है कि कतर चैरिटी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और सिंध में 11 नई मसाजिद तामीर करके दी हैं, जिससे मतलब तकरीबन 8,150 अफराद जो हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद जो था वो उन इलाकों की मदद करना था जहाँ लोगों के पास नमाज अदा करने और बच्चों की दीनी तालीम के लिए मुनासिब जगह मौजूद नहीं थी, ख़ासतौर पर वो इलाके जो सैलाब से मुतासर हुए थे, तो इन जगहों पे 6 बड़ी मस्जिद बनाई गई हैं, इसके साथ ही 5 छोटी मस्जिद बनाई गई हैं, और हर मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि कम्युनिटी सेंटर के तौर पर भी काम करेगी, और हर मस्जिद में स्कूल के बाद तकरीबन 50 बच्चों को कुरान की तालीम दी जाएगी, जिससे नई नस्ल में इस्लामी तालीम और अखलाकी कीमतों को मतलब फ़रोग में दिया जाएगा, और तमाम मस्जिद को मुकम्मल सहूलियात के साथ तैयार किया गया है, जिनमें प्रेयर मैट्स हैं, कुरान शेल्फ्स हैं, वज़ू के मकामात, वॉशरूम्स, कारपेट, साउंड सिस्टम, सीलिंग वॉल फैंस, डिजिटल वॉल क्लॉक्स, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स और सोलर पावर सिस्टम भी दिया गया है, तो ये बड़े ही ज़बरदस्त हैं, और सब जितने जो मकामी लोग हैं जहाँ जहाँ पे बनाया गया वहाँ पे सब ने कतर चैरिटी के इस इकदाम को बहुत ही सराहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये न्यूज़। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं म्यूज़िकल ट्रैक की तरफ, पहला गाना मैं लगा रही हूँ फैज़ान ने रिक्वेस्ट की जिसकी, और उसके बाद जो आपने रिक्वेस्ट की है आई थिंक एस के मंजूरुद्दीन ने रिक्वेस्ट किया ना, यूँ ही कट जाएगा सफ़र, तो दोनों बैक टू बैक आप सुनेंगे इस ब्रेक में, एंजॉय कीजिए, सुनते रहे FM 107 दिल से रेजी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहम कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें.
3: आज ही राबता करें
2: हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: Quality Right, welcome back. आप सुन रहे हैं Summer Morning with RJ Mahavish Khan. और एक दफा फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे और आप लोग भी आ सकते हैं, आप लोग भी आ जाइएगा. लेकिन उससे पहले हम आपके मैसेजेस शामिल करते हैं उन लोगों के जो पहले से आ चुके हैं. तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बादी कैसी हैं आप? मैं अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ. आरिफ अंसारी, आप बताइए क्या चल रहा है? सुबह का आगाज़ अच्छा हो गया आपका. और अस्सलाम वालेकुम, हम हैं आपके साथ FM 107 शहजादा सलीम. क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप? और इसके साथ ही जी अस्सलाम वालेकुम अहमद का कहना है और ये कहते हैं कि मोरक्को की शानदार जीत की मुबारकबाद टू ऑल. चले जी, गुड, ज़बरदस्त. यानी आज अमीन भाई बहुत खुश होंगे, जब मुझे उनका चेहरा नज़र आएगा तो बड़े खुशी से दमक रहा होगा क्योंकि बड़े वो फ़ैन हैं. खैर जी, ज़बरदस्त. कोई मतलब एक तरह का ना, मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ में देखें तो मोरक्को की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी चल रही है, तो गुड, ज़बरदस्त. सबको ही मुबारक हो. मैं तो खैर नहीं देख रही हूँ, फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कि खुशी होती है. मोरक्को ने लास्ट टाइम भी फीफा में अच्छा खासा इन्जॉय करवाया था. खैर जी, कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आपकी आवाज कहाँ से आ रही है? चुपके बात करें क्या? अरे भाई, स्लो नहीं है, मतलब लग रहा है कि आप बकायदा किसी कुएं में बैठ के बात करें. कौन बात करें, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा.
1: अंशु.
0: अंशु, कैसे हैं अंशु? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक. और बताएं अंशु, कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या हो रहा है?
1: अल्लाह का शुक्र है. गाड़ी चला रहे थे, पार्किंग करके आपसे बात कर रहे
0: थे. हाँ, सही सही, ठीक है अंशु. और बताइए कि आज के सवाल आपने सुना था कि क्या सवाल है?
1: नहीं, मैं बताती हूँ आपको ऐसी कौन सी चीज़ है
0: जो आपने छोड़ दी है और उसके बाद आपकी जिंदगी में बहुत एक पॉजिटिव चेंज आया है?
1: दूसरों से बकवास करना.
0: अच्छा, बकवास करना. बहस करना, बहस करना छोड़ दी बेसिकली. अच्छा,
1: बहसबाजी करना, किसी से बहसबाजी करना. जो हम हार गए, बस आप हमसे मतलब ना रखो, किनारे हो.
0: ओए होए होए होए, क्या बात है भाई, क्या बात है. ये भी बड़ा मुश्किल काम है कि दूसरे को विनर करार दे कि अपने आप लूजर बन जाओ, लेकिन बहस ना करो, बड़ा मुश्किल काम है भाई.
1: उसमें अपनी जीत होती है ना.
0: हाँ, होती तो है, लेकिन बहुत मुश्किल है.
1: चलो भाई, ऐसे बंदे से जान तो छूटी.
0: हाँ, वो तो है, लेकिन फिर भी है मुश्किल भाई, आसान नहीं है.
1: बहुत मुश्किल है ये चीज कंट्रोल करना. बहुत शुरू शुरू में तो जैसे अपना नेचर मानता ही नहीं था. अल्हम्दुलिल्लाह, धीरे धीरे धीरे धीरे जब ये चीज जान गया, किसी से बहस करना बेफजूल का, उस वक्त से खत्म.
0: वैसे रिसेंटली मैंने भी एक जगह ऐसा किया है, एक जगह पे किया हुआ है, मुझे याद आया. मैंने ना बेसिकली किसी चीज पे चल रही थी, ऐसा नहीं है बहस स्टार्ट ही नहीं हुई. हाँ नहीं, हाँ नहीं नहीं, मैंने किया वो बेसिकली एक जगह पे बहस चल रही थी और वो होते ना हमारे कुछ नज़रियात होते हैं, किसी के कुछ और होते हैं, किसी के कुछ और होते हैं, उस पे चल रही थी और मेरी अपनी मामू से ही चल रही थी बेसिकली. अब वो अभी भी बहस के मूड में है लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, बहुत अरसा हो गया. तो ये है.
1: कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता इंसान के अंदर, कड़वाहटपन आ जाता है.
0: हाँ, हाँ, और वो भी ऐसी बातों पे क्या करना भाई जिसका हमें कोई लेना देना ही नहीं है.
1: आपका नजरिया नहीं जानते, हम उनका नजरिया नहीं समझना चाहते.
0: हाँ.
1: जब दूसरे को कंप्रोमाइज करना ही नहीं है, फालतू का दूसरे को जेर करके या अपने आप को जेर होके ज्यादा बकवास करके क्या फायदा,
0: क्या फायदा भाई. सही बात है,
1: या तो आप थोड़ा नॉर्मल हो या तो हम नॉर्मल हो. जब आप हमारा नहीं जानना चाहते तो हम आपका क्यों जाने.
0: एग्जैक्टली, सही बात है. लेकिन भाई जबरदस्त अंशु, बहुत कमाल,
1: अल्हम्दुलिल्लाह तब से जिंदगी में बहुत सुकून
0: है. जबरदस्त जबरदस्त.
1: जब इंसान ठंडा होता है तो समझ नहीं आता कि हम गलत है कि सही, फिर दोबारा फोन आता है और नहीं आया तो समझ जाओ कि वो बंदा जिंदगी में नुकसान के सिवा फायदा नहीं देगा. जो अपना होगा वो बहस करने के बाद जब आप खामोश हो जाएंगे तो कुछ दिन बाद या कुछ लम्हे बाद उसको समझ में आएगा तो दोबारा फोन करेगा, भाई चलो कोई बात नहीं, होता है.

0: सही बात है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। चले गुड, जबरदस्त। तो ये तो बड़ी अच्छी आपने चीज शेयर की कि आपने बहस करना छोड़ दिया। सब लोगों के जब मजे मजे के आंसर आ रहे हैं, सबके डिफरेंट है। यूजुअली क्या होता है कि कोई टॉपिक हो ना, एक ने एक बात कर दी तो फिर वैसी बातें हो रही होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आज सबके बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं जवाब।
1: हाँ, सबके अलग अलग पहलू होंगे। हर इंसान अल्लाह ने अलग अलग बनाया ना, अल्लाह ताला ने अलग अलग सबको बनाया है, सबके सोचने का, सबके समझने का।
0: बिल्कुल,
1: आपस में जो बनती नहीं है किसी इंसान से किसी इंसान की, एक जैसा बना देते तो सारे नवाजी ना होते।
0: सही है, बिल्कुल जबरदस्त। अंशु थैंक यू आपकी कॉल के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट आपने शेयर किया। ठीक है, चलें कॉल करते रहा करें। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। रई जी, जी जी जी, हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं कि कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम। किस टॉपिक पे गल चलती पे है भाई, मन्नो भी बच्चों।
0: जी आज ये बात हो रही है हमारी कि कौन सी आदत है जो आपने छोड़ दी और उसको छोड़ने के बाद से आप बहुत खुश हैं कि जिंदगी में सुकून आ गया। अभी अंशु ने बड़ी अच्छी बात बताई। अंशु ने कहा भाई मैंने ना लोगों से बहस करना छोड़ दी है। जो कहता है बहस कर रहा होता है, मैं कहता हूँ हाँ तुम्हें ठीक हो।
2: बिल्कुल एग्री। बहस अगर करेंगे तो मतलब अक्सर वो रिश्ता हो या दोस्ती हो वो खराब के अलावा और बाकी मतलब ये नहीं होता है। सामने वाला बात में अगर आप मतलब कोई ये रखते हैं बात तो फिर वो हो सकता है रियलाइज करे बाद में, लेकिन उसी वक्त अगर जज्बात में आके और अपनी बात को बिल्कुल मनवाने में अगर लग गए आप तो फिर वो शायद रिश्ते में और खराबी पैदा हो, तरक्की पैदा हो जाता है मेरे ख्याल से। हाँ, ये सब बेहतर नहीं है, थोड़ा सब्र से काम लेना। और जो उस लायक उस बंदा थोड़ा सा समझ में भी आ जाता है, मैं अगर करीब से देखो थोड़ी दिन उसके साथ में रह के, ये बंदा मेरे बात को कितना सीरियस लेगा, कितना मतलब ये करके वो अंदाजा मिल जाता है। तो ये बंदे मतलब उस बंदे से ज्यादा मतलब आप ये करो तो अपने बात को ज्यादा मनवाने की ये करो कि जो बंदा आपके बात को थोड़ा सा मतलब ये ले सीरियस ले, नहीं तो उस बंदे को जो इतना ज्यादा मतलब ये नहीं ले रहा है तो उसको इतना ज्यादा ये नहीं करने की कोशिश करो। क्योंकि मेरे खास करीब के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैं मतलब नहीं मनवा सका उनको अपने हिसाब से। वो सुनते उस वक्त हाँ में हाँ मिलाते हैं, सारी करते हैं, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद में फिर उनका वही रवैया, वही वही हाल, वही है। तो हम बोलते हैं यार फिर उनको छोड़ दो उस हाल पे, बल्कि वो थोड़ी देर का रियलाइज करके भी आते हैं। पता नहीं क्यों अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे फितरत भी रख दिया उनके अंदर कि वो अपने आदत से बाज नहीं आते हैं। हाँ, कुछ अपने करीब पे हैं लोग, उनको पैसा भाई कमा रहे हो जिस हिसाब से, आपको खर्च भी उसी हिसाब से करना चाहिए, लेकिन उनको थोड़ी टाइम के लिए ये कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन फिर भी वही रफ्तार बैठेंगी। तो ये थोड़ा सा इधर आने का मकसद क्या होता है आदमी को, और हम लोग को थोड़ा सा जो करीब के होते हैं उनसे तकलीफ लगता है कि यार बंदा कुछ बन जाए कर जाए, इतना दूर आया घर छोड़ के और ये कर रहा है, तो उसका थोड़ा सा ये मकसद क्या है अपना घर बच्चा छोड़ के आने का। मतलब यही है कि यहाँ पे आने के बाद कुछ मतलब ये कर ले, इम्प्रूव कर ले अपने उसमें लाइफ में फाइनेंशियली या कोई भी चीज को। और बंदा जब खा पी के लेबल करके रखता घर पे गया तो पता चला कि वहां से बोल रहा थोड़ा कुछ पैसे भेज दो, तो ये फिर यार यहाँ पे आने का मतलब क्या हुआ, कोई कोई खास हासिल नहीं हुआ मेरे ख्याल। ये सब बातें बहुत मतलब अहम रखती है, उसी बंदे को ज्यादा ये करो। आपने क्या मतलब कहा था, मैं उस टॉपिक पे, मैं दूसरे टॉपिक पे बात तो नहीं कर रहा हूँ।
0: नहीं नहीं, आप बात तो वही कर रहे हैं, हमने यही सवाल किया कि छोटी कोई आदत ऐसी जो आपने छोड़ दी हो तो।
2: बस आदत मेरी थी जो मतलब थोड़ा गुस्से वाला आदत, थोड़ा सा मतलब मेरे मैं कंट्रोल करने जब्त करने की कोशिश करता हूँ ज्यादा, मुझे गुस्सा जल्दी आता है थोड़ा, ये थोड़ी मेरी कमजोरी है, लेकिन फिर भी बहुत सुधार किया हूँ पहले के बनिस्बत ज्यादा, और सुकून दिया है। मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आता था तो, लेकिन बाद में कुछ दीनी लिहाज से और कुछ दुनियावी लिहाज से भी देखे तो कि इसमें खसारे के अलावा फायदा नहीं है, बहुत नुकसान है इसमें। अगर आदमी अपने जज्बात को और दो तीन चीजों को, मैं एक और मैं टॉपिक शेयर करूंगा आपसे कि बंदे इस्लाम ने हमारे कहा कि बंदे से बड़ा भला है उससे करीब रह के देखो तो उससे मतलब लेनी देनी कर लो या उसके साथ में सफर करो। और तीसरा एक मतलब एक पॉइंट और मैं रखूंगा कि सामने वाला जब गुस्से में होता है तो वो कितना उसकी लैंग्वेज कैसी होती है, इससे भी बंदा को पता चल जाता है।
0: हाँ।
2: लैंग्वेज को
0: अच्छा, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें, मुझे भी गुस्सा बहुत आता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ। कि पता है क्या होता है, आप ना अगर तो रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे लव

0: सुनने के बोलने के आपके सोहबत हो कुछ इस किस्म का हो तो फिर आपके गुस्से में ना उल्टी सीधी बातें निकलती हैं, है ना। तो ये अल्लाह का शुक्र है, गुस्सा है लेकिन लैंग्वेज आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
1: बहुत से लोग बड़े अच्छे होते हैं लेकिन बस अल्लाह आलम उनका, शायद आपने जो एक बात मेरा उसमें रहनुमाई किया कि उनका जो करीब उनके जो साथ में रहना उठना बैठना होता है वो लैंग्वेज उनके ऊपर मतलब हावी हो जाता है। तो ये चीजें बहुत बड़ी मतलब समझ लो कि खतारे का बाइस। ऐसे लोगों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अगर लोहार से दोस्ती करोगे तो आपके कहीं ना कहीं कपड़े को जला देगा, और अगर आप किसी मतलब मुश्क और या खुशबू बेचने वाले से करोगे तो कहीं ना कहीं आपके जिस्म या आपके कपड़े में खुशबू छोड़ जाएगा। तो ये चीजें बहुत अहम है, तो हमें उसी हिसाब से ताल्लुक रखना चाहिए। तो बंदा जब उखड़ गया और सारी वो अपनी ऐसी की तैसी कर दिया तो फिर समझ लो कि ये बंदे से ज्यादा है भाई, थोड़ा सा बच के रहो। हाँ, बहुत देखने में बड़ा ये लगता है लेकिन जब गुस्से में आ गया और सारी वही है कि ये गिनने वाले गिना देते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि मतलब वो मजा नहीं है, फिर जोने वाले गिना दे गुस्से में आके जज्बात में आके और उनसे थोड़ा रिश्ता बिगड़े तो थोड़ा सा उससे, मैं मतलब नहीं कहता हूँ कि उससे बिल्कुल कट कर लो लेकिन उतने ही उनसे ताल्लुक रखो कि जितना मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है वो समझ लो कायम रहे, नहीं तो पता चला कि आप भी उसके साथ
0: नहीं, वैसे मतलब मेरे हिसाब से तो मेरा भाई मतलब मुझे नहीं पता मैं सेल्फिश हूँ या क्या है, अगर मुझे किसी की रेपुटेशन के बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा हो जाए ना ये नहीं ठीक है तो फिर मैं उससे चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोई बुरा माने चाहे कुछ हो, मैं निकल जाती हूँ। मैं नहीं रहती फिर उसके साथ।
1: मैं अपने लाइफ में महवेश थोड़ा सा पहले मैं जज्बाती था अपने जो करीब के थे और वो मतलब मैं थोड़ा सा नाराजगी बहुत, तो मेरी वाइफ समझाती भी थी कि मतलब आप इतना ज्यादा मतलब ये तो फिर धीरे धीरे मैं समझ गया कि यार उसी टाइम पे जवाब देना या उसी टाइम पे उनको सीधे करने की कोशिश करना या सेल्फिश जो होते हैं बहुत से कि मतलब आपसे कुछ करके तो फिर उनसे थोड़ा सा दूर रहो, ये नहीं कि बिल्कुल कतर कर लो, थोड़ा सा दूर रहो तो शायद वो आपके सभी वक्त पे जो मिलोगे तो शायद इज्जत बाकी रहेगा। और नहीं तो अगर ज्यादा जरूरत से ज्यादा उनको सीधा करने में लग जाओगे तो फिर वो शायद है कि मसला खराब हो जाएगा और
0: फायदा नहीं होता।
1: जी तो मेरे ख्याल से कि थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करना और अपना जो दीन ने हमारा रहनुमाई किया है उसका हम ख्याल करके रखें अगर अपने अंदर तो शायद इंशाल्लाह बचे रहेंगे उससे।
0: चले नहीं, गुड, जबरदस्त रईस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, चले बहुत शुक्रिया भाई,
1: नाराज ना हो सुनने वालों को सलाम आदाब, ओके सलाम अलैकुम,
0: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। राइट जी, उसके साथ मैं पहले तो एक आपसे खबर शेयर करती चलूँ क्योंकि वो भी साथ साथ चलना जरूरी है, फिर कॉल आ रही है, ले लेती हूँ, बस एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा जी, तो खबर ये है कि कतर नेशनल लाइब्रेरी ने जुलाई के आगाज से अपना जो वसी समर प्रोग्राम है वो लॉन्च कर दिया है और इसमें हेरिटेज प्रोफेशनल्स, बच्चों, फैमिलीज और करियर बनाने वाले अफराद के लिए इसको खास तौर पर तैयार किया गया है। प्रोग्राम में है शामिल क्या क्या, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, स्टेम एक्टिविटीज़ होंगी, क्रिएटिव आर्ट्स, रीडिंग प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप, सब शामिल हैं। और 1 जुलाई को हेरिटेज एक्सपर्ट्स के लिए एक वेबिनार होगा जहाँ पे इमरजेंसी ग्रांट्स और कल्चरल हेरिटेज की हिफाजत पर तफसीली मालूमात दी जाएंगी। और इसी दिन समर रीडिंग चैलेंज 2026 भी शुरू होगा जो कि 15 अगस्त तक चलेगा। ये चैलेंज 6 से 14 साल के बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में एक तरह से मुताला जारी रखने की तरकीब देगा और विनर्स का ऐलान जो है सितंबर में किया जाएगा। 15 जुलाई से 7 समर कैंप भी शुरू होगा जिसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी। प्रोग्राम की जो हाईलाइट्स हैं उसके मुताबिक 1 से 4 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए बायोलैंग्वल फन समर कैंप होगा, 7 से 12 साल के बच्चों के लिए स्टोरी टाइम और पपेट्री सेशंस रखे जाएंगे, 7 से 10 साल के बच्चों के लिए हैंड्स ऑन स्टेम एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, फिर 13 से 17 साल के टीनएजर्स के लिए यहाँ पे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वर्कशॉप मेक विद मी रखी गई है। साथ ही करियर डेवलपमेंट के हवाले से 21, 22, 23 जुलाई को स्किल्स हब और योर 2026 करियर लॉन्च पैड ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस सीरीज़ को मशहूर ऑथर एड्रियन वॉलवर्क लीड करेंगे और सेशन में AI की मदद से बेहतरीन CV और लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना इंटरव्यू प्रिपरेशन फ्यूचर जॉब मार्केट के लिए ज़रूरी ह्यूमन स्किल्स पर तफसीली ट्रेनिंग दी जाएगी तो ये ज़बरदस्ती चीज़ है भाई आप लोग ज़रूर कतर नेशनल लाइब्रेरी का रुख कीजिए ये पूरा जो समर ब्रेक है अपने बच्चों को भी लेके जाइए आपके लिए भी सीखने सिखाने को बहुत कुछ है डेफिनेटली इंजॉय करेंगे तो ज़रूर लाइब्रेरीज़ को आबाद कीजिए क्योंकि जब लाइब्रेरी आबाद होती है तो माशरा जो है तरक्की की तरफ जाता है हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी कौन है
2: कैसे मैं मिश्रण
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आप बताएं कैसे हैं
2: आपने तो इशरत साकिब याद दिलाई
0: अच्छा क्यों
2: इशरत साकिब से खबर सुनिए बस लगे रहो
0: अच्छा
2: सुनते रहो
0: इशरत साकिब याद आ गई आपको मेरी खबरें पढ़ने से तो होए होए क्या भाई दिन बना दिया आपने तो जिंदगी बना दी जो कल बोल रहे थे ना हमारे क्या बात है
2: यार कमाल करते हो तुम भी कसम से
0: बहुत शुक्रिया भाई कौन बात कर रहे हैं पहले ये तो बताएं
2: मैं आसिफ शाह
0: आसिफ शाह बात कर रहे हैं जी आसिफ तो पहली दफा बात हो रही है मेरी आपसे या पहले भी हो चुकी है
2: पहली दफा समझो पहली दफा लेकिन सुनता कब से हूँ 2015-16 से
0: अच्छा अच्छा सही सही तो इतना लेट क्यों कॉल किया आपने
2: गुड गुड गुड गुड वाली
0: अब सिर्फ गुड मॉर्निंग होता है पहले गुड गुड गुड होता था
2: आजकल बहुत यूनिक होता है
0: अच्छा
2: हर दिन एक नई बात सामने आ जाती है और उसके लोगों का एक्सपीरियंस उसके बातें कुछ नया सीखने को मिल जाता है जैसे कि आज कौन सी आदत है जो मतलब आपने चेंज करके आपको अच्छा लगा
0: हाँ, आपकी कौन सी आदत है
2: आदत बदलती नहीं है अगर कोई बुरा है तो वो बुरा ही रहेगा वक्ती तौर पर अगर उसने डिफरेंस किया तो फिर वैसा ही रहेगा अगर कोई अच्छा है जैसे मैं सामने वाले पे डिपेंड करता है मैं सामने वाले को भी देखता हूँ पहले मैं हर टाइम चलो यार जाने दो कोई बात नहीं है अवेलेबल हर वक्त हाँ अवेलेबल अभी कभी ना और सामने वाले को देखता अगर वो अच्छी बात करता है तो हम उसके साथ अच्छी बात करते हैं अगर वो कुछ थोड़ा इधर उधर तो फिर उसको समझाते हैं बातों बातों में लड़ाई झगड़ा नहीं तो बातों बातों में उसको समझ आ जाती है कि अब बंदा मैच्योर है उसको मालूम पड़ गया कि मैं किस टाइप का हूँ और क्या कर रहा हूँ कोई लोग जानबूझ के अपनी खुद को बड़ा दिखाने के लिए ऐसी बात करता है कि आपको मालूम पड़ता है कि ये बात अच्छी नहीं है
0: अच्छा इसमें ना तो आदत बदल जाती
2: है
0: आदत बदल जाती है फितरत नहीं बदलती आदतें जो ऐसे हमारी होती है ना जो बुरी आदतें पड़ जाती हैं कुछ वो तो बदल जाती हैं
2: यही फितरतन होता है ना फितरत नहीं बदलती
0: बात मानने वाली
2: हजार बार इरादा कर लूं कि मैं बुरा करने वाला हूं तो मैं कसमिया कहता हूं कि मुझसे नहीं होता
0: ऐसे ही
2: मुझसे नहीं होता कि मैं यार किसी की बुरा चाहूं या किसी से बुरा कर लूं अगर सामने वाले ने कर दिया ना तो बहुत गुस्सा आ जाता है लेकिन बर्दाश्त कर लेता हूँ बस यही कमाल की बात है कि बर्दाश्त बहुत है
0: ये अच्छी बात है अच्छी चीज है और होना भी ऐसी चाहिए मतलब होता है बाज़ों का जिंदगी के कुछ कमजोर लम्हे होते हैं जिसमें हम भी सोचते हैं कि जब हमारा वक्त आएगा ना फिर देखना हम क्या करते हैं इनके साथ लेकिन जब वो वक्त आता है तो फिर हम फिर खामोश हो जाते हैं फिर हम उसी के साथ बैठे हुए होते हैं तो ये अच्छी चीज है अल्लाह ताला मतलब ये एक तरह की दिलों की नरमी है और ये अल्लाह ताला बरकरार रखे
2: जिंदगी है ना एक तरह की होती नहीं है और ना एक तरह के लोग आपको मिलेंगे ना अपने जैसा कोई आदमी आपको मिलेगा डिफरेंट किस्म के डिफरेंट तबीयत वाले लोग हैं खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा ये कमाल भी सीखना होगा कि यार बस खुद को एडजस्ट कर लो जैसे नए नए लोगों से रब्ता होता है ये तो कतर है कितने कंट्रीज के लोग इधर काम करते हैं तो हर मोड पे आपको नए नए लोग मिलेंगे बस खुद को एडजस्ट करोगे टाइम गुजारोगे अभी जो हम 17-18 में जो महवेश खान को सुनते थे उस महवेश खान में और आज की महवेश खान में बहुत ज्यादा डिफरेंस है
0: बहुत ज्यादा डिफरेंस है जो पुराने सुनने वाले वो अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का हाँ है ऐसे ही
2: है उस टाइम सीधा मुंह पे बोलते थे भाई ये बात सही नहीं है ये अच्छा नहीं है अब एडजस्ट कर रही है कि यार बस जाने दो
0: इधर से सुनो उधर से निकालो.
2: यकीन कर लो कि बस प्रोग्राम चल रहा है कि बस सब एंजॉय कर दे, किसी को नाराज नहीं करना. पहले जो 17-18 में अगर किसी ने इधर तोड़ी लकीर के बाहर बात की तो महवेश खान बोलती थी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ये सही नहीं है, सामने वाले को पता लग जाएगा कि मैंने कुछ गलत बोला है.

0: अच्छा पता है क्या हुआ क्या है ना भाई कि इस दौरान ना लोग मेरी तबीयत बहुत हद तक जान चुके हैं, लोगों को मेरे मिजाज का अंदाजा हो गया, वो खुद ही डर गए, वो कोई बात ही नहीं करते ऐसी।
1: फोन मैंने इस बात के लिए किया कि मैं बता सकूं कि तुझ में जो डिफरेंस आया है ना, तूने खुद को जितना बदला है इतना मुश्किल है।
0: अच्छा ये बताएं भाई करते क्या हैं आप?
1: मैं गाड़ी चलाता हूँ।
0: अच्छा गाड़ी चलाते हैं, सही है। चलें कॉल कीजिएगा क्योंकि अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये जान के अच्छा लगा कि इतने अरसे से सुन रहे थे आप लेकिन आज मजबूर हुए और आपने इतने मेरे पूरे दौड़ वौड़ देखे हुए।
1: ये अब तो हमारा स्कूल का टाइम नहीं है लेकिन FM 107 इससे हमने बहुत कुछ सीखा। ये हमारे लिए ऐसा है कि अब अभी भी हम पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ हर रोज नए नए बातें नए नए देखने को सुनने को मिल जाता है। तो ये वाकई बड़ी बात है, FM 107 कमाल का रेडियो प्रोग्राम है, कमाल।
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपसे जान के, और इंशाल्लाह फिर जरूर कॉल कीजिएगा आज फर्स्ट टाइम में, आगे भी कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रवि जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर थे और मुझे सुन के खुद भी हंसी आ जाती है कि वाकई ऐसे ही था कि एक वक्त था मैं कह रही थी ना कि मैं फ़ौरन से बदला भी देती थी और फ़ौरन से जवाब भी देती थी, नहीं यहाँ पे ये चीज़ हो गई तो अब बस मैंने तो बर्दाश्त नहीं करनी, लेकिन वाकई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बर्दाश्त किया और गुस्से पे भी कंट्रोल किया। देखें इस बात पे आप ना मतलब समझ सकते हैं इस बात को कि मैं कितनी बदली हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह
0: जी। खादिम भाई पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइन पे आप ही हैं।
1: मैं लाइन पे हूँ लेकिन सिर्फ एक मिनट है बस।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: 3 मिनट नहीं है।
0: हाँ।
1: और ये अभी आज से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट पे टाइमर लगा दो।
0: अच्छा लोग कॉल करना छोड़ देंगे, जैसे गेम नहीं खेल रहे ना मेरे साथ, ऐसे कॉल नहीं करेंगे।
1: क्वेश्चन क्या है और जल्दी से बस।
0: हाँ क्वेश्चन आज का ये है कि कौन सी ऐसी आदत है जो आपने चेंज कर ली और आपको उसका बहुत फायदा हुआ है?
1: मैंने बहुत कोशिश की अपनी आदत चेंज करने के लिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आदत चेंज ना हो कभी। एक तो ये है कि माफ करना,
0: गुड।
1: और दूसरी बात ये कि मुझे किसी की बात सुन के ना जो भी कोई अपनी तकलीफ बयान करते तो आप यकीन करें कि मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता, खाना भी मजा नहीं देता। ये मेरी एक मजबूरी बनी हुई है ये आदत, और मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना फितरत नहीं, ये मेरी मजबूरी बनी हुई है। मैं कभी इसको चेंज करना भी नहीं चाहता भी अभी, इसलिए कि जिंदगी तो गुजर गई, अभी ये जिंदगी में क्या चेंज करना है। लेकिन जो कोई भी अपनी तकलीफ बयान करे तो मुझे खाना भी मजा नहीं देता, अल्लाह का भाई इस बात का।
0: सही। अच्छा कोई बुरी आदत थी खादिम भाई, कोई ऐसी कोई बुरी आदत जो आपने चेंज की हो?
1: बुरी आदत सिर्फ ये थी कि मैं हर एक बंदे के ऊपर भरोसा करता था, ये मेरी बहुत बुरी आदत थी। हर बंदे के ऊपर मैं भरोसा करता था और अभी मैं देखता हूँ खामोश, हर बंदे के साथ मैं बहस करता था, अभी वो बहस मैंने छोड़ दी है। हर बंदे के साथ मैं एक ऐसा रहता था ना कि बस ये है और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन अभी मैं जान गया कि हर बंदा एक जैसे नहीं होते, सारे एक जैसे नहीं होते। यानी मतलब ये कि अभी पहले जानने की कोशिश करता हूँ, पहले जानने की कोशिश करता। ये एक मेरी बहुत बुरी आदत थी कि मैं हर बंदे के ऊपर भरोसा करता था। और बर्दाश्त तो बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बर्दाश्त है, अल्लाह पाक ने बहुत बर्दाश्त दी हुई है। लेकिन सिर्फ ये एक बात कि अगर कोई बोले कि मैं तकलीफ में हूँ, कोई परेशानी है, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस अल्लाह को मालूम है, बहुत ज्यादा दिल परेशान रहता है। ये मेरी एक आदत है। बहुत शुक्रिया,
0: चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया खादिम भाई, बिल्कुल जी बिल्कुल, आपका कीजिए, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। रही जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर थे और एक और बस कॉलर है, फिर ब्रेक पे भी चलना है हमने। हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, कैसे हैं आप बहन?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं?
2: जी मैं अल्लाह का शुक्र बहुत बहुत जबरदस्त। और मेरा नाम असमत है
0: जी जी।
2: और मैंने इसलिए अपना नाम लिया कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जब आए तो अपना नाम बता दिया करें, हमें पता नहीं होता कि आप लोग कौन है, तो अपना नाम बता दिया करें, कोई ऐसी बात नहीं है, अपना नाम लेने में कोई वो नहीं है। और दूसरा, लोगों ने जो है अभी जो कॉल मैंने सुनी, लोगों ने तो आपको मुझे लगता है गब्बर सिंह समझा हुआ है।
0: नहीं थी मैं किसी वक्त में।
2: जिस तरह का खाका लोग पेश कर रहे हैं, उस वक्त तो खैर हम नहीं सुनते थे। हाँ। तो लोग ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे वो गब्बर सिंह का जो एक खाका है ना हमारे जहन में, या मुगेम्बो, तो लोग वही समझ रहे हैं।
0: मुगेम्बो नहीं थी, गब्बर सिंह।

0: सही है, मुनासिब है। हाँ लेकिन था ऐसा। अच्छा भाई एक मिनट ना, आप होल्ड पे रह लें क्योंकि हम बस अब जिंगल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, आप होल्ड पे रहिएगा, फिर आपसे बात कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है?
1: जी
0: तो बस अभी हम थोड़ी देर में, बस चंद सेकंड्स हैं, उसके बाद हम जाते हैं जिंगल सुन के, वापस आते हैं। आप लोग सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: राइट जी, वापस आ गए हम एक दफा फिर आपके साथ, और हमारे साथ हमारे एक कॉलर हैं। जी।
3: तो खैर, मेरे एक 1.5 मिनट इसमें किया है जिंगल में, तो खादिम हुसैन साहब आप नाराज ना हो।
2: जी,
3: तो हमारे उस्ताद खादिम हुसैन साहब ने जो एक वो लगाया है ना, एक टाइम
2: टाइम लिमिट, अभी यही मैं सोच रही थी कि अगर मैंने ये वाली पाबंदी लगा दी, लोग कॉल करना छोड़ देंगे। गेम में मेरे पास वैसे ही कॉल्स नहीं आ रही हैं। लोग अभी आज मुझसे यही सवाल किया गया कि भाई कल गेम क्यों नहीं खिलाया, और यही रीजन है, कोई आ ही नहीं रहा है गेम खेलने के लिए। अब मैं किस तरह से लोगों को पकड़ के लेकर आऊँ।
3: सही बात है। तो खैर, टॉपिक पे आते हैं, मैं इंशाल्लाह 2-4 मिनट ही रहूंगा।
2: जी।
3: पहली बात तो जो मेरे अपनी आदत है, मैंने जो चीज चेंज की है बुरी आदत, वो था मैं लोगों को जज बहुत करता था, इंतहा से ज्यादा, बे इंतहा ज्यादा। मतलब मैं, मेरे हिसाब से अगर मेरी राय के अगेंस्ट अगर कोई गया तो मैं इवन ना गालियां देने पे उतर आता था, गुस्सा और ना इस हद तक मैं लोगों को जज करता था। और जो मतलब एक होता है लोगों का, एक मैं अगर ये होता कि ये इस बंदे ने मेरे हिसाब से कपड़े नहीं पहने तो मुझे ना एक एक डिप्रेशन सी हो जाती थी कि क्यों नहीं पहने, है ना। तो ये चीज मैंने अभी हाल फिलहाल में ही ये चीज मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दी है। और मैं, क्योंकि मैं एक चीज को अगर चेंज ला नहीं सकता, मैं मुझसे हिसाब होगा सिर्फ मेरी जात के हवाले से, ठीक है। दूसरा इंसान क्या कर रहा है मेरा उसमें कोई इख्तियार नहीं, और ना मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। हाँ, ये मैं अपने अपने जो किरदार है, मैं किरदार में चेंज ला सकता हूँ कि मेरे किरदार से कोई मुतासिर हो, और यही हमारे असलाफ और हमारे अंबिया का तरीका था। तो ये मेरी एक बुरी आदत थी जो मैं लोगों को इंतहा से ज्यादा जज करता था, ठीक है। और ये मैंने जो

0: 1935 में वो एक वाक्य हुआ था, मेरी आपसे इस पे भी बहस हुई थी ये रेडियो पे ऑन एयर।
1: अच्छा,
0: वो एक वाक्य हुआ था, एक जी एक वाक्य था, वो एक खातून ने सुसाइड किया था इंडिया में, ठीक है। तो कोई वो एक खातून थी जिसके शोहर ने उसको पता नहीं छोड़ दिया था या कुछ वाक्य हुआ था, तो उसपे मैं इतना जज्बाती हो गया था कि मैं आपके साथ भी बहस, उस वक्त हम फेसबुक पे मैसेजेस करते थे, तो उस पे मैंने आपके साथ बाकायदा बहस की थी कि नहीं ये नहीं हुआ अच्छा, ये औरत को मार दिया है, मर्द जालिम होते हैं, फला फला। लेकिन जब बैकग्राउंड उसका पता चला हमें तो वाक्य वैसा नहीं था, उसका कुछ और ही वो वैसा नहीं था ना।
1: तो मैं क्या कह रही थी, मैं हिमायत ले रही थी कि मार दिया अच्छा किया, मुझे याद ही नहीं।
0: हाँ, वो 5-6 साल पहले का वाक्य है।
1: अच्छा,
0: तो असल में बात ये थी ना कि वो खातून थी, उसने पता नहीं की बिल्डिंग से छलांग लगा के खुदकुशी कर ली थी।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो इंडिया बड़ा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, तो उस पे सारे जज्बात थे और के मतलब ये मर्द जालिम होते हैं और मैं भी जो है औरतों की साइड पे चला गया। लेकिन जब वो वाक्य असल वाक्य आया तो वो जो वाक्य था वो कुछ और था, वो वैसा नहीं था जो लोग पेश कर रहे थे। तो बात यह है कि ये चीज मैं हद से ज्यादा जज्बाती था, मतलब छोटी छोटी बातों पे रो देता था। तो ये मतलब मैंने बाद में भी ये चीज रियलाइज की कि नहीं यार ये चीज ठीक नहीं है। उसी पे ये मैं जो पढ़ रहा हूँ अभी नॉवल हालिम, उसमें कल ही यही वाक्य इसी तरह जो उन्होंने जो मैं अभी अपनी जिंदगी से जो चीज मैंने निकाली है वही चीज यहाँ पे इन्होंने लिखी है। मैं दो अगर मेरे पास वक्त है तो मैं 2-4 लाइनें बयान कर दूं।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। तो इसमें ये लिखते हैं निमरा अहमद साहिबा, तो वो जो किरदार होते हैं ना वान फातेह जो होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं जिस मुल्क का ख्वाब देखता हूँ वहाँ मुझे लोगों को ये सिखाना है कि मजलूमियत और कमजोरी को खुद पे तारी करना छोड़ दें। निकल आए इस माइंड सेट से कि दुनिया ने हम पे जुल्म डाया है, खानदान वालों ने हमारे साथ बुरा कर दिया, दोस्तों ने यूं धोखा दिया, हम दुखी हम उदास हर वक्त दूसरों से हमदर्दी मांगना ये मनफी रवैये हैं, हमें इनसे निकलना होगा। मुझे बिल्कुल ऐसे लोग अट्रैक नहीं करते जो चाहते हैं कि लोग हर वक्त उनके गमों की दास्तान सुनते रहें।
1: वेरी नाइस।
0: इंसान बहुत अजीम मखलूक है, इसमें बहुत ताकत है, इसे तो सारी दुनिया को संभालना है और वो अपने आप को ही नहीं संभाल पाए, कितने दुख की बात है। हमें अगर जिंदगी में खुशी और कामयाबी हासिल करनी है तो हमें एक मुस्बत रवैया अपनाना होगा। मुस्बत रवैया माजी के दुखों और पछताओं से निकलने का नाम है। अगर आपसे कुछ गलत सरजद हुआ माजी में और सबसे ही होता है तो इस पे माफी मांग के इससे सबक सीखें और इस पे हर वक्त उड़ना छोड़ दें। आप इंसान हैं, आपसे हर वक्त सीधा नहीं चला जा सकता। एक चंद बार अगर गिर भी गए आप तो इसको भूल जाएंगे और आगे का रास्ता देखें। और अगर आप माजी में बड़े बड़े गम और अगर आपको माजी में बड़े बड़े गम मिले हैं तो इनके पछतावे से निकल आएं, गलत फैसलों पे दुखी होना छोड़ दें। जिंदगी में कोई भी चीज बुरा तजर्बा नहीं होती, अगर आप इससे सबक सीख लें ये होती है मुस्बत अप्रोच। जो बुरा हुआ है आपके साथ या जो बुरा आपने किया है दोनों से सीखने के पहलू निकालें, सबक हासिल करें और रिलैक्स हो जाएं।
1: Exactly.
0: तो ये मैंने कल ही ये एक मजमून पढ़ा ही थी मैं। मैंने कहा यहाँ यार ये तो वाकई में ये तो निमरा अहमद ने मुझे ऐसा समझे कि मुझे ही लिखा है कि आप इस चीज से निकले। तो बहुत खूब, मैंने कहा चलो ये 2-4 लाइनें आपके साथ शेयर करूं, बाकी मेरी कॉल लंबी हो रही है, खादिम हुसैन हमारे उस्ताद नाराज ना हो जाए।
1: चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रे जी, तो हमारे साथ असमत आफरीदी और उन्होंने बेहतरीन सी हमें कुछ चीज़ें भी सुनाई और उसके साथ मुझे भी आपको कुछ सुनाना है। मैं जल्दी जल्दी से कुछ न्यूज़ वगैरह शामिल कर लूँ क्योंकि फिर वो रह जाएंगी और फिर उसके बाद हम म्यूजिकल ट्रैक की तरफ चलेंगे। एक रिक्वेस्ट नहीं बल्कि दोनों ही रिक्वेस्ट हैं, जीना क्या जो उन्होंने गाने की फरमाइश की थी, नफीस ने आई थिंक की है, और एक हमारे एक भाई ने बलोची सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी कुछ दिन पहले, तो वो मुझे मिला नहीं था उस वक्त, वश मल्ले मैं अभी आपके लिए चलाऊंगी। अच्छा जी, तो फिर हमारे पास खबर जो है वो ये है ہے کہ پاکستان نے دوحہ کے قطارا کلچرل ولیج میں خاص پویلین کے ذریعے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں اپنا اہم کردار نمایاں کیا, اور گیلری 45 میں پاکستان پویلین میں ایڈیڈاس کے آفیشیل ورلڈ کپ میچ بال یہاں پہ ڈسپلے کیا گیا تھا, اور یہ دنیا کا ایڈوانس فٹ بال ہے جس میں اے آئی پاورڈ چپ لگی ہوئی ہے جو کہ ریفریز کو ریئل ٹائم ڈیٹا فراہم کرتا ہے. سب سے فخر کی بات یہ ہے کہ یہ فٹ بال پاکستان کے شہر سیاح

उनको के जो माहिर क्राफ्ट्समैन हैं वो तैयार करते हैं। ओपनिंग सेरेमनी में कतारा के जनरल मैनेजर प्रोफेसर खालिद बिन इब्राहिम अल सुलेती और पाकिस्तान के एम्बेसडर मोहम्मद आमिर ने शिरकत की और पाकिस्तान के एम्बेसडर ने कहा कि अगरचे पाकिस्तान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में मौजूद नहीं है लेकिन पाकिस्तान का बनाया हुआ फुटबॉल दुनिया के सबसे बड़ी टूर्नामेंट का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 10 फीफा वर्ल्ड कप्स में से जो 8 एडिशंस के थे तो उसके जो ऑफिशियल फुटबॉल्स हैं वो सियालकोट में ही तैयार किए गए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सा बड़ा अच्छा कलरफुल सा इवेंट हुआ जिसमें सारी चीज़ें डिस्प्ले की गई और ये मैंने काफ़ी देखा कल, काफ़ी वायरल था। तो ये थी आपसे शेयर करने के लिए न्यूज़, इसके साथ ही कुछ आपसे स्पोर्ट्स अपडेट्स वगैरह भी शेयर करेंगे और चीज़ें भी करेंगे। और आज याद रखिएगा प्लीज़ गेम लाजमी खेलना है, गेम को नहीं भूलना, ठीक है, गेम लाजमी खेलना है। गेम के लिए आ जाइएगा, जैसा भी खिला रहे हैं भाई आ जाए ना खेलने, मतलब खिला ही तो रहे हैं, खेलना नहीं चाह रहे आप, अजीब सी बात है, कितनी अजीब सी बात है, मैं कौन सा पढ़ने लिखने की बातें कर रही हूँ यहाँ पे आपसे। चलिए नहीं बढ़ते हैं हम उस ट्रैक की तरफ जिसकी रिक्वेस्ट की थी नफीस ने।

0: राइट, वेलकम बैक. आप सुन रही हैं 107 FM समर मॉर्निंग, और एक दफा फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ और आपसे शेयर करनी है कुछ चीजें. तो चलिए स्पोर्ट्स अपडेट्स की तरफ आ जाते हैं आपके, और मैं आपको बताती चलूँ सबसे पहले तो फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि कल हमें कहा भी गया था कि फीफा की जरूर खबरें शामिल करें. तो मैं आपको बताती चलूँ कि पैराग्वे ने टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूट आउट में 4-3 से हरा दिया है, और मुकाबला 120 मिनट के बाद 1-1 से बराबर था. लेकिन पेनाल्टीज में पैराग्वे ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है. ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही ब्राज़ील ने जापान को 2-1 से शिकस्त दी, और फैसला कुन गोल स्टॉपेज टाइम में स्कोर हुआ, जिससे ब्राज़ील नॉकआउट स्टेज में आगे बढ़ गया है. और आज भी काफ़ी सारे मैचेस होने वाले. इसके साथ ही आपको मतलब फीफा से हटकर ये बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL को ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इटोनॉमी देने की मंजूरी दे दी. अल्लाह करे मिल जाए, ज़रूरी है बहुत, और कुछ हालात भी चेंज हो जाएँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. खैर जी, इंडिया में भी फैंस जो हैं वो फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 32 मैचेस को बहुत दिलचस्पी से फॉलो कर रहे हैं, और वहाँ पे अभी जो सिलसिला है वो ये कि वहाँ से जो खबर है वो जय शाह ने क्रिकेट के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में वापसी की क्वालिफिकेशन सिस्टम का खैर मकदम करते हुए इसे क्रिकेट के लिए एक तारीखी कदम करार दिया है. अच्छा चलें ठीक है. और इसके साथ जी और क्या है इसके अलावा, हाँ बस ये खबरें थी मेरे पास स्पोर्ट्स के हवाले से. तो ये हमने शेयर कर लिया आपसे. मैं आपको बताती चलूँ एक दफ़ा फिर याद दिलाती चलूँ कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, और बता सकते हैं कि आपने कौन सी अपनी आदत चेंज की है जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है. इस वक्त मैसेज है मेरे पास और सुरजीत का मैसेज है, कहते हैं सलाम मही मैम, हैप्पी ट्यूजडे मॉर्निंग, वेरी वेरी नाइस योर शो एंड नाइस टॉपिक. मैम मैंने स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दी, 2 साल हो गए. क्या बात है सुरजीत, कमाल, तो अच्छा फ़र्क पड़ गया होगा आपके लंग्स वगैरह के लिए. अच्छा इसके साथ अफरोज़ खान चकवा और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माई मैम, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगी इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नाइस प्रोग्राम. अफरोज़ खान चकवा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कॉल करने का. आप बताएं कैसे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, सब सही चल रहा है लाइफ में. और इसके साथ ही जी हमारे पास जो है वो है मैसेज, यूसुफ खान कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, गुड मॉर्निंग बाबा जी, कैसे हैं आप, होप वेल, वेलकम टू समर मॉर्निंग, दिल से देसी, हैप्पी ट्यूसडे मॉर्निंग भी आपने कह दिया है, हैप्पी ट्यूसडे मॉर्निंग आपको भी. और सैयद भाई का मैसेज आ गया, अस्सलाम वालेकुम, आपके मामू को मालूम नहीं है कि माशाल्लाह मावश जी साहिबा कितने अच्छे और फेमस हैं. कहाँ मामू वगैरह घास डालते हैं, नहीं डालते. और इसके साथ ही जी मेरे पास है मैसेज रईस भाई का, और ये कहते हैं कि काजोल का DDLJ का सॉन्ग, काजोल का फर्स्ट सॉन्ग मेरे ख्वाबों में जो आए, ये मुझे क्यों बताया आपने, वो काजोल का फर्स्ट सॉन्ग था, ये मुझे इन्फॉर्मेशन दी आपने, ये गाना सुनना चाहते हैं क्यों बताएं. फिर जी आ जाते हैं हम, कॉलर हमारे साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम, कैसे हैं नवी साहब.
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं.
1: अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह.
0: अली हमजा.
1: हाँ जी अली हमजा.
0: हाँ क्या हाल चाल है.
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का.
0: जबरदस्त जबरदस्त. और क्या हो रहा था भाई.
1: कुछ नहीं, बस अभी ड्राइव कर रहा था, अभी आपकी कॉल आई.
0: हाँ सही सही, गुड जबरदस्त. तो अभी ड्राइव करते करते रोक दिया है. ये बताएं अली हमजा, कौन सा जिंदगी में चेंज लेकर आए हैं आप.
1: चेंजेस तो अभी तक बहुत सारे आ चुके हैं लाइफ में, मतलब बचपन से लेके जवानी तक, और ये सारा जो फेज है, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं लाइफ में.
0: एक तो वो होते हैं जो आते हैं, एक वो होते हैं जो लाए जाते हैं. लाए हैं आप कोई.

0: हमारे तो काफी सारे सबसे पहला सबर और बर्दाश्त जो है वो बहुत ज्यादा पैदा किया खुद ने ना। अभी मैं था कि स्कूल से घर आने घर आते हुए खाना नहीं बना हुआ, थोड़ा बहुत भी लेट हो गई है, बस फिर खाना नहीं खाना खाना इतना मतलब जो था ना वो गुस्सा आता था। तो पहले पैदा किए खुद ने, अभी ये इतनी बर्दाश्त आ गई है कि बातें भी कर लेते हैं, झगड़े वगैरह भी होते हैं, बहुत सारा कुछ मामला होते हैं ना, उन पे फिर जो है ना बर्दाश्त आ गई है। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं वो कभी नहीं बदली जा सकती ना, जैसे वो पंजाबी की मिसाल है ना, आदत पे एक उड़ी कई ना बुढ़ी उड़ी नो, वो हिसाब है। इस तरह की जब इंसान को पड़ जाती है तो वो जाती नहीं, कहीं ना कहीं समय उनका जो है ना वो फेज बाकी रहता है।
1: ये तो है।
0: ये है कि जो ब्लाइंडली ट्रस्ट है ना लोगों पे करना, वो मैंने स्टार्टिंग पे कॉलेज के डेज में ये था कि दोस्ती यारी बनाने का ना बहुत ज्यादा शौक होता था, नए नए दोस्त

0: orang-orang itu cara asalnya dosanya tu. Jadi, di sekolah saya pada kini, abah sos sama ke dekbal ke juga, itu jalan perlu. Jadi, kata kalau काम वगैरह शुरू करने हैं, बिजनेस शुरू करने हैं, तो वो भी देख के क्या ये बंदा शायद इसके साथ चलते हैं, अदरवाइज नहीं.
1: सही
0: जो लाइफ में लेके आए हैं. मैं कहता हूँ ज्यादा जो इंसान को खुद पे काम करना चाहिए, बाकी तो तरह चल रहे होते हैं, लाइफ चल रही होती है. अगर खुद से वो काम करता है, खुद को देखता है तो वो कहाँ तक है, उसका जो अभी पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस तरह का है. जैसे तो नहीं होती ऐसे इंसानों का कोई भी एक जैसा नहीं है, जैसे आप होते हैं वैसा कोई नहीं होता. मेंटालिटी आप लोगों की ना,
1: सही.
0: तो बस के जिसके साथ काम कर रहे हैं आप, खुद मतलब सोचकर काम करें तो बेशक उसने तो आपको अजर नहीं देना, लेकिन अल्लाह तो देगा ना आपको उसका अजर.
1: बिल्कुल ऐसे
0: लाइफ में मैंने चेंजेस की है, बस ये छोटे मोटे इनकी वजह से बहुत ज्यादा जो है मैंने खुद से मतलब जो है ना ओवरकम किया, और चीजों को जो है ना वो अच्छे तरीके से देखना शुरू कर दिया.
1: चले नहीं, गुड, जबरदस्त. मतलब किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, जो असल जो चक्कर है. ठीक है, ठीक है लियोमजा. चले गुड, जबरदस्त, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है. और वाकई नहीं करना चाहिए. अच्छा, मैं ये नोट करती हूँ कि अगर आप लड़कों के मुकाबले में लड़कियों को सुने ना, तो इतना नहीं कभी बोलेंगे कि हमने ट्रस्ट बहुत करते थे हम पहले और अब हमने ट्रस्ट करना छोड़ दिया है. लड़के ना थोड़े से फितरतन मुझे मासूम लगते हैं, मुझे लगता है कि वो ना भरोसे कर लेते हैं लोगों के ऊपर. लोग मतलब इसके ऊपर मुझसे हो सकता है इत्तफाक ना करें, लेकिन अगर मैं फितरतन देखूँ ना लड़के और लड़कियाँ दोनों के मुकाबले में, तो लड़कियाँ ना थोड़ी सी तेज़ होती हैं शुरू से.
0: ऐसी है
1: ना,
0: हम लोग ये बातों में ज्यादा जल्दी
1: आ जाते हैं और फितरतन मासूम होते हैं भाई. मतलब जो ना जो किसी ने कह दिया उस तरफ लग जाते हैं, हाँ, हो जाता है वो वाला चक्कर. चले जी अली हमजा, थैंक यू. एक कॉल और है, हम उनको भी मौका देते हैं, फिर उसके बाद हमने गेम खिलाना है. ठीक है, चले जी, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. रोही जी, तो अली हमजा हमारे साथ थे और कह रहे हैं कि ब्लाइंड ट्रस्ट करना छोड़ दिया है मैंने, अच्छी चीज है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम, सरताज खान.
1: सरताज खान, क्या हाल है
2: जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है,
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं, क्या हाल चाल है?
2: बिल्कुल ठीक ठाक. आपने आदात की बात की तो फिर मुझे बात करनी पड़ गई कि परदेश जो है ना, ये सब कुछ ठीक कर देते.
1: अच्छा,
2: ये हाँ, ये दोनों कानों के दरमियान में सर कर देता है. वो कैसे? तो मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरी आदत थी गर्म रोटी खाने की. और अल्लाह बख्शे वालदा मुझे वो उल्टे तवे की रोटी ना गर्म पका के देती थी, और मैं गर्म हाथ में पकड़ के खाता था. ये भी बात है, इतनी गर्म.
1: अच्छा, सही.
2: और कभी कभी कहती भी थी कि आदत अच्छी नहीं होती है, पर यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, फ्रिज में रख के खुबस खाते इतना फर्क हो गया. तो मैं वहाँ मेरी हम वैसे बेसिकली तो शाहजहांपुर से ताल्लुक है, तो 1960 में मेरे वालदैन आए थे माइग्रेट होके. तो अब घर में खाने छाने में वैसे पकते थे कोफ्ते, ये मुझे क्या अच्छा लगता था, गोभी और माश की दाल और पालक और शलजम और शामी कबाब. अब कभी कोफ्ते बनते थे तो मैं वालदा से चुपके से कहता था मुझे इसका कबाब बना दो. वाले सब नाराज होते थे, तो क्यों नहीं खाता है?
1: अरे कोफ्ते नहीं खाते आप
2: जी?
1: कोफ्ते नहीं खाते?
2: वहाँ नहीं खाता था,
1: वहाँ नहीं खाते.
2: यहाँ मैं सब कुछ पकाता हूँ और सब कुछ खाता हूँ, ये देखें आप.
1: अच्छा, इत्तेफाक की बात है, आज मैंने कोफ्ते बनाने हैं तो मैंने कहा ये कोफ्ते नहीं खाते.
2: मैं नहीं खाता था बिल्कुल.
1: अच्छा,
2: कबाब लेता था और बकायदा वाले साहब नाराज होते थे कि यार तू कैसा बंदा है. मैं कहा मुझे अब अच्छा नहीं लगता है. तो कहने का मतलब ये बाद जो हालात ऐसे होते हैं ना, बंदे की आदत शादत सब सीधी कर देते. और यहाँ आके हर चीज खुद पका के मैं खाता हूँ. मुझे माशाल्लाह 50 साल से ऊपर हो गए और मैं हर चीज
1: मतलब सुधरे हुए कड़सा हो गया
2: जी. 74 में मैं आया, यहाँ 74 में आया, बिल्कुल सीधा हो गया.
1: सही सही सही, चले
2: जी.
1: हाँ, ये होता है भाई. मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो माओ ने भी ना बहुत ज्यादा एक तरह पैम्पर किया हुआ होता है सब कुछ, वो जिंदगी भर नहीं चल सकता.
2: नहीं, अब कोई पसंद ना पसंद रही नहीं, ये देखें आप कितना सा हुआ है, कहाँ पसंद ना पसंद चली गई पीछे.
1: हाँ, सही बात.
2: और
1: الحمدللہ ہی کہنا چاہیے, پتہ ہے الحمدللہ ہی کہنا چاہیے, کیونکہ بہت سے ہمارے ناز نخرے اور یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں نا, ہم پتہ نہیں کیا ہی سمجھا ہوا ہوتا ہے ہم نے, لیکن پھر ہمیں عقل جب ٹھکانے آتی ہے, جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی کوئی نہیں ہم کوئی ایسے نواب زادے نواب زادیاں.
2: بتا رہا ہوں آپ کو ایک دفعہ یہی کی بات ہے, رات کو بندہ کی ڈیوٹی سے آیا تو اس وقت تندور وغیرہ بند تھے, کوفیز وغیرہ بھی نہیں تھے, تو ایک بندے نے شاپر میں لپیٹ کے ایک روٹیوں کا ڈبا تھا اس میں پھینک دیے, تو کہنے لگا یار خبر ہے, بولا نہیں ہے میں نے شاپر میں لپیٹ کے پھینکے, کہتا پھر لیا نکال کر, یہ حال ہے یہاں
1: کا,
2: وہ بھی کھائے گا, تو یہ وقت کی بات ہے, وقت سکھاتا ہے بہت بہت بڑا استاد, بہت بڑا بندہ ویسے نہیں سیکھتا ہے.
1: صحیح,
2: آج میں عمر کے حصے میں ماشاء اللہ 76 کا میں ہو گیا ہوں, اب جا کے ہم کہتے ہیں ہم بڑوں کی باتیں کیوں نہیں سنتے, لیکن وہ عمر ایسی ہے وہ سننے کو دل ہی نہیں کرتا.
1: ہاں صحیح بات ہے, صحیح بات,
2: بہت نقصان کیا ہم لوگوں نے, آج کل کی پود بھی وہی ہے جو نہیں سنتی ہے, لیکن وہ سمجھے گی جب جب خود اس ایج میں آئے گی, اس سے پہلے سمجھے گی نہیں, بہت کم لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ جو سبق حاصل کر لیتے.
1: صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, بالکل ایسے زبردست, لیکن اچھی بات ہے, بہت بہت شکریہ سرتاج صاحب آپ سے بات کر کے اچھا لگا, اور مجھے یاد پڑ رہا ہے میری آپ سے پہلے بھی کچھ دنوں پہلے بات ہوئی تھی. ہاں وہی جو اچھے کالرز ہوتے ہیں یاد رہ جاتے ہیں ہمیشہ, تو بہت اچھا لگا ایک دفعہ پھر بات کر کے, اور کرتے رہا کریں کال, ٹھیک ہے,
2: انشاءاللہ,
1: خیال رکھیے گا بہت بہت اپنا, اللہ حافظ, اللہ حافظ. رائی جی, تو ہم نے کرتا ہے گیم کا سلسلہ شروع, لیکن اس سے پہلے ایک گانا چلا دیتے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں 90s کا سانگ, تو 90s کا یہ والا سانگ جو انہوں نے کہا تھا رئیس بھائی نے کہ میرے خوابوں میں آئے کاجول کا پہلا گانا تھا, تو میرا خیال ہے وہ مجھے بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ سننا چاہ رہے ہیں, اور ایک اور بھائی بھی انہوں نے میسج کیا, ابھی بھی میں نے دیکھا 90s کا سانگ, تو 90s کا سانگ آپ کے لیے, سنیں انجوائے کیجیے, لیکن گیم میں کال کرنا نہ بھولے گا, کال کر لینا بھائی, عزت کا سوال ہے.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरत अंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: Right, right. Welcome back. एक दफा फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। कॉल कर सकते हैं आप हमें 4434377 पे। गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो गेम आपको खिलाते हैं। कॉल कीजिए भाई। जसविंदर सिंह कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मैडम जी, वेरी गुड प्रोग्राम, वेरी गुड सॉन्ग वश मल्ले और जसविंदर सिंह काला दिल से देसी। थैंक यू जसविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं कि मेरे हिसाब से बड़ा चेंज यही हुआ है कि मैंने सब्र करना सीख लिया है और गुस्सा बहुत कम हो गया है। गुड, जबरदस्त। मोहम्मद यूसुफ खान इस के साथ ही जी आगे हैं। कॉलर हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो बंद कर दीजिए प्लीज। हेलो हेलो हेलो हेलो, आए और चले गए, मतलब कुछ सुना के चले। ओके, इसके साथ ही जी अस्सलाम वालेकुम। और ये है अच्छा, फिर कॉल आ रही है। हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
5: हमजा नाम है बहन का।
4: अच्छा, हमजा नाम है
5: जी।
4: हाँ, इतने उदासी।
5: हमजा खोखर।
4: हमजा खोखर, ओके। हमजा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है
5: अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है
4: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और हमजा गेम खेलेंगे?
5: फर्स्ट टाइम आपके शो में एंट्री हुई है।
4: अच्छा,
5: गेम तो खेलेंगे
4: सर। चले जी, गुड, जबरदस्त।
5: हाँ? मैं आपको गुड आफ्टरनून बोलने आया हूँ। मैं बहन को गुड आफ्टरनून बोल दूँ?
4: गुड आफ्टरनून क्यों?
5: मुझे जैसे इधर गर्मी है माशाल्लाह, यहाँ तो मॉर्निंग होती नहीं है।
4: बात सही है वैसे, बात सही है।
5: मैं गलत है कि इधर मॉर्निंग नहीं होती, लेट आफ्टरनून चलती है।
4: हाँ, ये तो है, ये तो है। बल्कि आप सुबह मतलब 5 बजे देखो ना, तो आपको 5 बजे लग रहा होता है कि 9 बज रहे हैं।
5: हकीकत है।
4: हाँ, ऐसे ही
5: मैं
4: होता
5: भी उठकर आया हूँ ड्यूटी पे, तकरीबन 8 o'clock मेरी लॉगिन होती है।
4: हाँ।
5: तो आज यकीन करें, जैसा लगा था कि हाँ ठीक है, हवा नहीं चल रही होती ना तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाना था।
4: हाँ, हवा लेकिन आज है। हाँ, आज हवा अच्छी चल रही
5: है। आवाज बहुत अच्छी।
4: ये है, चले गुड, जबरदस्त। तो हमजा खोकर, पहली दफा क्यों बात हो रही है आपसे?
5: असल में मैं जिस तरह एंट्री लेता हूँ, तरुण भाई का शो शुरू होने को आता है।
4: अच्छा अच्छा,
5: तो आजकल ड्यूटी टाइमिंग चेंज किए हैं थोड़ी सी। कल भी आपको सुन रहा था और आज भी ये मौका मिला कि आपको सुन रहा हूँ।
4: सही सही, चलें गुड, जबरदस्त। अच्छा कि आपने कॉल कर ली और हम जल्दी से गेम शुरू कर देते हैं आपके साथ, ठीक है? तो अब हमने, मैं आपको क्या करूंगी, एक एक करके मूवी का नाम बताती जाऊँ, वो सॉरी एक्टर का नाम बताती जाऊंगी, आपने उनकी कोई ना कोई मूवी बतानी है। और जैसे कि मुझे पता चला है कि हर थोड़ी देर के बाद मतलब एक मूवी ही बतानी है आपने एक एक्टर की, ठीक है? फिर मैं दूसरा एक्टर बताऊंगी आपको और 30 सेकंड में जितने आप बताते हैं। हाँ ठीक है, खेल लेते हैं ना, क्या जा रहा है। ठीक है, चले तो पहला एक्टर जो है अमिताभ बच्चन।
5: अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन मूवीज नाम नहीं याद है, वैसे तो बहुत सारे हैं।
4: सही है। दूसरा रणबीर कपूर,
5: मूवी है इनकी सफर।
4: अच्छा
5: बहन, आप टाइम जाया करेंगी मेरे को, सीधी बात है।
4: बेसिकली पता नहीं मेरे साथ तो हमजा कोई गेम खेलने आ ही नहीं रहा, मेरे साथ तो यही मसला हो रहा है, लोग मुझसे मेरे साथ खेलने ही नहीं जा रहे। ये वाला सीन है।
5: बात पता है क्या है, मैं मूवीज वगैरह देखता नहीं हूँ, अगर जो देखी भी है ना लिटरली सीरियसली, अगर मैं मूवी के दरमियान भी मुझसे को पूछता था ना भाई कौन सी मूवी देख रहा है, भाई पता नहीं यार सामने आई थी देख ली,
4: ये वाला सीन है
5: मेरा, ये हिसाब है।
4: चले फिर हम दूसरे कॉलर को मौका देते हैं, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जरूर आगे कॉल कीजिएगा, ठीक है?
5: इंशाल्लाह अगर सुबह के टाइम आता रहा तो मैं जरूर करूंगा इंशाल्लाह।
4: चलें गुड, जबरदस्त, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं आपसे, ख्याल रखिएगा, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज जी। तो हमजा के बाद देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
4: वालेकुम सलाम, मोहम्मद यूसुफ खान का मैं ही आ जाता हूँ, कोई तो आए। जी तो मैं आपको, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये सही है ना, मतलब एक एक्टर का नाम लूंगी आपने मूवी का नाम बताना है, ऐसे ही है ना,
2: लेकिन थोड़ा फास्ट होने चाहिए ना।
4: हाँ तो वो तो चल 30 सेकंड का हम टाइम शुरू करते हैं। पहला शाहिद कपूर
2: जी, जब भी मैट,
4: वरुण धवन
2: इश्क होना है,
4: सैफ अली खान
2: परंपरा,
4: इमरान हाशमी
2: आवारा,
4: और आलिया भट्ट
2: राजी,
4: अनुष्का शर्मा,
2: अनुष्का शर्मा कब तक है जा,
4: हाँ वाओ, और श्रद्धा कपूर,
2: श्रद्धा कपूर कौन से फिल्म, आशिकी,
4: हाँ ये 30 सेकंड से ऊपर हो गया लेकिन आपने 5 बता दिए। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट भाई। और पता है आपको नाम लिख के बैठी हूँ मैं, वरना मेरा दिमाग इतना तेज नहीं चल सकता आप एक्टर्स के मामले में। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ, 5 हो गए, 5 ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर कॉल, हाँ थैंक यू जी। रई जी तो हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ खान थे, अब देखते हैं कि कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, रईस खान आ गए, रईस खान। चले जी तो वही 30 सेकंड का टाइम है, ठीक है,
5: चलो ठीक है भाई, कोशिश कर ले।
4: शाहरुख खान,
5: मोहब्बत है,
4: आमिर खान,
5: आमिर खान दिल,
4: रणवीर सिंह,
5: रणवीर सिंह की ये के अभी अभी दीवाना,
4: चले अक्षय कुमार,
5: अक्षय कुमार की खिलाड़ी,
4: अजय देवगन, टाइम हो गया 30 सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए, 4 आपके। चले जी थैंक यू,
5: एक में थोड़ा सा मैंने डिले किया, थोड़ा सा गलती,
4: मतलब ये यूसुफ के 5 हुए आपके 4,
5: असल में जल्दबाजी में वो जाप नहीं आते।
4: लेकिन यही तो सारा सीन है, यही तो सारा सीन है,
5: कॉमन सेंस वाला लेके आए सवाल, 2-3 ऑप्शन दे ना।
4: अरे भाई बॉलीवुड ही चलता है, बॉलीवुड ही चलेगा मॉर्निंग में, मसला ये है, वरना मैं दूसरी चीजें लेकर आ जाऊँ, मसला ये है, ठीक है। चले जी यूसुफ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, सॉरी यूसुफ कह रही हूँ,
5: ठीक है। बाजीगर का आप चालू करके जाना, जाते जाते लास्ट में कोशिश करना बाजीगर का,
4: चले कौन सा वाला
5: बाजीगर, वो बाजीगर वाला ये गाना थोड़ा चलाना, अगर कोशिश हो, अगर हो पाया तो
4: ठीक है चला दो ठीक है, चले जी थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रई जी तो जल्दी से आप मुझे कॉल कर सकते हैं भाई, फटाफट कॉल कीजिए शामिल हो जाइए, 4434377 पे आपकी कॉल का मुझे वेट है, आप कॉल कीजिए, जल्दी से कॉल कीजिए ताकि हम गेम खेल सकें, ठीक है। चले जी इसके साथ ही हम बढ़ेंगे मैसेज की तरफ, हम मैसेज जो है वो है कहाँ, सैयद हुसैन खादिम हुसैन, मतलब ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मावश खान ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब, आपको भी आदाब भाई, और उसके साथ शुक्रिया कहना था रईस खान का, शुक्रिया ओके, और इसके साथ ही साथ किस बात पे, और इसके साथ जी है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, मैं बहुत सारे लोगों को कॉल करता था, ये अपने हैं पर आहिस्ता आहिस्ता कॉल करना छोड़ दी कि देखूं कि कोई मुझे भी कॉल करता है कि नहीं, चंद लोग ही बचे हैं मेरे पास, और मैं आज से ये बात सबको बताना चाहता हूँ कि आपका दोस्त वही होता है जो हॉस्पिटल में या थाने में जब कोई मुश्किल में हो तो आपके पास खड़े हो।

0: जो वो ही अपना आपका अपना है। वो कहते हैं ना कि खुशी में तो आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं नाचने वाले होके, लेकिन अपना तो वही है जो परेशानी में आपका सहारा बने, और ये है आजिस। आजिस बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। ऐसे ही भाई और राज भाई आएंगे तो बहुत सारे स्कोर बनाएंगे। राज भाई किधर हैं आप? राज भाई मुझे लग रहा है कि चले गए कहीं इंडिया विंडिया घूमने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। खादिम हुसैन का मैसेज आया, बहुत शुक्रिया भाई आपका भी। चले जी, इसके साथ ही एक भाई आजिस ही मेरा ख्याल है टाइप कर रहे हैं कुछ। आजिस का मैसेज है क्या? अभी टाइप कर रहे हैं मेरा ख्याल है ये अभी तक। चलें दी, तो आप कॉल कीजिए मुझे 4434377 पे। मैं वेट कर रही हूँ आपकी कॉल का, जल्दी से कॉल कर लीजिए, शामिल हो जाइए। हम आपको गेम खिला रहे हैं। अभी तक मोहम्मद यूसुफ खान ने 5 का स्कोर किया है और 4 जो है रईस भाई के हुए हैं। देखते हैं कि कोई आता है जो कि इनका जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक कर सके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं?
1: मुमताज अहमद।
0: कौन?
1: मुमताज अहमद।
0: मुमताज अहमद, चलें जी मुमताज आपके साथ हम शुरू करें।
1: लेकिन 90s का
0: 90s का क्या एक्टर?
1: यस।
0: अच्छा चलें मैं 90s वाले बताती हूँ आपको, ठीक है? चलें शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, शाहरुख खान।
1: डेनियल जे।
0: ओके, सलमान खान।
1: सलमान खान फिल्म बेवफा।
0: ओके, और ऋतिक रोशन 90s में आता है ना? हाँ, ऋतिक रोशन।
1: कहो ना प्यार है।
0: सैफ अली खान।
1: मैक्स ताड़ी तू अनाड़ी।
0: अनिल कपूर
1: बेटा।
0: काजोल।
1: काजोल का वही दिलावल दुल्हनिया ले जाएंगे।
0: अच्छा, तब्बू। तब्बू
1: ससुराल।
0: हो गए 30 सेकंड और आपने 7 कर लिए भाई। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला मुमताज अहमद, राइट?
1: जी।
0: 7 हो गए हैं आपके। अब देखते हैं आपको कोई ब्रेक करता है कि नहीं। जल्दी से कॉल कीजिए आप हमें, और मुमताज अहमद ने 7 का स्कोर किया है, देखते हैं कि कोई इसको करता है ब्रेक या नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रेडियो प्लीज ऑफ, रेडियो ऑफ, रेडियो ऑफ, रेडियो ऑफ। अच्छा, दूसरे कॉलर भी आ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद आरिफ अंसारी। चले मैं आपको बताऊं जल्दी जल्दी से नाम? चले ठीक है, रणबीर कपूर।
2: रणबीर कपूर,
0: हाँ रणबीर कपूर। ओके, अजय देवगन।
2: अजय देवगन बोलमाल।
0: राजकुमार राव।
2: राजकुमार राव पति पत्नी।
0: ओके, जॉन अब्राहम।
2: जॉन अब्राहम पठान।
0: ओके, मनोज वाजपेयी। हो गए 30 सेकंड, हो गए 30 सेकंड, हो गए तो ये 3 हुए हैं। थैंक यू आरिफ, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए, थैंक यू जी। राइट, तो हमारे साथ आरिफ थे और इसके साथ ही जल्दी से एक और कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई, क्या हो गया? ये कोई एक भाई बार बार आ रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि इनकी आवाज़ क्यों रिपीट हो रही है। फिर दोबारा कॉल करते हैं, फिर रिपीट हो रही होती है, तो रेडियो की आवाज़ बंद कर दें। सिर्फ और सिर्फ ये है सीन और कुछ भी नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, तो आप जल्दी से कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए नंबर है 4434377। इस नंबर पर कॉल कीजिए, गेम खेलना चाहते हैं गेम कीजिए, आप खेलिए हमारे साथ। और अभी तक सबसे ज़्यादा मुमताज अहमद के साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, फिर वही क्या हो गया भाई, रेडियो ऑफ नहीं होता इसमें?
2: नहीं नहीं, मैं दूसरा है।
0: अच्छा दूसरा है। ओके जी भाई, गेम खेलेंगे?
2: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, गेम तो नहीं खेलेंगे, गाना सुनाना था।
0: हाय, गाना कौन सा सुनना है?
2: गाना सुनाना था मैं
0: आपको। गाना सुनाना था?
2: हाँ।
0: अच्छा, गेम में?
2: हाँ गेम, गाना सुनाने के लिए कॉल किया।
0: अच्छा, बेसिकली आज हम दूसरा कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक रख लेते हैं गाना सुनाने वाला, ठीक है? आप उसमें गाना सुनाना।
2: ओके,
0: ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
2: मुमताज नाम है।
0: आपका भी मुमताज नाम है, आप समझे बस मुमताज की जीत आपकी जीत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे गाना सुनेंगे, ठीक है? ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर कॉल मुमताज। राइट, तो हमारे साथ थे एक और मुमताज, और अगर कोई और शामिल होना चाहता है तो जल्दी से हो जाए, वरना फिर हमारे जो विनर हैं वो मुमताज हो जाएंगे, और मुमताज अहमद। तो मुझे लगता है कि आगे एक कॉल और आ गई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं?
3: मोहम्मद।
0: मोहम्मद अयाज। चलें जी, तो फिर अब टाइम हमारे पास बड़ा कम है, हम फौरन से शुरू करते हैं, ठीक है? करीना कपूर।
3: करीना कपूर दबंग।
0: कृति सेनन।
3: कृति सेनन
0: हाँ हाँ अच्छा, विकी कौशल।
3: विकी कौशल
0: चलें पास। हाँ दूसरा बताती हूँ, अजय देवगन।
3: अजय देवगन दमाल।
0: ओके, आयुष्मान खुराना। टाइम ओवर। चलें जी, थैंक यू भाई आपकी कॉल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रॉय जी, तो उसके साथ फैसला ये होता है कि मुमताज़ अहमद आपने जो है वो सबसे ज़्यादा साथ जो है वो फौरन से मूवीज़ के नाम बताए हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा खेले आप, इतनी जल्दी मेरे जहन में तो कभी भी मूवीज़ के नाम नहीं आ सकते। रेड जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे रोज़ गेम लाजमी खेलना है, ठीक है? तो गेम में लाजमी आएगा और हम पूरे हफ्ते यही वाला रखेंगे जैसे आपने कहा था। नेक्स्ट वीक में देखते हैं कि आपसे गाना गवाना है या कुछ और करना है, ठीक है? चले जी, तो इसके साथ ही मेरे हो गया है जाने का वक्त, इंशाल्लाह ताला अब आपसे मुलाकात होती है। बाजीगर आखिर में लगा के जा रही हूँ, किसी और ने भी कहा था मुझे कि गाना सुनना है, पता नहीं अभी नज़र नहीं आ रहा। ज़बरदस्त आज का गेम हो गया रईस भाई, बहुत शुक्रिया। मुझे अब यूसुफ खान की आखिर में बात आज मुझे लग रहा है किसी हद तक समझ, इस हफ्ते में से मुझे समझ में आ गई थी लेकिन कोई खेलना ही नहीं चाह रहा था, तो आज आए लोग तो ये कि मुझे समझ में भी आ गई और लोग जो है वो शुक्र है आ भी गए। इंजॉय कीजिए, यस अच्छा लगा आज का गेम। मोहम्मद यूसुफ खान, थैंक यू, आप ही का, आप ही की क्या कहना चाहिए, सपोर्ट है, आप ही का मशवरा भी है, आप ही ने बताया भी है। चलिए इसी के साथ इंजॉय कीजिए ट्रैक, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मैं जाती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।

0: आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: न्यूज एट 9 AM न्यूज एट 9 AM फ्रॉम उर्दू रेडियो एफएम 107 एफएम।
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। दोहा कतर में इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं। आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर एफएम 107। फरकान शाहिद से समाअत कीजिए आज की ताज़ा तरीन खबरें। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। मजलिस शुरा ने अपने मामूल के इजलास में साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा।

0: मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है, ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
2: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे कतर की वीमेन स्विमर नादा मोहम्मद के बारे में। नादा मोहम्मद कतर की मशहूर स्विमर हैं, जिन्होंने बैन अवी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करके खास मकाम हासिल किया है। बचपन से ही उन्हें स्विमिंग का शौक़ था और उन्होंने मुसलसल मेहनत और सख्त ट्रेनिंग के जरिए अपने टैलेंट को निखारा। नादा ने फ्री स्टाइल और बटरफ्लाई इवेंट्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और अरब, एशियन और ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत की। उन कामयाबी ने कतर में खातीन के स्पोर्ट्स को भी नई पहचान दी और बहुत सी लड़कियों को स्विमिंग की तरफ मुतवज्जे किया। नादा रोज़ाना घंटों तक पूल में प्रैक्टिस करती हैं और अपनी फिटनेस, स्टैमिना और टेक्निक पर खास तवज्जो देती हैं। उनका यकीन है कि डिसिप्लिन और सब्र किसी भी एथलीट की सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, दोहा के जदीद स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग सिस्टम ने उनकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। नादा सिर्फ मेडल्स जीतने तक महदूद नहीं, बल्कि वो नौजवान जनरेशन को सेहतमंद जिंदगी और स्पोर्ट्स की अहमियत समझाने में भी कोशिश करती हैं। उनकी मेहनत और हौसला कतर के लिए फख्र का सबब है और मुस्तकबिल में भी उनसे मजीद कामयाबियों की उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, डिसेबिलिटी वाली पार्किंग स्पेसेस का इस्तेमाल ट्रैफिक का वायोलेशन और बेअदबी है। ट्रैफिक के कानून और गाइडलाइंस को फॉलो करना अमन और दूसरों के हुकूक की हिफाजत करता है। याद रखिए, डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड पार्किंग स्पेसेस का गलत इस्तेमाल ट्रैफिक का ऑफेंस है और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इन स्पेसेस का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटी से मुतासिर हैं, उन्हें आसानी से अपने जरूरी कामों को अंजाम देने का मौका मिले। ये पार्किंग स्पेसेस उन्हें कन्वीनियंस और सहूलत देने के लिए रिजर्व्ड होती हैं और उनका गलत इस्तेमाल उनके लिए अननेसेसरी मुश्किलात का सबब बन सकता है। ये जरूरी है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतरीन और अमन पसंद ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें ताकि सबको बराबर के हुकूक मिल सकें और किसी को भी अपने हक से महरूम ना होना पड़े। FM 107 इस बात की ताकीद करता है कि मुआशरे में हर एक का बराबरी से ख्याल रखना बेहद जरूरी है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि मर्द हजरात की सेहत के बारे में कि अक्सर मर्द हजरात अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात, काम और ख़ानदानी जिम्मेदारियों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अच्छी सेहत ही एक कामयाब और बेहतरीन जिंदगी की बुनियाद है। मर्द हजरात में आम तौर पर पाई जाने वाली सेहत की मुश्किलात में दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती शामिल हैं। इन बीमारियों की खास बात यह है कि अक्सर उनकी जो इब्तदाई अलामात हैं बिल्कुल भी जाहिर नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि बाकायदगी से अपना ब्लड प्रेशर, खून में शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए, ख़ास तौर पर अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो या ख़ानदान में इन बीमारियों की जो हिस्ट्री है वो मौजूद हो। इसमें सबसे अहम बात यह है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाइए, वो इस तरह के रोज़ाना कम से कम 30 मिनट आप वॉक कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए, ताज़ा फल सब्जियां और मतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए, फास्ट फूड और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ कीजिए, स्मोकिंग और शीशा नोशी से मुकम्मल दूर रहिए, मुनासिब मकदार में पानी ज़रूर लीजिए। बहुत से मर्द हजरात ज़हनी दबाव, परेशानी या डिप्रेशन के बारे में बात करने से गुरेज करते हैं। याद रखिए कि मेंटल हेल्थ यानी हमारी जो ज़हनी सेहत भी जिस्मानी सेहत जितनी अहम है। अगर मुसलसल उदासी, बेचैनी या नींद के मसाइल हों तो माहिर सेहत से ज़रूर मशवरा कीजिए। लिसनर्स, अपनी सेहत का ख्याल रखना कमजोरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। बाकायदा चेकअप और सेहतमंद आदत आपको तवील और बेहतर जिंदगी गुजारने में मदद देती हैं।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: देखिए भाई साहब, टेक की दुनिया और ये है एकदम टक टकाटक। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर F107 पे, एंड वेलकम टू टेक इनोवेशन, द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी सेकंड। मैं कब तक कितना पीछे भागूं, ये जान लेता हूं तो वो छूट जाता है, वो जान लेता हूं तो कुछ और छूट जाता है। बट मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं आपको वो चीजें बताना चाहता हूं जो आपके काम आएंगी, वो चीजें जो एक्चुअली में इस हफ्ते, अगले हफ्ते या फिर महीने भर तक आप यूज कर सकते हैं, और उसमें चेंजेस आते भी रहेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आज टेक इनोवेशन में मैं उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूं जो एआई से जुड़े हुए हैं और अपने प्रोजेक्ट्स, अपने चीजों को कंप्लीट करना चाहते हैं, एंड दे नीड समथिंग फ्रॉम द एआई वर्ल्ड। तो आई विल ट्राई टू गिव देम समथिंग। तो आज एआई से जुड़ी हुई कुछ एप्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में बात करूंगा। फिर आएंगे गैजेट्स जो बड़े प्यारे हैं, बाय द वे बड़े क्यूट क्यूट गैजेट्स हैं आज मेरे पास, एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो खबरें जो बड़ी जरूरी हैं इन टेक न्यूज़। तो शुरू करेंगे सबसे पहले एआई टूल से इन एप्स दिस वीक।
1: ट्रेंडिंग एप्स,
0: तो नंबर वन ऑन द लिस्ट, ये कोई रैंकिंग नहीं है, रैंडमाइज करके बता रहा हूं, तो नंबर वन ऑन द लिस्ट इज कंसेंसस डॉट ऐप, ध्यान से सुनिएगा, CONSENSUS consensus.ap या फिर ऐप लिख दीजिएगा, वैसे consensus.app लिखिएगा ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ये क्या करता है, ये AI बड़ा कमाल का है, ये रिसर्च बेस्ड आंसर्स देता है। मान लीजिए आपने कोई चीज, कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है और उसका आपको सब्जेक्ट मटेरियल नहीं मिल रहा है, आपके पास एटलीस्ट एक हेडर है, आपको पता है टॉपिक क्या है, उसको ब्रॉडर वे में एक रिसर्च की तरह आप जानना चाहते हैं, उसकी नॉलेज के बारे में एक एक चीज, मतलब उसकी नॉलेज के बारे में क्या, उसकी नॉलेज जानना चाहते हैं, तो एक एक डिटेल आपको मिलेगी, वट एवर द सब्जेक्ट इज, वट एवर यू वॉन्ट टू नो, एक पूरे रिसर्च बेस्ड आंसर आपको ये एआई देता है। नॉट ओनली दैट, इट कंपाइल्स इट फॉर यू, ताकि आपको एक कंपाइलेशन मिल सके, आप उसको अपने हिसाब से देख सकें, पढ़ सकें। आप इसकी लैंग्वेज को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान लैंग्वेज है। एंड इट नॉट ओनली गिव्स यू अ रिसर्च बेस्ड आंसर, बट इट ऑल्सो गिव्स यू क्लैरिटी, मतलब वो सेंटेंसेस जो फॉर्मल नहीं होते, समझ रहे हैं आप, एक आसान अंग्रेजी या आसान भाषा में जो भी आप इसको लैंग्वेज देंगे, इट इज जस्ट अमेजिंग, एंड आई वॉज ब्लोन अवे। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ के आया हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे की

0: ANOWT.com. ये क्या करता है, जो नोट्स होंगे कॉलेज के स्कूल के, उन नोट्स को ये स्टडी गाइड्स की तरह या फ्लैश कार्ड्स की तरह तैयार कर देता है, विच इज अमेजिंग. मैं आपको बताता हूँ, मैं जब कहानियां तैयार करता हूँ आपको सुनाने के लिए नैरेटिव फॉर्म में, कोई केस स्टडी मैं करता हूँ, कोई केस मुझे मिला, मैं उसको जब नैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए जाता हूँ तो इसकी मदद लेता हूँ. ये मुझे नोट्स बना के देता है, मुझे पूरा स्ट्रक्चर देता है, ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि फ्लैश कार्ड्स देता है. अगर मुझे उस कहानी में से कुछ सवाल निकालने पूछने के लिए, आई कैन ऑल्सो डू दैट. तो आप सोचिए, जब ये कहानी के लिए इतना कर सकता है, तो जो आपके एक्चुअली में चीजें हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, कोई आपने नोट्स तैयार किए हैं, उनको ये किस कदर प्रेजेंटेशन देगा, कितनी बेहतरीन देगा. सो ट्राई दिस वन आउट, ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही कमाल का है. ANOWT.com, नॉट डॉट कॉम. ये क्या करता है, इट बेसिकली टर्न्स योर नोट्स इनटू स्टडी गाइड्स प्रॉपर, और साथ में फ्लैश कार्ड्स भी, क्या आपको अपने हिसाब से अगर सवाल जवाब पूछने हैं या एक क्वेश्चनेयर टाइप का तैयार करना है, तो ये बहुत बहुत काम की चीज है. प्लीज प्लीज ये उन तक पहुंचाएगा जिन्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. फ्लैश कार्ड्स आर वेरी गुड फॉर्म ऑफ लर्निंग, एंड ये सबको पता होना चाहिए जो भी अभी स्कूल में है, कॉलेज में. सो वैसे तो बच्चे बहुत ज्यादा तेज हैं, मैं कौन होता हूँ उन्हें बताने वाला, बट स्टिल इफ समबडी वॉन्ट्स टू नो अबाउट इट, ये उनके लिए था जनरली स्पीकिंग. ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन. अगली जो AI टूल है, उसका नाम है, अगले AI टूल का scispace.com. मैं स्पेल आउट कर देता हूं, SCISPACE. बेसिकली scispace लिखना है, साइफाई लिखते हैं ना, वैसे ही साई लिखना है, SCI और space.com. ये बहुत कमाल का है. नाउ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट AIs, क्योंकि ये जो काम करता है वो बाकी AI उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं. देर आर AIs इन द मार्केट जो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, आपकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बट दिस वन इज रियली ग्रेट. तो ये करता है scispace, ये अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, मान लीजिए बहुत जत्था पड़ा है आपके पास प्रोजेक्ट का, उस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करके एक सिंपलर लेमैन लैंग्वेज में, एक आम इंसान की भाषा में आपके सामने रख देगा. बोला गया, हेलो जी, तो अगर कुछ नहीं समझ में आए, बहुत कॉम्प्लेक्स कोई सब्जेक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है किसी चीज में, एंड नॉट जस्ट स्टूडेंट्स या टीनेजर्स, मगर आप ऑफिस में भी काम करते हैं, कोई बहुत ही भारी भरकम कोई सब्जेक्ट मिल गया आपको, एंड यू वांट टू गेट इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ये आपके बहुत बहुत काम आएगा. आई हैव यूज्ड इट एंड आई फाउंड इट अमेजिंग. तो ट्राई दिस आउट, scispace.com, scispace.com, बहुत बहुत काम आएगा. एंड इसको क्लब कर लीजिएगा इन तीनों AI टूल्स को NodeGPT के साथ. NodeGPT आपके प्रोजेक्ट में मदद करेगा. मान लीजिए आजकल मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जाके YouTube से भी निकालते हैं प्रोजेक्ट्स. कई चीज़ें होती हैं जो उन्हें YouTube से मिल जाती हैं, उन प्रोजेक्ट्स का उन्हें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है. ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली जो कैप्शंस होते हैं वो हर वीडियो पे नहीं आते हैं, तो उसके ट्रांसक्रिप्ट एक साथ मिल जाती है. वीडियो आपने NodeGPT पे डाला और उसको पूरा समराइज किया, उसको ट्रांसक्रिप्ट किया, व्हाटएवर यू वांट टू लाइक इट. सो तीनों के तीनों AI यू कैन क्लब इट विद NodeGPT, एंड आपका टूल तैयार है किसी भी सब्जेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के. I hope this is helpful. कोई भी मदद चाहिए उसे जुड़ी हुई, तो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर है, या फिर आप मुझे ढूंढ लीजिएगा दोहा वाला कबीर के नाम से, एंड पूछ लीजिएगा वापस, कोई मसला नहीं. ओके, अब बढ़ते हैं जरा कमाल के गैजेट्स की तरफ. आ जाओ जी,
1: गैजेट्स.
0: तो गैजेट नंबर वन, भाई ये गैजेट मुझे कोई गिफ्ट दे दी या मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगा, मेरे जितने भी गेमिंग भाई बहन हैं उनके लिए भाई बढ़िया करके. इस गैजेट का नाम है CRKD. हाँ, ये एक्चुअली में ऐसे ही है, CRKD एटम कंट्रोलर्स, ATOM. सो CRKD एटम कंट्रोलर्स. ये कंट्रोलर्स बहुत छोटे कीचेन जुड़ी हुई इनसे भाई, इतने छोटे हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं है कि आपके हाथ इसको होल्ड ना कर सके दोनों हाथों से, मतलब इतने भी छोटे नहीं, लाइक अ गुड साइज ऑफ कंट्रोलर्स. एंड ये आपके मोबाइल से ब्लूटूथ, वाईफाई, USB तीनों से कनेक्ट हो जाते हैं. सो इफ यू आर डूइंग, इफ यू आर प्लेइंग ऑन मोबाइल फोन्स, ये भाई बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है. ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल हैं, बहुत बहुत अच्छे कलर्स हैं, एंड बड़ी फैंसी गिफ्ट है फॉर अ गेमर. तो अगर आपके घर में कोई गेमर है उसको भाई ये दे दीजिए आप, छुट्टी है, मतलब आप इतना इंप्रेस कर देंगे सामने वाले को, बोलो और भाई यही तो चाहिए था और उसे पता भी नहीं है चाहिए था. ये ऐसा गिफ्ट है, इट कैन बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर गेमर्स. चेक दिस वन आउट, और काफी बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये. मैं नाम दोहरा देता हूँ, CRKD एटम कंट्रोलर, स्पेस देखिए ATOM कंट्रोलर्स. ट्राई दिस वन आउट, अगेन बजट में अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है. और अगर आपको कोई कोई दोस्त है, कोई खास है जो इंडिया जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है एंड कमिंग बैक, तो उसके हाथों मंगवा लीजिएगा, और भी ज्यादा सस्ता मिलेगा. ओके.

मूविंग ऑन टू अनदर वन. अगला जो जो गैजेट है, दिस वन इज स्पेशली फॉर दोस्त जो वीडियो वीडियो बनाना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनके लिए है. और अगर आप फैंसी गैजेट्स में हैं मेरी तरह, पसंद है आपको वो गैजेट जो बजट में आते हैं, इट इज कॉल्ड ब्राइट डाउन, ब्राइट डाउन E26 बल्ब. बल्ब है जी. अब वो बल्ब क्यों बता रहा है भाई, कंटेंट की कमी हो गई क्या? नहीं, ये अलग किस्म का बल्ब है भाई. इसका नाम है ब्राइट डाउन E26. ये जो बल्ब है ये रिचार्जेबल है, ठीक है. ये जो है आपके साथ, इसके साथ आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है, इसके साथ आपको टाइमर मिलता है, इसके साथ तीन कलर टेम्परेचर्स हैं और प्लस 9 RGB कलर्स हैं. चार का पैक अलग से आता है भाई. और क्या, मैं अगर इसको बेचने वाला होता ना, मैं अभी भाई साहब बाहर ठेला लगा लेता, एक घंटे के अंदर सारे बल्ब बेच देता, मैं इतना बड़ा फैन हूँ इसका. तो इसकी पिच मैंने यही तैयार करी है, आपको बता रहा हूँ, ऐसा बल्ब आपने देखा नहीं होगा. मैं इसका पैक लेने की सोच रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह जब इंडिया जाऊंगा तो मैं तो उसका पैक लेके आ रहा हूँ. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. ब्राइट डाउन E26 रिचार्जेबल लाइट बल्ब, देखिएगा बहुत अच्छा है, लिटरली काम आ सकता है आपके. और अगर घर में आपको ऐसी कोई गैजेट लगाना है जो थोड़ा सा स्मार्ट होम गैजेट लगे, तो दिस वन इज फॉर यू. और ये भी बहुत अच्छे बजट में, सो ट्राई दिस वन आउट. ये भी अमेजोन अवेलेबल है एंड बाकी जगहों पे इजीली मिल जाएगा. इवन इट इज अवेलेबल इन कतर इन सम क्या कहते हैं उसे, गैजेट की जो दुकानें होती है वहां पे. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन. अगला है जी वो प्रोडक्ट जो बड़ा काम का है, जो मैंने अभी तक नहीं लिया है. लोग बोलते कैसे जिंदा हो तुम बिना पावर बैंक के. चलिए मैं तो इतना बाहर निकलता नहीं हूँ, पर आप निकलते होंगे. हो सकता है कि आपकी जॉब मार्केटिंग की हो, सेल्स की हो, एंड यू नीड पावर बैंक, यू नीड टू चार्ज योर फोन एवरी नाउ एंड देन, और आपके पास पावर बैंक होगा. मगर मेरी तरफ से भी ये पावर बैंक के बारे में सुनिए. इसका नाम है एंकर मैग गो पावर बैंक, ANKER. इसकी खास बात, सबसे पहली खास बात, 10,000 mAh बैटरी है, ठीक है. ये पोर्टेबल चार्जर के साथ आता है, इसके ऊपर डिस्प्ले भी है जो डिस्प्ले करता है कितनी बैटरी बची, कितनी बैटरी कंज्यूम हो रही है, एंड इसके साथ ये फोल्डेबल भी है, और इसके साथ ये USB-C केबल भी आती है. एक मसला है इसके साथ, ये सिर्फ और सिर्फ आईफोन्स के लिए है. सो ये बस मद्देनजर रखिएगा, बाकी बहुत बढ़िया चीज है. इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल, एक्सट्रीमली हैंडी एंड एक्सट्रीमली लाइट टू यूज. एंकर मैग गो पावर बैंक ट्राई कीजिएगा. ये गैजेट कतर में अवेलेबल है, आई हैव सीन इट समवेयर. बाकी अमेजोन पे इफ यू नो समबडी यू कैन ब्रिंग इट फ्रॉम समवेयर, तो ये आप मंगा लीजिएगा. और इसकी खास बात ये कि 10,000 जो एमएएच बैटरी, वो जल्दी चार्ज भी जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लेती एंड ज्यादा भारी भरकम नहीं है. ऐसा नहीं लगता कि जेब में आपने ईट रख रखी है, वो वाली फीलिंग भी नहीं आएगी. सो ये थे गैजेट्स दिस वीक. नाउ मूविंग ऑन खबरों की तरफ जो बड़ी कमाल की है. Okay, so, खबर नंबर वन जो आ रही है वो गूगल की तरफ से आ रही है. गूगल ने भी फैसला किया है कि वो कुछ नया करने वाले. मैं कब से सुन रहा हूँ ये, लेकिन गूगल ने किया है. गूगल का अगर आपने इनफ्रेम यूज किया है तो आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. गूगल ने रिसेंटली रफली $75 million का इन्वेस्टमेंट किया है, पार्टनरशिप करी है एक बहुत बड़े स्टूडियो के साथ जिसका नाम है A24. अगर आप हॉरर थ्रिलर देखते हैं तो A24 बहुत बड़ा स्टूडियो है. और उन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप करी है एक डीप माइंड रिसर्च के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, ताकि मिलकर स्टूडियो A24 और गूगल एक डील पे आए, एक मुकाम पे पहुंचे जहां पे AI मूवीज बनाई जा सके. तो इससे होगा ये कि डील जो है दोनों के बीच में मूवीज की रहेगी. लेकिन डील का मतलब ये नहीं है कि गूगल को A24 के कॉन्टेंट लाइब्रेरी या डेटा का हिस्सा मिलेगा, नहीं, वो नहीं मिलेगा. मगर A24 can literally help Google to build an infrastructure या एक किस्म का ecosystem जहां से AI movies बन सकें. That's a huge news actually. अगली खबर है Apple की. Apple की तरफ से एक और बात सामने आई है. मुझे तो भाई डर लगता है जब भी Apple का product आता है, साफ सीधी बात बोलूं. इन्होंने प्लान किया है कि ये स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च करें बहुत जल्दी. एप्पल इस पे काम कर रहा था काफी टाइम से और वो डायरेक्ट कंपटीशन चाहते हैं मेटा रेबैन से, जो कि मुझे लगता है दे आर द बेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ. अगर आप लिटरली सोच रहे हैं कोई ग्लासेस लेने के, स्मार्ट ग्लासेस, तो मेटा रेबैन का कोई मुकाबला है ही नहीं. हालांकि गूगल और सैमसंग ग्लासेस भी आ चुके हैं, पर अभी रिलीज डेट नहीं आई है. ऑलरेडी उनके जो पेटेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं. मगर ओरिजिनली आइडिया बनाने का जो प्लान है गूगल का, उन्होंने कह दिया है बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं. आई नो बहुत ज्यादा

0: रेट होने वाला है इसका, भाई ने कोई समझाओ यार। अभी जो है वो क्या वो लॉन्च किया था इन्होंने अपना वीआर हेडसेट, प्लीज एप्पल बिहेव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट खबर है सीधा GTA 6 की फॉर द गेमर्स।
1: गेम एंड एंटरटेनमेंट।
0: GTA 6 वालों ने 25 जून को कह दिया है कि कह दिया था, जब आप सुन रहे होंगे तो 25 जून क्रॉस हो चुकी होगी शायद या नहीं हुई होगी, बट 25 जून प्री ऑर्डर्स आर ऑन। लोग कह रहे हैं 150 GB का है, कोई कह रहा है 300 GB का है, पता लग जाएगा बाद में। लेकिन कवर आर्ट GTA 6 का आ चुका है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। मेन दो प्रोटैगनिस्ट नजर आ रहे हैं, एक फीमेल नजर आ रही हैं जो कि कवर आर्ट में कुछ है, आई थिंक सम मिस्टीरियस कैरेक्टर टू प्ले विद और टू नॉट टू प्ले विद, डोंट नो। एक एलिगेटर नजर आ रहा है एंड सिटी द वाइस सिटी इज देयर। सो आई कैन नॉट वेट एनी फर्दर। प्लीज रॉकस्टार वालों और मत सरकाना, November 19th इज द डेट GTA 6 की लॉन्च होने की। एंड ऑन दैट नोट सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर। एंड इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा टेक इनोवेशन से, दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। मसला
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर

0: या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ है।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi se, desi.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आप सुन रहे हैं FM 107,
5: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और इंटरेस्टिंग और थॉटफुल प्रोवोकिंग एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट पर जो सिंपल लगता है लेकिन जिंदगी को बहुत ज्यादा चेंज कर देता है, यानी कि मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं। सोचिए आप अपना रूम क्लीन कर रहे हैं, ड्रॉअर खोलते हैं तो पुराने रिसिप्ट्स, कभी यूज होने वाली कोई चीज, कपड़ों का स्टैक जो कभी पहना नहीं गया और एसेसरीज जो इस नाम पर रखी गई हो कि भाई इनकी कभी जरूरत पड़ सकती है। और क्लीनिंग के एंड पर आप सोचते हैं कि भाई इतनी सारी चीजें हैं फिर भी कुछ पहनने को मुझे यूजफुल क्यों नहीं मिलता। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। देखिए, मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ वो चीजें रखें जो सच में आपकी यूजफुल हो, मीनिंगफुल हो और नेसेसरी हो। यानी क्लटर कम करें, क्लैरिटी ज्यादा रखें। अब इको स्विच क्या है सिचुएशन में भाई? आइडिया बड़ा सिंपल है, कम चीजें रखें लेकिन बेटर चीजें रखें। मतलब अननेसेसरी आइटम्स को रिड्यूस करना और अपनी लाइफस्टाइल को सिंपलीफाई करना। चलिए भाई अब बात करते हैं कि भाई ये मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल से आखिर फायदा क्या होता है। सबसे पहला फायदा होता है मेंटल क्लैरिटी। कम क्लटर होने से माइंड ज्यादा रिलैक्स और फोकस्ड रहता है। दूसरा फायदा है एनवायरमेंटल बेनिफिट। कम शॉपिंग और कम कंजम्पशन, इन दोनों का मतलब है कम प्रोडक्शन और कम वेस्ट। तीसरा फायदा है टाइम सेविंग। जब चीजें कम होती हैं तो सर्च और मैनेज करना आसान हो जाता है। चौथा फायदा है फाइनेंशियल कंट्रोल। आप अननेसेसरी परचेजेस से बचकर अपना पैसा सेव कर लेते हैं। अच्छा जरा सोचिए, आपके पास वार्डरोब में 30 शर्ट्स, लेकिन आप हमेशा सिर्फ 5 या 6 शर्ट्स आपकी कोई फेवरेट है वो ही पहनते हैं, बाकी कपड़े आपके सिर्फ स्पेस ले रहे हैं लेकिन यूज नहीं हो रहे। अब अगर आप मिनिमलिज्म अडॉप्ट करें तो सिर्फ वही कपड़े जो आपने रखे हुए हैं, जो आप रेगुलरली पहनते हैं, अगर आप वही रखें तो वार्डरोब सिंपल, क्लियर और एफिशिएंट बन जाता है ना। साथियों, दोहा जैसे फास्ट मूविंग सिटी में लोग बिजी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जहां टाइम और स्पेस दोनों वैल्यूएबल हैं भाई, इसीलिए मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल यहां और भी रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि सिंपलिसिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे। अच्छा, अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दूंगी जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। टिप नंबर 1 है डी क्लटर रूटीन बनाएं। हर 1 से 2 महीने बाद अपनी चीजों को रिव्यू करें। टिप नंबर 2, 1 in 1 out का रूल फॉलो करें, यानी कि अगर नई चीज लें तो पुरानी एक चीज रिमूव करें। आगे बढ़े तो भाई इमोशनल अटैचमेंट को इवैल्यूएट करें। हर आइटम को क्वेश्चन करें कि क्या ये अभी भी यूजफुल है या ये सिर्फ मेरी एक हैबिट है। तो भाई नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल शिफ्ट करें। फिजिकल क्लटर कम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स और नोट्स डिजिटल रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चूज करें। कम लेकिन ड्यूरेबल और यूजफुल आइटम्स प्रेफर करें। अच्छा, इसका एक इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव पता है क्या है? मिनिमलिज्म सिर्फ एक डिजाइन ट्रेंड नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल अप्रोच भी है जो स्ट्रेस रिड्यूस करने और डिसीजन फिटीग कम करने में हेल्प करता है। एक और रिलेटेबल बात यह है कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि ज्यादा चीजें हों तो लाइफ बेटर हो जाती है, लेकिन जब चीजें ज्यादा हो जाती है ना तो भाई डिसीजंस लेने में मुश्किल हो जाती है और मेंटल लोड भी बढ़ जाता है। और अब अगर हम थोड़ा बिहेवियर चेंज एंगल से देखें तो जब आप मिनिमलिज्म अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ज्यादा इंटेंशनल बना लेते हैं। आप सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहते बल्कि माइंडफुल चूजर बन जाते हैं। तो भाई आज का इको स्विच बड़ा सिंपल सा है, कम चीजें रखें लेकिन मीनिंगफुल और यूजफुल चीजें रखें। आज का चैलेंज ये है कि आज आप अपने रूम, बैग या वार्डरोब से कम से कम 5 अननेसेसरी आइटम्स आइडेंटिफाई करें और उनको डोनेट, रिसाइकल या रिमूव करने का प्लान बनाएं। और अगर आप ऑलरेडी मिनिमलिज्म फॉलो कर रहे हैं तो किसी और को भी इंस्पायर करें ना भाई। साथियों, जिंदगी का मजा चीजों की क्वांटिटी में नहीं होता बल्कि उनकी क्वालिटी और क्लैरिटी में होता है। जब हम मिनिमलिज्म अडॉप्ट करते हैं तो हम सिर्फ स्पेस नहीं खाली कर रहे होते बल्कि अपनी जिंदगी को भी हल्का और बेहतर बना रहे होते हैं। इसी सोच के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से

0: देसी।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीद टू हैबिट, हदीद टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
3: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107, दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है दूसरों के लिए वही पसंद करना जो अपने लिए पसंद करते हैं। इस्लाम हमें एक सिंपल लेकिन बहुत गहरी तालीम देता है कि जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए भी पसंद करें। ये एक ऐसा उसूल है जो जिंदगी में आ जाए तो रिश्तों में सुकून और ईमानदारी पैदा हो जाती है। अक्सर हम अपने लिए आसानी और अच्छा रवैया चाहते हैं लेकिन दूसरों के साथ वही बर्ताव करना भूल जाते हैं। ये रवैया सोसाइटी में दूरियाँ पैदा करता है। जब हम दूसरों के लिए भी वही सोचते हैं जो हम अपने लिए चाहते हैं तो हम ज़्यादा इंसाफ पसंद बन जाते हैं और लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं। आज का अमल ये है कि हर सिचुएशन में ये सोचें कि अगर मैं दूसरी जगह पे होता तो क्या चाहता और फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाला स्टूडियो की घड़ी में 11:02।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: जी वेलकम अहलन व सहलन खुश आमदीद स्वागतम भाई आज लीजिए साहब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आ गया ट्यूसडे यानी वर्किंग वीक का तीसरा दिन। उम्मीद है आपका हफ्ता अब तक बेहतरीन गुजर रहा होगा और आज भी आप नए हौसले और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे और अभी तक का दिन भी अच्छा रहा होगा। भाई हर नया दिन हमें एक नया मौका देता है कि कुछ बेहतर करना है या बेहतर करना चाहिए और अगर कल किसी वजह से कुछ रह गया है तो आज उसे पूरा करने का दिन है। भाई मुस्कुराइए हंसिए क्योंकि एक मुस्कुराहट सिर्फ आपका दिन ही नहीं किसी और का दिन भी खूबसूरत बना सकती है। तो जनाब आज के इस शानदार सफर में जुड़ जाइए मेरे साथ जहां पर बहुत कुछ होने वाला है और आपका अपना प्रोग्राम सन एंड साउंड शुरू हो चुका है। वेदर अपडेट्स होंगी, दिलचस्प बातचीत होगी, आपकी कॉल्स होंगी, आपके मैसेजेस होंगे, इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स हैं और जाहिर बात है आपका मन पसंदीदा म्यूजिक और फिर एंटरटेनमेंट भी तीन का दम जारी और सारी है। तो जनाब चाहे ऑफिस में हैं या आप कहीं बाहर हैं, किसी बिजनेस मीट पे जा रहे हैं, कहीं और मसरूफ हैं, आज के प्रोग्राम का आगाज हो गया है और ये सफर हमारा आपका पूरे 2 घंटे रहने वाला है यानी 1 बजे तक मैं और आप एक साथ होंगे जहां पर खूब सारी बातचीत होगी, खूब सारी मतलब महफिल जमने वाली है। भाई 2 घंटे कोई मसला ही नहीं है। तो जनाब ट्यूसडे को बनाते हैं और भी ज्यादा एनर्जेटिक, प्रोडक्टिव और यादगार क्योंकि बेहतरीन दिन का आगाज आपका हो चुका है और अब सरवर मिर्जा आपके हुजूर आ चुका है। बिल्कुल साहब कुछ ना कुछ मौजू भी रहेगा आज का हमारा और उसमें बड़ा एक मसला लेकर आया हूं मैं आपके लिए। भाई देखिए जिंदगी का हर दिन हमें कुछ ना कुछ तो सिखा कर ही जाता है और कुछ दिन हंसी और खुशियों से भरपूर होते हैं, कुछ दिन हमें कहना चाहिए गम तो नहीं मगर मजबूत बना देते हैं। वक्त गुजरता रहता है लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमेशा दिल के किसी कोने में महफूज रह जाते हैं जिनको हम याद कहते हैं। भाई है ना ऐसे ही है। तो कभी किसी अपने के साथ गुजारा हुआ खूबसूरत वो टाइम वो पल, कभी किसी कामयाबी का दिन या कभी कोई ऐसा लम्हा जहां दिल चाहता है कि काश काश उस दिन को दोबारा जी सकूं या जी लूं या वहां दोबारा पहुंच सकूं और फैसला बदल सकूं। तो आज का हमारा सवाल भी इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, इतनी तमहीद मैंने इसी मारे बांधी है। क्या वो बचपन का कोई हसीन दिन हो सकता है, ग्रेजुएशन का दिन हो सकता है, शादी का दिन हो सकता है, किसी अपने से मुलाकात का लम्हा या फिर कोई ऐसा दिन जिसे आप वाकई बदलना चाहते हैं। शादी के दिन के ऊपर मुझे लग रहा है बहुत सारी मुस्कान आ चुकी हैं चेहरे पे। तो साहब यही आज का हमारा सवाल है कि आज अगर आप एक दिन अपनी जिंदगी में वापस जाना चाहें या उस दिन को बदलना चाहें तो वो कौन सा होगा। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें 6662107 इज द नंबर।

0: संत है तुझसे मेरे मेहरबान।
1: घंटों इंतजार में फिर जाते हैं तुझसे बात करने के लिए।
0: हाय हाय हाय, घंटों इंतजार में पिस जाते हैं तुझसे बात करने के लिए, सही कहा मैंने? वाह वाह वाह वाह, नसीम भाई क्या ही कहने। और देखिए आप तो झट से कनेक्ट,
1: कल मैं कॉल करने के लिए 12 बजे से 1 बजे तक करता रहा,
0: हाय हाय
1: कोई रिस्पॉन्स इसके ऊपर था ये?
0: अच्छा ये शेयर इसी के ऊपर था। अब पहुंचा मैं वहां तक। अच्छा और दूसरा भी कुछ आ रहा है लग रहा है मुझे है।
1: तो ये है, तुम बधित हो कि मैं तुझ पे दोबारा, तुम बधित हो कि मैं तुझ पे फिर से भरोसा करूं।
0: ओ हो हो हो,
1: तुम बधित
0: हो कि मैं फिर से तुम पे भरोसा कर लूं।
1: मैंने तो देखा है तुझे राहों में कांटे बिछाते
0: हुए। होए होए होए होए, मेरे ध्यान में आया, मैंने तो देखा है तुझे गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए। आसपास ही है दोनों, आसपास ही है। क्या बात है भाई, लसीम भाई की खूबसूरत शायरी। हाँ क्या बात है भाई। तो नसीम भाई आज का मौजू कुछ इस तरह से है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दिन दोबारा जीने का मौका दिया जाए, या कोई फैसला बदलने का मौका दिया जाए, या वापस जाने का मौका दिया जाए, सिचुएशन के ऊपर रखा है आज का मैंने मौजू, तो वो क्या होगा? क्या वो बचपन का कोई हसीन दिन हो सकता है, पढ़ाई लिखाई के हवाले से, मदरसे का, ग्रेजुएशन का कोई दिन हो सकता है, या किसी अपने से मुलाकात का लम्हा हो सकता है, या फिर कोई ऐसा दिन जिसे आप वाकई किसी एक ऐसी वजह से बदलना चाहते हो जो ज़रूरी हो, या फिर आपका शादी का दिन भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, क्या चाहते हैं या क्या करेंगे, कुछ ऐसा है आपके जहन में आ रहा है?
1: मुझे लगता है कि आप पहले जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं।
0: होए होए होए, बहुत सारे दिन बदल रहे भाई को लग रहा है।
1: आज से एक साल पहले इसी महीने की 14 को
0: ओके
1: मेरी बेटी का इंतकाल हो गया था।
0: सॉरी,
1: और वो बीमार थी, उसको डॉक्टर के पास लेंगे ही है, लेकिन बीमारी का पता नहीं। ऐसा होता तो मैं एक साल पहले जाता हूँ, फिर डॉक्टर से
0: आई अंडरस्टैंड नसीम भाई, एंड वेरी सॉरी। और वाकई ये भी एक पहलू है, जाहिर है लोग अपनों को खो देते हैं और वापस लाना चाहते भी हैं, मगर जाहिर है अल्लाह ताला का फैसला ये है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ हिकमत ज़रूर है। और अल्लाह ताला आपको सब्र दे।
1: थोड़ी सी तबीयत होंगी बिगड़ी, फिर कुछ देर के बाद सही हो गई, दिन में मेरा बेटा के पास ले गया, वाला सही है, थोड़ी सी पॉइजन होंगी, दवाई भी दिया, और घर आने के बाद फिर मैं सोचा डॉक्टर के पास ले जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ तक वीडियो कॉल पर बात नहीं पाई, मैं उसको देख नहीं पाया, घर के आदमी जो सिचुएशन बता रहे थे, मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, पेट में थोड़ा मोड़ा दर्द तो होता है। उसके बाद जो शाम में तकरीबन 8 बजे इंतकाल कर गई, मैं यहाँ था।
0: मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये ऐसा करवट ले लेगा मेरा सवाल, और यही दुआ कि अल्लाह ताला आपको सुकून दे और सब्र जमील अता करे पूरी फैमिली को, और यकीन जानिए कि इंशाल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे पे आपकी मुलाकात होगी और वह हाथ पकड़ के आपका अंदर लेके जाएगी, ये मेरी दुआ है, और यही चीज़ है इत्मीनान करने की, और ज़रूर ऐसा होगा नसीम भाई, ज़रूर ऐसा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, खुश रखे, और वेरी सॉरी एंड इंशाल्लाह ताला। नहीं नहीं, देखिए ये एहसास हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं वाकई, और एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए ताकि दिल हल्का हो, और एक दूसरे को जब चीज़ें पता चलती हैं तो मजीद दुआओं में इजाफा होता है, ये एक वाह ये है ना बात, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, अल्लाह ताला खैरियत से रखे और उसको परवान चढ़ाए और आपकी आंखों की ठंडक बनाए इंशाअल्लाह ताला, यही दुआएं हैं।

0: और खैर ही खैर हो आपके साथ नसीम भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके, और इंशाल्लाह ताला खूब सारी दुआएं नसीम भाई, आप जिस मिजाज के हैं लगता नहीं कि इतना दर्द दिल में समेटे हुए हैं, और यही एक अच्छे शख्स की और कामयाब शख्स की निशानी भी है। थैंक यू सो मच नसीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत में ही जरा भावुक हो गया मामला, और जाहिर बात है देखिए उतार चढ़ाव और ऐसी चीजें हम सब की जिंदगी का हिस्सा हैं। मैं वहीं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी उस दिन को सोचता हूं कि जब मेरी अम्मा मुझे छोड़ के गई, तो सभी के साथ कुछ ना कुछ है। बट ऑन अ लाइटर नोट आज हम ऐसी ही बात कर रहे हैं, और मैं तो उस शख्स को ढूंढ रहा हूं जो शादी के हवाले से भी शायद बातचीत कर सके कि भैया वो दिन बदलना है, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, और जितनी भी लेडीज मुझे सुन रही है इस वक्त, मैं यकीन जानिए मैं आप लोग की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। यहां पर कोई और हमारे साथ जुड़ गया, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
0: हा हा, आइए आइए, क्या आपका इंतजार था।
1: तो आपका क्या ख्याल है सरवर भाई कि मैं उनमें से शामिल हो जाऊं, तो ये बात आपको करें, आपके दिल की बात करें।
0: नहीं मैं देखिए, मैंने तो सिर्फ
1: समझ के बात करते
0: हैं, मैंने तो सिर्फ सवाल रखा है खादिम भाई, अब खुशी का इजहार आप खुद कर रहे हैं।
1: नहीं, आप हमारे जैसे जो आप क्यों हमारे अभी क्या बोलूं आगे
0: भाई, देखिए मैंने तो सवाल रखा है, खुशी का इजहार आप खुद कर रहे हैं, और इसमें कोई मुश्किल नहीं, गायबाना खुश हो लीजिए।
1: कम हमारे जैसे बूढ़े बूढ़े आदमियों का भी ख्याल रखिए, जवानों की बातें ना कर। अच्छा,
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी और आपकी फैमिली भी सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे, काम भी अच्छा होगा,
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: दिन भी अच्छा शुरू हुआ होगा भाई का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: तो खालिद भाई बहुत बड़ा कर,
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज के मौजू के हवाले से क्या कहना है, क्या कोई ऐसा दिन बदलना चाहते हैं, उसको हसीन बनाना चाहते
1: हैं। सरवर भाई मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ कि ये जो FM 107 है
0: जी,
1: माशाल्लाह ये हमारी एक फैमिली चैनल है, और एक फैमिली एक घर है हमारा।
0: बिल्कुल हम हैं, हम वाकई हैं।
1: तो उसमें हम इसमें ये कि हम एक दूसरे के साथ ऐसे बातें करते हैं जैसे घर में बहन भाई सब मिल के बात करते हैं ना, ऐसे ही बैठ के, कसम से ऐसे एक एहसास होता है, और बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू।
1: जितने भी हमारे बहन भाई मेरी बात सुन रहे, तो वो सब हम हमारी खून एक है, ब्लड एक है, ऐसे नहीं कि हम अलग अलग है।
0: क्या बात है,
1: ये मैं दिल की बात कहता हूँ। FM 107 ने हमें जोड़ के रखा हुआ है, और कोई भी फैमिली आज के दौर में एक साथ ऐसे नहीं रह सकती जैसे हम लोग रहते हैं।
0: ये यही ऐसे ताल्लुक ही जिंदगी में खुशियां भी देते हैं, और एक दूसरे का दर्द जो है वो बांट भी लेते हैं। खादिम भाई यही कोशिश भी रहती है कि भाई एक दूसरे से बातचीत भी रहे, कुछ सिखाएं कुछ सीखें।
1: ये जो आप उधर अकेले वो जो स्टूडियो में बैठ के ना, वो बंद डबल डोर जो रूम है ना एक, वो तो मैं देख चुका हूँ।
0: अच्छा।
1: उसमें से सिर्फ वो कहते ना कि सिर्फ आप सांस लेते हो तो वो भी माइक में आती है, और वो सब चीजें, वो आप लोगों की आप लोगों के तासुरात, लोगों के ख्यालात, और लोगों को आपने जोड़ के जो रखा हुआ है, हंसी मजाक भी होती है, सीरियसली भी बात होती है, ये सब चीजें, ये बहुत बड़ी बात है, आप सोच नहीं सकते, हम महसूस भी कर रहे हैं, और माशाल्लाह अप्रिशिएट भी करते हैं।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट कि आप इतने बड़प्पन के जरिए से जो आप हमें बातें बताते भी, सिखाते भी, हमारी तारीफ भी करते हैं, तो जरा खून भी बढ़ जाता खादिम भाई, इसलिए तो देखिए सेहत की हालत ये हो रही है, खून बढ़ बढ़ के।
1: नहीं, आते हैं सवाल पे, वो जो कुछ दिन पहले महवेशान बहन ने भी ये क्वेश्चन किया था।
0: अच्छा, कर चुकी
1: है। जी जी
0: ओके
1: जी जी, वो कर चुकी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी आप लोग एक ऐसे होते हैं ना कि ये बातें हम बार बार भी कहे तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, और ये जो भाई साहब ने बात की, हमें खुद भी इस चीज का अफसोस है, हमारे जो बड़े हैं, हमारी माँ वाले बहन भाई सब जो भी है, वो अगर इस दुनिया से रहलत फरमा गए तो वो हमें याद भी आते हैं, वो एक
0: सही सही सही
1: बहुत दुख होता है, वो सिर्फ वो भाई का नहीं है, वो दुख हमारा भी है, वो तकलीफ हमारा भी है, सब हम, मैंने पहले बताया कि हम लोग एक ही है।
0: सही।
1: अभी रही बात ये कि शादी की बात, तो मैंने मैं पहले भी ये शेयर कर चुका हूँ।
0: अच्छा।
1: मैंने अपनी वाइफ को शादी का तोहफा हज कर दिया था।

0: माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: मैंने अपनी वाइफ से ये कहा था, मैंने अपनी वाइफ से शादी के दिन ये बात एक प्रॉमिस किया था कि मेरे साथ ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ, वादा है आपके साथ कि शादी का तोहफा मैं आपको हज पे दूंगा इंशाल्लाह।
0: क्या कह रहे?
1: 2011 मेरी शादी 2001 में हुई थी, लेकिन नसीब अल्लाह पाक ने चाहा और नसीब में था कि वो गई 2011 में हज पे, और मेरे हिसाब से वो दिन बहुत खूबसूरत दिन था जब वो हज करके वापस आ रही थी और मैं एयरपोर्ट पे उसका इंतजार कर रहा था।
0: वाह वाह वाह।
1: वो अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ।
0: तो इस दिन में आप दोबारा जाना चाहते ही होंगे, जाहिर बात है कि ऐसा लम्हा बार बार आए और ऐसा मौका।
1: हजार बार एक बार नहीं।
0: क्या बात,
1: अल्हम्दुलिल्लाह। खुद 2004 में किया था, बहुत खुशी हुई थी, लेकिन जब वो हज से वापस आ रही थी तो वो इसलिए कि मैंने उनसे ये वादा नहीं किया था, मैंने अपने रब से ये वादा किया था।
0: वाह।
1: और अल्लाह पाक ने वो वादा कबूल फरमाया।
0: क्या
1: ये मुझे, और 18 नवंबर 2011 वो तारीख भी याद है।
0: वाह।
1: दिन भी याद है, सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा।
0: वाह क्या बात।
1: अल्लाह पाक जितने भी सुनने वाले, अल्लाह पाक सबकी बार बार नसीब फरमाए।
0: आमीन आमीन। अल्लाह ताला सबको मौका दे। बिल्कुल सही है, एक बहुत बड़ी और बड़ी खूबसूरत दुआ है। क्या बात।
1: और आपके लिए, आपको तो बताया भी था ना कि एक दिन वो मैं 2023 की बात है आई थिंक, वो तवाफ कर रहा था और ऐसे आवाज ऐसे आई जो से जैसे सरवर भाई मेरे पीछे हैं।
0: अरे यार मैं
1: देखा तो
0: क्या करूं खादिम भाई, मुझ पे ना सोना है ना पैसा वरना तोल देता।
1: नहीं नहीं, आपसे बात शेयर भी की, बहुत
0: जज़ाकअल्लाह।
1: तो सबके लिए करता हूँ और हमेशा ये दुआ मांगता हूँ अल्लाह पाक के।
0: यार हमारी तो यही कमाई है,
1: दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक कबूल।
0: हमारी तो यही कमाई है भाई, और यकीन जानिए कि ये मोहब्बत की इंतहा है और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके एहसान तले दबा हुआ हूँ मैं।
1: नहीं, ऐसी बात नहीं है।
0: यकीन जानिए यार, ये इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती भाई। इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है, इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है।
1: हमारे एक भाई साहब थे, सॉरी कॉल लंबी हो रही है, एक भाई साहब थे वो पाकिस्तान थे, वो यहाँ पे बहुत अरसे से रह रहे थे, बहुत बार ट्राई किया था, वो चांस नहीं बना था, नसीब में नहीं था। तो मैं जा रहा था, तो मैं मुझे बता रहे थे कि प्लीज आप मेरे लिए उधर दुआ करो। मैंने उधर वहां से वीडियो कॉल करके और हरम शरीफ के अंदर से ऐसे मैंने बाहर बरामदे में ऐसे बोले, ये हरम शरीफ और ये आप दुआ मांगो अल्लाह पाक से। उसने दुआ मांगी, ठीक 2 महीने बाद वो खुद यहाँ से, उनका नसीब अल्लाह पाक ने वो चला
0: गया।
1: लेकिन ये एक हकीकत है कि जब आप जिसके लिए भी दुआ मांगते हो अल्लाह पाक वो आपके हक में भी कबूल फरमाता है।
0: बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
1: बहुत शुक्रिया आपका, बहुत
0: शुक्रिया
1: कि हमें जोड़ के रखा हुआ है और हमें ये एक दूसरे से अलग होने नहीं दे रहे।
0: थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखिए।
1: अल्लाह हाफिज
0: भाई जान। क्या बात है भाई, क्या खूबसूरत बातें हो रही हैं, और ऐसा पहलू छेड़ दिया है मैंने फकत के लोग अपने अपनी खुशियां भी एक दूसरे से बांट रहे हैं और बातचीत भी जारी सारी है। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो सलाम अलैकुम।
2: सलाम जनाब।
0: गावा भाई, गावा भाई कैसे हैं? गावा भाई खैरियत से?
2: बढ़िया यार। सरवर भाई आपने कमाई की बात छेड़ी ना अभी। देखिए भाई, किसी के पास मिलियन डॉलर्स में बैंक बैलेंस है, किसी के पास बिटकॉइंस हैं, किसी के पास प्रॉपर्टी है, मगर जो आपकी नगद कमाई है ना वो हम सभी हैं सर।
0: क्या बात है, हाय हाय हाय हाय। कैश कैश से भी ऊपर।
2: कैश से भी ऊपर।
0: नहीं बाकी हकीकत,
2: आप कौन सा नाम देना चाहते
0: यार? मोहब्बत सबसे बड़ी कमाई है भाई, और यही जरूरी के हो तो भी और ना हो तो भी आदमी अच्छे जहन और अच्छी बात अच्छी जबान से ही याद करे, यही कमाई है, वरना तो खसारा ही खसारा है, नुकसान ही नुकसान है भाई। के सामने है तो कुछ और पीछे है तो कुछ और, तो ऐसा ना हो किसी की भी।
2: सर्वर भाई आप जिस सीट पे बैठे हो ना, ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम सर्वर भाई, क्योंकि क्या है बंदे को बहुत नाप तोल के सभी को साथ में लेके, यानी कि बहुत जिम्मेदारी वाली जॉब है सर्वर भाई। हम लोग आपसे, नाजिया जी से, या आपके जो भी प्रेजेंटर हैं उनके साथ अगर जुड़े हैं उसका रीजन है ना सर्वर भाई कोई।
0: क्या बात है यार गावा भाई, बहुत खूबसूरत बात कही आपने।

0: तो गाबा भाई ये भी तो बताओ कि कौन सा दिन है जो वापस जाना चाहते हो और बदलना चाहते हो, एक उस दिन को छोड़ के जो इस वक्त हर मर्द के दिमाग में आ रहा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा।
1: नहीं, मेरे को तो गुदगुदी हो रही है, मगर मैं उससे पहले आपसे पूछना चाहूंगा सर्वर भाई, आज जवाब देना पड़ेगा आपको यार।
0: अच्छा, क्या मेरे लिए क्या है वो दिन?
1: अपनी आप अपनी मैरिज के हवाले से कोई
0: याददाश्त के हवाले से यार, यहाँ दिन बदलना सीधे जवाब दिन बदलने के हवाले से पूछो, देखो सबसे पहले जवाब दूंगा। तो बताइए भाई, शेयर कीजिएगा भाई, क्या क्या ऐसा दिन है कोई याद
1: भाई? देखो मैंने आपसे पूछा है, आप थोड़ा सा तो यार
0: मैंने तो बता दिया, मैं तो वाकई दिन बदलना चाहूंगा भाई, और क्या, मैं तो कई सारे दिन बदलना चाहता हूँ। अब बस ये है कि नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे भी लोग सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। है कुछ यादें ऐसी हैं जो बदलना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद पढ़ाई के हवाले से, वो दिन जब मैंने ट्वेल्थ करी और ग्रेजुएशन में मैं किस तरफ जाऊंगा ये जो मैंने फैसला किया, उसमें मुझे ऐसा लगता है वो, और कहीं ना कहीं बीइंग एन एथलीट मुझे कुछ फैसला करना था जो मैं नहीं कर पाया, तो उस जगह मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि शायद मैं फिर आज कहीं और होता और आपके साथ ना होता, ऐसा भी है। तो ये दो दिन ऐसे हैं, ये दो दिन ऐसे हैं।
1: रिसेंटली जवाब दे दिया, मगर मेरी बात का जवाब नहीं मिला सर्वर भाई।
0: क्या
1: तो इंतजार रहेगा उस चीज का, वो ना ही आपने देना है, मेरे को पता है।
0: नहीं नहीं यार, बाकी तो सारे दिन अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी घर जाना है गाबा भाई, समझा करो।
1: कोई बात नहीं भाई, मैं फोर्स नहीं करूंगा, मैंने तो जस्ट आपको छेड़ा था कि जवाब दे देंगे, कोई बात नहीं, अगली बार भी सही।
0: मैंने जवाब दे दिया वाकई, और सही सही जवाब दिया आपको, बिल्कुल अब आपकी बारी।
1: आपने लास्ट टाइम भी नहीं दिया, लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था।
0: बताइए क्या है ऐसा दिन या आपके लिए क्या है?
1: बिल्कुल, आपने शादी का छेड़ दिया ना सिलसिला, तो मैं उसी दिन को रिपीट करना चाहूंगा।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, ऐसा भी दूल्हा हमारे साथ है।
1: बिल्कुल सर्वर भाई, यकीन मानिए जिस दिन मेरी शादी थी ना,
0: अच्छा
1: उसी सेम दिन रात को कपिल शर्मा की भी मैरिज थी।
0: ओ हो, दोनों ने एक साथ मिलके प्लान कर रहा था भैया, क्या बात है, क्या बात है, दोनों पंजाबी मुंडे।
1: बिल्कुल, जिस पंजाबी स्टेट में उसकी मैरिज हुई है ना, जलंधर में, जहाँ पे उसका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था,
0: जी जी जी, वहीं
1: आप, उसकी भी जलंधर में ही हुई है, मेरी भी जलंधर में ही हुई है।
0: ओके ओके ओके
1: जी,
0: क्या बात है यार, तो वो दिन वापस,
1: फर्क इतना है,
0: जीना चाहते है
1: जी। बिल्कुल, बस फर्क इतना है, उसकी शादी में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, और इवन आप यकीन मानिए सर भाई, जिस टोल प्लाजे से होके गुजरना था ना, उस पे एक एक घंटे का ट्रैफिक लगा हुआ था।
0: ओहो, तो आपकी भी बारात लेट हुई होगी।
1: बिल्कुल लेट हुई होगी, तो मेरे को भी फील अच्छा अच्छा आ रहा था ना, जब वहाँ पे गए सर्वर भाई, आप यकीन मानिए पटाखे चल रहे थे, हवाई फायर चल रहे थे, और मेरे इंतजार में घोड़ी तैयार खड़ी थी, उसको पकड़ के चार पांच जने तैयार थे, उसको चने चबा के फिर मेरे को ऊपर बिठाया सर्वर भाई। वो जो फीलिंग थी ना सर्वर भाई, यकीन मानिए यार, राजे महाराजों वाली।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई, होपफुली वाइफ सुन रही हो आपकी, और नहीं है तो जरूर बताइए कि आज ऐसा दिन गुजरा कि मैंने बहुत याद किया उस पहले दिन को।
1: नहीं, मैं कई बार याद करता हूँ सर्वर भाई, कई बार सामिया जी के शो में,
0: अच्छा
1: आप भी थे सामिया जी के शो में 2024 में शायद, उस टाइम भी जिक्र किया था, उस टाइम तो आपसे इतनी नहीं थी जान पहचान।
0: ओके ओके,
1: तो जी मेरे को अगर मौका मिले तो मैं वो दिन जरूर,
0: क्या बात है, क्या बात है, और अल्लाह ताला आपको खुशियां दिखाए, यही है, बार बार आपको खुशियां दिखाए, और इसी तरह आपका जोड़ा जो है सही सलामत रहे भाई, यही दुआ है।
1: मगर मेरा जवाब अभी वही है, मैं जरूर लूंगा सर्वर भाई नेक्स्ट टाइम आपसे।
0: ऑल राइट गाबा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए और बड़ी प्यारी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच गाबा भाई।
1: सर्वर भाई एक बात आपकी बहुत अच्छी लगती है, एक आप जब स्टार्टिंग में आके बोलते हो ना, हाँ जी वेलकम खुशामदीद, एक आप सर्वर भाई रिपीट करते हो बात, आज भी आपने की आंखों की ठंडक यार सर्वर भाई, वो बात सुन के यार इतना अच्छा लगता है ना, इतना सुकून मिलता है दिल को, क्योंकि अगर आपकी आंखें ठंडी होगी ना सर्वर भाई,
0: सही,
1: आपका दिमाग ठंडा रहता है, पूरी बॉडी ठंडी रहती है जी। बिल्कुल, इट वर्क्स,
0: और इंशाल्लाह ऐसा ही हो सबकी औलादों के साथ, ऐसा हो भाई, और वो हमारे लिए आंखों की ठंडक ही बने। थैंक यू सो मच गाबा भाई फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, अपना ख्याल रखिए।

0: ये दुआओं में याद रखिए, थैंक यू सो मच।
1: बस सरवर भाई मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, ये जो आपकी कमाई है ना, ये मैं अभी क्या बोलूं भी, कितने डिजिट्स में कितने और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाए।
0: कैलकुलेटर में नहीं आ रही, कैलकुलेटर में
1: नहीं आ रही, आएगी भी नहीं और ना ही आए, और ना ही आए, मेरी यही दुआ।
0: क्या बात है भाई, शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेलकम भाई। कावा भाई हमारे साथ, प्यारी प्यारी दुआएं देके, प्यारी प्यारी बातें करके, और यहाँ पर सन एंड साउंड पे सिलसिला जारी है भाई। आइए एक और कॉल लेते हैं ब्रेक पे जाने से पहले, और जैसा कि आज का सवाल या मौजू कह लीजिए चल रहा है कि भाई अगर आपको अपनी जिंदगी के सफर में एक दिन दोबारा मिल जाए, वापस जाना चाहें, कोई चीज चेंज करना चाहें, वो क्या होंगी? क्या ग्रेजुएशन का दिन, पढ़ाई लिखाई की बात, शादी का दिन, किसी अपने से मुलाकात का लम्हा, या फिर कोई ऐसा और दिन जो आप चेंज करना चाहते हो, आप अपने मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पे, और कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पे। यहाँ पर कोई हमारे साथ जुड़ गया है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर?
0: हमजा, आई एम गुड हमजा, आप कैसे हैं, खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कैसा गुजरा अभी तक का दिन, और कैसा गुजर रहा है हमजा भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई कितना दिमाग लगाते हैं यार।
0: अरे क्या हो गया
2: ऐसे टॉपिक इनके लाते हैं, और टॉपिक को भी आप ऐसा वो कहते हैं ना कि उसमें हेडिंग देते हैं, जिसको वो बोलते हैं ना कि बोल्ड हेडिंग है, यहाँ भाई इसके थ्रू पूरा आप जो उसकी तशरीह करेंगे या करवाएंगे।
0: यार दिलों का हाल जानना
2: कैसे कर लेते हैं भाई,
0: अच्छी बात है, और एक दूसरे से शेयर करते हैं तो जो गमगीन दिल है उनका गम हल्का हो जाता है, और जो खुशहाल दिल है ना उनकी खुशी बढ़ जाती है यार। तो यही हमने तो
2: हाल जानना और तार छेड़ने में बड़ा फर्क आ जाता है।
0: तो क्या तार छिड़ गए आज,
2: दूसरा वाला काम कर रहे हैं
0: आज, क्या तार छिड़ गए?
2: नहीं बस इतने तो नहीं, लेकिन अच्छा, ये है कि मैं भी गांव भाई वाली फील्ड में आता हूँ।
0: अच्छा,
2: और मैं भी बहुत मिस करता हूँ कि कुछ अधूरी ख्वाहिशें थी जो मैं अपनी पूरी नहीं कर सका, लेकिन
0: हर किसी के साथ होता है,
2: मिस करता हूँ।
0: हाँ मिस करते हैं वाकई,
2: मिस करता हूँ अपने वेडिंग डेज को।
0: ओके,
2: काश वो पल दोबारा मैं जी सकूं।
0: अच्छा, ओहो, क्या बात है रिकॉर्डिंग कर के आज शायद घर फाइल भेजने वाले हैं जितने बैचलर इस वक्त कतर में है कि भाई देखो अब याद कर रहे हैं।
2: ये बात मेरी वाइफ को भी पता है।
0: अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था,
2: शायद अगर दोबारा मौका मिला
0: वाह
2: तो एक बार अपना जो है वो वलीमा दोबारा से कर लेंगे।
0: वाह वाह वाह वाह, अरे यहीं कर लेते हैं यार, छोड़ो कब करना है बताओ, मैं अरेंज करवाता हूँ सब, कब करना है बताओ, है ना। यही कर लेते हैं,
2: अगर यहाँ किया तो मैं अपने भाई को जरूर बुलाऊंगा।
0: वाह वाह वाह वाह, अल्लाह ताला खुश रखे भाई इसी तरह आप लोगों को, और ये मोहब्बत कायम दायम रखे। आजकल दुनिया में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मामलात और हमें दिख रहे हैं चारों तरफ चीज़ें। तो बहरहाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ
2: कुछ बंदे से मिलने के लिए बड़ी ख्वाहिश है।
0: अच्छा,
2: काश अल्लाह पाक शायद ऐसा वक्त लिया है कि वापस जाना हो जाए और उस बंदे से मुलाकात हो जाए।
0: ओके,
2: हमारे एक जो है पाकिस्तान के बड़े मशहूर मारूफ रहे हैं तारिक अजीज साहब, ठीक है।
0: ओके,
2: और वो टेलीविजन शो करते रहे हैं।
0: yes,
2: और
0: फर्स्ट
2: ऑफ ऑल जो जब पाकिस्तान की सेपरेशन हुई थी रोडियो पर, उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि आज 1947 है और रेडियो लाहौर है, और जरा आज पाकिस्तान का पहला दिन है। तो
0: उनसे मुलाकात करना चाहता हूं।
2: मैं कहता हूँ लेजेंड है यार वो, और उनका आगाज मुझे आज तक याद है, मैंने बचपन से सुना हुआ है, ठीक है। उनका एक शो आता था थर्सडे टू थर्सडे के, वो बज़्मे तारिक अजीज के नाम से।
0: ओके,
2: और उसमें उनके उनके स्टार्टिंग पता क्या होती थी? इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, दिलों के भेद वो जानता है, देखती आंखों संतकारों को तारिक अजीज का सलाम से।
0: वाह वाह, क्या ये होता है फैन, और जिसको वाकई देखिए वो चीज याद है, और जाहिर है जब ये पुरानी बात हो गई होगी जब आप छोटे भी होंगे तो। चलिए साहब, और
2: सुना है मैट्रिक में उनका इंतकाल हो गया था जब मैं मैट्रिक में था, और आई रियली मिस हर, बट मैं कहता हूँ कि सलूट है उनको, उन्होंने जैसे लाइफस्टाइल जी है जो है, तो अगर कभी मौका मिले जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक दिन जीने का मिले,
0: तो
2: मैं बाकी सारी चीजों से ज्यादा उनको प्रेफर

0: करूंगा कि उनसे मिलूं और उनके पास बैठूं और उनसे कुछ ना कुछ सीखूं।
1: वाह बहुत खूब भाई, बहुत खूब, क्या कहने। और वाकई अगर इनको हम उस्ताद के दर्जे में भी रखें आप कि मसले को मद्देनजर रखते हुए, तो वाकई कुछ उस्ताद ऐसे जिंदगी में हो गए हैं, होते हैं, मेरे भी हैं कि जो अब नहीं रहे बट उनसे दिल चाहता है कि उनकी बातें सुने और सीखें समझें। एनी हाउ हमजा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और टाइम निकालने के लिए। भाई खुश रहिए, आराम से रहिए, दिन अच्छा गुजारिए, पानी पीते रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है भाई। ओके हमजा भाई, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। तो ये हमजा भाई हमारे साथ और अब इतनी सारी बातचीत के साथ बिल्कुल आप लोगों के मैसेजेस हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी शेयर करूंगा। मीन वाइल ये बता दूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने एहसासात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं भाई। और नंबर है 666-2107 मैसेज करने के लिए, और वहीं कॉल करके बात करना चाहते हैं तो नंबर रहेगा 443-443-77। फिलहाल एंजॉय कीजिए सोनू निगम और सुनिधि की आवाज में पहली बार। अरे वाह, सन एंड साउंड पे सरो मिर्जा आपके साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। स्ट्रे डॉग्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने कुछ खास प्रोटोकॉल्स रखे हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। जैसे अगर अग्रेसिव स्ट्रे डॉग से आपका सामना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मशवरा देती है कि काम रहें, डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट से बचें और पुलिस K9 सेक्शन को 2346555 पर कॉल करें। इसके अलावा डेंजरस एनिमल्स के लिए है लॉ नंबर 10 ऑफ 2019, जिसके मुताबिक डेंजरस डॉग्स जैसे रॉटवीलर्स, डोबरमैन वगैरह या वाइल्ड कैट्स और दूसरे डेंजरस पेट्स की रजिस्ट्री करवाना बेहद जरूरी है। नॉन कंप्लायंस पर 1,00,000 रियाल तक का फाइन हो सकता है। इसके अलावा इंपोर्टिंग पेट्स के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एनिमल रिसोर्सेज से वैलिड इंपोर्ट परमिट लेना जरूरी है। साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और माइक्रोचिप भी चाहिए।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है।

0: Women in Sports RJ Safa के साथ हर मंडे दोपहर एक बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी. स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरत अंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर एक बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं.
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए.
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है.

0: फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। दिल से देसी।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
4: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
5: हाँ जी, वेलकम बैक, हेलन व सहलन, खुश आमदीद। बिल्कुल सन एंड साउंड में इस वक्त सन है तो अपने पूरे रुबाब में, और साउंड आप लोगों की गूंज रही है। और कैसे गूंज रही है भाई, कि हम कर रहे हैं आपसे बातचीत और आपके मैसेजेस रीड करने का आ गया है टाइम। आप भी अगर अपने मैसेजेस मुझे भेजना चाहते हैं तो नंबर है 666-22-107-6662-107 पे आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, और वहीं कॉल करने के लिए नंबर है 4434-3777। और जहां आज आपके साथ हो रही है बात कि भैया किस तरीके से आपकी जिंदगी में कोई ऐसा टाइम जो आप लाना चाहते हो, जिंदगी का हर दिन देखिए भाई हमें कुछ ना कुछ सिखाता भी है, दिखाता भी है, बताता भी है। कुछ दिन हंसी और खुशियों से भरपूर होते हैं और कुछ दिन हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं, सैड करने के लिए नहीं। वक्त गुजरता रहता है लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमेशा दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहते हैं, यादों में रहते हैं, और वो सोच सोच के हम सुकून भी पाते रहते हैं। तो कभी किसी अपने के साथ गुजारा हुआ खूबसूरत वो टाइम, वो पल, वो सेकंड, वो वक्त कभी किसी कहना चाहिए कामयाबी का वो दिन हो सकता है, और कभी कोई ऐसा लम्हा जहां दिल चाहता है कि भाई काश उस दिन को दोबारा जी सकता मैं या वापस जाता तो तुझे बताता। ये भी वाला भी तो है, ये भी तो एक एक कहना चाहिए कि किनारा खुला हुआ है। तो जनाब आज का हमारा यही मौजू है, यही सवाल है कि अगर आपको अपनी जिंदगी का सिर्फ एक दिन दोबारा जीने का मौका दिया जाए और वापस जाने का मौका दिया जाए, बदलने का वक्त मौका दिया जाए, तो वो कौन सा होगा? क्या वो बचपन का कोई दिन है या कोई हसीन याद है, पढ़ाई लिखाई से मुतालिक है, कॉलेज, स्कूल, लाइफ, ग्रेजुएशन, शादी का कोई मसला है, या किसी अपने से मुलाकात का लम्हा है, या फिर कोई ऐसा दिन जो वाकई आप जीना चाहते हो, तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 4434377 एंड मैसेज भी भेज सकते हैं 666-22-107 पे। यहाँ पर हमारे साथ दो लोग जुड़ गए क्या? हेलो सलाम वालेकुम। नहीं लिया जी, कौन है हमारे साथ? अरे भाई अहलन वसहलन, वेलकम अरे भाई, कैसे हैं? खैरियत से?
6: अल्हम्दुलिल्लाह।
5: कैसा गुजरा अभी तक का दिन अरे भाई?
6: अभी तक बहुत बढ़िया, आपसे बात हो गई और बढ़िया गुजरेगा।
5: आप बीएडे अब तो सेट हो जाएगा। अरे भाई कहाँ है अभी?
6: अभी सिटी सेंटर।
5: ओहो क्या बात है, क्या कह रहा है मौसम और क्या कह रहा है हाल चाल दोहा का?
6: मौसम तो बस आज हवा बहुत तेज चल रही है।
5: अच्छी बात है यार, ये तो माशाल्लाह। ओके बाकी सब सेट है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहते हो आरिफ भाई, जिंदगी का ऐसा कौन सा दिन है जो वापस जीना चाहते हैं?
6: एक दिन तो मैं पढ़ाई के हवाले से बोलूंगा, मैं 10 पास किया कोरोना का टाइम में, हम लोग का मतलब 10 का एग्जाम हुआ था।
5: अच्छा।
6: तो एग्जाम तो नहीं हुआ पर कोरोना का वजह से हम लोग पास हो गए पूरे आदमी। उसके बाद 2-3 साल तो बंद हो गया पूरा। उसके बाद मैं गया एक दिन, मतलब काठमांडू है ना हम लोग का कैपिटल सिटी, पर गया मैंने 11 का एडमिशन किया।
5: अच्छा।
6: इस दिन गया मैं काठमांडू, उस दिन एडमिशन करके फिर उसी दिन घर वापस आ गया, उसके बाद कभी नहीं गया क्लास करने के लिए। तो उस दिन को मैं बदलना चाहूंगा अगर
5: मौका मिले तो। आप बता रहे थे एक और कुछ, दो चीज बता रहे थे और भी कुछ है?
6: एक और चीज, मेरे शादी का दिन। शादी के
5: सही बताओ।
6: मैंने अलग, मतलब हम लोग उधर जाते हैं ना बारात लेके, तो दूल्हे भी तो खाना खाते हैं, तो मैं खाना नहीं खा पाया।
5: अरे आज तक छेड़ते होंगे यार, क्या कोरमा था यार, क्या बिरयानी थी यार भाई, काश तुम भी खाते। अरे भाई को अपना होश नहीं था कि शेरवानी किधर जा रही है और नागरा किधर है और चेहरा किधर है। अरे भाई तो अपने में मगन थे, बिरयानी कोरमा आज याद कर रहे हो दही शादी होने के बाद।
6: वैसे जहाँ निकाह होता है ना वहाँ पे भी खाना खाते हैं बाहर ही।
5: मेरे ख्याल में तो ये हर दूल्हे की ख्वाहिश होगी भाई, ये तो हर दूल्हे की ख्वाहिश होगी, काश मैं अपनी शादी का खाना खा सकता, आज वो दिन मुझे मिल जाए। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है।
6: थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया, खाना बहुत ही
5: यार मजा आ गया यार आरिफ भाई, जबरदस्त।
6: जहाँ सर्वर भाई हो और मैं वहाँ खाने की बात
5: ना हो, अब तो मेरा भी दिल कर रहा है शादी में जाने का आपकी यार, मैं अपना प्रोग्राम बदल देता हूँ, चलो दोनों मिलके चलते हैं।
6: वैसे अगले साल मेरी भाई की शादी है तो फिर आ जाओ।
5: वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाब करे भाई और खैरियत से सारे काम हो इंशाअल्लाह, तो जरूर। और इतनी खूबसूरत जगह है भाई नेपाल तो अपने आप में, और जरूर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भाई यही कह सकते हैं कि ऐसा मौका कुछ लगा खैर के साथ तो जरूर, वाई नॉट, और अल्लाह ताला आपको भी खुशियां दिखाए और भाई की शादी में ही वही सारे काम जो रह गए हैं अपनी शादी में नहीं कर पाए थे वो कर लिएगा भाई, यही कह सकता हुआ।
6: अपने बाबा को भी बोल दिया है जो मेरे शादी में नहीं हुआ भाई के शादी में अपने हिसाब से,
5: अब हम उस हिसाब से सेटअप करेंगे, ये भी अच्छी बात है। और
6: बाबा ने भी खुली छूट दे दिया, वो एक आखिरी है।
5: अच्छा
6: घर में वो आगे बच्चा है।
5: चलिए भाई अल्लाह ताला उनको भी खुशियां दिखाए और आप सबको खुश रखे, पूरे घर परिवार को पूरी फैमिली को अल्लाह ताला खुश रखे और सेहतमंद रखे, यही दुआ है भाई। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच।
6: ओके
5: अल्लाह हाफिज। तो जनाब ये थे आरिफ भाई और शादी का खाना बना आदमी मिस कर रहा, वो भी अपनी शादी का, क्या यार वो रह गया खाने से, अच्छा लाए मजा आया। ओके तो चलिए भाई कॉल मुझे आ रही है, जरूर मैं अटेंड करता हूँ, इतनी इजाजत दें कि हमारे जो मैसेज वाले लोग हैं उनको भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बना लें। मोर फरहत भाई हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से सरवर भाई? नॉस्टैल्जिक बातें होने वाली हैं, हाँ वो हुई शुरू हो गई यार, ये तो बहुत पहले से ही शुरू हो गई। ओके जिस दिन मेरा अम्मा का इंतकाल हुआ उस दिन को बदलना चाहता हूँ, हम सब उसमें शामिल हैं, महफूज रॉबिन हमारे साथ, अल्लाह ताला गरीब रहमत करे भाई, मगफरत फरमाए जो जो गुजर गए। मैं एक दिन अपनी माँ की गोद में, पहले तो सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम, बच्चा बन के जीना चाहूँगा। आफ्ताब आलम पटना यूपी से, क्या बात है आफ्ताब भाई, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत याद और बहुत खूबसूरत ख्वाहिश भी। अस्सलाम वालेकुम सरवर जी। जी मुझे मेरे मदरसे के फरागत के दिन दोबारा चाहिए, जब मैं 700 बच्चों में अव्वल आया था, ओए होए होए होए, दर्जा हाफिज में 1996 में फारिग हुआ था मैं। क्या बात है, क्या बात है भाई, हाफिज साहब माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे आज और आगे भी हमेशा, और इंशाअल्लाह ताला आपसे लोग खूब सीखें, खूब समझें, और अल्लाह ताला आपको इसका सवाब भी दे। बहुत खूबसूरत बात भाई, क्या कहने। हम बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम, ओके दो बार सलाम आ गया, अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। शादी नहीं हुई है और ना ही हो रही है। ये कौन है उम्मीदवार हमारे पास आए हैं, अभी हमने न्योता नहीं निकलवाया। अरबाज भाई यार बताओ यार, इतना हैंडसम मैन, खूबसूरत आदमी अरबाज भाई, इंशाल्लाह वो दिन भी आ जाएगा। यहाँ तो वापस जाने का दिल की बात हो रही है, आप तो आगे वाले दिल की बात कर रहे हैं अरबाज भाई। शुरू आधा, ओके बढ़ते आगे। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गुड मॉर्निंग सरवर भाई, कैसे हैं आप, होप वेल, वेलकम सन एंड साउंड दिल से देसी यूसुफ भाई। और ट्यूसडे मॉर्निंग सबको विश करते हुए खूब सारे गुलदस्ते दिल यहाँ पर मेरे लिए, कहते हैं ऐसा एक दिन तो नहीं, बहुत सारे दिन है, लेकिन इनमें से एक बताना है तो आई वुड से द डे व्हेन माय एंजल डॉटर बॉर्न। क्या बात है माशाल्लाह। और आगे कहते हैं, वो खुशी को दोबारा जीना चाहता हूं, वो खुशी मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, दुआ कीजिए मेरी बेटी के लिए इंशाअल्लाह ताला, जज़ाकअल्लाह। कहते हैं भाई बहुत बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत ख्वाहिश भी, और अल्लाह ताला सभी के बच्चों और बेटियों को खुश रखे और नसीब अच्छे करे, यही हमारी दुआएं हैं। सलाम जी, मुझे मेरी मंगनी वाले दिन वापस जाना है, मेरे घर वाले साथ नहीं लेके गए थे और नए कपड़े से ही रह गए थे, अच्छा नए कपड़े भी रह गए थे शायद ये कहना चाहते हैं, और स्विमिंग पूल पे चला गया था उस दिन, और मैं स्विमिंग पूल पे चला गया था उस दिन। क्या शेर सुनाया, कौन है हमारे साथ, मुबीन भाई, क्या करने गए थे पानी में, ठंडे होने गए थे। ओके तो मंगनी से आगे कहानी नहीं बढ़ी अभी तक, क्या ऐसा हुआ है कुछ, अल्लाह ताला खैर करने वाले हैं। तुम्हारे बाद चश्मा साफ करने का नहीं सोचा, सही पढ़ रहा हूं मैं, एक तो ये नया मोबाइल है हमारे स्टूडियो में, मैं सबको बता दूं, शायद ये सभी को बात पहुंच गई है, और इसमें जो कहना चाहिए लिखावट है, क्या कहते हैं भैया उसको इंग्लिश में, भूल गया है, फॉन्ट जो है वो अलग हो गया है, तो अब हिज्जे ज्यादा करनी पड़ रही है उर्दू और हिंदी की। तो साहब तुम्हारे बाद चश्मा साफ करने का नहीं सोचा, तुम्हारे बाद अच्छा देखने की चाह किसको थी। ओए होए, चश्मा ही है ना। हाँ खादिम भाई, मेरी बात कर रहे हैं खादिम भाई, ये शेर मेरे लिए था क्या, ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, कैसे हैं आप, और रोज का वही मामूल, कॉल नहीं मिल पाती मेरी, कहते हैं ए लो यार अभी ये लो ड्रॉप हो गई भैया। यार ये मैसेज वाले जो हमारे भाई असरात हैं उनसे भी तो बात करना, उनके मैसेज भी तो शेयर करना जरूरी, प्रोग्राम का हिस्सा है मेरे भाई, वो लोग नाराज हो जाते हैं मेरे भाई। अभी आपका कॉल लेगा मैं, देखिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह,
5: अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ,
7: कैसे गुजर रही है।
5: किसकी।
7: अरे जरूर भाई, सुनो तो सही।
5: हाँ, कैसी गुजर रही है,
7: कैसे गुजर रही है सभी पूछते हैं लोग।
5: क्या मतलब,
7: कैसी गुजर रही है सभी पूछते हैं लोग। कैसे गुजारता हो कोई पूछता नहीं।
5: आए हाय हाय हाय हाय मुदस्सिर भाई, जाओ यार जाओ, कॉल काट दो, हो गया आज का बस इतना ही बहुत।
7: कैसे ठीक ठाक करिए,
5: बहुत अच्छे यार, एक बार और सुनाइए, कैसी गुजर रही है सभी पूछते हैं लोग।
7: कैसी गुजर रही है सभी पूछते हैं लोग।
5: हाँ कैसे गुजार रहा हूँ। हाय हाय हाय, जा रहा हूँ भाई, बंद करो, शटर डालो, शटर डालो, हो गया आज का काम हो गया, दुकान बंद करो।
7: ओके ओके, सुनो सुनो, कैसे गुजारता हो कोई पूछता नहीं।
5: हाय हाय यार, दिल की बात कह दी यार, दिल की बात, मेरे तार जो है मेरे चढ़ दिए, मेरे तार छेड़ के ताले लगा दिए।
7: गलती आपकी, आप शू ऐसे करते हो, आप तो कुछ ऐसे रखते हो कि बस।
5: तो क्या कहना है मुदस्सिर भाई, मैसेज आया था आपका। बस,
7: क्या बताओ, अल्लाह का बस हमेशा शुक्र अदा करता हूँ, मतलब खुश है या परेशान है या कैसी भी हो, अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करना चाहिए, ये मेरा सोच है।
5: क्या खूबसूरत बात,
7: जिस सुबह हम ठीक ठाक सलामत होते तो हम रब से शुक्र अदा करते, दुआ करते कि चलो अल्लाह का शुक्र एक दिन और मिल गए,
5: अल्हम्दुलिल्लाह।
7: की बात करते हैं,
5: क्या बात, वाह वाह वाह वाह, खूबसूरत बात, मगर फिर भी
7: बाकी ये दुनिया है, हम हमेशा एक सेकंड, मतलब एक घंटा नहीं, एक मिनट नहीं, हर सेकंड हम अल्लाह के इम्तिहान में है।
5: सही, बिल्कुल सही।
7: तो कहने का मतलब है कि हम अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, हमेशा हर वक्त, हर दिन रात। बाकी आपका जो टॉपिक है उसके हवाले से मैं कहता हूँ कि एक वो दिन है जिस दिन मैंने यूनिवर्सिटी बीच में छोड़ी, जैसी भी हो हालात की वजह से, या

0: Perişaniyen kilitesi. Yani çizgi
1: zahir hai. Koyun koyu vajya zarur hoti hai.
0: आज से कुछ साल पहले मैंने यूनिवर्सिटी बीच में छोड़ी थी तो अगर जिंदगी रही अल्लाह ने मौका दिया तो तालीम का मुझे वो अफसोस है और ये परेशानी है कि काश वो दिन दोबारा अल्लाह मुझे दे दे कि मैं वो तालीम दोबारा से उस जगह से शुरू कर दूं।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। और जब तो नहीं, क्योंकि जाहिर है ये तो सिर्फ बातों की बात है, बट आगे इंशाल्लाह आपको ऐसा मौका मिल जाए, यही दुआ है। और अल्लाह ताला आसानियां करे और आपको मौका भी दे।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस अल्लाह करे, बाकी अल्लाह सबको खुश और सलामत रखे। एक और शहर है बस जाते हुए,
1: इरशाद।
0: मजा अच्छा था, हम थोड़ा आपने शायरी का वो जो है ना वो आपने शुरू कर दिया तो हम लोग।
1: अरे इरशाद, अरे मैं खुद बहुत बड़ा सुनाने वाला शायर हूँ, क्योंकि लिखता नहीं हूँ ना, तो मैं सुनाने वाला शायर।
0: Exactly, मैं खुद शायर नहीं हूँ लेकिन लिखता हूँ, पढ़ता हूँ और सुनता हूँ और शायरी।
1: वो तो प्रोग्राम की नौइयत अलग है, वरना पूरी पूरी गजलें नापता हूँ मैं अपने प्रोग्राम में, जो इस बार नहीं है। मगर फिर भी आप लोग के शेयर। इरशाद
0: जी जी, वो कहते हैं सरो भाई कि मरने से पहले कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता कि कैसे हो।
1: अच्छा,
0: मरने से पहले
1: कोई नहीं पूछता
0: कैसे हो, मरने के बाद हजारों पूछते हैं कि कैसे मरा। आपका टाइम देने का बहुत
1: शुक्रिया।
0: जी, आप
1: सवाल तो कर लें यार, अब कहाँ, अभी 12 बज गया, बात करते
0: तो बज गए, मेरा जाने का टाइम है ना, 12 बजे मैं जाता
1: हूँ। कहाँ जाएंगे वो तस्वीर भाई, चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए। आम का रंग आम तौर पर क्या होता है?
0: आम का रंग पीला होता है।
1: आम तौर पे
0: नीला होता है।
1: नीला भी होता है। अबे कोई हरा कोई क्यों नहीं कहता, कैरिया नहीं देखी कभी किसी ने जिंदगी में, आज तक किसी ने हरा नहीं कहा।
0: सब्जी होता है और पीला भी होता है।
1: अच्छा साहब, किताब पढ़ते हैं या खाते हैं? किताब आप पढ़ते हैं, पक्की बात है
0: जी।
1: जनाब, एक जहाज समंदर में खड़ा है और उसकी सीढ़ियां पानी के 6 फुट नीचे हैं, ठीक है, और 4 फुट ऊपर है। बताइए, अगर समंदर का पानी 2 फुट मजीद बढ़ता है तब कितने फुट सीढ़ियां पानी के अंदर होंगी? दोबारा पूछता हूँ। एक जहाज शिप जो है, क्रूज जो है, समंदर में खड़ा है और उसकी सीढ़ियां पानी के 6 फुट नीचे हैं और 4 फुट ऊपर हैं, ठीक है। बताइए, अगर समंदर का पानी 2 फुट मजीद बढ़ेगा तब कितने फुट सीढ़ियां पानी के अंदर होंगी?
0: समंदर में जहाज कैसे खड़ा होता है ये बताओ।
1: अरे जहाज मीन्स शिप, वही यार, दाव कश्ती, वही जहाज कहते हैं, पानी का जहाज। इसमें कोई फेर नहीं है, वाकई खड़ा है मेरे भाई।
0: अच्छा, मतलब शिप समंदर में खड़ा है।
1: हाँ,
0: तो इसका 6 फुट नीचे है इसका सीढ़ी।
1: हाँ, और 4 फुट ऊपर है।
0: और
1: अगर पानी मजीद 2 फुट बढ़ता है तो जो है पानी के कितने अंदर होंगी, कितने फुट?
0: अच्छा, 6 फुट सीढ़ी नीचे है।
1: हाँ, 4 फुट ऊपर है।
0: और 4 फुट ऊपर है, अगर पानी मजीद 2 फुट ऊपर होती।
1: हाँ,
0: मेरे ख्याल में 2 फुट रहेगा।
1: 2 फुट रहेगा, कैसे, क्यों लग रहा है आपको ऐसा?
0: क्योंकि 6 फुट तो ऑलरेडी पानी के नीचे है, 2 फुट अगर पानी ऊपर हो जाए तो ऊपर 4 है, 2 रह गए।
1: ओके,
0: मेरे हिसाब, बाकी शायद इसका दूसरा कोई जवाब होगा, मैं सोचता हूँ। अगर
1: गलत जवाब,
0: बिल्कुल
1: गलत जवाब, बहुत आसान है एक्चुअली में, और आप समझ जाएंगे। और अगर याद आ जाए तो फिर मुझे व्हाट्सएप करिएगा मुदस्सर भाई, बहुत प्यारी शायरी, बहुत प्यारी बातें आपकी, एज यूजुअल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। तो ठीक है साहब, साथ एक छोटा सा ब्रेक यूं गया और यूं वापस आया।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारे मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: लीजिए साहब, बज गए हम सब 12 बज के सही 7 मिनट। जाने वन जाने वन।

0: Absolute Cinema.
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: आतिफ असलम की आवाज में सुना आपने ये बेहतरीन गाना। दोपहर के इस वक्त में इन औकात में भाई कुछ तो ऐसे गाने चलने ही चाहिए, क्यों क्या कहते हैं?
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड
2: आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
3: वेदर का हाल 107 दिनाल।
0: हां जी, और वो क्या हो रखा है इस वक्त, आइए ये भी जान लेते हैं। भैया सूरज बाबू अपनी पूरी तबिश में हैं, बट मैं आपको बता दूं कि 43 से 44 डिग्री अब टेम्परेचर अभी हुआ है। तो जनाब दोहा का मौसम इस वक्त धूप और हल्की धुंध यानी हेजी कंडीशंस में है, और इसके साथ जो टेम्परेचर है वो इस वक्त 44 डिग्री सेल्सियस है जो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज दिन भर शदीद गर्मी रहेगी जैसे कि मौसम है, बट हवा चलने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आराम है। मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री बताया जा रहा है और मिनिमम जो है वो 34 डिग्री तक रहने के इम्कान है। तो आने वाले चंद दिनों में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी और जो टेम्परेचर है 45 से 46 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। तो साहब साथ ही हेज और एयर क्वालिटी भी जो है ज़रा सा इफ़ेक्ट होने वाली है या होने के इम्कान है। तो इसलिए जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं और सांस लेने में जिनको परेशानी होती है, अस्थमा वगैरह के जो पेशेंट हैं, उनको बेइंतहा ख्याल रखना है। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पानी ज़्यादा पिएं और ख़ुद को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है। धूप में ज़्यादा देर तक रहने से गुरेज करें, ख़ासतौर पर 11 बजे से 4 बजे तक। अगर आपको कोई काम नहीं है तो काम है तो पूरी अपने जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको मद्देनजर रखते हुए काम करिए। और ड्राइविंग कर रहे हैं तो सेफ ड्राइव करें और अपना ख्याल रखें, सीट बेल्ट वगैरह का तो जरूर ही ख्याल रखना है भाई, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो आइए साहब बढ़ते हैं आगे, और यहां पर कोई हमारे साथ कनेक्ट हो गया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब, कैसे हो? ठीक ठाक?
0: बिल्कुल ठीक हूँ। और कौन है हमारे साथ?
4: मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ।
0: हाँ मुदस्सिर भाई, आपको अभी थोड़ी देर पहले याद ही कर रहा था मैं। कैसे हैं? खैरियत से हैं?
4: कौन सा मुदस्सिर को आप याद कर रहे थे?
0: हैं?
4: कौन सा मुदस्सिर को आप याद कर रहे थे?
0: मुदस्सिर भाई जिनसे बात हुई तो मैं समझ रहा था कि हैं आप, एक्चुअली दो मुदस्सिर इससे पहले बात हो गई मुदस्सिर भाई से।
4: एक वो जो मंसूरा वाला है।
0: याद है भाई, क्या बात है, हम नाम को याद करते हुए।
4: वो नहीं हूँ मैं।
0: मुझे पता है भाई। अरे यार मुदस्सिर भाई प्लीज, इतना तो समझे यार। अरे लग गया, देखिए इस वक्त बात कर रहा हूँ आपसे, ये तो हकीकत में हो रहा
4: है।
0: अरे नहीं यार, ऐसा नहीं कहो यार, ऐसा नहीं कहो यार,
4: बाद लग गया, नहीं लग रहा था।
0: अरे चलिए, तो आज का दिन खास था, आपसे मुलाकात करने वाला और बात हुई गई मेरे भाई से। कैसे हैं और कैसा गुजरा अभी तक का दिन मुदस्सिर भाई?
4: दिन तो हमारा अभी हमारा स्टार्ट हो गया
0: अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए वेरी गुड।
4: गर्मी ज्यादा है,
0: गर्मी ज्यादा है, बिल्कुल ख्याल रखिए, पानी वगैरह पीते रहिए। तो क्या कहते हैं, रेडी हैं तीन का दम के लिए? चलिए साहब, अगर रेडी हैं तो बढ़ते हैं आगे। चाय? हाँ कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं?
4: नहीं, मैंने कहा जी।
0: अच्छा, चाय पीते हैं या खाते हैं?
4: पीते।
0: मछली पानी में रहती है या जमीन पर?
4: तीसरे में पास आते
0: हो तुम। तीसरा भी आसान है, तीसरा भी आसान है, तीसरा बहुत आसान है, ऐसी बात नहीं है।
4: अच्छा बोलो।
0: बहुत आसान है
4: जी।
0: तो एक जहाज समंदर में खड़ा है और उसकी सीढ़ियां पानी के 6 फुट नीचे हैं और 4 फुट ऊपर हैं, ठीक है? अभी तक जी? अभी तक ठीक है। तो बताइए अगर समंदर का पानी 2 फुट मजीद बढ़ता है तब कितने फुट सीढ़ियां पानी के अंदर होंगी? जो 6 फुट

0: नीचे बताई गई है। जी
1: फिर बोलो सर।
0: फिर बताऊं, एक पानी का जहाज समंदर में खड़ा हुआ है और उसकी सीढ़ियां जो हैं पानी के 6 फुट नीचे हैं, 4 फुट ऊपर हैं, ठीक है।
1: अच्छा,
0: अब ये बताइए कि अगर पानी मजीद 2 फुट बढ़ता है, ओके, पानी अगर बढ़ता है समंदर का, तो अब सीढ़ियां पानी के कितने अंदर होंगी, कितने फुट अंदर होंगी? आपका टाइम खत्म हो गया मुदस्सिर साहब, है कि गए? अब मुझे पता नहीं, आप ही मुदस्सिर भाई दोबारा कनेक्ट करने की, कॉल डिस्कनेक्ट हुई थी। हाँ हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मुदस्सिर भाई नहीं
0: हूँ। उनकी भी कॉल ऐसे वक्त पे गायब हुई है जब सवाल का जवाब लेना था। हमजा, जवाब क्या लेके आए हैं, क्या सुना था सवाल?
1: मैं मोबाइल हाथ में पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि मौका मिले मैं भाई को कॉल लगा
0: लूं। जवाब ले आए क्या?
1: जवाब तो भाई बात की बात है, लेकिन वो कहते हैं ना हर शो में हमारा जिक्र जरूर हो जाता है, तो खाने का जिक्र हुआ और मुझे याद आ गई आपकी भी और अपनी भी। मुझे शादी के खाने का जिक्र हुआ।
0: अरे भाई, अरे भाई कह रहे हैं शादी का खाना खाऊंगा अपने और वापस जाऊंगा
1: भाई,
0: कह रहे वही नहीं वसूल पाया।
1: इसलिए मैंने अपनी शादी में एक प्लान जरूर किया था और मुझे उसका बहुत फायदा हुआ।
0: अच्छा, वो क्या था, वो भी बता दो सबको।
1: भाई मेरी जरा शादी जो है वो मार्च में हुई थी,
0: ओके,
1: तो और हमारे घर से काफी डिस्टेंस बनता है, यानी कि समझ लें कि
0: मतलब किस काय का, ससुराल का?
1: ससुराल का,
0: हाँ ओके ठीक है।
1: तो जो है मैं कुछ दिन पहले गुजर चला गया था उधर। तो हमने क्या किया कि हमने निकाह पहले किया, 19 को मेरा निकाह हुआ,
0: ओके
1: ठीक है, निकाह वगैरह हो गया, उसके बाद 24 की मेरी बारात थी और मैंने रज के खाया था भाई।
0: क्या कहने, खाना नहीं छोड़ा उस दिन भी अपने आदमी ने।
1: भाई इसमें कॉम्प्रोमाइज़
0: भैया, हमजा जरा आ जाओ भैया, वक्त हो गया रुखसती का, एक मिनट रुकिए भैया, जरा एक गरम नान लेके आओ, जरा सा कोरमा रह गया है, आइस टू निपटा देते
1: भाई। नान नहीं, फिश भाई, भाई फिश थी, फिश। उसको मैंने स्पेशली बोला कि वो बोलता भाई और कुछ चाहिए?
0: अरे यार शादी वादी होती रहेगी भाई, पहले खाना लेगा सही से।
1: फिश का, एक फिश की प्लेट मिल जाए तो बड़ा मजे का काम हो जाएगा।
0: वो भी कह रहा होगा दूल्हा भी, यार बताओगे अगर हो जाए तो काम हो जाएगा। बेचारे, क्या बात है यार हमजा, ये देखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं हमजा के जरिए से ही शेयर करना चाह रहा हूँ। खाना कभी मत छोड़ो भाई, कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, मतलब मैं अपनी वजह से नहीं कह रहा हूँ, बट आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है,
1: बहुत
0: और खाने को इज्जत दीजिए, खाने को इज्जत दीजिए ताकि आप खुश रह सकें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी की वजह से पूरी भाग दौड़ है यार
1: भाई। माजरत, मैं एक्साइटेड इतना हूँ कि मैं वो बता रहा चाह रहा हूँ कि ये सिचुएशन वो होती है कि जितना हम बच्चे जिस तरह बचपन में होते हैं, तो बोलते हैं ना हम अपने मम्मा पापा की शादी में नहीं गए, तो हमें फील हो रहा था कि यार नहीं यार, ये क्यों हो गया, हमें जाना चाहिए था, हमें आप लोग लेके नहीं गए, आप लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। वो वाली कहानी है कि यार अगर हम अपनी शादी पे खाना ले गए ना, सारी जिंदगी अफसोस रहता है यार।
0: नहीं देखिए भाई, खाना जरूर खाएं, खाने को इज्जत दें, और इसलिए नहीं कि सेहत तंदुरुस्ती, दुबला मोटा पतला कोई मसला नहीं है, कोई कैसा भी हो, खाने के लिए ही तो यार भागा दौड़ी। एक शेर याद आ गया, आ है, वो भी सुना देता हूँ अभी लगे हाथों, कि उफ ये सफर तवील और ये छालों का सिलसिला, उफ ये सफर तवील और ये छालों का सिलसिला, और उस पे मिजाज पूछने वालों का सिलसिला, तमाम उम्र फिराता है दर बदर, दो रोटियों का चार निवालों का सिलसिला। आदाब। तो इसलिए खाने के चक्कर में तो भाग दौड़ी चल रही सारी की सारी। खाना जरूर खाओ भैया, शादी में जरूर खा लेना, बहुत शिकायतें आ रही हैं, हमने अपनी शादी में खाना नहीं खाया। अच्छा, इस मामले में माजरत के साथ लेडीज बहुत अच्छी होती हैं भाई, या तो उनको पूछने वाले बहुत होते हैं उस दिन, वो जरूर खाना जो है पूरा चेक कर लेती हैं, शादी किसी की भी हो, मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ कि खाते हैं तो लेडीज मुख्तसर
1: बहुत ही सारी वो इकट्ठी होती
0: है, मगर उनकी खिदमत में लोग इतने, उनके हुजूर इतने, हाँ उनकी खिदमत में इतने लोग लगे हुए होते हैं, ऐसा लगता है कि बस हम तो खाली बैठे हैं, हमारे दोबारा ये टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा।
1: माशाल्लाह हमारे दोस्त माशाल्लाह बोलते हैं यार पहले इधर ले आओ, खैर है तूने तो सारी जिंदगी खाना ही है, भाभी के आपके बने में खाइए, इधर ले आओ।

0: चलिए मौजूद दूसरी तरफ जा रहा है, इस पे भी किसी दिन बात करेंगे। फिलहाल के लिए तीन कदम के लिए रेडी हमजा?
1: जी भाई बिल्कुल।
0: सवाल सुना क्या अभी तक? नहीं सुना, चलो मैं कह देता हूँ, सवाल कर ही देता हूँ, बाकी दो सीधे तीसरे सवाल पे आते हैं। एक जहाज समंदर में खड़ा है और उसकी सीढ़ियां पानी के 6 फुट नीचे हैं और 4 फुट ऊपर हैं। अब बताइए अगर समंदर का पानी 2 फुट मजीद बढ़ता है तब कितने फुट सीढ़ियां पानी के अंदर होंगी?
1: भाई लॉजिकली अगर देखा जाए तो 6 फीट ही अंदर रहेंगी, क्योंकि अगर समंदर का पानी बढ़ता है तो जहाज की भी सतह ऊपर आ जाएगी।
0: हमजा शादी का खाना मैं खिलाऊंगा, सही जवाब है यार, जल्दी मिल गया। अभी तो सताना था हमजा, आखिर में कॉल करा करो अगर सही जवाब मिल जाता है।
1: भाई वो कल वाले भाई की तरह आई डोंट नो नेम बट
0: नहीं, बिल्कुल सही जवाब है भैया। जब पानी बढ़ेगा तो फिर समंदर में जहाज भी तो ऊपर जाएगा, जहाज थोड़ी अंदर जा रहा है यार, जहाज तो वही रहेगा, पानी कितना ही ऊपर हो जाए। बिल्कुल सही जवाब मिल गया, आज का तीन का दम का हीरो जो है
1: वो अदनान वाले सवाल पे मैंने 2-4 दोस्तों को बड़ा फंसाया कल।
0: हैं अच्छा, हाँ क्या बात है यार, मुझे खुशी हुई। चलिए साहब,
1: जवाब वही आ रहे थे जो हम लोग सोच रहे थे। हाँ भाई
0: नहीं, उसको एक्चुअली उसको पूछना भी इसी तरीके से है कि क्या हो रहा, 9वें फ्लोर पे हमला कर क्या रहा है हमजा बेचारा मासूम, हाथ ही नहीं जा रहा उसका बटन तक लिफ्ट में, तो यही घुमाना है। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑलराइट दोस्तों, बुजुर्गों, ख्वातीनों, हजरात, छोटों, बड़ों, सभी यहाँ पर सन एंड साउंड पे तीन का दम जारी और सारी है, और आप भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं 666-22-107 पे, और कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77। एक और यहाँ पर कॉलर हमारे साथ, हेलो सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: सलाम। जी साहब शुएब भाई
2: ना।
0: अच्छा ना ना ना ना, कौन है फिर?
2: मैंने फोन किया था
0: अभी किया था, कट गया था कॉल। नहीं वो तो मदर सर भाई
2: बात की थी, अच्छी से बात हुई थी।
0: हैं
2: आप मेरा नाम लेके हंस भी रहे थे अभी,
0: आरिफ भाई।
2: हाँ
0: अच्छा आपकी ये बात अब मुझे काफी दिन तक हंसाने वाली है, ऐसी बात नहीं है।
2: एक कल की बात और एक आज की बात
0: है, एक कल की बात
2: करंसी वाली,
0: हाँ दोनों ही है, मुझे काफी हंसाने वाली है। चलिए तो आरिफ भाई तीन कदम के लिए रेडी?
2: ओके।
0: इंसान के कितने हाथ होते हैं?
2: इंसान के 2 हाथ होते हैं।
0: और बस रोड पर चलती है या हवा में? बस जो है बस वो रोड पे चलती है हवा में? पक्की बात है
2: तो घर लेके जाते हैं।
0: हाँ पक्की बात है,
2: पक्की बात है।
0: ओके तो अब इसका तो जवाब मिल गया है, ठीक है। चलिए तो पुराने एक सवाल की तरफ आ जाते हैं। चलिए ये बताइए कि एक टेबल पर प्लेट में 4 लड्डू रखे हैं और टेबल के करीब 5 जो लोग हैं वो बैठे हैं, अगर लड्डू सबको बराबर बराबर बांटा जाए तो किसके पास कितने लड्डू आएंगे?
2: सर मैं भी बैठा हूँ।
0: आप भी बैठे हैं? हाँ एक आप हैं, 4 में से मतलब 5 में से। नहीं नहीं इंसाफ करना है, इंसाफ करना है, बराबरी की बात करनी है सबके लिए, तो उसमें क्या करेंगे बताइए। हाँ सवाल फिर सुनिए, एक टेबल पर प्लेट में 4 लड्डू रखे हैं और 5 अफराद जो हैं लोग जो हैं आसपास बैठे हैं, अगर लड्डू सबको बराबर बराबर बांटा जाए तकसीम किया जाए तो किसके पास कितने लड्डू आएंगे?
2: थोड़ा नहीं समझा, एक बार और बता
0: दी। लड्डू लेके आ जाऊं?
2: खाने का मामला है ना तो मैं खाने की तरफ चले जाऊं।
0: सुन सुन के दिल भरा, लड्डू वाह भाई वाह लड्डू,
2: और लड्डू मेरा फेवरेट भी है।
0: ओके एक टेबल पर प्लेट में 4 लड्डू रखे हैं और टेबल के करीब 5 लोग बैठे हैं, अगर लड्डू सबको बराबर बराबर बांटा जाए तो किसके पास कितने लड्डू आएंगे?
2: जवाब
0: ढूंढ रहे हैं क्या इंटरनेट पे? ढूंढ रहे
2: ऑनलाइन ढूंढ के फायदा नहीं है, तो आपका तो उसका कुछ अलग है, तो खुद से जवाब

0: चाहिए।
1: सही
0: सर, इसका जवाब नहीं मालूम मेरे को, थोड़ा दिमाग घूम रहा है।
1: अच्छा चलिए दूसरा दूसरा, एक टेबल पर 5 मक्खियां बैठी हैं, एक को मार दिया, कितनी बची?
0: बची तो 5 ही, वो तो मर के उधर ही है ना।
1: नहीं ये भी सही नहीं है।
0: सही नहीं लग रहा।
1: लग नहीं रहा है ही नहीं।
0: नहीं मतलब आज सही दाव नहीं लग रहा।
1: आज सारे सवाल टेबल पे पूछ लूंगा। अच्छा बताइए, एक टेबल पर 10 मोमबत्तियां जल रही हैं, ठीक है?
0: ओके।
1: 10 मोमबत्तियां हैं, अच्छा हाँ जल रही हैं, 7 बुझ गई, कितनी बची?
0: 7 आधे में बुझ गई या पूरी जल के बुझ गई?
1: 7 बुझ गई बस, आधे में हो पूरे में हो चलिए जैसे आप चाहें, कितनी बची?
0: 7 बुझ गई तो 3 बचे।
1: कैसे?
0: 7 तो जल के बुझ गई।
1: जल के बुझ गई
0: इसलिए मैंने पूछा वो जली है या नहीं जली।
1: जल के बुझ गई, ये क्या बात हो रही, जल के बुझ गई, अगर बुझ गई तो जली नहीं फिर तो, अगर जल के बुझ गई तो फिर तो जली नहीं, फिर कंज्यूम कैसे होगी वो, खत्म कैसे होगी?
0: मतलब वो पूरी तरह से जल के रात हो गई, उसके बाद तो 3 बची ना।
1: ये बात अब हुआ सही जवाब। चलो देखो कहीं ना कहीं पहुंचाई दिया आपको मैंने सही जवाब तक आरिफ भाई, क्योंकि आपने यार इतनी बड़ी परेशानी झेली है, अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसा ना करे, अपनी शादी में सबको खाना खाने के लिए मिले। यही मैं पूरी सहानुभूति आपके साथ पूरा, मैं खाने नहीं देते अगर सुन लिया किसी ने ससुराल से, दूल्हे के अलावा जो कैमरामैन होते हैं सामने वो उनका भी तो मसला है कि ये पूरी जिंदगी के लिए कैद कर ले रहा भाई।
0: कैमरामैन तो अपना है, चलो उसका कोई मसला नहीं है, वो काट के निकाल देंगे।
1: अच्छा ऐसा है।
0: पर जो उधर उन लोगों का माइंड में तो सेट हो जाएगा कि इतना खा के गया था दूल्हा शादी का दिन तालियां जब जाओ तो वो लोग परेशान करेंगे।
1: भाई वाह क्या कहने। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया अरब भाई जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह कल बात होगी आपसे। ओके भाई अल्लाह हाफिज। क्या कहने साहब, ये थे हमारे अरब भाई, टाइम फॉर मैसेजेस। ओ हो कहां से छेड़ूं दास्तां, अभी तो है ओके। ये अपनी मंगनी की बात कर रहे हैं मोबिन भाई, अभी तक इंशाल्लाह खैर हो भाई। वॉइस नोट आया मुझे, कौन भाई हैं, नाम क्या है, मकसूद भाई हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको देखता हूँ। रमेश भाई किधर है यार, पालक पनीर भेज रहे हैं, नहीं बटर पनीर मसाला है ये तो। गुड आफ्टरनून सरोवर भाई, कुछ ना कुछ भेज जरूर देते हैं लंच करने के बाद। ये भाई की कश्ती डूब रही है। वसीम सैयद हमारे साथ, ओके अगर पानी बढ़ेगा तो जहाज भी ऊपर जाएगा, बिल्कुल ये तो अब ओपन हो गया सवाल। अस्सलाम वालेकुम साहब आलम, अच्छा शाहब आलम मेरे साथ, सॉरी। वालेकुम अस्सलाम शाहब आलम भाई, कहते हैं सरोवर भाई छोटे उमर मामू के क्या? ये छोटे उमर मामा के दुपट्टे से 10 रुपए निकालने का टाइम मैं वापस नहीं मांगते। ओके अम्मा के दुपट्टे से जो पैसे निकालने करते थे गालबन, ये वो शाह आलम वो बताना चाह रहे हैं, मैं क्योंकि ज़रा पढ़ नहीं पा रहा, बट रियली यार वो, और वो दुपट्टे की खुशबू यार मेरे ख्याल में तो सभी को याद होगी और कोई नहीं भूलता, और अल्लाह ताला खैर करे भाई, जिनके पास अम्मा हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एहसान कीजिए, मतलब अच्छा करिए उनके साथ। सरोवर भाई जवाब है शेर से 6 फुट ही पानी में होंगे, बिल्कुल आज तो सब ने सही जवाब दे दिया। मुदस्सर बंगश है हमारे साथ, नसीम भाई कहते हैं एक, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, एक लड्डू खाना चाह रहे हैं या एक मक्खी या एक मोमबत्ती, उतने ही रहेगी क्योंकि शिप भी ऊपर जाएगी ना पानी के साथ। हाँ बात तो सही है आपकी अब्दुल मतीन साहब, हमजा ने पहले ही बता दिया। तौफीक भाई अलवकरा से, कहाँ हो तौफीक भाई, हाउ आर यू, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ओके मुदस्सर जहीर है, अगर जहाँ

अपनी जगह पर रहे। तो हाँ सही मुदस्सर भाई, जहीर साहब आपका भी जवाब सही है। खादिम भाई ने क्या कह दिया, इतनी देर में आपके ऑफिस के साथ हूँ, ओ कैसे गुजरती है सभी पूछते हैं लोग, कैसे गुजार रहा हूँ कोई पूछता नहीं। बिल्कुल यार ये तो उन्होंने ही जबरदस्त शेर भेजा था। सरूर भाई आपको सोने के लिए सुनने के लिए डे शिफ्ट एक आवर पहले स्टार्ट किया। यार इरफान भाई किधर हो, इधर आओ जल्दी से, इधर आओ। शेख इरफान अल कासमी साहब गले मिलो यार। मेरा भाई कैसा शेख भाई पे पैसा ही पैसा मौलाना है माशाल्लाह से, खूबसूरत कहेंगे कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ मैं, बट थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कौन है यहाँ पे हंस रहे हैं, कह रहे सलाम सरूर भाई दुआ करो शादी हो जाए। आपको पूरी शादी का किस्सा सुनाऊंगा अगर, अरे मेरा भाई इंशाल्लाह ताला ऑल द बेस्ट कामरान मुगल, क्या बात है इंशाल्लाह ताला भाई खैर के साथ। क्या कहते हैं ब्रेक लेने का टाइम हो गया भैया, बहुत जरूरी है, पानी तो पी लेने दो यार। चल चिल्लाती गर्मी में और ये गाना, पुरानी याद और नए लोगों के लिए नई यादें बना देगा। कुमार सानू जी एंड अलका याग्निक की आवाज में बड़ा ही बेहतरीन खूबसूरत गाना। हाँ में नदीम श्रवण का ही म्यूजिक होगा, क्या कहते हैं फ्रॉम द मूवी गुलाम, अब तो समझता हो यार। आहा आंखों से तूने क्या

क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: कतर ट्रांसपोर्ट एंड लोकल ट्रैफिक अपडेट्स।
2: बिल्कुल भाई, और फिलहाल के लिए बता दूं कि ट्रैफिक का बिल्कुल मसला इस वक्त सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। शहर के अक्सर मेन रोड्स पर ट्रैफिक मॉडरेट है और इंशाल्लाह ताला सब खैर है, और शायद ये इसलिए क्योंकि छुट्टियां अब शुरू हो चुकी हैं। इसके हवाले से मैं बात करना चाहता था, घरों का क्या माहौल है, कितनी आवाज़ें आ रही हैं आजकल और क्या हालत है अम्मा अब्बा के घुमाने फिराने के हिसाब से। सी रिंग रोड, डी रिंग रोड पर सब खैर है इंशाल्लाह ताला, और सलवर रोड पर भी मैं देख रहा हूं तो कोई ऐसी बात नहीं। लसल एक्सप्रेसवे और अल मजद पे भी ऑल स्मूथ इंशाल्लाह। कॉर्निश वेस्ट बे पे भी सब खैर है इंशाल्लाह। वहीं सनैया पे भी जाहिर बात है अभी थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मुझे मूवमेंट दिख रहा है, तो वक्त रहते वो भी सेट हो जाएगा। इस वक्त पीक टाइम है शायद इसलिए। तो साहब ये है ट्रैफिक का हाल अहवाल, और बढ़ते हैं आगे सन एंड साउंड पे। इस वक्त सन तो अपनी जगह पर और आवाज आपकी। पहले मैसेज या कॉल? मैसेज, हाँ कॉल कनेक्टेड है। वैसे एक हमारे साथ गजनफर जट है हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, क्या हाल है? बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। अरे मेरे भाई बहुत अच्छे आप हैं गजनफर भाई। रमेश यादव कहते हैं वेरी

0: नाइस सॉन्ग मजे ले रहे हैं रमेश बाबू। ओहो अस्सलाम वालेकुम, हम हैं आपके साथ एफएम 107। ये कैसे शहजादे हैं जो गायब ही रहते हैं। और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम सरोज भाई, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ मेरी भाई, ये बिल्कुल मैं ही हूँ। और मैं वाकई ऐसा हुआ करता था। कौन है हमारे साथ जो मेरे पुराने पुराने फोटो निकाल के ला रहे हैं? सिद्धार्थ, क्या बात है यार। ओके हेलो, सलाम अलैकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम,
0: बहुत देर वेट कराया आपको जी। कौन है हमारे साथ? नदीम भाई। ओ कैसे नदीम भाई, खैरियत से? नदीम भाई आवाज बहुत दूर से आ रही है, थोड़ा करीब आ जाइए मेरे।
1: मैं एक शेर कहना अपने लिए,
0: एक शेर कहना चाहता हूँ अपने लिए।
1: जी
0: मेरे लिए कहिए यार। चलिए इरशाद, इरशाद
1: आप अपने लिए भी समझ लीजिएगा।
0: अच्छा चलिए ठीक है इरशाद।
1: एक गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम।
0: क्या क्या है?
1: गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम, क्या क्या है?
0: क्या बात है,
1: मैं आ गया हूं।
0: अब कोई इंतजाम नहीं बचा, 3 मिनट रह गए प्रोग्राम के, लेट हो गए। कैसे नदीम भाई, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और दिन अच्छा गुजरा होगा।
1: माजरा चाहूंगा, मैं असल में इधर था हंस, उसमें जो परफ्यूम की एग्जीबिशन लग रही है।
0: ओके अलहज में मॉल में है और एंजॉय कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, गर्मी जोरों शोरों पे है तो जरा अपने आपको हाइड्रेटेड भी रखिएगा। और क्या कहते हैं, जाते जाते 3 कदम हो जाए। चलिए साहब तो हो जाएगा। आपका क्या नाम है भाई?
1: मेरा नाम
0: जी
1: वसीम।
0: गलत जवाब कर दूंगा अभी मैं, यही कैंसिल कर दूंगा गेम को।
1: नहीं नदीम नजाकत,
0: नदीम नजाकत नाम है। और इस वक्त आप कहाँ कॉल कर रहे हैं?
1: मैं इस वक्त 107 दोहा रेडियो।
0: हाँ रेडियो कतर दोहा, बिल्कुल ठीक है। चलिए साहब आ जाते हैं तीसरे सवाल पर। सर है दुम है मगर पाँव नहीं मेरे, पेट है आंख है मगर कान नहीं मेरे। बहुत आसान पूछ लिया मैंने एकदम बच्चों वाला, बता जरूर दीजिएगा। इसलिए तो पूछा है, फिर पूछू क्या? अब इसके जवाब हो जाएंगे वो शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट इंशाल्लाह इसको कल के लिए भी रखेंगे अगर नदीम भाई ने जवाब नहीं दिया। सर है दुम है मगर पाँव नहीं मेरे, पेट है आग है मगर कान नहीं मेरे।
1: सॉरी मैं ये समझ में नहीं आ पा रहा।
0: सॉरी हो गई। चलिए साहब आपका शेयर बड़ा ही प्यारा था और इजाजत चाहता हूँ क्योंकि अब मेरा भी इजाजत लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कल बात होगी। ओके बाय
1: इंशाल्लाह।
0: ऑलराइट देन खादिन हजरात, बच्चों बुजुर्गों दोस्तों, अब वक्त हो गया कि आज के लिए मैं आपसे ले लूं इजाजत। बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए, गुस्से पे काबू पाने की कोशिश मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए। इंशाल्लाह ताला खैर ही खैर होगी। फिलहाल अलीशा चिनाई के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको, बड़ा ही अच्छा गाना है, मुझे भी बड़ा पसंद है, सुन के आपको मजा आएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अब से थोड़ी सी देर में आप सुनेंगे समर स्पोर्ट्स विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अमीन भाई, जो थोड़ी सी देर में यहाँ पर होंगे। ख्याल रखिए, सुनते देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।

जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है, पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, समर स्पोर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और वक्त हो चला है 1:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी पर और आप सभी लोगों का इसलिए दोबारा इस्तकबाल करूं। इस हफ्ते में ये दूसरी मरतबा है और इतवार के बाद मंगल को ये प्रोग्राम पेश किया जाता है। दोस्तों आप लोगों को इन्वॉल्व करना है, आप लोगों के साथ रहना है और आप लोगों को हम पहुंचाएंगे खेलों की दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प वाकयात और अहम अपडेट्स। लेकिन आप लोगों के लिए एक सवाल मेरा है और ये सवाल जो है सुनेगा वर्ल्ड कप से मुतालिक है और ये बताना है आपको कि अर्जेंटीना पहली मरतबा कब फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला टाइटल जीता था। आई रिपीट द क्वेश्चन, अर्जेंटीना वन द वर्ल्ड कप टाइटल विच ईयर, फर्स्ट वर्ल्ड कप टाइटल। अर्जेंटीना ने पहली मरतबा कब फुटबॉल वर्ल्ड कप टाइटल अपना अपने नाम किया था पहली मरतबा, ठीक है। आप लोग ये जो आपके जवाबात हैं वो 666221107 पर करिए और जुड़ सकते हैं इसी नंबर पर और विद योर इनपुट्स एंड ओपिनियन ऑन स्पोर्ट्स। मैं अगले 20 मिनट तक जितने भी चीज़ें हुई हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स की दुनिया में, उसके बारे में आप लोगों से पहुँचाता रहूँगा ये मालूमात और शेयर करता रहूँगा कुछ भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हो। तो शुरू करते हैं द मेजर हाईलाइट्स ऑफ द डे। और मेजर हाईलाइट्स में हम क्या कहें, किससे शुरू करें, ये मैं थोड़ा सा पे कन्फ्यूजन है और थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे धमाकेदार टीमें हैं जो बाहर हो गई हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप से और कई ऐसे टीमें हैं जिनके ऊपर सब की निगाहें थी और वो टीम आप लोग भी जानते हैं किसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, मोरक्को। जी हाँ दोस्तों, मोरक्को ने एक मरतबा फिर कमाल कर दिया है 2022 वर्ल्ड कप के बाद। अब मोरक्कन टीम फॉर द सेकंड सक्सेसिव टाइम राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर चुकी है और ये मैच जो हुआ था दोहा के टाइम से सुबह 4 बजे और जब मैं सुबह उठा और उठने के बाद मैंने रिजल्ट्स पे थोड़ा सा नज़र लगाया तो पता चला कि रिजल्ट्स काफ़ी इम्प्रेसिव रिजल्ट, अगर मोरक्को की जानी बात करूं इट वाज काफ़ी इम्प्रेसिव। एंड मोरक्को ने हराया किसको, द नीदरलैंड्स को, टाई ब्रेकर में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को हरा के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। शाम वाली जो मैच थी, शाम 8 बजे वाली मैच, जो मैंने फुल मैच आई वॉच्ड इट एंड ब्राज़ील के लिए मेरा सपोर्ट था लेकिन जापान भी वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स, जापान एशियन नंबर वन टीम, लेकिन क्या करें जापान कुडंट कंट्रोल द इमोशंस और लीड लेने के बावजूद इस मैच को हारना पड़ा और ब्राज़ील फॉट बैक वेल एंड दो गोल्स करके, इनफैक्ट जो आखिरी गोल हुआ था मार्टिनेली का, वो आखिरी गोल इन द इंजरी टाइम में होने के बाद ब्राज़ील फाइनली दे आर शोइंग देयर प्रॉमिस कि हाँ दे आर हियर टू विन दिस वर्ल्ड कप आफ्टर 2002। आगे की बात हम देखेंगे कि क्या होता है ब्राज़ील का सामना किस टीम के साथ होने जा रहा है, या तो आइवरी कोस्ट या नॉर्वे के साथ होने जा रहा है। Anyway, this Brazil has qualified, ये तो predicted lines पे था ही कि ब्राज़ील अगर वर्ल्ड कप के दूसरे अगले फाइनल के मरहले में अगर ना हो तो मज़ा नहीं आता है। और वहीं अगर जर्मनी की बात करें, जर्मनी भी कल मैच हार गई है एंड जर्मनी की टीम इस वापसी कर रही है एंड पैराग्वे ने जर्मनी को टाई ब्रेकर में हरा के एक तारीख रच दी। एंड पैराग्वे में आज एक नेशनल हॉलीडे का ऐलान कर दिया है, पैराग्वे प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया कि इस कामयाबी के चलते यू आर गेटिंग अ फुल डे ऑफ टुडे, तो नेशनल हॉलीडे इन पैराग्वे बिकॉज द डिफीटेड फोर टाइम चैंपियन जर्मनी। जर्मनी का ना होना मुझे थोड़ा खल, आई बिलीव कि जर्मनी वॉज वन ऑफ द गुड टीम, वन ऑफ द गुड टीम्स इन दिस वर्ल्ड कप, लेकिन वो टाई ब्रेकर कहते हैं ना कि टाई ब्रेकर किसी का नहीं होता है, टाई ब्रेकर बहुत ही कनिंग होते हैं, टाई ब्रेकर जो है बहुत ही निर्दय होते हैं एंड वही हुआ है। एंड लेकिन किंतु परंतु अगर मैं बात करूँ टाई ब्रेकर में, कल बोनो ने दोबारा शो किया कि वाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गोल कीपर्स इन द वर्ल्ड। 2022 में उनका कमाल हमने तो देख ही लिया था, अब अमरीका में भी सेम टू सेम परफॉर्मेंसेज देकर नीदरलैंड्स को रोका और वहीं पैराग्वे और जर्मनी का मैच भी उसी तरह टाई ब्रेकर में ख़त्म हुआ। दोस्तों आज जो मैचेस हैं, मैं आपको बता दूं कि आज मैचेस इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, फ्रांस का मैच होने जा रहा है एंड फ्रांस का सामना जो है, जिसका सामना है वो भी आपको बता देता हूँ, is one of the most difficult team. मैं समझता हूँ कि स्वीडन और फ्रांस ये आमने सामने होंगे. स्वीडन

हालांकि ग्रुप स्टेजेस में स्वीडन को काफी यू नो तरह हारना पड़ा था अगेंस्ट नॉर्वे. सो फ्रांस विल फेस स्वीडन और नॉर्वे का सामना होगा आइवरी कोस्ट से. और जब ये दोनों मैचेस होंगे

यू नो कि फाइनल तक पहुंचने के लिए वो दावेदार थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, नीदरलैंड्स के लिए मैं हमेशा मैं कह सकता हूँ कि एक चोकर हैं, आई मीन एक जिंक्स हैं। जिंक्स मतलब जिंक्स से मुराद है कि वर्ल्ड कप में जब इस नॉकआउट स्टेज में पहुंचते हैं कहीं ना कहीं ये फिसल जाते हैं। देखिए 2026 के जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ है कल, उसमें पेनल्टीज यानी टाई ब्रेकर में हार गई है टीम। 2022 में भी पेनल्टीज में हार गई थी, 2018 में जिन क्वालिफाइड, 14 में भी पेनल्टीज में हार गई टीम, 2010 में फाइनल में जो मैच अगेंस्ट स्पेन के खिलाफ हुआ था उसमें एक्स्ट्रा टाइम में गोल कंसीड करके नीदरलैंड्स टीम वाज आउट। आई मीन उस मैच में दे फिनिश रनर्स अप। नीदरलैंड्स 1974-1978 के फाइनल तक भी पहुंची थी ये टीम, लेकिन हमेशा सेकंड रही है या तो नॉकआउट स्टेज में बाहर हो गए। देयर इज अ जिंक्स विद हॉलैंड डच टीम, सच अ ब्यूटीफुल टीम, लेकिन क्या करें, किस्मत ही नहीं है उनका। और दे हैव नॉट लॉस्ट अ गेम इनसाइड 90 मिनट्स एट अ वर्ल्ड कप सिंस 2006। ये भी एक फैक्ट आपसे मैं शेयर कर चुका हूँ। एंड ये भी बात बता दूं कि जर्मनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि पेनल्टीज में ये लोग हारने वाले टीमों में से तो नहीं थे, लेकिन पता नहीं, मैनुअल नोअर वन ऑफ द ब्रिलियंट गोलकीपर्स जिन्होंने कल रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और जर्मनी जब वर्ल्ड कप जीती थी 2014 में इन ब्राजील, याद होगा उस मैच जर्मनी वर्सेस ब्राजील का, 7-1 गोल से जर्मनी की जीत हुई थी। तो उस साल जर्मनी के बाद, आई मीन उस वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2018 में रशिया में ग्रुप स्टेजेस में भी वो बाहर हो गए थे, 2022 में ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो गए थे, और 2026 में राउंड ऑफ 32 से भी वो बाहर हो गए थे। एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ जर्मन टीम। और वहीं मोरक्को की बात हो रही है, मोरक्को अ ब्रिलियंट टीम राइट नाउ इन द फीफा वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो, 2022 के बाद मोरक्को है शोइंग द काइंड ऑफ क्लास दे आर। एंड मोरक्को के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है कि वाई मोरक्को सडनली इतना पावरफुल क्यों नज़र आ रहे हैं हम सबको। बट दोस्तों, ये एक दिन की बात नहीं है, ओवरऑल प्लानिंग की बात है, ओवरऑल सिस्टम की बात है, और ग्रास रूट प्रोग्राम की बात है, जिसके बारे में हम बहुत कम लोगों को पता है कि मोरक्को क्यों इतना पावरफुल है इन वर्ल्ड फुटबॉल में। क्योंकि ओवरऑल पूरे, अगेन देखा जाए इनके पूरे मुल्क में ना, हर स्कूल प्रोविंस कॉलेजेस में फुटबॉल ही फुटबॉल की तालीम दी जाती है। तो जहाँ पे मान लीजिए कि हमारे कतर में एस्पायर एकेडमी है यहाँ पे, तो वहीं पूरे मोरक्को में उनका एक प्रोग्राम चलता है, उस प्रोग्राम में छोटे बच्चों को तालीम दी जाती है फुटबॉल के लिए। और इसी वजह से हम उनके सक्सेस देख सकते हैं अंडर 17 वर्ल्ड कप में भी, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी, अंडर 22 वर्ल्ड कप में भी, इवन फुटसाल जो कि 5 टीम प्लेयर से जो यू नो फाइवर साइड फुटबॉल हम कहते हैं, साल इंडोर में है, वो ही ये वर्ल्ड चैंपियन है। उसके साथ साथ वीमेंस वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, और नॉट ओनली दैट एफकॉन यानी जो अफ्रीकन कॉन्फेडरेशन कप है उसमें भी चैंपियन है। तो ओवरऑल देखिए, एशिया में, वर्ल्ड में जहां पर भी लोग जाते हैं, ये लोग जीत के आते हैं। और इसके पीछे एक स्टोरी है, कहानी है जो सबको इतना पता है, लेकिन अगर मुझे पढ़ेंगे मोरक्को स्टोरी, मुझे लगता है कि आज के डेट में वर्ल्ड फुटबॉल में मोरक्को स्टोरी इज द स्टोरी जब सबको पढ़नी चाहिए या देखनी भी चाहिए। दोस्तों, यहां पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जाने से पहले एक सवाल जो आप लोगों से पूछा था कि अर्जेंटीना की पहली जीत इन वर्ल्ड कप कब हुई थी, आपको साल बताना है। आप लोगों को सिर्फ साल बताने हैं, और आप ये बताइएगा 666-22-107 पर। मैं मेजबान मोहम्मद अमीन, और आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर, कीप लिसनिंग टू FM 107 देसी।

0: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन ओनली ऑन FM 107 दिल से।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोबारा इस्तकबाल है समर स्पोर्ट्स में और कुछ लिसनर्स के जवाब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मेरा सवाल ये था ब्रेक से जाने से पहले कि अर्जेंटीना को पहली कामयाबी वर्ल्ड कप की तारीख में कब मिली थी अर्जेंटीनियन टीम को, और आपको बताना है साल किस साल में अर्जेंटीनियन टीम वन द फर्स्ट वर्ल्ड कप। और मैं आपको ये नंबर था 666-22-107 यानी FM 107 का व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप व्हाट्सअप करिए, आपका नाम भी बताइए। कुछ रिप्लाईज आ चुके हैं, कुछ रिप्लाईज आंसर्स आ चुके हैं और आप लोग जो है इसमें जुड़ रहे हैं, ये बहुत बहुत एक अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स के साथ आप लोग जुड़ रहे हैं, स्पेशली फुटबॉल वर्ल्ड कप के साथ आप लोग जुड़ रहे हैं। दोस्तों बात हो रही है फुटबॉल वर्ल्ड कप में और फुटबॉल वर्ल्ड कप में हमने सब कुछ हमें देखने को मिल गया है। एंड जो परसों जो मैच हुआ था उस मैच आगाज से राउंड ऑफ 32 का आगाज हुआ था और जिसमें कनाडा की जीत हुई थी। कनेडियन टीम ऑल्सो वन इन द लास्ट मोमेंट ऑफ द मैच और सुपर सब ने गोल करके इस मैच को कनाडा के लिए जिता। कनाडा पहली मरतबा दे आर क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 32 राउंड ऑफ 16 और ये बहुत बड़ी बात है कनेडियन फुटबॉल के लिए। मैं हमेशा समझता हूँ कि कनाडा में आइस हॉकी खेली जाती है और आइस हॉकी और फुटबॉल इज नॉट रियली अ नंबर वन गेम। NBA बास्केटबॉल इस तरह की अगर हम बात करें तो कनाडा अमेरिका इस तरह के मुल्क में फुटबॉल इज डेफिनेटली जो फुटबॉल मतलब सॉकर जो फुटबॉल और सॉकर हम जानते हैं हम लोग खेलते हैं देखते भी हैं इन दोनों ममालिक में इतने ज़्यादा पॉपुलर है नहीं। लेकिन अब ये वर्ल्ड कप के चलते वर्ल्ड कप से थोड़ा बहुत जैसे कि कनाडा पिछले वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लिया 2022 में 1986 के बाद दे क्वालिफाइड इन 2022 और उसके बाद एज अ होस्ट मेज़बान होने के नाते मेज़बान मुल्क होने के नाते दे हैड क्वालिफाइड दे आर प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप। सो 2022 वर्ल्ड कप 2026 वर्ल्ड कप इस दोनों वर्ल्ड कप को देखने के बाद मुझे इतना ही लग रहा है कि आइस हॉकी आप वो छोड़ ही देंगे, आप फुटबॉल पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द कैनेडियन फुटबॉल टीम एंड कनाडा बीट साउथ अफ्रीका इन दैट राउंड ऑफ 32 गेम में और दे हैव रीच द राउंड ऑफ 16। और फ्रांस के बारे में आपसे कह दिया कि फ्रांस का सामना स्वीडन से होगा। फ्रांस ओवरऑल मैं समझता हूँ कि एक टफ टीम है, फ्रांस इज वन ऑफ द टफ कंटेंडर है फॉर द टॉप कंटेंडर है वर्ल्ड कप फाइनल में पहुँचने के लिए। लेकिन ऐसे मैंने कहा कि जर्मनी को भी कल थोड़ा सा बल्कि आज सुबह जो है मायूस होना पड़ा कि पैराग्वे जैसी टीम कोई समझ ही नहीं रहा था कि पैराग्वे ने कैसे हरा दिया और इसके साथ साथ

एक दूसरी टीम जापान ने ब्राजील के अगेंस्ट में लीड लेने के बावजूद मैच हार गई, लेकिन ठीक है जापान को सबने प्रेज किया कि देखिए क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया इन द फर्स्ट हाफ, तो डेफिनेटली देवर अप बाय अ गोल। एंड हाफ टाइम के बाद ये मैच में थोड़ा सा उलट फेर हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस आए टैक्टिक्स में। कार्लोस एंसेलोटी जो उनके कोच हैं ब्राजील के कोच, उन्होंने कुछ नए चेंजेस लाए। हाँ, निमर मैदान पर नहीं उतरा, लेकिन उसके बावजूद ब्राजील शोड दैट ब्राजील इज देयर टू स्टे ओवर हियर। अच्छा, अर्जेंटीना की बात करूं, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी साहब जो हैं फिलहाल अभी वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर में से एक हैं, और अभी जो समझ रहा हूं कि शायद अनशायद अब अर्जेंटीना की जो नेक्स्ट मैच होने जा रहा है उसमें अर्जेंटीना कैन डेफिनेटली ये हमेशा कह रहा हूँ कि अपसेट तो कर ही सकता है। इजिप्ट के अगेंस्ट में ऑस्ट्रेलिया का सामना होने जा रहा है 3 जुलाई को, और अर्जेंटीना का सामना होने जा रहा है काबो वार्दे। एक वीक नहीं कहूँगा, एक न्यू टीम है, इस न्यू कंटेस्टेंट है इस वर्ल्ड कप में काबो वार्दे। पहली मरतबा दे हैव क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 32, देखिए नॉकआउट स्टेज तक पहुँच गई ये टीम काबो वार्दे। और वोजीना इनके जो गोलकीपर है उसको देखिएगा जरूर, सुपर ह्यूमन है वो, जिस तरह के गोल बचाते हैं। और एक ओवरनाइट ही बिकेम लार्जर देन लाइफ पिक्चर, अपने मुल्क में एक हीरो बन गए हैं, वो एजेंट बन गए हैं। तो अर्जेंटीना का सामना काबो वार्दे, कुछ भी हो सकता है। पिछले दो मैचेस के अगर मैं थोड़ा सा रेफरल पॉइंट्स दूं तो एनीथिंग कैन हैपन। अगर मैच गोललेस रहा एक्स्ट्रा टाइम के बाद सीधा टाई ब्रेकर में, और वहीं अगर कोलंबिया की बात करूं, कोलंबिया का सामना घाना से होने जा रहा है, एंड घाना वर्सेस कोलंबिया it will be a different match because African versus Latin American country के दरमियान जो football देखने को काफी अच्छा match हो, I mean that's I believe so. Algeria versus Switzerland 3 July को है, जुमे के रोज में। अल्जीरिया की टीम क्या करती है हमें देखना है। अल्जीरिया एंड मोरक्को, ये दोनों ही अरब खत्ते के दोनों ही टीमें अभी मौजूद हैं इस वर्ल्ड कप में। उम्मीद है कि अल्जीरिया कैन डू समथिंग अगेंस्ट स्विट्जरलैंड। अगर स्विट्जरलैंड के मैच अगेंस्ट कतर को अगर हम देख के ये कहें कि हाँ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अल्जीरिया कैन टर्न द टेबल्स ऑन स्विट्जरलैंड, ये भी मुमकिन है। और इंग्लैंड का सामना कल है DR कॉन्गो से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एंड कॉन्गो जो है 1974 के बाद उस टाइम ज़ेर के नाम से इन लोगों ने कम्पीट किया था, एंड नाउ DR कॉन्गो दे हैव रीच दिस लेवल राउंड ऑफ 32 में। और इंग्लैंड वर्सेस DR कॉन्गो का मैच जो है कल है शाम को 7 बजे, और कल ही मेज़बान टीम मैक्सिको का सामना होने जा रहा है इक्वेडोर से। दोनों नॉर्थ अमेरिकन टीमें हैं, एंड आज सुबह 4 बजे ये हो रहा है कि अमेरिका और कनाडा के टाइम डिफरेंस इतना ज़्यादा है, हमें उनको मतलब थोड़ा सा पकड़ने में मुश्किल हो रहा है कि कब सुबह 4 कब शाम को 8, इस तरह से हम वी आर अनेबल टू कैलकुलेट। नॉर्वे का सामना आज शाम को है कोटे डी आइवोरे, यानी आइवरी कोस्ट के दरमियान ये मैच होने जा रहा है नॉर्वे वर्सेस कोरिडोर। देखना है कि अर्लिंग हालैंड इस मैच में खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, क्योंकि पिछले मैच में अर्लिंग हालैंड को रेस्ट दिया गया था। सो टुडे वी विल फाइंड वेदर अर्लिंग हालैंड इज गोइंग टू प्ले फॉर नॉर्वे और नॉट। तो दीज आर द टोटल आपके सामने जो है नॉकआउट मैचेस का मैंने आपको आप लोगों को बता दिया है। आप अपना पिक एंड चूज करिएगा कौन से मैच किसके साथ। अच्छा, ये बता दूं कि 4 तारीख यानी जो राउंड ऑफ 16 का जो फर्स्ट मैच होने जा रहा है 4 तारीख और शाम 8 बजे, और कनाडा का सामना होने जा रहा है मोरक्को का। अब मोरक्को वर्सेस कनाडा सभी देखेंगे, अरब खत्ते के जितने भी लोग हैं, कतर में बैठे हुए जितने भी हम लोग हैं, डेफिनेटली एंड फॉर डेफिनेटली फॉर श्योर वी विल सपोर्ट मोरक्को बिकॉज अरब मुल्क है। और अरब मुल्क सिर्फ ये नहीं कि एक इट्स जस्ट एन ऑर्डिनरी टीम। मोरक्को वर्ल्ड नंबर 5 टीम है फीफा के रैंकिंग में, बताऊँ तो आपको तो नंबर 5 पर है मोरक्कन टीम। सो दिस इज ओवरऑल आप लोगों के सामने एक पिक्चर आप लोगों को दे दिया मैंने। अच्छा, कल के मैच के बारे में बता दूँ कि मोरक्को का जो मैच हुआ अगेंस्ट हॉलैंड एंड डच यानी द नीदरलैंड्स के साथ, और उसमें सुपीरियर प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला है ईसा दियोप को। ईसा दियोप ने इस अवार्ड को लिया एंड ही सेड दैट इट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर हिम। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट गोल जो हुआ था, जो लास्ट टाई ब्रेकर शॉट था, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप ज़रा नोट करिएगा उस शॉट में जिस खिलाड़ी ने शॉट लेने से पहले कुछ बड़ा रहते हैं, लेकिन वो दुआ मांग रहे थे एंड अल्लाह ताला से वो दुआ मांग रहे थे कि ये शॉट सही निशाने पे पहुंचे। एंड साइबरी उनका नाम है, एंड ही स्कोर द लास्ट गोल ऑफ द पेनल्टी शूट आउट, एंड इसी के चलते मोरक्को को जगह मिली

इन द राउंड ऑफ 16 और ये काफी काफी इंपॉर्टेंट जीत है और मैच के बाद मोरक्कन के प्लेयर्स और स्टाफ जो हैं सुजूद में चले गए अल्लाह ताला को यू नो एक जो होता है ना कि आपने खुश होके आपने अल्लाह ताला के नाम पे अपने ये जीत जो है सौंप दिया कि इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू दैट वी हैव वन एंड ये एक जेस्चर है ये जेस्चर एक स्ट्रेंथ एक डिसाइसिव मोमेंट था जिसमें आप सभी को लगता है कि हाँ वी डिराइव स्ट्रेंथ फ्रॉम द सुपीरियर ऑलमाइटी अल्लाह सो ये कल देखने को मिला मैच के बाद ये होने चाहिए एंड दिस इज़ व्हाट क्रिएट्स अ न्यू जेस्चर ये जो जेस्चर्स हैं ये एक यंग जनरेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है कि जो भी हम कर रहे हैं जो भी हमें मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और ये अल्हम्दुलिल्लाह बोलना कहना बहुत ज़रूरी है और कल इस मैच के बाद जो हमें देखने को मिला कि मोरक्कन टीम नॉट ओनली जस्ट रिलाइंग ऑन टेक्निकल एबिलिटीज़ अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर बट ऑल्सो ऑन अल्लाह ताला के ऊपर सो बेस्ट ऑफ लक टू द मोरक्कन टीम मोरक्कन टीम आगे तक पहुँच गई है एंड वी विश देम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम आवर यू नो कंट्री फ्रॉम कतर और इसके साथ एक बात और भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टॉप गोल स्कोरर्स होते हैं उनको मिलता है द गोल्डन बूट अवार्ड और गोल्डन बूट अवार्ड में अभी तक लियोनेल मेसी का ही नाम है एंड लियोनेल मेसी क्या लियोनेल मेसी को कोई पीछे छोड़ेगा और उनके साथ साथ जो चल रहे हैं उसके बारे में बता दूँ किलियन एम्बाप्पे 4 goals हैं और उस्मान डेम्बेले इनके पास भी 4 goals हैं तो उस्मान डेम्बेले किलियन एम्बाप्पे आर्लिंग हालैंड ये जितने भी यंग जनरेशन स्ट्राइकर्स हैं उनके पास 4 goals हैं और क्या लियोनेल मेसी को ये टपकेंगे यानी ही कैन दे कैन बीट रोनाल्डो आई मीन दे कैन बीट लियोनेल मेसी टू ओवरकम दी यू नो दैट गोल्डन बूट अवार्ड ये देखना है और क्योंकि सबके पास मैचेस हैं एंड दैट इज़ व्हाट अच्छा इस्माइल साइबरी के बारे में मैं बता रहा था इस्माइल साइबरी इस वर्ल्ड कप में तो कमाल कर दिया है पिछले 3 हफ्तों में देखिए 18th को ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तब से लेके अब तक उन्होंने क्या किया मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देता हूँ आपको लगेगा कि वाकई ये इस बंदे में कुछ बात है इन्होंने एफसी बायर्न म्यूनिक को जो जर्मन बुंडेसलीगा का क्लब है उसमें साइन किया जस्ट वर्ल्ड कप से पहले और जब वर्ल्ड कप शुरू होता है तो ब्राज़ील के अगेंस्ट में गोल करता है ऑन डेब्यू है पहले मैच में ही गोल करना बहुत बड़ी बात हो गई थी एंड इसमें उन्होंने गोल किया गोल करके इस मैच को ड्रॉ रखा अगेंस्ट ब्राज़ील इन द ग्रुप गेम में अगले मैच में स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में भी गोल करता है हैती के अगेंस्ट में भी गोल करता है और एक विनिंग पेनल्टी जो कल लिया था इन्होंने अगेंस्ट नीदरलैंड्स तो नाम याद रखेगा इस्माइल साइबरी ही इज द स्टार नाउ ही इज द स्टार फॉर द अरब फुटबॉल राइट नाउ ऑन आवर पिक्चर ऑन आवर स्क्रीन इस्माइल साइबरी और क्या डेडिकेटेड बंदा है दोस्तों क्या डेडिकेटेड बंदा है 3 goals करके इस बंदे ने शो कर दिया है कि अरब फुटबॉल अफ्रीकन फुटबॉल इज ऑन द राइज डेफिनेटली इज ऑन द राइज सो आज के जितने भी जवाब हैं अभी हम उस पर थोड़ा सा लुक फॉरवर्ड करते हैं और हम देखते हैं कि किन्होंने जवाब दिया आज का जवाब आज का सवाल ये था कि अर्जेंटीना को पहली मरतबा वर्ल्ड कप टाइटल कब मिला था तो दोस्तों मोहम्मद तफीक साहब लिखते हैं फ्रॉम वखरा कि अर्जेंटीना को 1978 में अगेंस्ट नीदरलैंड्स के अगेंस्ट में जीत में 3-1 goal से जीत हुई थी अर्जेंटीनियन टीम को और पहली मरतबा अर्जेंटीनियन टीम वन द वर्ल्ड कप 1978 में अर्जेंटीना टीम को पहली मरतबा वर्ल्ड कप टाइटल जीतने का मौका मिला था उसके बाद 1986 और 1986 के बाद 2022 तो टोटल 3 World Cups हैं अर्जेंटीना के पास एक और साहब ने मैसेज दिया है एंड उनका नाम है संता बहादुर तमंग फ्रॉम नेपाल बहुत बहुत शुक्रिया संता साहब आपने जो व्हाट्सअप किया अपने FM 107 के इस प्रोग्राम में जी अर्जेंटीना ने पहली बार 1978 में जीता था वो गेम हुआ था अर्जेंटीना ने पहली बार नीदरलैंड्स के खिलाफ ये मैच जीता था बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत सही जवाब दिया उन्होंने और अभी तक बहुत से लोगों के मैसेजेस आए हैं लेकिन दोज आर नॉट करेक्ट तो कन्फ्यूजन है 86 के साथ कन्फ्यूज कर रहे हैं बहुत से लोग तो दोस्तों बता दूँ कि 1978 में अर्जेंटीना डैनियल पसारेला मुझे याद है ये नाम डैनियल पसारेला ये बहुत ही कमाल के खिलाड़ी थे उस वक्त उस वर्ल्ड कप के एडिशन में उन्होंने टॉप स्कोरर का अवार्ड भी जीता था उस साल उस वर्ल्ड कप में सो अर्जेंटीना वन द फर्स्ट वर्ल्ड कप इन 1978 सो उम्मीद है कि इस बार भी वो लोग उसी रास्ते पर हैं अब देखना ये है कि क्या वो कमाल कर सकते हैं या नहीं वी हैव टू वेट अंटिल द नेक्स्ट मैच दैट इज़ कमिंग अगेंस्ट जैसे मैंने बताया कि वर्डे
आसान सा ओपोनेंट है लेकिन कुछ भी हो सकता है तो दोस्तों हमारे साथ इस प्रोग्राम द समर स्पोर्ट्स में रहने का बहुत बहुत शुक्रिया अगले इतवार हम फिर हाजिर होंगे दुनिया भर और कतर की दिलचस्प स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ खासतौर पर फुटबॉल वर्ल्ड कप की कवरेज के साथ जो इस वक्त कनाडा अमेरिका और मेक्सिको में मुनक्किद हो रहा है तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफिज़ और खेलों की दुनिया से जुड़ा है ये कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक, टाइम
2: चेक, चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 1:30 यानी ये वक्त हो चला है।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देखे।
2: So yes, my Desi audience, good afternoon. Assalamu alaikum. Kaise hain aap? भाई देखो, आई एम वेरी सर्टेन कि आज का दिन आपका बड़ा ही प्यारा चल रहा होगा, बड़ा ही खूबसूरत चल रहा होगा। एंड गर्मी तो पूछो मत, मतलब मैं जस्ट अभी ऑफिस में एंट्री मारी है मैंने बाहर से, यार इट्स सो हॉट यार, मतलब क्या तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। देखो टेम्परेचर जो है वो 45 पार हो चुका है, अलग अलग जगह पे थोड़ा सा वेरिएशन दिखाता है, लेकिन मोटी मोटी बात है कि गर्मी बहुत तेज़ है। और आज एस्केप रूम में आपको और भी डबल ट्रिपल चौबल गर्मी लगने वाली है, बिल्कुल ठंडक का एहसास नहीं होगा जब तक आप एस्केप रूम की सिचुएशन से बाहर नहीं निकल जाते। हाँ जी, तो कल शो से जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक हाउस ऑफ फायर के अंदर हो तो क्या होगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चिंगारियाँ हैं, स्मोक है और साथ में आग की लपटें हैं। ओहो, निकलने का रास्ता बिल्कुल कहीं भी दिखाई नहीं देगा जब तक आप 3 सवालों के सही जवाब नहीं देते।

तो क्या लगता है आज इस गर्मी से आप बच पाओगे? Well, ये तो आगे पता चलेगा जब सिचुएशन बताऊंगी और एक एक करके आपसे सवाल पूछूंगी. बट अभी के लिए मैं कहूंगी कि थोड़ा सा चिल मारिए, अच्छे से जूस वगैरह पिए. अगर आपको कॉफी करक कुछ भी इंजॉय करना, जस्ट डू इट नाउ बिकॉज आगे आप कैद होने वाले हैं हाउस ऑफ फायर में. ठीक है, सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप थोड़ा सा अपने आप को अभी मेंटली प्रिपेयर कर लें. और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं देन 6622107 इज आर नंबर, 6622107. अपने नाम के साथ अपने मैसेजेस भेज दीजिए. और अभी भाई गर्मी बहुत बढ़ गई है तो हमने कहा कुछ कूल सॉन्ग्स आपके लिए प्ले करते हैं ना.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम A4 अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: So yes, my Desi audience, बहुत इस्तकबाल है आप सभी का। गुड आफ्टरनून, मरहबा मरहबा मरहबा। देखिए, ये जो वक्त है ना, अब ये थोड़ा सा सीरियस होने का है, क्योंकि हम एस्केप रूम की सिचुएशन में एंट्री मारने वाले हैं। पहले जैसे ही आपने एस्केप रूम के अंदर कदम रखा, आपके सामने एक भयंकर हीट वेव, उफ, आपको महसूस हुई कि वो एकदम से छू के आपको गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तपती हुई भट्टी का दरवाजा खोल दिया है। चारों तरफ की दीवारें सुर्ख लाल हैं, चमक रही हैं, और जो फ्लोर बोर्ड्स हैं उनमें से भाई चिंगारियां निकल रही हैं। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक फर्नेस है। पीछे का दरवाजा मैग्नेटिकली लॉक हो चुका है और कमरे में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो धीरे धीरे गिर रहा है। अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो आपको लॉजिक ऑफ द फ्लेम, यस, इसको समझना होगा। देखिए, सिचुएशन काफी नाजुक है और कमरा अब एक काले, वो जो कहते हैं ना, धुंधलेपन, स्मोक से भर रहा है। सांस लेना दुश्वार होता जा रहा है। अब एस्केप करने के लिए हमें 3 पहेलियों को सुलझाना पड़ेगा। सो आर यू रेडी? भाई, हमें दम नहीं घुटना है अपना, ठीक है? हम यहाँ पर अपनी जान नहीं दे सकते, हमें अपनी जान बचा के एस्केप करना है। एंड सो एस्केप करने के लिए सबसे पहला क्लू क्या होगा, ये रहा आपके सामने। मैं आग से पहले पहुंचता हूं, मेरे पर नहीं है पर मैं आसमान तक उड़ता हूं। मेरा रंग ब्लैक और ग्रे है और मैं आपकी सांसें चुरा सकता हूं। बताएं मैं क्या हूं? इससे पहले कि आपकी जो सांसें हैं वो रुकने लगे, दम घुटने लगे, आंखों के सामने अंधेरा आ जाए, भाई जल्दी जल्दी जवाब देना है, ठीक है? अब देखो, जिन्हें मुश्किल हो रही है, बताना चाहती हूँ कि इस वक्त आप अभी हाउस ऑफ फायर के अंदर हो। चारों तरफ आग है, चिंगारी है, धुआं है, और जो पहेलियां होंगी वो उनसे ही जुड़ी होंगी, तो थोड़ा सा दिमाग उसी तरफ दौड़ाइएगा। एक बार फिर से क्लू नंबर 1 आपके लिए। मैं आग से पहले पहुंचता हूं, मेरे पर नहीं है पर मैं आसमान तक उड़ता हूं। मेरा रंग ब्लैक और ग्रे है और मैं आपकी सांसें भी चुरा सकता हूं। सो कम ऑन गाइस, गिव मी द राइट आंसर अपने नाम के साथ 666-22107 पर, 666-22107, एंड लेट्स सी कि आप में से कितने लोग सही जवाब देते हैं और पहले क्लू को सॉल्व करके पहला लेवल पार कर पाते हैं। तब तक कुछ शानदार म्यूजिक आपके नाम। बने रहिए FM 107 पर दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दीप।
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और आज के एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। मतलब एक तो हम अपने कतर की गर्मी को सह रहे हैं एंड देन सडनली हमें एक ऐसे घर में कैद कर दिया जाता है जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग है, उसकी लपटें हैं, चिंगारियाँ उड़ रही हैं, धुआं ही धुआं है। ओहो, ये एक फर्नेस है, बेसिकली एक बड़ा सा फर्नेस जिसका दरवाज़ा बंद है और ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिरते जा रहा है। अब हमें यहाँ से निकलने के लिए जितने भी फ्लेम के लॉजिक होते हैं उस पर थोड़ा सा जोर देना होगा और जैसे जैसे हमें सवाल मिलते जाएंगे हमें उसका जवाब देते हुए लेवल्स

को पार करना होगा। तो पहला लेवल पार करने के लिए आपके लिए क्लू था कि मैं आग से पहले पहुंचता हूं, मेरे पर नहीं है पर मैं आसमान तक उड़ता हूं, मेरा जो रंग है वो ब्लैक और ग्रे है और मैं आपकी सांसें चुरा सकता हूं। ओके, तो क्या सही जवाब हो सकता है? हमारे लिसनर्स कह रहे हैं एशेस, कुछ ने कहा है स्मोक, कुछ ने कहा है धुआं। देखिए, जिन्होंने भी बहुत सोचा है और कहा है ना कि भाई देखो ये स्मोक और धुआं हो सकता है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जोरदार तालियां आप सभी के लिए, पहला लेवल पार कर लिया है आप सभी ने, क्या बात है। आइए जरा उनके नाम गिनते हैं जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिए हैं। उनके नाम है रमेश, सैफुर, हिशाम, मोहम्मद यूसुफ खान, फातिमा यूसुफ और कौन कौन है। देखिए, जिन्होंने एशेस बोला है वो जवाब नहीं है, सो प्लीज़ डोंट माइंड, अभी नेक्स्ट क्लू के लिए इंतज़ार कीजिए। मोहम्मद मुशीर आलम, क्या बात है, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ जमशेद है, उन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। और मोहम्मद इशाक, वाह क्या बात है, सब ने सही जवाब दिया है और पहला लेवल पार कर लिया है। जैसे ही आपने क्लू नंबर वन सॉल्व किया तो आपको आगे जाने का रास्ता दिखाई दिया। अब देखिए, अब छोटे मोटे रास्ते हैं अंदर जिसके जरिए आप मेन एग्जिट तक पहुंचेंगे। आप थोड़े से आगे गए लेकिन खतरा टला नहीं, आपको दूर एक दरवाजा दिखाई दे रहा है लेकिन वो पूरा आग की लपटों से लिपटा हुआ है। इट्स सो डिफिकल्ट कि आप वहां तक पहुंचे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्लू नंबर टू सॉल्व करना पड़ेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। तो जरा ध्यान से सुने, मैं आग का सबसे बड़ा दुश्मन हूं, इंसान मुझे है लेकिन आग मुझे मरने के लिए पीती है, मेरा नाम इंग्लिश के डब्लू लेटर से शुरू होता है, बताओ मैं क्या हूँ। देखो, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता है जनाब। 666-22-107 इज़ आर नंबर, 666-22-107, इस पर जल्दी से अपने नाम के साथ सही जवाब दें और ये जो क्लू नंबर टू, इसे सॉल्व करके लेवल दो को पार करें। हमें इस जलते हुए घर से बाहर निकलना है। ओके, सो आई रिपीट अगेन, मैं आग का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, इंसान मुझे जीने के लिए पीते हैं लेकिन आग मुझे मरने के लिए पीती है, मेरा नाम इंग्लिश के डब्लू लेटर से शुरू होता है। जल्दी से अपना जवाब दें 666-22-107 पर। और अभी अपने जो रेडियो का स्पीकर है उसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए क्योंकि अब आपको बहुत ही मजेदार गाने एंजॉय करने को मिलेंगे। सो स्टे

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check. हाँ जी, वेलकम वंस अगेन। एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है और इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 2:00। कम ऑन, 2 मिनट जल्दी हो जाओ, 2:02। यानी ये वो वक्त है जहाँ पर आप ये दुआ करेंगे, एक विश मांगेंगे कि आज के एस्केप रूम की सिचुएशन से बाहर निकल जाए।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
1: तो हाँ जनाब, आज की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हमें गर्माहट दे रही है, पर गर्मी के साथ साथ हमें अब थोड़ा सा झला भी रही है क्योंकि हम एक बहुत बड़े से हाउस ऑफ फायर के अंदर है, या यूँ कहें एक बहुत ही बड़ा फर्नेस है जिसके अंदर बाहर जाने का रास्ता भी है। लेकिन एग्जिट डोर के पास पहुँचने से पहले हमें 3 पहेलियों को सॉल्व करना होगा और तीसरी और आखिरी पहेली वो एग्जिट को अपने आप ओपन करेगी और हम बाहर चले जाएंगे। पहला क्लू जब आपने सॉल्व किया तो थोड़ा सा आपको रास्ता दिखा जाने के लिए, ठीक है, और उसका जवाब था स्मोक यानी धुआं। दूसरा क्लू मैंने आपको दिया, मैं आग का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, इंसान मुझे जीने के लिए पीते हैं लेकिन आग मुझे मरने के लिए पीती है और मेरा नाम इंग्लिश के W लेटर से शुरू होता है। क्या हो सकता है? बहुत ही आसान जवाब है और आसान जवाब है वाटर, और या यू कहें तो पानी। और जिन्होंने भी सही जवाब दिया भाई, पीठ थपथपा लीजिए अपनी, क्या बात है। सारे ही हमारे लिसनर्स ने, जितने हमें मैसेज आए हैं, सब ने सही जवाब दिए हैं, तो आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने सही जवाब दिया, ये जरा उनके नाम गिन लेते हैं। अवी है, रमेश है, सैफुर है, सैफुल है, नसीम है, मोहम्मद यूसुफ खान है, क्या बात है, और कौन कौन जुड़ रहा है, मोहम्मद इमरान भी है, उस्मान भी है, और कौन है, सरताज भी है, वाह क्या बात है। मतलब दिल खुश होते जा रहा है जिस तरह से आपने सही जवाब दिए हैं। जमशेद भी हैं हमारे साथ, खलील भी हमारे साथ, और मुकुल भी हमारे साथ, नायला भी हमारे साथ, वाई एकदम यूनिक नेम, मोहम्मद मुशीर आलम भी हमारे साथ, मुजफ्फर अली ने भी सही जवाब दिया है, मोहम्मद इशाक ने, फातिमा यूसुफ ने, और तबस्सुम जी ने भी सही जवाब दिया है, क्या बात है। मिल अभी भी हमको मैसेजेस आते जा रहे हैं। देखिए, जिन्होंने भी वाटर पानी कहा है, आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है, लेकिन आखिरी पड़ाव, आखिरी लेवल को भी पार करना ज़रूरी है। जैसे ही आपने पानी कहा, वाटर कहा, तो आपके सामने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया, यानी कि आग थोड़ी सी पीछे हो गई। अब एग्जिट डोर सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ तक आप पहुँच भी गए हैं, लेकिन वो दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा है, और खुलेगा तभी जब आप आखिरी पहेली सुलझाएंगे। क्लू नंबर 3 आपके लिए ये रहा, मैं रोशनी की एक नन्ही सी झलक हूं, फिर भी मैं पूरे शहर को जलाकर राख कर सकती हूं। जब पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं तब मेरा जन्म होता है, बताओ मैं क्या हूं। कम ऑन गाइस, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इजी आंसर, और ध्यान से सुनिए, सोचिए और जवाब दीजिए अपने नाम के साथ 6662107 पर, 6662107, क्योंकि अब हमें इस फर्नेस से बाहर निकलना है, हमें इसके अंदर झुलसना, या यूँ कहें झुलसना नहीं है, है कि नहीं। एक बार फिर से क्लू नंबर 3 आपके लिए दोहराया जाएगा, मैं रोशनी की एक नन्ही सी झलक हूँ, फिर भी मैं पूरे शहर को जलाकर राख कर सकती हूँ। जब पत्थरों को आपस में रगड़ा जाता है तब मेरा जन्म होता है, बताओ मैं क्या हूँ। 6662107 इज आवर नंबर, 6662107, इस पर अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए एंड लेट्स सी आप में से कितने लोग हैं आज इस एस्केप रूम की सिचुएशन से बाहर निकल पाते हैं। मुझे आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा. फिलहाल के लिए एक म्यूजिकल ब्रेक की बारी. तो करण उजला, नेहा कक्कर, वाह ग्रेट कॉम्बिनेशन. एंजॉय द सॉन्ग. स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखें।
1: हाँ जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आज की एस्केप रूम की सिचुएशन हमें वाकई में झुलसा रही है क्योंकि हम एक हाउस ऑफ फायर के अंदर कैद हो गए। हाँ जी, ये हाउस एक बहुत बड़ा फर्नेस है। हाँ जी, वैसे तो अक्सर घरों के अंदर होती है ये चीज़, लेकिन ये एक ऐसा इतना बड़ा फर्नेस है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आग की लपटों ने आपको परेशान कर रखा है। एग्जिट डोर तक पहुँचने के लिए ज़रूरी था कि आप दो लेवल्स को क्लियर करें और उसके बाद तीसरा लेवल विल बी योर एग्जिट। तो पहला लेवल आपने सॉल्व किया, क्लू नंबर वन सॉल्व किया, उसका सही जवाब था स्मोक, धुआं। फिर क्लू नंबर टू, लेवल नंबर टू आपने पार किया, जवाब दिया वाटर, पानी। और क्लू नंबर थ्री, इसके भी जवाब आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन जनाब आई वांट अ स्पेसिफिक आंसर। तो क्लू नंबर थ्री मैं फिर से दोहराऊंगी और आपको ध्यान से सुनना है कि ये आंसर इसका क्या हो सकता है। मैं रोशनी की एक नन्ही सी झलक हूँ, इस लाइन पर गौर फरमाइए। मैं रोशनी की एक नन्ही सी झलक हूँ, फिर भी मैं पूरे शहर को जलाकर राख कर सकती हूँ। जब पत्थरों को आपस में रगड़ा जाता है तब मेरा जन्म होता है, बताओ मैं क्या हूँ। हमें बहुत सारे जवाब मिलते जा रहे हैं, ज़्यादातर लोगों ने फायर लिखा है, आग लिखा है। ओके, डू यू थिंक इट्स द राइट आंसर? थिंक अबाउट इट। मैं फिर से आज का क्लू दोहराती हूँ। मैं रोशनी की एक नन्ही सी झलक हूँ, फिर भी मैं पूरे शहर को जलाकर राख कर सकती हूँ। नन्ही सी झलक है ये, ठीक है। जब पत्थरों को आपस में रगड़ा जाता है तब मेरा जन्म होता है। कम ऑन गाइस, आप बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं। तो मैसेज कीजिए 666-22107 पर अपने नाम के साथ 666-22107 एंड लेट्स सी कि आप कितने परफेक्टली आज एग्जिट गेट से बाहर निकल पाते हैं। फिलहाल परफेक्ट सॉन्ग इज विथ फॉर यू, एंजॉय करें। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर. माहिरीन की राय पर लीजिए हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड. हेल्थ गाइड जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात. स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक. इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात.

0: 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दिल से देसी। याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। Don't miss it.
0: आप सुन रहे हैं Escape Room A for Amita के साथ Only on FM 107 दिल से देसी।
2: Welcome once again FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी A for Amita। हमें एस्केप रूम में हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और ये वो टाइम है जब हमें इस जलते हुए घर से बाहर निकलना है। देखिए एग्जिट डोर तक पहुंच गए लेकिन अभी भी हम बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि जब तक हम क्लू नंबर 3 सॉल्व नहीं कर लेते। आपको इसके पहले 2 क्लू दिए थे। क्लू नंबर 1 का सही जवाब था स्मोक यानी धुआं, दूसरे का सही जवाब था वाटर या पानी और तीसरे का अब जवाब हम देखेंगे कि आपने क्या दिया है। तो मैंने आपसे सवाल किया था, ये पहेली के फॉर्म में है कि मैं रोशनी की एक नन्ही सी झलक हूँ फिर भी मैं पूरे शहर को जलाकर राख कर सकती हूँ। जब पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं तो मेरा जन्म होता है, बताओ मैं क्या हूँ। और हमें जवाब मिले हैं आग, फायर, चिंगारी, आग की चिंगारी, स्पार्क। ओके, लेट मी टेल यू द राइट आंसर। जिन्होंने भी लिखा है स्पार्क, चिंगारी, आग की चिंगारी, absolutely right. जोरदार ताली आप सबके लिए। भाई देखिए मैं वहां नहीं हूं लेकिन आप अपनी पीठ जरूर थपथपाएं बिकॉज यू हैव डन अ गुड जॉब। यस, एग्जिट तक पहुंच गए हो जी और एग्जिट तक पहुंचने के बाद तो बस सीधा बाहर ही निकलना है। लेकिन कौन कौन है जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब देने की कोशिश की? सो अभी हैं जिन्होंने सही जवाब देने की कोशिश की, मोहम्मद यूसुफ खान, देन जमशेद, उन्होंने भी सही जवाब दिया, फातिमा यूसुफ ने भी सही जवाब दिया, रमेश ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, उसके बाद हिशाम ने सही जवाब दिया, मुकुल ने सही जवाब दिया। क्या बात है, क्या बात है। और कौन कौन है जिन्होंने सही जवाब दिया? मुजफ्फर अली ने भी सही जवाब दिया है। आप सबसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ नाम ज़रूर लिखा करें, आसानी हो जाती है। तबस्सुम जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। और कौन कौन है जिन्होंने कोशिश की है हमें सही जवाब देने की? रिफत ने भी सही जवाब दिया है। और हमारे कुछ लिसनर्स हैं जिन्होंने नाम ही नहीं लिखे, उनके प्रोफाइल में भी नाम नहीं है। नसीब ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो यस, इसके अलावा जिनके भी नाम हम ले नहीं पाए हैं आपसे माजरत चाहेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपके जवाब बिल्कुल सही हैं। ठीक है, और जब आपने सही जवाब दिया तो एग्जिट डोर खुल गया और आप सीधा बाहर पहुंच गए। आज पूरी तरह से झुलसने से आप बच गए, आपकी जान भी जा सकती थी लेकिन आपने हार नहीं मानी है कि नहीं। चलिए इसी बात पे अब आज के लकी विनर का नाम भी ऐलान कर दिया जाए। तो आज के लकी विनर है जिन्होंने तीनों सवालों के सही जवाब सबसे पहले दिए और उनका नाम है जमशेद। हाँ भाई, मुबारका मुबारका, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। बहुत सही खेले आज आप और एस्केप रूम की सिचुएशन से आज बाहर निकल पाए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आप सभी के लिए भी जिन्होंने हमारे साथ पूरा एक घंटा लग कर एस्केप रूम की सिचुएशन को पार करने की कोशिश की। अब देखते हैं कि कल की सिचुएशन आपको एस्केप करवा पाती है कि नहीं। आज तो आप इस तपिश से परेशान थे लेकिन कल आप समुंदर की गहराइयों में जाने वाले हैं, वो भी सीधा 500 मीटर अंदर। हाँ, क्या होगा कल, बस ये जानने के लिए दोपहर 1:30 बजे सुनना ना भूलें एस्केप रूम अपनी ए फॉर अमिता के साथ। और अभी के लिए क्या करना है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और सोशल मीडिया पे अपनी ए फॉर अमिता को भी ढूंढ सकते हैं, है कि नहीं। तो अब आपकी हमारी मुलाकात होगी वहां, लेकिन अभी के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत क्योंकि वक्त है मेरे जाने का।

जाते जाते कहना तो बनता है कि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। और अभी ये बेहतरीन सा गाना आपके नाम। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और इंटरेस्टिंग और थॉटफुल प्रोवोकिंग एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट पर जो सिंपल लगता है लेकिन जिंदगी को बहुत ज्यादा चेंज कर देता है, यानी कि मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं। सोचिए आप अपना रूम क्लीन कर रहे हैं, ड्रॉअर खोलते हैं तो पुराने रिसिप्ट्स, कभी यूज होने वाली कोई चीज, कपड़ों का स्टैक जो कभी पहना नहीं गया और एसेसरीज जो इस नाम पर रखी गई हो कि भाई इनकी कभी जरूरत पड़ सकती है। और क्लीनिंग के एंड पर आप सोचते हैं कि भाई इतनी सारी चीजें हैं फिर भी कुछ पहनने को मुझे यूजफुल क्यों नहीं मिलता। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। देखिए मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ वो चीजें रखें जो सच में आपकी यूजफुल हो, मीनिंगफुल हो और नेसेसरी हो। यानी क्लटर कम करें, क्लैरिटी ज्यादा रखें। अब इको स्विच क्या है सिचुएशन में भाई? आइडिया बड़ा सिंपल है, कम चीजें रखें लेकिन बेटर चीजें रखें। मतलब अननेसेसरी आइटम्स को रिड्यूस करना और अपनी लाइफस्टाइल को सिंपलीफाई करना। चलिए भाई अब बात करते हैं कि भाई ये मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल से आखिर फायदा क्या होता है। सबसे पहला फायदा होता है मेंटल क्लैरिटी। कम क्लटर होने से माइंड ज्यादा रिलैक्स और फोकस्ड रहता है। दूसरा फायदा है एनवायरमेंटल बेनिफिट। कम शॉपिंग और कम कंजम्पशन, इन दोनों का मतलब है कम प्रोडक्शन और कम वेस्ट। तीसरा फायदा है टाइम सेविंग। जब चीजें कम होती हैं तो सर्च और मैनेज करना आसान हो जाता है। चौथा फायदा है फाइनेंशियल कंट्रोल। आप अननेसेसरी परचेजेस से बचकर अपना पैसा सेव कर लेते हैं। अच्छा जरा सोचिए, आपके पास वार्डरोब में 30 शर्ट हैं, 30 शर्ट्स, लेकिन आप हमेशा सिर्फ 5 या 6 शर्ट्स आपकी कोई फेवरेट हैं वो ही पहनते हैं। बाकी कपड़े आपके सिर्फ स्पेस ले रहे हैं लेकिन यूज नहीं हो रहे। अब अगर आप मिनिमलिज्म अडॉप्ट करें तो सिर्फ वही कपड़े जो आपने रखे हुए हैं, जो आप रेगुलरली पहनते हैं, अगर आप वही रखें तो वार्डरोब सिंपल, क्लियर और एफिशिएंट बन जाता है ना। साथियों दोहा जैसे फास्ट मूविंग सिटी में लोग बिजी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जहां टाइम और स्पेस

0: दोनों वैल्यूएबल हैं भाई, इसीलिए मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल यहाँ और भी रेलिवेंट हो जाता है क्योंकि सिंप्लिसिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे। अच्छा, अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दूंगी जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। टिप नंबर 1 है, डी क्लटर रूटीन बनाएं। हर 1 से 2 महीने बाद अपनी चीजों को रिव्यू करें। टिप नंबर 2, 1 in 1 out का रूल फॉलो करें, यानी कि अगर नई चीज लें तो पुरानी एक चीज रिमूव करें। आगे बढ़े तो भाई इमोशनल अटैचमेंट को इवेल्युएट करें, हर आइटम को क्वेश्चन करें कि क्या ये अभी भी यूजफुल है या ये सिर्फ मेरी एक हैबिट है। तो भाई नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल शिफ्ट करें। फिजिकल क्लटर कम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स और नोट्स डिजिटल रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चूज करें, कम लेकिन ड्यूरेबल और यूजफुल आइटम्स प्रेफर करें। अच्छा, इसका एक इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव पता है क्या है, मिनिमलिज्म सिर्फ एक डिजाइन ट्रेंड नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल अप्रोच भी है जो स्ट्रेस रिड्यूस करने और डिसीजन फिटीग कम करने में हेल्प करता है। एक और रिलेटेबल बात यह है कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि ज्यादा चीजें हों तो लाइफ बेटर हो जाती है, लेकिन जब चीजें ज्यादा हो जाती है ना तो भाई डिसीजन लेने में मुश्किल हो जाती है और मेंटल लोड भी बढ़ जाता है। और अब अगर हम थोड़ा बिहेवियर चेंज एंगल से देखें तो जब आप मिनिमलिज्म अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ज्यादा इंटेंशनल बना लेते हैं। आप सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहते बल्कि माइंडफुल चूजर बन जाते हैं। तो भाई आज का इको स्विच बड़ा सिंपल सा है, कम चीजें रखें लेकिन मीनिंगफुल और यूजफुल चीजें रखें। आज का चैलेंज ये है कि आज आप अपने रूम, बैग या वार्डरोब से कम से कम 5 अननेसेसरी आइटम्स आइडेंटिफाई करें और उनको डोनेट, रिसाइकल या रिमूव करने का प्लान बनाएं। और अगर आप ऑलरेडी मिनिमलिज्म फॉलो कर रहे हैं तो किसी और को भी इंस्पायर करें ना भाई। साथियों, जिंदगी का मजा चीजों की क्वांटिटी में नहीं होता बल्कि उनकी क्वालिटी और क्लैरिटी में होता है। जब हम मिनिमलिज्म अडॉप्ट करते हैं तो हम सिर्फ स्पेस नहीं खाली कर रहे होते बल्कि अपनी जिंदगी को भी हल्का और बेहतर बना रहे होते हैं। इसी सोच के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इंपैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी। देसी
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलामुअलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है दूसरों के लिए वही पसंद करना जो अपने लिए पसंद करते हैं। इस्लाम हमें एक सिंपल लेकिन बहुत गहरी तालीम देता है कि जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए भी पसंद करें। ये एक ऐसा उसूल है जो जिंदगी में आ जाए तो रिश्तों में सुकून और ईमानदारी पैदा हो जाती है। अक्सर हम अपने लिए आसानी और अच्छा रवैया चाहते हैं लेकिन दूसरों के साथ वही बर्ताव करना भूल जाते हैं। ये रवैया सोसाइटी में दूरियां पैदा करता है। जब हम दूसरों के लिए भी वही सोचते हैं जो हम अपने लिए चाहते हैं तो हम ज्यादा इंसाफ पसंद बन जाते हैं और लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं। आज का अमल ये है कि हर सिचुएशन में ये सोचें कि अगर मैं दूसरी जगह

0: पे होता तो क्या चाहता और फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
3: आज के इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ फ्यूचर इन मोशन। मुस्तकबिल हमेशा आगे बढ़ रहा है। मुस्तकबिल में हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं? ये बड़ा सवाल हो जाता है। देखिए, आज की दुनिया जो है वो तेजी से बढ़ रही है। फ्यूचर इन मोशन का कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि मुस्तकबिल स्टैटिक नहीं होता, बल्कि हर वक्त चेंज होता रहता है। हर नई टेक्नोलॉजी, नया आइडिया और नई सोच इस मोशन का हिस्सा है जो हमें आगे लेकर जा रहे हैं। अगर हम अपने आस पास देखें तो हर चीज बदल रही है। पहले लोग बेसिक फोन यूज करते थे, आज स्मार्टफोन्स ने जिंदगी को आसान बनाया है। पहले सफर कितना मुश्किल था, कितना टाइम टेकिंग था, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ने इस डिस्टेंस को जो है वो छोटा कर दिया है। ये सब चेंजेस दिखाते हैं कि फ्यूचर हमेशा मोशन में है और हमें भी इसके साथ चलना होगा। फ्यूचर इन मोशन का सबसे बड़ा फैक्टर या सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट सिस्टम्स ने दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज लोग घर बैठकर काम कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्टेड रह सकते हैं। ये सब इस बात की मिसाल है कि हम एक फास्ट मूविंग फ्यूचर का हिस्सा हैं। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इंसान की सोच भी इवॉल्व हो रही है। आज लोग अपने स्किल्स इम्प्रूव करने, नई चीजें सीखने और अपने गोल्स अचीव करने पर फोकस कर रहे हैं। फ्यूचर उन्हीं लोगों का होता है जो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को अडैप्ट करते हैं। जो लोग रुक जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। देखिए, एनवायरमेंट भी इस मोशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज दुनिया सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है। लोग क्लीन एनर्जी, ग्रीन प्रोजेक्ट्स और इको फ्रेंडली हैबिट्स अडॉप्ट कर रहे हैं। ये सारे एफर्ट्स इसलिए किए जा रहे हैं ताकि फ्यूचर सेफ और हेल्दी हो। अगर हम आज कॉन्शियस नहीं होंगे तो कल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे ही पड़ेंगे। फ्यूचर इन मोशन का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। न्यू करियर्स, स्टार्टअप्स और इनोवेशंस जो है वो लोगों के नए चांसेस उन्हें दे ही रहा है। अगर आप इंसान अपने क्रिएटिविटी यूज करके अपनी पहचान बना सकता है तो फिर उस पर मजबूती से टिक भी तो सकता है। ये एक पॉजिटिव साइन है कि फ्यूचर सिर्फ चेंज नहीं बल्कि ग्रो कर रहा है। आखिर में समझना जरूरी है कि फ्यूचर किसी एक जगह नहीं रुकता, ये एक कंटिन्यूस जर्नी है। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस मोशन का हिस्सा बन जाएं तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फ्यूचर ऑलरेडी मोशन में है। सवाल ये है कि क्या हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं? चलिए, आज इसी सवाल पे यहाँ पर आपसे इजाजत लूंगी। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
2: One step to 2030.
4: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107,
1: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे? हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मत

0: न्यू एपिसोड. I'm very certain कि आप सब बिल्कुल खुशनुमा होंगे और ये जो आपका entire week है ये भी खुशनुमा गुजर रहा होगा. फिलहाल आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सीधा हमारी थाली या यूं कहें हमारी खाने की प्लेट से जुड़ा है. आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सस्टेनेबल फैशन की, कि कैसे हमारे कपड़े हमारी जमीन पर असर डालते हैं. मगर आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हमें जिंदा रखती है, हमारा खाना. एक जमाना था कि जब लोग सोचते थे कि कतर जैसे रेगिस्तानी मुल्क में जहाँ रेत और गर्मी का राज है वहाँ खेती बाड़ी या फार्मिंग कैसे हो सकती है. पीपल यूज टू थिंक कि हम सिर्फ डेजर्ट है. लेकिन आज मंजर बदल चुका है. हमने दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो और इनोवेशन का साथ हो तो रेगिस्तान में भी फूल खिल सकते हैं. और आज देखा जाए तो एक से बढ़कर एक चीजें हम पैदा कर पा रहे हैं. आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, यानी वो खेती जो कुदरत को नुकसान पहुंचाए बिना हमारे पेट को भर सकती है.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट. तो सोचिए, कतर में बारिश बहुत कम होती है और मिट्टी में नमक ज्यादा है. पहले हम अपना 90% खाना बाहर से मंगवाते थे. इट वॉज अ ह्यूज डिपेंडेंसी. लेकिन फूड सिक्योरिटी सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये किसी भी मुल्क की इज्जत और उसकी ताकत, ये दोनों होता है. आज हम एग्रोटेक की बात कर रहे हैं. यस, एग्रोटेक यानी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का एक खूबसूरत मिलन. हमने सिर्फ खेती नहीं की, हमने साइंस को मिट्टी के साथ जोड़ा है. आज कतर इंपोर्ट डिपेंडेंट होने से बदलकर एक सेल्फ सफिशिएंट ग्रीन हब बनने की राह पर है. जब आप आजकल सुपरमार्केट्स में जाते हैं तो क्या आपने वो छोटे स्टिकर्स देखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ कतर. वो सिर्फ एक लेबल नहीं है, वो हमारी मेहनत और हमारी जमीन की जीत है. इट्स अबाउट इंश्योरिंग दैट एवरी बाइट वी टेक सपोर्ट्स आवर सॉइल रादर देन डिप्लीटिंग इट. चलिए अब वक्त है द ग्रीन वायर का, जहां हम बात करते हैं ताजा खबरों की. क्या आपको पता है कि कतर अब अरब दुनिया में फूड सिक्योरिटी के मामले में नंबर वन पोजीशन पर रैंक करता है. एग्जैक्टली, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में हमारा नाम सबसे ऊपर है. ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये नतीजा है उस इन्वेस्टमेंट का जो हमारी हुकूमत ने ग्रीन हाउसेस और मॉडर्न फार्मिंग में किए हैं. मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने हाल ही में अपने महसील प्रोग्राम को और बड़ा कर दिया है. महसील का मकसद क्या है, कि हमारे जो लोकल फार्मर्स, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले. आज सुबह जो सब्जी खेत में कटी है वो कुछ ही घंटों में आपके घर के पास वाले सुपरमार्केट में होती है. नो लॉन्ग फ्लाइट्स, नो प्रिजर्वेटिव्स. और हाँ, सुख वाकिफ में होने वाला जो लोकल डेट्स फेस्टिवल होता है ना, इसे भी हमें मिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खजूर हमारा सस्टेनेबल हेरिटेज क्रॉप है. इसे कम पानी चाहिए होता है, लेकिन ये न्यूट्रिशन का खजाना है. और हम सिर्फ लोकल नहीं खा रहे, हम जो खा रहे हैं वो स्मार्टली चूज कर रहे हैं. हम बस पेट नहीं भर रहे, हम फ्यूचर भी संवार रहे हैं. चलिए जनाब, अब वक्त है हमारे सबसे खास सेगमेंट का, एंड दैट इज प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट. आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां पहुंचकर आपकी आंखें यकीन नहीं करेंगी कि आप कतर में हैं. हम बात कर रहे हैं एग्रीको कतर की, जो अलखोर के दिल में बसा है. एक ग्रीन रेवोल्यूशन है. इमेजिन कीजिए, बाहर 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, तेज धूप है और चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है. लेकिन जैसे ही आप एग्रीको के गेट्स के अंदर कदम रखते हैं, मंजर पूरी तरह बदल जाता है. इट्स लाइक स्टेपिंग इनटू अ फ्यूचरिस्टिक लैब. ठंडी हवा है और हर तरफ हरियाली है, मिट्टी की वो भीनी भीनी खुशबू है. लेकिन मजे की बात ये है कि वहाँ मिट्टी का इस्तेमाल ना के बराबर होता है. एग्रीको कोई आम खेत नहीं है, ये कतर के फ्यूचर की एक चमकती हुई तस्वीर है. अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अमिता, अगर मिट्टी नहीं है तो पौधे उगते कैसे हैं? यही तो एग्रोटेक का कमाल है. एग्रीको ने हाइड्रोफोनिक्स और एक्वाफोनिक्स को अपना हथियार बनाया है. सिंपल अल्फाज में कहूँ तो हाइड्रोफोनिक्स का मतलब है सॉइल लेस फार्मिंग। यहाँ प्लांट्स मिट्टी में नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट

0: रिच पानी में बड़े होते हैं. उनकी जड़ों को वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स सीधा पानी से मिलते हैं जो उन्हें चाहिए. और एक्वाफोनिक्स की बात करें तो ये बड़ी ही दिलचस्प चीज है. इसमें मछलियां यानी कि फिश और पौधों का एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है. मछलियों का वेस्ट पौधों के लिए खाद बनता है और पौधे उस पानी को साफ करते हैं जो वापस मछलियों के टैंक में जाता है. इट्स अ परफेक्ट साइकिल ऑफ लाइफ. इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम 90% कम पानी इस्तेमाल करते हैं. सोचिए हमारे देश में जहाँ पानी का एक एक कतरा नायाब है, प्रेशियस है, वहाँ 90% की बचत किसी करिश्मे से कम नहीं है. लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमारी गर्मी. जून और जुलाई में जब इंसान को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तब एग्रीको के ग्रीन हाउसेस में टमाटर, खीरे और यहाँ तक कि नाजुक स्ट्रॉबेरीज भी झूम रही होती है. उन्होंने ऐसे स्पेशलाइज्ड कूलिंग सिस्टम्स डेवलप किए हैं जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल में रखते हैं. ये देखकर फक्र होता है, एक प्राइड फील होता है कि हमने मौसम के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से मौसम को अपने लिए, अपनी चीजों के लिए फेवरेबल बना दिया है. एग्रीको ने साबित कर दिया है कि अगर इनोवेशन हो तो हम साल के 365 दिन ऑर्गेनिक और फ्रेश सब्जियां खा सकते हैं. अब हमें यूरोप या दूसरे मुल्कों से स्ट्रॉबेरीज के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता. हमारे अपने अलखोर की मिट्टी में कम पानी से उन्हें उगाया जा सकता है. इस पूरे मिशन के पीछे सिर्फ एक फार्म नहीं बल्कि एक मजबूत सोच है. यहाँ तक कि हज़रत फूड की बात करें, जो कतर की इन्वेस्टमेंट आम है, वो ये इंश्योर करती है कि हमारी सप्लाई चेन कभी कमजोर ना पड़े. उनका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि कतर को फूड सिक्योर बनाना है. जब हम एग्रीको जैसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं तो हम सिर्फ एक कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कतर नेशनल विजन 2030 के उस सपने को सच कर रहे हैं जहां हम अपनी जरूरतों के लिए खुद काफी हैं. इट्स अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी. ये प्रोजेक्ट्स ये दिखाते हैं कि रेगिस्तान कोई रुकावट नहीं है बल्कि ये एक खुला कैनवस है जहां हम टेक्नोलॉजी की कलम से हरियाली रंग रहे हैं. तो जनाब, अगली बार जब आप सुपरमार्केट्स में एग्रीको या लोकल लेबल्स देखें तो उन टमाटरों को सिर्फ सब्जी मत समझिए. वो निशानी है हमारी मेहनत की, हमारे साइंस की और हमारे डिटर्मिनेशन की. एग्रीको ने ये मुमकिन कर दिखाया है कि डेजर्ट से डिनर टेबल तक का सफर हरा भरा हो सकता है. फिलहाल आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि कुछ ही देर में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बड़े ही आसान तरीके जिससे आप अपने घर में छोटे छोटे स्टेप्स लेकर एक मिनी फार्म भी बना सकते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए FM 107 पर दिल से देसी.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट. वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं अमिता आपके साथ और कतर ग्रीन बीट्स में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. पर आप सोच रहे होंगे कि अब ऐसी कौन सी छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे हम अपना खुद का अपने घर में मिनी फार्म बना सकते हैं. वेल, मुझे लगता है कि बदलाव हमेशा किचन से शुरू होता है, तो चलो आप कुछ ट्राई करते हैं. शॉप द लोकल स्टिकर्स, ठीक है? अगली बार जब आप शॉपिंग पर जाएं तो महसील या प्रोडक्ट ऑफ कतर लेबल ढूंढिए. जब आप लोकल खरीदते हैं तो आप फूड माइल्स कम करते हैं, वो फ्यूल, वो पोल्यूशन जो खाने को दूसरे देश से लाने में लगता है, आप उसे बचा लेते हैं. और सच तो ये है कि लोकल सब्जियां ज्यादा जायकेदार होती हैं और आपकी हेल्थ के लिए परफेक्ट होती है. अब बात करते हैं अपने छोटे से फार्म की, तो कैसे बना सकते हैं. स्पेशली बालकनी हर्ब्स बड़े आसान होते हैं, मैं आपको बताती हूँ. इनफैक्ट मैंने खुद आजमाए हुए हैं. वेल, हमारे कतर के जो फ्लैट्स हैं ज्यादातर जहाँ पर लोग रहते हैं तो कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर कुछ उगा नहीं सकते, तो मैं कहूँगी अपने विंडोज या बालकनी पर आप पुदीना, धनिया और बेसिल उगा सकते हैं. तो क्या करना है, आपको सेल्फ वाटरिंग पॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि गर्मी में पौधे ना सूखें. शाम की चाय में अगर आप सोचें अपने हाथ से तोड़ी हुई आपने मिंट की कुछ लीव्स डाल ली तो कितना मजा आएगा. मैं खुद कहती हूँ मैंने अपने घर में धनिया, पुदीना और बेसिल यानी कि तुलसी कई बार उगाई है और ये सिलसिला हमारे घर में चलते चले आ रहा है. अच्छा, अब ये दूसरी चीज जो बड़े काम की होती है, दैट इज कंपोस्ट योर स्क्रैप्स. जो सब्जियों के छिलके हम फेंक देते हैं ना, वो कचरा नहीं है. तो क्या करना है उनको? बोकाशी कंपोस्टिंग. इसके बारे में कभी आपने सुना है? नहीं, चलिए मैं बताती हूँ. ये एक स्मेल फ्री तरीका है किचन वेस्ट को फर्टिलाइजर बनाने का. अपने इंडोर प्लांट्स को ये कुदरती खाद दें तो फिर देखें कि वो कैसे उगते हैं एंड कितना उसमें जायका आता है. फिर एक और टिप है, दैट इज रिड्यूस प्लास्टिक एंड स्मार्ट स्टोरेज. यानी कि प्लास्टिक से हमको दोस्ती खत्म करनी होगी. कतर में हम बहुत सारी बॉटल्ड वाटर जो होती है, वो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उसे हम यूज करते हैं. तो क्या करना है हमको कि अगली बार जब हम शॉपिंग के लिए जाएं तो अपने कपड़े का बैग, अपना रीयूजेबल बैग खुद लेकर जाएं और उसको ले जाना ना भूलें. इनफैक्ट आप चाहें तो अपनी कार के बैक सीट में, यूं कहें अपनी कार की डिक्की में, ये सारे जो बैग्स हैं रख सकते हैं, ताकि जब आप शॉपिंग के लिए जाएंगे तो आपको किसी तरह की टेंशन नहीं कि अरे अब मुझे बैग लाना था घर से एंड ऑल. समझ गया? हाँ जी, इस बात का आपको जरूर जरूर ख्याल रखना है. और सब्जियों को प्लास्टिक बैग्स में रखने के बजाय कॉटन प्रोड्यूस बैग्स का इस्तेमाल करेंगे तो इससे सब्जियां फ्रिज में ज्यादा दिन तक ताजा रहेंगी और कचरा भी कम होगा. तो समझ गए कि कैसे अपने घर में मिनी फार्म बनाना है और कैसे इम्पोर्टेंट चीजों का ख्याल रखते हुए हमारे लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करना है, है कि नहीं? तो जनाब, छोटी छोटी बातें हम जब ये करते हैं ना, तो इससे हमारा एक बहुत बड़ा मकसद पूरा होता है. जाहिर सी बात है कि जब हम कतर ग्रीन बीच की बात करते हैं, सो इट्स ऑल अबाउट द इनिशिएटिव जो कि कतर नेशनल विजन 2030 के जरिए लिए जा रहे हैं. जब हम ये विजन डॉक्यूमेंट्स में पढ़ते हैं तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मेट्रो लाइंस तक सीमित नहीं है. इसका बहुत जरूरी मकसद है, इसका बहुत जरूरी पिलर है एनवायरमेंटल डेवलपमेंट. फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दुकानों में सामान होना चाहिए. इसका असली मतलब है कि हम क्या आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, कि हम अपनी सारी चीजों को खुद पैदा कर सकते हैं. जब हम लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं ना, तो हम इस सरजमीन की खिदमत करते हैं जिनसे हमें इतना कुछ मिल रहा है, या यूं कहें तो इस जमीन ने जितना हमें कुछ दिया है. हम सब इस मिट्टी के गार्जियंस हैं. हमारी जिम्मेदारी है कि हम 2030 तक एक ऐसा कतर बनाए जहां नेचर और टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर फलेंगे और फूलेंगे. अगली जनरेशन जब हमसे पूछेगी कि आपने हमारे प्लैनेट के लिए क्या किया, तो हमारे पास उन्हें दिखाने के लिए ये हरा भरा कतर होना चाहिए, है कि नहीं? फिलहाल आज का एपिसोड हम यही खत्म करने जा रहे हैं और मैं कहूंगी कि आपका हर एक छोटा फैसला, हर एक लोकल टमाटर जो आप खरीदते हैं, वो हमारी जमीन को हरा भरा बनाने में मदद करता है. मैं आपसे ये कहूंगी कि हर हफ्ते कतर ग्रीन बीट्स के हम स्पेशल टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये कतर ग्रीन बीट्स की कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि इसमें होनी चाहिए, जिसके ज़रिए हमारा शो और बेहतर हो, तो आप ज़रूर शामिल कर सकते हैं अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस. आप हमें मैसेज करें 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ, एंड डेफिनेटली हमारा हर एक एपिसोड आपके नाम होगा और बेहतर होते जाएगा. और अगर कतर ग्रीन बीट्स शो सुनने के बाद अगर आप कुछ चेंजेस ला रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल में, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे कतर के एनवायरनमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी अपनी चीजें, अपने एक्सपीरियंसेस हमसे जरूर शेयर करें. फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, और मैं कहूंगी कि अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई बातें, कुछ नई कहानियों के साथ. तो तब तक के लिए क्या करना है, अपनी अमिता को भी आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं, प्लस हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाएं, ताकि कतर से जुड़ी हर एक नई बात, हर एक पॉपुलर और अपडेटेड बात आप तक आसानी से पहुंच सके. अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी.
1: जेन ज़ी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है. पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन

107. Dansei, dansei.

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.

0: FM 107, Time Check. Time
1: Check. मैं कितना इंतजार करता हूं तुम्हारा, कहां रहती हो तुम, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं, महीनों महीनों सिर्फ तुम्हारा इंतजार करता हूं। जब तुम आती हो तो दिल खुश हो जाता है, जब तुम आती हो तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। ए सैलरी, तुम इतना देर क्यों लगाती हो? ओए सैलरी आ गई, ओए भाई आ गई, भाई सैलरी आ गई। तुम मेरे करीब ही रहा करो, आज तो टाइम अच्छा चल रहा है, 4:02 हबीबी। ये शो
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो, मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: कहां कहां नहीं ढूंढते हैं तुमको, हर

0: जगह तुम्हारे ही ख्याल रहता, हर वक्त तुम्हारा ख्याल रहता है, 15 तारीख के बाद तो मैं बस तुम्हारे ख्यालों में रहता हूँ, ऐ सैलरी मेरे गले लग जाओ और महीने में 2-3 बार आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, ये शो द रिक्वेस्ट शो, 4:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और आज है 30 तारीख। इसका इंतजार कौन नहीं करता भाई, मतलब हर शख्स आज के दिन का इंतजार करता है। कुछ लोगों, हाँ मुझे पता है एक मैसेज पक्का आएगा कि सर मेरी 30 को नहीं आती है, अगले महीने के 7 दिन के अंदर अंदर आती है। हाँ मतलब, लेकिन आपकी बंद तो इधर ही जाती है ना, मतलब महीने महीने की बंद इधर ही जाती है, बट कई लोगों की आ जाती है, जैसे जो प्रॉपर है ना, मतलब हैं, लगे हुए हैं, जिनके जिनके अकाउंटेंट्स हैं, वो 15 तारीख के बाद सारा सिस्टम कर देते हैं भाई, उनकी आ जाती है सैलरी और हमारी भी आ ही जाती है। तो बस इसीलिए खुशी, चेहरे पे अलग चमकान होती है भाई 30 तारीख को। आप लोगों को देखो यार, उनके चेहरे को देखो, एक अलग सी खुशी रहती है। उनको कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो ना, वो लड़ते नहीं है। और अच्छा, वो देखा है आपने कभी गाड़ी लड़ जाए और दो लोग दम आमने सामने मिल जाए और लड़ाई के बजाय एक दूसरे पूछे कि भाई ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं आपको, समझ जाना 30 तारीख है। है ना, दो दो दो मियाँ बीवी ऐसे साथ में चल रहे हो, खुश खुश चल रहे हो, वो झगड़ा नहीं हो रहा है, है ना, मियाँ ने अपने मर्जी का कोई काम, यानी कि बीवी की मर्जी का कोई काम नहीं करा, बीवी ने मियाँ की मर्जी का कोई काम नहीं करा, फिर भी लड़ाई नहीं हो रही है, है दोनों प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। हाँ समझ जाना 30 तारीख है। ऐसा कभी हो कि बच्चे ने कुछ बहुत ही बड़ा गड़बड़ कर दिया है घर में, है टीवी भी तोड़ दिया है, बच्चा कहीं गया, किसी के घर की टीवी तोड़ दी, किसी के घर का कोई टेक्नोलॉजी वाला महंगा सामान तोड़ दिया, समझ जाना 30 तारीख चल रही। तो बस ये वाली बात है, बाकी अब आज का दिन है, अब आज के दिन आपके अच्छे गाने की रिक्वेस्ट तो होनी चाहिए दोस्त, खुशी का दिन है बाबू। वैसे आज है 30 तारीख और 30 तारीख को हम जो गाना, यानी कि आज हमारा जो थीम है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज सैलरी आ रही है, तो अब यार 90s के गाने, सैड सॉन्ग कोई ना कोई कह देता कि यार प्ले कर दो, तो मैं उसके तो बिल्कुल खिलाफ खाफ और खिलाफ हूँ मैं, है ना। तो ऐसे में आज क्योंकि 30 तारीख है तो नए जमाने के गाने सुनेंगे अपन, 2020 से 2025 के गाने हम सुनने वाले हैं FM 107 पे, 2020 से 2025 के गाने, जो भी हाल ही में आपके जहन में कोई गाने हो, जो हाल ही में रिलीज हुए हो, नई मूवीज के गाने हो, बहुत ही ज्यादा चल रहे हो, आपका दिल खुश हो गया हो, तो आप इन गानों को रिक्वेस्ट हमसे कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 666-22-107, 666-22-107। बाकी अरे नए वाले मोबाइल साहब दिख नहीं रहे हो, कहो तुम भी कहीं खुशी मना रहे हो क्या, तुम्हारी भी आ गई सैलरी, तुम्हारी सैलरी के नाम पे तो 100% बैटरी खोलो, खूब है भाई खूब है।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: तो भाई 4:06 हो गए हमारे स्टूडियो वीडियो में और एक कॉल आ रही है, जल्दी से उठा लेते हैं, देखते हैं क्या बात है। हेलो सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर, कैसे?
0: माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा लग रहा है कि आपकी अभी आने बाकी है यार, ऐसे आवाज में लग रहा मेरे को,
2: दिल गार्डन गार्डन हो रहा है।
0: अच्छा आ गई है?
2: नहीं भाई आपका हो रहा है, हम तो चलते रहते हैं, हमारा काम ही दूसरा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, आपके मतलब ऐसे डेली टाइप डेली डेली गले लगा रही है आपको, है
2: बस कुछ ऐसा समझ लें, कुछ ऐसा समझ लें कि डेली आते हैं, एहसास दिलाती है और चली जाती,
0: चली जाती
2: है।
0: आए हाय सैलरी तुम थोड़ा रुक जाया करो। कैसे मेरा भाई, क्या नाम है?
2: कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा।
0: हाँ यार, मेरे को एक और शख्स है आपकी, उनसे आवाज बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, मैं नाम उनका एक्चुअली मैं भूल रहा हूँ, इसी वजह से मैंने आपसे पूछा, लेकिन ठीक है। तो हमजा भाई कैसे हैं आप? बढ़िया, सब ठीक ठाक
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: तो हमजा भाई आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
2: यार आज आपकी थीम आई थी और मुझे कंफर्म नहीं है, बट मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी जो है 2021 या 22 में आया है, सिद्धू मूसेवाले का गाना है हाथ फड़ के।
0: हाथ फड़
2: के सॉन्ग है, हाथ फड़ के यानी कि हाथ पकड़ के जिसको बोलते हैं।
0: हाँ मैं समझ गया,
2: मैं तेनू वेखदा मर जा हाथ फड़ के, ठीक है।
0: ओके कब आया ये?
2: बहुत ये मे बी 2020 या 21 में आया है। क्योंकि वो शुरू ही सतारा से तो किया है, सतारा अठारह से तो शुरू किया उस करीब।
0: हाँ तो मैं जरा देखता हूँ सिद्धू का ये गाना अगर मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए।
2: हाथ पढ़ के अगर हो जाए तो यकीन करें आपकी वाइब बन जाएगी।
0: क्या बन जाएगी?
2: वाइब बन जाएगी।
0: अच्छा वाइब बी बी, अच्छा इस वाइब में बी है, वही मैं कहूँ समझ
2: नहीं भाई
0: मैं खुश हो गया कि दोबारा
2: नहीं भाई
0: ओके तो मैं एक्चुअली मैं ढूंढता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पर नाम सर्च करना उनका ये भी एक टास्क है कि सिद्धू में डी डबल है, डबल डी है, फिर एच आता है या क्या आता है, ये भी एक खेल है, क्योंकि जिस तरह से इसमें सेव किया गया हो ये एक अलग केस है अपने आप में।
2: मैं भी सिंगल जाए तो सिंगल ही यूज होता डी।
0: अब वो तो हमारा हम सर्च कर रहे हैं लगातार।
2: हाँ
0: सिद्धू, देखिए दो नाम है यहाँ पर, एक है सिद्धू जिसमें सिद्धू मूसेवाला और इन सब में गैप है, ठीक है स्पेस है, और एक है सिद्धू मूसेवाला जिसमें कोई गैप नहीं है। तो मैं, आपने कहा हाथ फड़ के, तो ठीक है यहाँ तो आ गया है

0: सही हाँ
1: तो
0: ये
1: वो भी है कि चलो मजा आता है,
0: मजा आता है, सही है।
1: ठीक है, अच्छा
0: ओके मेरा बहुत शुक्रिया। आप बाकी व्हाट्सअप कर सकते कोई नया गाना भी,
1: इंशाल्लाह अगर हुआ तो कोई मैं
0: श्योर। थैंक यू मेरा भाई,
1: ओके
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो ये गाना मुझे ढूंढना तो पड़ेगा अगर ये वाला गाना है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि लव्स जो हैं गानों के कुछ ऐसे होते हैं कि वो गाने यहाँ पर प्ले नहीं कर सकते, इसलिए अगर आपने गाने की रिक्वेस्ट करी है उनके लव्स हल्के फुलके भी इधर उधर हैं तो हम वो गाने प्ले नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी अब मैसेज ले लेते हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैलरी के बारे में ये समझ गया था ये शाम भाई कि मैं सैलरी के बारे में बात कर रहा हूँ। 4:01 पर लिख भी दिया इन्होंने। फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू। मैं बहुत अच्छा हूँ, कैसा रहा दिन? अब तो शुरू हुआ है, नहीं आई भाई सैलरी और गाना उन्होंने कहा है। यू नीड डैश डैश डैश डैश डैश, मन में लड्डू फूटा। हाँ भाई मन में लड्डू फूटा। ये देखो अजहर भाई और हमारे बीच की बात है सिर्फ। अब आपने समझा होगा डैश डैश डैश में अजीब क्यों पड़ रहा है ये आदमी, डैश डैश ये कोई बात है? ये अजहर भाई और हमारे बीच है हर चीज, मतलब ऐसा होता ना कि हर चीज सोशल मीडिया में नहीं डाल सकते, वैसे ही हर चीज यहां पर नहीं बोल सकते भाई। अस्सलाम वालेकुम फजील भाई। वालेकुम अस्सलाम। यू कैन लिसन दिस, आई मेक कंप्लेन अगेंस्ट यू। अच्छा, मेरे खिलाफ कर दिया इन्होंने कंप्लेन। ओके, तो सबसे पहला गाना जो आ रहा है वो आएगा आई गेस धुरंधर मूवी का ट्रैक, एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड आरी यारी यारी। तो ये गाना जल्दी से प्ले करते हैं और इस बीच बाकी लोगों के गाने हम यू नो निकाल लेते हैं। और ये गाना रिक्वेस्ट किया है धुरंधर मूवी का ट्रैक मोहम्मद बिलाल ने, तो बिलाल की रिक्वेस्ट में ये गाना, बाकी फिर इस गाने के पीछे और लोगों के गाने मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: ये हुई ना बात, सेल यानी की खुशी में इस तरह के गाने दो देखो होने चाहिए दोस्त। बाकी लोगों के मैसेज की तरफ बढ़ते

एक मैसेज आया है, ये गाना प्ले करवाना चाहते हैं अरिजीत सिंह शिल्पा राव की आवाज़ में तेरे हवाले। ये गाना भी अच्छा है। नाम क्या है भाई का? तेरे हवाले, रुबेल हुसैन। तो सबसे पहला गाना इनका आएगा। फिर एक और बेहतरीन धुरंधर मूवी का ट्रैक सुनने को कहा है, धुरंधर 2 का जाइए सजन। आय हाय, अब्दुल ने कहा इस गाने को सुनने को। ये गाना भी बहुत ही उम्दा है, लाजवाब है। इसको जो गाया है, क्या ही गाया है भाई साहब, मतलब जैस्मीन ने तो कमाल किया ही है। सतिंदर की वो लाइन जो मुझे याद नहीं है बीच में जो कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो सुनकर इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। अब्दुल भाई आपका भी ये गाना जो है वो प्ले होगा। बाकी लोगों के मैसेज की तरफ बढ़ लेते हैं। एक भाई ने तो धमकी दी है, जिनको 90s गाने सुनने हैं वो यहाँ यहाँ से सुने। मोहम्मद भाई इतना गुस्से नहीं। रमेश भाई कहते हैं कितना चाहने लगे हम सुना दो ना। रमेश ये गाना पुराना है लेकिन भाई, कोक स्टूडियो का गाना है। अस्सलाम वालेकुम फजी भाई, मुझे ये गाना है, अर्ज किया है, मुझे AI गाना चाहिए, ये गाना चाहिए, अर्ज किया है ये मुझे अगर मिल गया तो मैं प्ले कर दूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं है, ये गाना मैंने सुना नहीं है। ये भी देखना है कोक स्टूडियो का। अच्छा, ये अनुव जैन वाला तो नहीं? अगर अनुव जैन वाला है तो आई गेस मैंने सुना है। महफूज रॉबिन इनका नाम है, और मैं देखता हूँ अगर ये गाना भी मुझे मिल गया तो ये क्यों नहीं प्ले किया जाएगा। भाई अस्सलाम वालेकुम भाई जान, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? इकबाल भाई मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप सुना कैसे हैं? यूसुफ भाई कहते हैं फजील ऐसी शायरी के साथ अपनी शुरुआत की जैसे आज कोई रोमांटिक थीम हो शायरी वाली, बट आपने कंक्लूड किया सैलरी पे जो कि आपको मिल गई है, हमें अभी नहीं मिली है। आ जाएगी भाई, आ जाएगी, मतलब माहौल तो मैंने बना दिया ना। आपके प्यार में हम सवरने लगे, राज मूवी का ट्रैक है। यूसुफ भाई आपसे उम्मीद नहीं थी, 2020 से 2025 का चल रहा है सीजन और आप जो है इतना पुराना गाना सुनना चाहते हैं, पहले ही प्रेजेंट लगा दिया। सलाम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद फैजान कह रहे हैं आ गई है हमारी सैलरी भी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इनकी लिखावट में हंसी दिख रही है। बारिश गाना सुनना है आतिफ असलम की आवाज में, काला सूट काकी का है। बारिश गाना आतिफ असलम का, Let me check. आते भाई किधर रहेंगे? आते भाई तो नजर नहीं मिला रहे, लेकिन बारिश का कोई गाना आते भाई की आवाज में अभी तक तो नहीं दिखा है। बाकी आते भाई ये फैजान सब कह रहे हैं कि आपने कोई गाना गाया है बारिश का, क्या आपको भी नहीं पता? एक गाना तो है आतिफ भाई, वो एक बारिश है, ये बारिश कह रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान पॉप का 2019 का कोई एक गाना है बारिशें हैं वो, नहीं सॉरी आतिफ भाई सर आप सो जाएं, नहीं आपका गाना 2019 का है, आज की थीम 2020 का है, फैजान भाई से गलती हो गई है। फैजान भाई प्लीज चेंज, बारिशें गाना है आतिफ का, लेकिन और वो वाला गाना नहीं मिला मुझे बारिश वाला। बाकी हाय दिस इज असद, प्लीज प्ले लो फेड बाई करण औजला। लो फेड ये गाना है, मैं देख लेता हूँ जरा। नहीं ये गाना तो अपने पास नहीं हैगा। बाकी लोगों के मैसेज जल्दी से पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, वालेकुम अस्सलाम। माय मैनेजर इज अरबी नेशनल, काश वो रेडियो 107 सुनता तो हमारे यहाँ सैलरी आ जाती वहाब कह रहे हैं। अरे इंटरेस्टिंग बात है यार, कल 90s के सॉन्ग चल रहे थे और मेरे पास मेरे एक दोस्त का मैसेज आया कि कोई कतरी भाई भी सुन रहे थे और उनको बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने वो ऑडियो ना मुझे भेजी कि कतरी भाई को 90s के सॉन्ग सुनने में मजा आ रहा था, तो उन्होंने शो की बड़ी तारीफ करी कि यार ये तो बड़ा अच्छा है। तो मैंने सोच रहा हूँ कि भाई मैनेजमेंट से कहूँ कि ये जो रिक्वेस्ट शो है इसे रेगुलर चलने दे, क्योंकि अगर पसंद आ रहा तो अच्छी बात है। तो बाकायदा उन्होंने अरबी में कुछ बात कही जो मुझे समझ नहीं आई, फिर जिनको उन भाई ने भेजी थी, यानी कि जिस कतरी भाई ने भेजी थी जिनको, उन्होंने मुझे तर्जुमे में बताया कि अरे वो ऐसी ऐसी बात करे। तो यार ये 90s वाले सॉन्ग भाई कुछ भी हो हैं तो बहुत वाइडली पसंद किए जाने वाले सॉन्ग। बाकी वहाब साहब अगर पहुंच जाए ये आवाज़ तो अच्छी है कि भाई सैलरी अगर 30 को आ जाती मालिक। बाकी एक और मैसेज है फजल भाई, प्लीज़ कॉल मी खलील। खलील साहब मैसेज इतने कि मैं कहीं ना कहीं अगर रह जाए तो माजरत, जल्दी से बाकी जो सॉन्ग है वो प्ले कर देते हैं। पहले तेरे हवाले सबसे पहले ये सॉन्ग आ रहा है, और फिर जो दूसरा सॉन्ग है वो धुरंधर का है जाइए सजना, अब्दुल की रिक्वेस्ट पे। और तेरे हवाले किसकी रिक्वेस्ट पे है? महफूज की रिक्वेस्ट पे आई गेस। नहीं महफूज की रिक्वेस्ट पे नहीं है, तेरे हवाले रुबेल हुसैन की रिक्वेस्ट पे। आइए अरिजीत और शिल्पा राव की आवाज में FM 107 दिल से देसी।

सतेंद्र सरताज और जैस्मीन की आवाज में ये गाना धुरंधर मूवी का ट्रैक एफएम 107 पे सुना आपने हबीबी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4:27 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और बाकी गाने जो है वो प्ले करने का वक्त। ये तो गाने हो गए, अब 3 गाने बैक टू बैक में कोशिश करूंगा। एक गाना हुसैन भाई ने गाया था, पहले तो सलाम वालेकुम अस्सलाम फजील भाई, न्यू वर्जन संदे से आते हैं अरिजीत सिंह। यार वही वाली बात है कि इंसान को नए ज़माने के गाने मैंने दिए लेकिन जाना इनको पुराने में ही है। अच्छा मैंने इस पे क्योंकि हम मैंने ढूंढा मुझे मिला नहीं, और उसके बाद भी कहा या फिर मेरे महबूब मेरे सनम प्ले कर देते नया वर्जन। हुसैन भाई मानने को तैयार नहीं, ये 90s के ही गाने प्ले करवा रहे हैं। लेकिन 2024 का हमारे पास गाना है मेरे महबूब मेरे सनम, और बैड न्यूज़ मूवी का ट्रैक है जिसे लीजो अलका और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्माया गया और गाया भी गया। ठीक है तो हुसैन साहब आ रहा है ये गाना आपके लिए। सैयद फैयाज सैयद ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम आप बहुत अच्छे हैं। ओ देखो ऐसे मत कहा करो, मुझे घमंड वगैरह आ जाता है थोड़ा थोड़ा। बाकी बहुत शुक्रिया मेरा भाई, वालेकुम अस्सलाम। और फिर ये मैसेज है अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, मुझे ये गाना अर्ज़ किया है। अच्छा ठीक है, अनुव जैन वाला ये गाना भी मैंने तैयार करा है, सबसे पहले यही गाना चलेगा। महफूज रॉबिन की रिक्वेस्ट पे कोक स्टूडियो का गाना है, यस ओके। फिर उसके बाद हुसैन का गाना है। फिर एक और मैसेज है, लिस्टिंग टू योर स्टेशन ऑन रेडियो ऐप ऑन एंड्रॉयड इन डेट्रॉयड मिशिगन USA। माशाल्लाह देख रहे हैं रीच इतनी दूर तक अपनी रीच। It was hard to get hold of your WhatsApp number as you speak very fast, so I queries from --- for the right number as yesterday it connected to some Hope City store in Qatar as I couldn't follow it. Okay, sorry. माजरत मेरी गलती है भाई। वी वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कुड मेंशन योर नंबर स्लोली फॉर पीपल टू ग्रेस्प इट। ओके बहुत बहुत शुक्रिया सैयद शाह।

0: इनका नाम है माजरत, अब आप लिख सकते हैं नंबर 666, ठीक है, एक बार को 6 मैंने नहीं बुलाया, 666 तीन बार है, फिर दो दो बार है, और 107 तो आप सुन ही रहे हैं। हो गया आसान? नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं अभी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बाकी आपका मैसेज मैं पढ़ देता हूँ। इट फील्स गुड टू लिसन टू अ देसी रेडियो स्टेशन फ्रॉम मिडिल ईस्ट एज ऑल यूएई स्टेशन ऑन नॉन और मिक्स्ड उर्दू कंटेंट। डू यू गाइस हैव एन ऐप फॉर योर रेडियो स्टेशन ऑन बोथ आईओएस एंड एंड्रॉइड? यस, हमारे पास है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो QMC का ऐप है। देखो इसी बहाने हल्के हाथ से प्रमोशन, क्या बात है। इसमें देखो भाई, अब सैलरी आई है तो प्रमोशन तो बनता है। QMC का एप्लीकेशन है, कतर मीडिया कॉरपोरेशन, उसके एप्लीकेशन में आप जाएंगे, वहां पर उर्दू रेडियो ईजली आपको मिल जाएगा, आप सुन सकते हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो है urduradio.qa, उर्दू बोलते हो URDU radio.qa, इस पर भी आप आसानी से हमें सुन सकते हैं कहीं पर भी जाकर। तो दो तरीके आपको बता दिए, एक तो एप्लीकेशन और एक वेबसाइट भी है। उसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन से सुन रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप लेकिन आपको रिकमेंडेड यही है कि आप एप्लीकेशन के थ्रू हमारे सुन सकते हैं, और वेबसाइट भी है। यहाँ पर इस वक्त रात के 9:30 हो रहे हैं और मैं डेट्रॉइट, आई जस्ट हर्ड इट वॉज 4:27 PM, 4:30 हो रहा है हमारे यहाँ पर। इतनी ज्यादा जानकारी, हु रन्स एंड फंड्स दिस स्टेशन, ये गवर्नमेंट स्टेशन आप सुन रहे हैं FM 107 खतर की जानिब से, ठीक है, और डिटेल मैं आपको पर्सनल दे दूंगा। बाकी ये मैसेज है, थैंक यू सो मच फजील, थैंक यू मरा भाई। आगे लिखा है फजील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आज मेरे रिक्वेस्ट सॉन्ग प्ले हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी मिलने से भी ज्यादा खुशी मिली, रिक्वेस्ट पर सॉन्ग प्ले हुआ भाई, थैंक यू सो मच। सैलरी से ज्यादा खुशी तो नहीं, नहीं मैं ये देखो झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, झूठ बर्दाश्त, मैं झूठ के सख्त खिलाफ हूं, मैं वो दादा हूं जो झूठ सुन के अपनी कुबड़ी उठा लेता। सैलरी से ज्यादा तो खुशी कहीं नहीं है मियां। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बाकी लोगों के रिक्वेस्ट चेक कर लेता हूं।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: हुसैन का गाना मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, और हुसैन के साथ साथ एक और भाई ने कहा था महफूज रॉबिन, उनका भी गाना सेट कर दिया है। सबसे पहले उन्हीं का गाना, यानी कि रॉबिन साहब का, महफूज रॉबिन, देख अब रॉबिन भी है महफूज भी है, क्या बात है। फिर ये गाना कहा है सलाम सॉन्ग इश्क बावला, ये किस मूवी का ट्रैक है अगर आप बताएं तो ज़्यादा बेहतर है, मैं बाकी सर्च कर लूँगा अगर मुझे मिल जाता है तो। खान साहब कहते हैं कल तो सभी प्ले हुए थे 90s में, आज मैंने कह दिया तो बहुत ज़ोर से सभी बातें, और यार याद आ रहा है कल 90s का बताया था, इतना अच्छा सॉन्ग वो तो नहीं प्ले हुआ, सैड और स्लो सॉन्ग प्ले होते रहे शो के एंड तक। नहीं ऐसा नहीं है, सैड सॉन्ग थे लेकिन इंटरेस्टिंग वाले भी थे, मज़ेदार थे भाई। अरे कतरी भाई का मैसेज आ रहा है यार कि मज़ेदार सॉन्ग है। आगे ये मैसेज किसका, नसीम भाई कहते हैं कितनी चाहत दिल में छुपाए बैठे प्ले दिस सॉन्ग, मियां फज्जू बहाना अच्छा है भाई, हम थीम के साथ चल रहे हैं और आज की थीम है 2020 से 2025 के सॉन्ग। अगर आपके पास 2020 से 2025 के सॉन्ग की लिस्ट है तो भेजो मेरे को यार, मैं बैठा हूं यहां पर प्ले करने के लिए, जैसे कि अनूप जैन का ये गाना अर्ज किया है, और मेरे महबूब मेरे सनम भले उदित नारायण का पुराने जमाने का अलका का गाया हुआ है, लेकिन कैच ये है कि बैड न्यूज 2024 में इसे दोबारा गाया गया, जिसमें लीजो जॉर्ज है, डीजे चेतस है और अनु मलिक भी। तो चले इस गाने को प्ले करते हैं FM 107 पे, ये दो गाने आपके लिए बैक टू बैक, दिल से देसी।

4:41 हाँ 41 मैं 6 पढ़ने वाला था 4:41 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और अब एक और गाना जो है जल्दी से प्ले करना और फिर हम गेम की तरफ बढ़ेंगे। और ये गाना है कोक स्टूडियो का ढूंढने के बाद मिला हुआ इश्क बावला भाई धंधा नेवले वाला और जिविर ग्रेवाल। ओ क्या नाम है जिविर। ठीक है तो इनका गाना अपन प्ले कर रहे हैं और ये रिक्वेस्ट है मुबीन भाई की। मुबीन भाई आपके लिए गाना। उसके अलावा ये मैसेज है सलाम फजील भाई, बात ये है कि हमारा 30 और 32 तारीख से कोई लेना देना नहीं है। अरे क्योंकि हमारी सैलरी आने से पहले कर्जदार के पास पहुंच जाता। अरे यार मेरे साथ भी सेम है। वो एक यू नो रील बहुत ज्यादा वायरल हुई थी ना, सेम सेम बट डिफरेंट। मेरे साथ भी ऐसा ही है ना। मतलब एक उधर किराया चला था घर का, फिर उसके बाद अपने खर्चे, फिर उसके बाद घर के अपने घरवाली के खर्चे, फिर एक और खर्चा है जिसे कहते हैं वाटर इलेक्ट्रिसिटी, फिर इंटरनेट का मस्त खर्चा, फिर उसके बाद हाथ फैला लेते हैं अपन कि अरे कोई है क्या देने वाला। मेरे साथ भी यही है भाई। तो सेम सेम बट डिफरेंट। आगे लिखा है तो ऐसे बात पर एक सैड सॉन्ग प्ले करो, वो भी भाईजान फिल्म वाला जो राहत सबने गाया है। अरे मेरा भाई अब वो तो ठीक है, लेकिन अब वो थीम भी तो कुछ चीज होती है, कोई चीज होती है थीम। ये मैसेज अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला ने कहा है आज की रात ये गाना प्ले कर दें प्लीज प्ले। भाई देखिए ये गाना अपने पास है नहीं, और उसके अलावा एक और चीज है, आज तो देखिए सैलरी का मजा लेने वाला दिन है। और कोई गाने की रिक्वेस्ट हो तो बताएं। और एक ऑडियो है, उन्होंने पूछा है कौन सा थीम है, आज तो नहीं पाए कहीं बिजी थे अजमल भाई, मैंने इनको बता दिया 2020 से 2025, अब तो वैसे वक्त जो है वो निकल चुका है। फिर एक और मैसेज है सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मकसूद फ्रॉम इंडिया लाइव सुन रहा हूँ। अरे वाह भाई वाह, देख रहे मतलब लोकल फॉरेनर सब मतलब एकदम एक ही जगह पे। आप देखिए सोशल मीडिया की तो यही पावर है, सोशल मीडिया के साथ साथ इंटरनेट की ये पावर है कि आप कहीं से भी सुन सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको एप्लीकेशन ना मिल रहा हो, आप हमारे वेबसाइट से भी हमें सुन सकते हैं urdureadio.qa, बुकमार्क कर लो। आसान तरीका ये है कि हर बार वेबसाइट कौन टाइप करे, ये मजा नहीं है, एक बार टाइप करके बुकमार्क कर लो। जैसे ही आपने अपना इंटरनेट खोला ऊपर लिख कर आ जाता है, एक क्लिक करा नहीं वहाँ गाना शुरू हो जाता है जी। बाकी ये मैसेज एक और है सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, प्लीज प्ले तुम चले आए पहाड़ों की कसम। अरे मेरा भाई 2020-2021 की बात हो रही नौशाद साहब, हो सकता है ये गाना 2020 के बाद वाला हो, लेट मी चेक देन। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, ये क्या दर्द है लोगों का। तुम चले आओ, यहां है तुम चले गए मेरे जाने जगम जाने जिगर, तुम चले हो किधर कहां हो तुम चले आओ, यही सब है भाई। तुम चले से अभी तो मिल नहीं रहा, बाकी अपन ढूंढेंगे, अगर मिल जाएगा तो बिल्कुल। और ये भी बड़ा जरूरी है कि ये 2020 से 2025 का होना चाहिए, कहाँ हो तुम चले आओ ये सब मिल जा रहा है, लेकिन वो पहाड़ों वाला नहीं मिल रहा भाई जान, माजरत। लेकिन एक बार मैंने प्ले किया है, मुझे याद आ रहा है, ये थोड़ा सा पुराना ही था। बाकी अभी इश्क बावला प्ले करता हूँ मैं, ये मुबीन भाई ने रिक्वेस्ट किया, इसके बाद हम गेम की तरफ बढ़ेंगे FM 107 पे दिल से देसी।

हाँ जी बस खुश चल गया। ये गाना FM 107 पे सुना आपने 4:49 स्टूडियो की घड़ी में। हाँ जी हबीब इस्तकबाल है आप सभी का FM 107 पे। और अब वक्त आ गया है कि अपन गेम खेलने, और यहाँ गेम खेलने के लिए सर सिंपल सिंपल चीज़ रखते हैं अपन, ज़्यादा महंगा या ज़्यादा हवेबाजी नहीं। तो इसमें सीन ये है कि अपन गाना बीच से प्ले करते हैं नए लोगों के लिए, यूएसए वाले भाई के लिए और वो इंडिया वाले भाई के लिए, उनको बता दें, है ना। तो सीन ये है कि अपन बीच से लिरिक्स किसी भी गाने की प्ले करते हैं थीम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आज है 2020 से 2025 के गाने की थीम। तो 2020 से 2025 में जो हिट मूवी आई या जो हिट गाने रहे हैं वहाँ से कोई भी मैं गाना उठाऊंगा और बीच से लिरिक्स प्ले करूंगा। उस लिरिक्स को प्ले करने के बाद आपको गाने का असली नाम बताना है। व्हाट्सएप नंबर धीरे बोलता हूँ मैं, 6662217 6662107 6662107। हाँ नहीं, स्टार दब गया आपसे, 77। हाँ ये 7, ठीक है। तो 6662107 इस पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, गाने का नाम बता सकते हैं, और पहला गाना जो आपको पहचानना है वो बहुत बहुत बहुत बहुत ही ज्यादा आसान है, और वो बीच से काटा हुआ या बीच से प्ले जो मैं कर रहा हूँ लिरिक्स वो है ये।

बस इससे ज़्यादा फिर तो मामला ही ख़राब हो जाएगा ना। गाने का नाम बताइए और बहुत ही आसान ये होने वाला है। यूसुफ भाई ने मैसेज का जवाब दे दिया है, लेकिन उससे पहले किस भाई ने जवाब दिया है, सॉन्ग मूवी का नाम बताया है आपने लेकिन सॉन्ग का नाम नहीं बताया। दानिश भाई आपको बताना पड़ेगा मूवी का नाम नहीं। फिर उसके बाद यूसुफ भाई ने सही बताया है फिल्म का नाम नहीं, गाने का नाम बताना भाई। फजील वो खत्री जनाब अली वजाहत साहब होंगे, वो बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हैं, हिंदी रेडियो सुनते हैं, कपल ऑफ टाइम ही कॉल्ड इन सरवर भाई के शो में। हो सकता है मे बी, क्योंकि मुझे नाम तो नहीं पता। बाकी ये गाना संतोष ने भी मूवी का नाम बताया। क्या मैंने ये गलती से कह दिया कि आपको मूवी का नाम बताना है, गाने का नाम बताना है? ठीक है भाई, गाने का नाम आपको बताना है। हिशाम ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, दानिश भाई मूवी का नाम नहीं, सोनी दे नखरे। साजिद भाई ये क्या हो गया आपको, ये गाना तो बिल्कुल नहीं है भाई, मोटू पतलू की जोड़ी। बिल्कुल सही जवाब हुसैन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिर उसके बाद असरार ने सही जवाब दिया है, बट फजील भाई गेम नहीं खिलाओगे आज, क्या खिलाएंगे अब्दुल भाई? हाँ तो अब्दुल भाई आपने खिलाया, देखो मैंने गेम, लेकिन आपने गलत जवाब दिया है। संतोष ने आंधी बन के लिखा तो है पहुंच गए हैं, बट असल में गाने का नाम कुछ और है। हुसैन ने अब जाके सही जवाब दिया है, बहुत ही उम्दा। और एक और ये मैसेज है, नीचे पान की दुकान प्ले कर दो, देख लो मेरा इतने पुराने गाने। भाई अब गाने का वक्त चला गया, अपन अब हम खेल रहे हैं पहचान कौन गेम। ये म्यूजिक सुनकर आपको गाने का नाम बताना है।

बस बस ज्यादा शाश्वत भाई ज्यादा नहीं, गाने का नाम बताएं और एक और रिक्वेस्ट या कहें जवाब आया है मुदस्सिर अहमद का, कहते हैं मुझे कारवां की तलाश है। क्या बात कर रहे हैं,

मैं बहुत स्मार्ट हूँ, गाने के पीछे से गालो पता ही नहीं चलता है कि ये सिंगर अच्छा है या बुरा, लोग अच्छा ही मानते हैं। बाकी बहुत ही सही पहचाना है आपने, ये धुरंधर का ट्रैक इश्क जलाकर कारवां मूवी का ट्रैक, जिसे शाश्वत, शहजाद अली, शुभदीप दास चौधरी और अरमान ने गाया है। बाकी दूसरे नंबर का सॉन्ग आज का जो है वो ये रहा।

0: हाँ आप बताइए।
1: बहुत हाँ बहुत जल्दी जवाब आ रहा है, ये वाला करा है मैंने, थोड़ा मुश्किल। अब बताइए, आओ कोई भाई, कोई तो आओ। ये वाला अच्छी अच्छी मूवी थी, बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी, उसका गाना ये बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, आई एम श्योर 100% श्योर कि आपने ये गाना सुना होगा। बट ये मसला हो जाता है कभी कभार कि बीच के लिरिक्स मिस हो जाते हैं, क्योंकि वो वर्ड इतने ज़्यादा फेमस नहीं होते, उनके हुक ज़्यादा चलते हैं। तो हिशाम भाई ने, लेकिन क्या बात है हिशाम भाई, दाग देना पड़ेगा यार हिशाम भाई के लिए, तो मतलब एक अलग से गिफ्ट होना चाहिए। यूसुफ भाई ने भी पहचान लिया बिल्कुल सही। फिर एक और मैसेज है संतोष का, सॉरी लिख गया है, सुन निगम ने गाया है, नहीं मेरा भाई गलत जवाब आपका। फिर ये मैसेज है कारमा, पहला जवाब दिया दानिश आज़ाद ने, कहते हैं मैंने अपनी प्लेलिस्ट से देखा है। गलत जवाब, पहले तो ऑब्वियसली गलत जवाब तक ये, क्योंकि सॉन्ग का नाम आपने बताया था। फिलहाल ये जो गाना है, इस गाने को सिर्फ 3 लोगों ने पहचाना है, एक तो मोहम्मद यूसुफ, दूसरे हिशाम, और तीसरे अभी अभी एक भाई हैं, इन्होंने बिजुरिया लिख दिया है, हुसैन भाई। नहीं, ये गाना है क्या बात है। तो ये गाना सिर्फ 2 लोग पहचान पाए, तीसरा वाला भी मुझे लगा सही होंगे लेकिन वो गलत थे। ठुमकेश्वरी, ये गाना थोड़ा लेट कर दिया अहमद आपने लिखते लिखते, वरना आप तीसरे नंबर पे होते। एंड नाउ तीसरा सॉन्ग क्या है।

ब्रेक में हनी सिंह ब्रेक लगाओ इतना लंबा नहीं। चलो ये तो पता चल गया कि हनी सिंह का गाना है, ये गाने का नाम बताएं आप। गाने का नाम आसान, अरे वाह सबसे पहले जवाब दे दिया अहमद ने, बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा लेट ऑडियो भेजी है, मिलेनियर कहते हैं, नहीं भाई मिलेनियर दानिश आज़ाद गलत जवाब है आपका। हिशाम ने सही जवाब बताया, हिशाम भाई मुझे लगा था पहले नंबर पे आएंगे बट गलत जवाब है। ठुमकेश्वरी मुदस्सर अहमद ने भी बता दिया, बहुत ही उम्दा, क्या बात है। फिर ये मैसेज, नाम क्या है भाईजान आपका, हाँ ठीक है आपने भी सही जवाब दिया, अब्दुल लिंक का नाम है और ये कहते हैं दे ताली। द करेक्ट आंसर इज तो दे ताली है ये गाना जिसे हनी सिंह, अरमान मलिक और प्रीतम ने गाया। फिलहाल 4:56 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को इजाजत देने का वक्त आ गया है। हैं भाई हम भी तो मजे करें यार अपनी सैलरी का, नहीं आप बताओ। बाकी अब इन तीनों गानों में से आप क्या सुनना चाहते हैं जल्दी से बताओ, जो सबसे पहले बताएगा उसका गाना अपन प्ले करेंगे। एक तो है कारवां, दूसरा ठुमकेश्वरी, तीसरा दे ताली, इन तीनों में से क्या सुनना आप चाहते हैं। दे ताली दे ताली दे ताली, ये हुसैन ने कहा है, यूसुफ ने कहा है, फिर उसके बाद एक और भाई हैं इन्होंने भी कह दिया, अब्दुल एस आर के लिखा हुआ, इन्होंने भी कह दिया। चलो ठीक है, तो आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे ठुमकेश्वरी नहीं दे ताली प्ले करेंगे। मैं मजे ले रहा था, सीरियसली मैं मजे ले रहा था, सॉरी। अब ये दे ताली भाई कहाँ है, आ जाओ भाई आ जाओ। हनी सिंह, हनी भाई आप ये वाला माइक पकड़ ले। हाँ मैं तो छोड़ रहा हूँ माइक भाई। अरमान मलिक प्रीतम और हनी सिंह की आवाज में दे ताली है गाना, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी शाम 4 बजे FM 107 पे दिल से दई।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, अभी 5 बजे 1 मिनट हुए ना। मनु बड़ा पासवर्ड डाल। हाँ, 7 7 7 7। हाँ, 8। उसकी बर्थ डेट क्या थी? वो तो पहली वाली। हाँ, वही डालो। हाँ दबाओ। हाँ हाँ हाँ ठीक है। ले ले ले, कैंसिल का बटन दबा दियो। कैंसिल का बटन, कैंसिल का बटन। हाँ, गिल्ली अच्छे से हैं, ठीक है, पूरे हैं, ठीक है।

सिक्योरिटी गार्ड आज जरा भाई साहब अपनी गाड़ी में छोटे में बैठे हैं हम दो, क्या चल रहा है आज तो वही 30 तारीख ATM की आवाज सुन के बड़ी खुशी मिलती है भाई, नोटों की आवाज आती है, आ हा हा हा हा हा हा, मजा आ जाती है। आज तो सभी बड़े लोग हैं, बहुत लोगों की पगार आ जाई है, तो आज तो कोई किसी के मुंह लगेगा भी नहीं। पर मुबारक हो जिसकी सैलरी का दिन आज का होता है, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा तो 28 का होता है, तो 2 दिन के लिए तो हम अमीर बन ही सकते हैं। तो मुबारक हो आप सभी को, जिन जिनकी पगारें गिरी हैं आज, सही में वो जो आवाज़ होती है ना ATM की, उससे बढ़िया आवाज़ कानों के लिए कुछ नहीं है। मैं तो आवारापन का इमरान हाशमी बन सकता हूँ, एक आवाज़ है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है। अस्सलाम वालेकुम, मैसेज करते रहिएगा 666-22-107 पर। कमाल अहमद, कमालुद्दीन शेख साहब वालेकुम अस्सलाम, राशिद भाई वालेकुम अस्सलाम, जावेद साहब वालेकुम।

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ. اینڈ ہمیں کسی نے یو ایس اے سے جوائن کیا, انہوں نے مجھے میسج کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے اٹس ویری ہارڈ ٹو فائنڈ اے پیور اردو ریڈیو اسٹیشن. آگے لکھا ہے یو ناؤ ہیو اے لسنر فرام یو ایس اے بٹ اف یور آئی ٹی ٹیم کین میک اے اسٹینڈ الون ایپ دیر از این ایپ آئی ایم جسٹ فارگیٹنگ دا نیم. آگے لکھا ہے سینڈ اے ریکویسٹ ٹو کمپنی ان ہانگ کانگ ٹو ریڈیو اسٹیشن ٹو قطر ریڈیو ایپ پورٹل. تھینک یو سو مچ برو. آئی ڈونٹ نو واٹس یور نیم. شاہ سید, تھینک یو سو مچ. بٹ وچ پارٹ آف یو ایس اے فرام؟ کیا ساری کال سینٹر کی انگریزی آج ہی نکلوا دو گے؟ ایک میسج اور آیا ہے, انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم بھائی, ویلکم بیک. آج لگتا ہے کہ 107 کی ٹیم کو بونس ملا ہوگا بیکاز فضیل بھائی بھی واز آلسو ٹاکنگ اباؤٹ سیلری. مجھے نہیں پتا بھائی. اینڈ یو آر آلسو دا سیم مینس سم تھنگ اسپیشل ٹوڈے. ٹیل اس ویئر وی ہیو ٹو کم فار دا پارٹی. بھائی میں بتاؤں, میں تمہیں ہمارے پروفیشن کی ایک ریئلٹی بتاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ یہ میسج کیا ہے بھائی مقصود بھائی, ہماری ہمیں ایویلیویٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے بھائی. کوئی بونس کو نہیں بھائی. ہماری سیلری آیا کرا بھائی 28 تاریخ کو. آج چونکہ آدھی دنیا کی سیلری آتی تو اس لیے ہم نے بول دیا, میں نے کہا چلو آج بول دیتے ہیں. اور یہ ہمارے بھائی شاہ صاحب جو ہیں ہی از فرام ڈیٹرائٹ مشیگن. یہ ایم این ایم کے شہر سے میرا بھائی. اچھا ایک اور میسج آیا ہے, انہوں نے میسج کیا السلام علیکم میرے بھائی. قاسم صاحب وعلیکم السلام. میں بڑھیا بھائی, آپ سنائیے کیسے ہیں آپ؟ یعنی بھائی کہہ رہے ہیں بھائی آپ کی بہت یاد آتی ہے, آپ صبح کب آ رہے ہیں؟ ارے بھیا ہم کو کچھ نہیں پتا, یا پھر میں کہہ سکتا تھا میں نہیں بتاؤں گا, پر مجھے سچ میں نہیں پتا. آئی ڈونٹ نو. دیکھو شفلنگ ہوتی رہے گی, کبھی نہ کبھی آتے ہی رہیں گے, معاملہ جیسے ہوتا رہے گا. بٹ دیٹ از اندر ڈے, دیٹ از فار اندر ڈے. اوکے ایک میسج ہے میرے دوست زبیر اینڈ حیدر کو لو. یہ بھائی نے میسج کیا, اپنا نام نہیں بتایا, پر انہوں نے لکھا ہے میرے دوست زبیر اور حیدر کو لو. ٹھیک ہے بھائی, دونوں کو بہت سارا پیار گیا آپ کی طرف سے. آپ کا نام بتا دیے, فواد جانی نام ہے ان کا. ٹھیک ہے فواد بھائی کی طرف سب کو دعوت. اینڈ ایک بڑا سویٹ میسج کیا ہے مجھے حمزہ بھائی نے. سید حمزہ بھائی لکھتے ہیں ہائے کبیر, آپ کی اسٹوریز تو ہماری فیملی جرنی کا پارٹ ہیں بھائی. دس از لائک این اوارڈ ٹو می. تھینک یو سو مچ حمزہ بھائی. یہ بول دینا کہ کہانیاں جو میں سنا رہا ہوں آپ کی فیملی کا ایک حصہ ہے, اس سے بڑا کمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا بھائی. بھائی یہ لیمینیٹ کرا لوں گا, پرنٹ آؤٹ کرا کے یہ والا کمپلیمنٹ. بھائی بہت شکریہ بھائی. اور میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. ہم نا ایک دوسرے کی کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جانے انجانے میں ایک دوسرے کی باڈی لینگویج کو کاپی کر لیتے ہیں, ہاؤ بھاؤ سمجھ میں آنے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم کاپی نہیں کرنا چاہ رہے مگر انڈائریکٹلی کاپی ہو جاتا ہے. تو آپ نے کبھی کسی کی پرسنالٹی سے کچھ ان نوئنگلی کاپی کیا ہے کبھی؟ کوئی ہو سکتا ہے آپ کا رشتہ دار ہو, دوست ہو, گھر بار ہو, کوئی ایسا آپ نے ایکٹر دیکھ لیا ہو, سم تھنگ مائٹ ہیو ہیپنڈ جس کی وجہ سے آپ کی باڈی لینگویج میں وہ چیز اتنی امبائب ہو گئی ہے کہ آپ رہ نہیں پاتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک صاحب کو جانتا ہوں اور ان کی عادت کیا ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی عادت کیا ہے, وہ اپنے ہاتھوں کو نا ایسے گھماتے رہتے ہیں. اب میں ریڈیو پہ کیسے بتاؤں گھماتے رہتے ہیں, بھائی سمجھ لیجیے دونوں ہی ہاتھوں کو روٹیٹ کرتے رہتے ہیں بات کرتے کرتے. ان کے ہاتھ جو ہیں وہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں. کوئی ایسی اپیرنٹ وجہ نہیں ہے, الحمدللہ ان کے ہاتھ پیر سب ایک دم سلامت ہے, سب بڑھیا ہے, پر وہ اپنے ہاتھوں کو ایسے روٹیٹ کرتے رہتے ہیں, پورا گھماتے رہتے ہیں. ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اے بس یار پتہ نہیں عادت سی ہے, انوالنٹری ایکشن ہے, وہ ہوتا رہتا ہے, وہ عادت میں ان کی شامل ہے, وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ کر رہے ہیں پر وہ کر رہے ہیں. ایسے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں. کسی کے سونے کا ڈھنگ بڑا عجیب سا ہوتا ہے. بھائی میرا ہے, میں ان میں سے ہوں. میں جس طرح کے سوتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ بیڈ پہ کسی نے پینٹنگ بنا دی ہے, ایبسٹریکٹ پینٹنگ. سمجھ میں آ رہا ہے آدمی الٹا لیٹا سیدھا سویا کیسے سویا ہے یہ. ہیلو بھائی زندہ ہو؟ ایک کال آئیے. السلام علیکم. ہیلو
2: سلام, کیسے میرا بھائی؟
1: ایک دم بڑھیا میرا بھائی, کیا حال ہے؟
2: الحمدللہ. اچھا ہر شو ہوتا ہے صبح 8-9 بجے سے سننا شروع کرتا ہوں میں ریڈیو.
1: جی بھائی,
2: لیکن اس ٹائم کی وائب جو ہوتی ہے نا بھائی,
1: بھائی بھائی بھائی
2: ایک الگ ہی انرجی بوسٹ ہوتی ہے میرے بھائی.
1: تھینک یو سو مچ میرے بھائی, یہی سننے کے لیے میں آتا ہوں.
2: آپ کا پیار ہے, ये आपका प्यार है, यकीन करो आप आते हो हम लोगों की एनर्जी इतना बूस्ट होती है ना,
1: थैंक यू सो मच भाई,
2: समझ लो कि जितना अभी फ्रेशली उठ कर आया है और भाई हाँ जी आज सब बढ़िया बढ़िया कहते हैं ना
1: मोहब्बत दे देते हैं।
2: देखो मैं ये समझता हूँ कि इंसान का इखलाक ना इंसान को बहुत ऊपर ले जाता है,
1: बेशक मेरे भाई, बेशक
2: और ये चीज आप में है, आप में सरदार भाई में, बाकी भी है, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन आप की हंसी, उनका बात करने का अंदाज, उनका मजाक करने का अंदाज
1: जी भाई,
2: तो ये होता है कि सारे खुश हो जाते
1: हैं। so
2: आप आते हो एक अलग एनर्जी बूस्ट होती है। ले भाई आ गया मेरा भाई।
1: हाँ भाई आ लिया आपका भाई। मैं तो बता रहा हूँ, उस दिन वो उन्होंने एक हमारी बहन, उन्होंने कॉल करके बोला कि जब भी आपको शो सुनती हूँ ऐसा लगता है कि भाईचारा ही चल रहा है। हमारा शो ऐसा ही है जैसे मोहल्ले में वो बत्ती जाती थी ना, पहले लाइट चली गई और सबके सब आ गए गली के अंदर बात करने के लिए, तो बिल्कुल वैसे ही मेरा टारगेट रहता है।
2: ऐसी भाई
1: बात है
2: भाई, क्या हुआ
1: क्या हुआ
2: परेशानी तो नहीं है।
1: और क्या चल रहा है मेरे भाई, कैसा रहा दिन आज का?
2: बस अल्हम्दुलिल्लाह काम शाम ही चल रहा था,
1: काम शाम
2: और
1: चल रहा।
2: आपकी बात सुनी
1: जी भाई,
2: एक हमारे टीचर मुझे याद आ गए, ठीक है, उनकी नेचर क्या थी भाई, उन्होंने चाहे बात कर रहे हैं, चाहे वो खा रहे हैं, चाहे उन्होंने पढ़ रहे हैं, उन्होंने ना उनका एक हाथ देना मुंह के ऊपर रहता था जितना सिंपली मुंह, ठीक है, और उसमें ना एक जो सबसे छोटी वाली उंगली, चीची उंगली जिसको कहते हैं हम लोग, उसको बिल्कुल लिप्स के पास लाकर उसको फूंक मार देना। ये उनकी उनकी नेचर थी भाई, और वो अभी तक लास्ट टाइम भी जब मिला था उनको यही खड़े में पास, अगर कुछ बात चल रही है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज उन्होंने मुंह पे हाथ रखा हुआ, अगर बात चल भी रही ना जब भी हाथ मुंह पे ही,
1: अरे यार
2: जैसे चिपका हुआ
1: मनोज कुमार है, मनोज कुमार क्या सिस्टम है भाई। अच्छा
2: और भाई हमें उनका एक जना सीन चला, वो देखने में ना बहुत स्लिम स्मार्ट है, इतने के तेज आवाज चले तो भाई उड़ गए।
1: अरे रे रे रे रे रे बेचारे
2: तो हम भाई हमें लगता था ऐसा, क्योंकि वो लूज शर्ट्स वगैरह पहनते थे, और जिस वक्त हमें पता चला कि कंपटीशन हुआ था जिम का कल, तो उसमें देखा था, जब तस्वीर देखी ना भाई क्या प्रॉपर बॉडी बनाई हुई थी सर ने।
1: अच्छा क्या बात कर रहे हो, मतलब पहले क्या लग रहा था, ढांचा वांचा अंदर ऐसा कुछ लग रहा था क्या पहले?
2: वो असल में मैंने आपको बताया ना, लूज कपड़े पहनते थे, शर्ट्स लूज पहनी हुई है, तो उसमें ना देखने में ऐसे लग रहे हैं, उनका फेस कट भी आता था कि यार बहुत कमजोर सा बंदा भाई।
1: अच्छा
2: और जिस वक्त उन्होंने मिस के उधर शर्ट्स वगैरह उतारी और पूरा वो अपना बॉडी को पंप करके, फिर उसके बाद जब कंपटीशन में हिस्सा लिया तो भाई क्या लुक थी बॉडी की यार,
1: क्या बात है,
2: मैं आज तक नहीं भूल पाया
1: भाई। राज वाज पूछो, ये कितने महीने का काम है, कितने महीने की मेहनत करी भाई ने, डंड शंड पेल का कैसे कर लिया ये?
2: वो पुराना शौक था और बकायदा हमें पता इसलिए चला था कि किसी कोई लड़ाई हुई थी और उसमें ये पता चला था कि सर ने ना खूब फोड़ा अगले को, तो हमें यकीन नहीं हो रहा था।
1: क्या बात है सर को मेरा सलाम।
2: हमें दूसरे लड़के ने बताया भाई जिसको तुम लोग ये नॉर्मल सा बंदा समझ रहे हो ना, वो इस जिम में ट्रेनर है, ठीक है,
1: ये ट्रेनर है भाई, ट्रेनर के साथ पढ़ाते भी थे वो। अरे ये कैसा कॉम्बिनेशन है भाई
2: प्रॉपर नहीं ना कि फुल टाइम जॉब नहीं है ना, पार्ट टाइम जॉब जाना अपना भी करना और साथ में ट्रेन वगैरह भी कर देना
1: भाई,
2: दो चार लड़के जरा फिक्स रखे हुए वो वाला काम था।
1: क्या बात है, ऐसी बॉडी बन जाके भाई, क्या बात है भाई भाई ये तो कोई बहस नहीं कर सकता, ऐसे प्रोफेसर या टीचर से भाई किसी के बस की नहीं है। सारे के सारे अटेंटिव क्लास में नहीं मेरा ये मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिनका हाव भाव, जिनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ बड़ी खास बात होती है। अपने अपने बारे में कुछ नोटिस किया आपने कि आप कुछ आदतन कुछ कर देते हो, फितरतन सॉरी आदतन तो क्या?
2: अभी अभी तो कुछ नहीं, वैसे मेरा ये होता है कि अगर कहीं से डांट सुन रहा हूँ या बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा हो ना, तो मैं अपने ना फिंगर से इकट्ठी करके तो नाखून के अंदर नाखून डालकर मूव करता रहता हूँ।
1: अरे
2: ये मेरी कुदरती नेचर है।
1: अरे
2: बस अगली बात सुन रहा हूँ बड़े गौर से, नाखून के अंदर नाखून डाल के घुमा रहा हूँ, होता है वो कुछ नहीं रहा है लेकिन फिर भी बस
1: मजे आ रहे हैं ऐसी
2: मजे आ रहे। और एक आदत अडॉप्ट की थी मैंने, बच्चा था जो जना मेरे वाली साहब के किसी दोस्त के बेटे थे।
1: अच्छा
2: तो उनकी ना हाइट माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, अराउंड सेवन के लगभग ना
1: भाई, 7 फुट के करीब तो बहुत हो गई हाइट। हाँ
2: भाई वो लिटरली टॉल बंदे था. हमारा जो गेट लगा हुआ था घर का वो 6'5" का लगा हुआ था.
1: अच्छा
2: ठीक है. हाँ. और उसमें तो झुक के निकलता था बंदा.
1: अरे भाई ये खाली वाली घर में रखे थे क्या चक्कर है ये. नहीं खैर वो तो खैर उनकी हाइट है, उनकी मजबूरी है, वो बेचारे झुक के ही जाएंगे, उनको झुकना ही पड़ेगा इन जगहों पे. पर ये जो है ना, ये जो लोगों की बॉडी लैंग्वेज में कुछ खास बातें होती हैं, पता नहीं होती उन्हें, ये भी है, ये भी खास बात है. तो
2: उनसे एक हैबिट जना अचीव की थी मैंने जिसको बोलते हैं, वो ये था कि उनके ना कदम बहुत बड़े बड़े होते थे. कदम इधर तो दूसरा समझ लोगे 20 मीटर 10 मीटर के हिसाब से था. चले थे बड़ा कदम था तो स्पीड में था. अब उनके साथ जब जब चलना था स्पीड वाले कदम तो काफी टाइम ना वो हैबिट मेरे साथ रही. जब भी किसी के साथ जाना तो हमजा भाई वो पहुंचे पीछे से आवाज दे रहे हो भाई
1: छोटे छोटे कदम
2: आओ तो रुको तो भाई साथ साथ चलो यार.
1: अच्छा
2: तो ये वाली कहानी थी मुझे.
1: अरे थैंक यू सो मच भाई ये बताने के लिए. अच्छा अच्छे से समझा भी दिया आपने, लोगों को समझ आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं. ठीक है मेरा भाई, कहानी जरूर सुनना भाई आज की, बहुत जबरदस्त.
2: ठीक है इंशाल्लाह भाई, मैं इंतजार कर रहा हूँ. ठीक है बाकी गांव में याद रखें. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम मेरे भाई, वालेकुम सलाम. जैसे भाई ने बताया ऐसी होती है कुछ चीजें ना, आप इन्वॉलंटरी कर रहे होते हैं, हमको पता ही नहीं होती. अब मैं जैसे मुझे लगता है कि मैं तो यार सीधा ही सोया था, ये कौन सी पोजीशन में आ गया मैं, तो वो ऐसा ही है, पता नहीं ना चाह के भी ऐसा हो जाता है, वो समझ के बाहर है वो. एक और मैसेज आया है मेरे पास, एक भाई कह रहे हैं कि भाई आप में एक सिफत है लेकिन आपको पता नहीं है, क्या है मोहम्मद भाई बताइए, सस्पेंस मत पैदा करो भाई. एक मैसेज है, जितने भी इनके दोस्त हैं, कौन से दोस्त हैं, फवाद जानी, जुबैर, हैदर, ये सारे के सारे यूरोप ट्रिप पे जा रहे हैं और वो भी बॉयज ट्रिप है ये. भाई क्या चल रहा है ये. फवाद यू आर द बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट ट्रिप विद यू नेक्स्ट वीक. ये सबके सब आपस में बात नहीं कर रहे, मेरे थ्रू बात कर रहे हैं ये. मैं कबूतर हूँ जुबैर भाई. एक सेकंड रुको, एक जरा कॉल आ रही है. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम.
4: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई.
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कमाल भाई, कैसे हैं आप
4: भाई. ये क्या जादू कर दिया है भाई, 5 बजने से पहले ही आपका इंतजार होने लगता है
1: भाई. आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है
4: आपकी मोहब्बत है भाई, जो खींच के लेके आ गई है
1: भाई. बहुत प्यार, बहुत
4: 5 बजे में कभी ध्यान में ही नहीं रहता था ये किसका शो चल रहा है क्या चल रहा है.
1: थैंक यू.
4: लेकिन अभी 5 बजने से पहले ही यार इंतजार करना पड़ता कि अब कबीर भाई आएंगे.
1: बहुत शुक्रिया भाई.
4: मूवी देख रहा था, मूवी रोक के रखा.
1: कौन सी मूवी देख रहे थे आज
4: कबीर भाई से.
1: अरे क्या बात है, ये पता है एक मूवी है कमाल भाई, क्योंकि आप देखते हैं, आपने बटरफ्लाई इफेक्ट देखी है.
4: बटरफ्लाई इफेक्ट देखा नहीं हूँ लेकिन एक दो बार ट्राई किया, मिली नहीं तो इसलिए जो है.
1: अरे भाई मैं आपको लिंक देता हूँ, बटरफ्लाई इफेक्ट देखो आज आप. अरे मौज आ जाएगी आपको कमाल भाई, क्योंकि आप थोड़ी सी वो वाली मूवीज भी देखते हैं ना, साइकोलॉजिकल टाइप की, जो मिस हो गई हो तो. अरे मैं
4: उसमें सुना हूँ उसके बारे में.
1: हाँ हाँ देखो आप, देखो मैं आपको
4: किया था.
1: कोई नहीं, मैं भेजता हूँ आपको, टेंशन मत लो. और कमाल भाई क्या क्या आपने हाव भाव किसी का नोटिस किया है, कोई जैसे होता नहीं कुछ कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ, हाथों से समझ में नहीं आता, वो उन्हें याद भी नहीं रहता कि कर रहे हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कोई देखा आपने ऐसा बंदा.
4: नहीं मैं तो ऐसा नहीं देखा हूँ लेकिन मेरे साथ में था, अभी तो नहीं है, उसको तो छूट गया. बचपन में मेरी पैर की उंगली है ना अंगूठा, तो जितना चाहे उतनी बार मैं फोड़ सकता था आवाज के साथ बिना हाथ लगाए.
1: अच्छा ये कैसे भाई.
4: आंखों में भी मतलब एक ऐसा था, अभी भी कभी पहले बहुत होता था लेकिन अब नहीं करता हूँ.
1: हाँ.
4: पहले क्या होता था, जब टीवी या कोई भी चीज नजदीक है ना तो वो उसको जो है जैसे नहीं टेलीस्कोप में दूर देखते हैं.
1: हाँ.
4: वैसा मैं देख सकता था उसको दूर करके.
1: अरे क्यों भाई, पर ये क्यों करते थे आप, ये कहाँ से आपके अंदर आई.
4: अच्छा लगता था मुझे.
1: अच्छा अच्छा
4: पता नहीं बचपन में ऐसे लेटे लेटे जो है ना कभी सोचता था तो बहुत दूर दिखती थी वो चीजें.
1: खामखा देखने का मजा था.
4: अभी समझ लो कि आपके हाथ में मोबाइल है, उसको आप अगर दूर करके देखना चाहो अजीब नहीं लगता कि एक चीज वो है.
1: बिल्कुल.
4: जैसे आप किसी कांच, हाँ अभी समझ लो किसी कांच पे चल रहे हैं या कहीं पे जुलिया ही है समझ लो, तो जुलिया को आप जब नीचे करोगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा सेप बना हुआ है उसका अलग से.
1: अब क्या इमेजिन भाई, कहाँ तक है आपका इमेजिनेशन माशाल्लाह. अरे भाई बहुत गहरा सोचते हैं आप तो.
4: वैसा मैं देखता था भाई.
1: अरे यार
4: वैसा लेंस में देखो आंखों में कैसा लेंस लगा रहता है, तो मतलब देखते ना आप कैमरे में.
1: हाँ हाँ.
4: कोई चीज को देखने के लिए दूरबीन लगा के देख रहे हैं दूर पे. हाँ. दिख रहा है.
1: हाँ. सिर्फ इंसानों को एक बार पता नहीं होती कि वो कर रहा है इनवॉलंटरीली, बट पता होती
4: नहीं
1: तो
4: होती है.
1: नहीं होती ना. ठीक है
4: नहीं होती है. बहुत दिन के बाद कभी कभी करो तो बहुत टाइम लगता है उसको करने के लिए पहले अचानक में हो जाता था लेकिन अभी टाइम लगता है।
1: नहीं आपने आपने शेयर किया भाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई। और आज की कहानी जरूर सुनिए, कल जहाज की थी, आज समुद्र की तरफ ले चलेंगे आपको।
4: नहीं वही तो नहीं है जो मगरमच्छ पकड़ पकड़ के जो
1: नहीं भाई ऐसी वैसी थोड़ी, अभी आप देखिए आपको मजा आ
4: जाएगा। आज देखिए तीन चार कहानी जो है ना कभी भी दिमाग में घूमते रहती, एक वो थी और एक कहानी आपने सुनाई थी कि जो आदमी जो है वो किसान रहता लड़का, वहाँ से वहाँ आता है फिर किसी अमीर से शादी करता है, बाद में उसको लोग बर्बाद करने के चक्कर में रहते हैं, वो खरीदता है बेचता है सब कुछ करता है लेकिन उसको कोई बर्बाद नहीं कर पाता है।
1: बहुत पहले सुनाई थी मैंने वाली
4: कहानियां बहुत पहले, उसके बाद जो है हिटलर की भी आपने सुना चुके हैं
1: आज वाली, लेकिन आपको याद रहेगी आज वाली है, याद रहने वाली कहानी है।
4: कहानी सब याद है, थोड़ा सा जो है आप वो करते हैं ना तो फिर याद आ जाती है कहानी मेरे को। वैसे भी सब कहानी आपकी, मैं अपना अभी किस पे वो कर रहे थे आप, टिकटॉक पे या किस पे? टिकटॉक पे भी आपकी कहानी है?
1: हाँ मैंने उस पर डाली,
4: इंस्टाग्राम पे नहीं है।
1: मैं अभी अभी टिकटॉक पे एक्टिव हो जाऊंगा, मैं अभी वहाँ पे डालूंगा ताकि छुट्टी पे भी मैं डाल सकूं, तो मैं छुट्टी हो जाऊंगा तो कहानी वहाँ डालता रहूंगा।
4: एक्चुअली मिस कर रहा हूँ भाई, जैसे आपने सुबह बोलते थे कि शाम में जो है रेप सुनाएंगे, शाम में भी रेप।
1: अरे वो अभी वो कुछ चीजें होती हैं प्रोटोकॉल के जरिए, पर ठीक है ये तो कम से कम है, कहानियां तो है अपने पास तो वो हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है।
4: ठीक है, बात नहीं है,
1: ठीक है मेरा भाई, अब ख्याल रखिए कमाल भाई, बस मैं स्टोरी शुरू कर रहा हूँ। ओके लाफिज भाई, लाफिज। और कमाल भाई के बाद एक बड़ा कमाल का बड़ा अजीब सा मैसेज आया मेरे पास, ये क्या बात हुई भाई, मुझे कह रहे हैं कि आप दूसरी शादी करो, मैं समझा नहीं ये क्या बात हुई। एम के भाई वालेकुम अस्सलाम, हुसैन मैंने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? आई डोंट वांट पीस, आई वांट प्रॉब्लम ब्रो। आपके सजेशन की सारी देख ली मूवी, अब आगे क्या देखूं मैं बताता हूँ हुसैन भाई, डोंट वरी। एक भाई ने मैसेज किया है, न्यूज देखिए आपने, कल आपने एयरप्लेन की स्टोरी सुनाई और कल न्यूजीलैंड की कोई फ्लाइट लैंडिंग करता टेक ऑफ अगेन, कोइंसिडेंस। मुझे लग रहा है कि मैं मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहा मेरे भाई, ये मैनिफेस्टेशन तो नहीं चल रहा है मैं मेरा कोई मकसद नहीं था ऐसा सोचने का भी, आई डोंट नो हाउ कम दैट हैपेंड। हमारे यासर भाई वालेकुम अस्सलाम, एक मैसेज है कॉल मी इफ यू कैन, ऑफ कोर्स मैं कॉल करता हूँ जी, कॉल करने जा रहा हूँ मैं। ये नंबर एक सेकेंड में कॉल करता हूँ फुफाद भाई को, फुफाद भाई को हम। और एक और मैसेज है इस्लाम अहमद साहब का, वालेकुम अस्सलाम। समंदर की स्टोरी भाई, समंदर की स्टोरी गानी आज तो आग लगा देंगे, एक सेकंड भाई। अरे ये दोनों कॉल कैसे उठ गई, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, सिर्फ मैं ही उठा हूँ, बाकी नहीं उठा कोई भी।
1: भाई साहब एक और कॉल उठ गई थी, आपको क्या पता है
3: यार, आप क्या एक बड़े से दो दो कॉल उठा रहे हैं?
1: ये तो देखिए आप क्या करूं, मैं दो आंखें बारह हाथ, देखिए आपने मेरे ऊपर ही बने
3: ऐसा कमाल हाथ है आपका, एक कॉल से दो
1: बस बस, कभी कभी घमंड नहीं गया, कभी घमंड नहीं गया। फवाद भाई ये क्या सुनने में आ रहा है मेरे, आप बॉयज ट्रिप पे जा रहे
3: हैं? हाँ सर, बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली है।
1: ये आप प्लीज इस पूरी पब्लिक को, पूरे कतर में बताइए, ये आपने कैसे किया भाभी को कन्विंस एक बॉयज ट्रिप के लिए, वो भी यूरोप के लिए, कैसे? प्लीज शुरुआत से बताइएगा मुझे, आई वुड लव टू नो। टीचर जी
3: सर, पहले मैंने कहा कि मैं जा नहीं रहा, वीजा अप्लाई कर रहा हूँ।
1: ठीक है
3: फिर जब वीजा आ गया मैंने कहा नहीं जाता बेगम, तुम लोगों के बगैर अच्छा नहीं लगेगा, अब लड़कों के साथ जा, क्या फैमिली के साथ
1: यहाँ थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी।
3: नहीं तुम जाओ जाओ जाओ जाओ, बच्चों खैर है हम भी छुट्टी पे, हम बाद में कहीं चले जाएंगे, तुम जाओ। तो फिर मैंने कहा चलो तुम कहती हो तो फिर मैं चला जाता हूँ।
1: यार क्या जबरदस्त एक्टिंग करी है आपने, क्या जबरदस्त एक्टिंग करी है भाई, वाह यार बहुत बढ़िया। तो अभी आजकल जब अभी ट्रिप से पहले पहले जो आपका वक्त बीतेगा अभी घर में है ना, ये नोटिस पीरियड की तरह वक्त होगा मुझे लग रहा है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी छुट्टियां भी हो गई हैं बच्चों की।
1: हाँ हाँ
3: ठीक है, और ये अगले इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को फ्लाइट है।
1: हाँ
3: ठीक है,
1: हाँ
3: तो फिर 10 दिन का बॉयज ट्रिप है पूरा।
1: 10 दिन का बॉयज ट्रिप के लिए कन्विंस कर लिया आपने?
3: रोम है, वेनिस है, फिर मिलान है, फिर ज्यूरिख है, फिर म्यूनिक है, फिर फ्रैंकफर्ट।
1: ये चूना लगाना कब से सीखा आपने, मतलब कौन सी एज से? यार बताओ यार आदमी 10 दिन के लिए ट्रिप पे, या आदमी रात को घर से बाहर निकल पा रहा है, ये आदमी बॉयज ट्रिप पे जा रहा है, बताओ कैसे?
3: बस यही है, यही कमाल है।
1: अच्छा ये कमाल शादी के कितने सालों बाद आपने डेवलप किया ताकि लोगों की उम्मीद बनी रहे कि एक टाइम पे
3: 20 साल बाद
1: ऐसा कर पाएंगे हम, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं?
3: जी
1: मुमकिन,
3: 20 साल बाद आप थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं,
1: थोड़ी सी कोशिश
3: अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा।
1: ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है,
3: जाहिर बात है कहीं और देखते पकड़े गए या किसी के साथ मैसेज पकड़े गए तो फिर जारी वाला ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाएगा।
1: अच्छा ठीक है, तो ये जो अभी अभी नोटिस पीरियड है आपका, जब तक आप फ्लाई आउट नहीं करते तब तक बड़ा बच के रहना पड़ेगा आपको फहद भाई, बहुत ही
3: सर, मैं तो बिल्कुल नाते लगाई हुई है सर और कुरान सुनता हूँ सर और नमाज की तरफ राग़िब हूँ पूरा
1: माशाल्लाह,
3: ताकि जितनी नमाजें हैं 10 दिन से पहले पहले पढ़ लें।
1: भाभी से आप करके बात कीजिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ, आप करके
3: सर। तो मैं बिल्कुल, आप क्या आपने कहाँ खाना है बता दें, अगर दिल नहीं कर रहा ऑर्डर कर दे।
1: वाह वाह यार, लेकिन आप इंस्पिरेशन बन गया फवाद भाई, आज आप हमारे लिए मॉडल बन गए, मॉडल फवाद भाई।
3: तो मुझे जाके पता लगेगा कि होगा क्या, लेकिन आके फिर बताऊंगा आपको बैठ के एक साथ से।
1: नहीं आके तो मुझे जानना ही नहीं ना, आके तो मुझे जानना ही नहीं ना, मैं क्यों जानू भाई, हम वो करने पा रहे जो आप कर पा रहे भाई, बॉयज ट्रिप बना ले रहे हो, बताओ यार यूरोप की हद हो गई यार, कमाल है आपको। मतलब
3: बेगम को लास्ट टाइम बोल दिया मैंने कहा जी सब बुकिंग हो गई है, ट्रेन बुकिंग हो गई, सब कुछ चल गया है, तो कहती हो तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, पैसे तो वापस सारे नहीं आएंगे, लेकिन चलो तुम अगर आपका दिल है तो नहीं कर रहा तो फिर कुछ कर लेते हैं, और नहीं तुम जाओ जाओ जाओ।
1: छी यार कितना ड्रामा है, कितना ड्रामे हो यार, कसम से यार फवाद भाई,
3: थोड़ा सा तो मुंह बुलाना पड़ता है ना सर आखिर में, सात अच्छे दोस्त भी है ना, जुबैर साहब है, हैदर साहब है, अब जारी बात है फिर।
1: और ये सबने मिलके, चलो आपने तो कन्विंस कर लिया, आपके दोस्तों ने भी घर पे कन्विंस कर लिया।
3: हाँ ना सर, ये लोग अलग तरीके से ब्लैकमेल होते हैं ना, हर किसी का अपना अपना क्राइटेरिया है, एक पहले किसी घुमा के लेके आया फैमिली को, दोबारा लेके जाएगा कहीं ना कहीं।
1: अच्छा
3: ठीक है हाँ। एक पहले से घुमा के ले आया बाहर से, तो इस तरह कोई ना कोई तरीके से किसी ना किसी ने अपने घर में सेटिस्फेक्शन दी है।
1: यार आप लोगों को तो फेसबुक पे फैन पेज बनाना चाहिए यार, मैं सबसे पहले लाइक करूंगा, कमाल की बात
3: है सर, बड़ा कमाल रहा है, मैं तो इम्प्रेस हो गया अपने आप से खुद।
1: ये तो है, आज आपको घमंड करने का पूरा पूरा हक है, कर सकते हैं यार।
3: और मैं सोचता हूँ मेरी बेगम कितनी अच्छी है।
1: हाँ यही तस्बीह पढ़ते रहनी है आपको अभी कि आज
3: ये अल्लाह सबकी बेगमों को यही हक इसी तरह हदायत दे।
1: आमीन,
3: ये अल्लाह मेरी बेगम सुन ना रही हो
1: नहीं अभी तो ट्रैक रिकॉर्ड आपका साफ है, अभी तो ट्रैक रिकॉर्ड साफ है आपका, कोई टेंशन थोड़ी
3: नहीं। ये ना हो आप कभी बेगम को मैसेज कर दे, ये ना हो पता लगे बेगम को मैसेज पहुंच गया रिकॉर्डिंग का।
1: मैं फ्लाइट से 4-5 घंटे पहले जो है इत्तला कर दूंगा, ठीक है
3: बस सर
1: ठीक है
3: सर, सबको सर बस, और सुनाएं
1: आप, सुनाने के लिए क्या बचा तबीयत, क्या कौन सी तबीयत यार, क्या पूछ रहे हैं आप हमसे, हम आप खुद तो वॉइस ट्रिप पे जा रहे हैं।
3: आप एंजॉय कीजिएगा अगले 10 दिन यहाँ पे, मैं आपको यूरोप से फोटो भेजूं।
1: चलो फोन रखो, सीधा फोटो भेजूंगा ठीक है फवाद भाई, ठीक है अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ठीक है चलो नहीं तो, तो फवाद भाई ने तो अगली कॉल उठा लेते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात।
1: जी भाई आपका नाम भाई,
5: बात कर रहा हूँ भाई,
1: कौन बात कर रहा हूँ जी भाई बताइए।
5: भाई पता, मैं कॉल अभी नहीं करने वाला था, जरूरी काम था, लेकिन मैं वो काम अभी छोड़ के कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फवाद भाई की बातें सुनी। भाई
1: आपको दर्द नहीं हुआ थोड़ा सा भी, मतलब आपको नहीं लगा
5: भाई, थ्री इडियट में एक डायलॉग है इमन साइकोलॉजी, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है
1: बिल्कुल,
5: लेकिन टॉप कर जाए तो और ज्यादा दुख होता है।
1: बस वही हुआ है भाई वही तो
5: भाई वही हुआ है। फवाद भाई के लिए हैप्पी हूँ कि चलो भाई वो जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भाई हम
1: बताइए हम, और देखिए इनको शर्म भी नहीं आ रही, कह रहे हैं वहां से फोटो भेजूंगा, देख रहे हो आदमी को, मतलब हद हो गई यार।
5: कसम से भाई फवाद भाई सल्यूट है भाई को यार, पहले मिले होते काश
1: हम भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाते, ट्रेनिंग स्पेशल ट्रेनिंग
5: सही बात है भाई आज स्टोरी तो फवाद भाई नहीं सुना दी भाई खुशी भी है दुख भी हो रहा है भाई, क्या करूं मैं
1: मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ फवाद भाई के लिए, फवाद भाई कोई बात होती है 10 दिन की बॉयज ट्रिप पे जा रहा आदमी, बताओ यार कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया
5: काश भाभी को 2 घंटे पहले पता चल जाए उनके चेक इन होने से
1: पासपोर्ट छीन के फाड़ देंगे वो, था ना महिला फाड़ दीजिए कानून की किताबें
5: अरे भाई वो तो वो और 10 लोग वो जो है वो लोग भी कैसे है
1: अच्छा इन्होंने अकेले ने कन्विंस किया है, बाकी लोगों ने कन्विंस किया है भाई, ये मेन बात है, इन्होंने तो किया बाकी लोगों ने भी घर पे कन्विंस किया होगा, तो इनका तो ये कहना है कि 20 साल के बाद तजुर्बा जब हो जाता है इंसान को तभी मिलता है सब्रेक, तो 20 साल का वक्त कह रहे हैं ये लोग,
5: ये भी सही है,
1: तो ऑल द बेस्ट ही कह सकता हूँ भाई आपको भी, मैं ऑल द बेस्ट भाई, अब तो क्या कर सकते हैं,
5: ठीक है भाई
1: ख्याल रखिए भाई, और तो क्या है ठीक है,
5: ख्याल ही रखे भाई, हम तो मैं सदमे हूँ, चाय पीनी पड़ेगी।
1: चाय पीजिए भाई, मैं खुद अभी एक थर्मस खाली करने वाला हूँ, मुझे ऐसा लगता है कम में। ठीक है भाई, चलो कहानी सुना लेते।
5: एक तो गर्मी में काम करके आंखें लाल हो रखी है, ऊपर से आंखें बाहर आ गई है बातें सुन के।
1: डैशबोर्ड में निकाल के अपनी आंखें रख दो और आराम से सुनो कहानी, ठीक है?
5: भाई आंसू रुक नहीं रहे भाई, पता नहीं।
1: अरे वही है ना, फवाद भाई कॉल करे, मैं बहुत खुश हूँ फवाद भाई आपके लिए, मन तो
5: फवाद भाई आपके लिए बहुत खुश भाई।
1: अरे भाई साहब, खैर चलो कहानी की तरफ बढ़ते मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया
5: भाई,
1: भाई जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो इनके बाद जो है फवाद भाई ने मैसेज किया है, चलो फवाद भाई ज़मीन पे चल रहे हैं। ख्वाजा भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, मिलते खैरियत? कुछ देर पहले खैरियत से था, अभी फवाद भाई की कॉल से पहले एक मैसेज आया है भाई को, बोलने जाने से पहले एक रोज़ बुके दे जाए, साथ बोले कि मिस करूँगा, फिर बाद में रोज़ कॉल। लोग यही करने वाले, जो भी ये कह रहे हैं भाई, भाई साहब 10 डेज बॉयज ट्रिप, यहाँ तो 2 घंटे दोस्तों के साथ बाहर चले जाओ। तो ऐसी तैसी हो जाती। फहद भाई कह रहे हैं लव यू ऑल, ये देखो ये जाते आते बोले घर पे, बेगम बहुत याद आएगी तुम्हारी। थैंक यू फहद भाई, आज अब हमारे लीडर बन गए, एम के साहब कहते हैं लव यू भाई, लव सो लव भाई। खैर अपना तो क्या, हमें कौन सा बॉयज ट्रिप पे कोई ले जा रहा भाई, हम तो क्या ही कर सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं, कहानी सुना देते हैं। फवाद भाई अगर आप समंदर पे जाने का प्लान कर रहे हैं अपने बॉयज ट्रिप पे, तो ये कहानी सुन के जाएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु वांट टू ट्रैवल। सो एक सिर्फ एक प्रोमो के बाद मिल रहे हैं, एंड उसके बाद फिर कहानी आएगी। सो आज की कहानी जो जो लाइव सुनने वाले हैं प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, व्हाट्सएप 666-221-07 है, 666-221-07। एंड ऑल्सो कल हमने जहाज़ की कहानी सुनाई थी, याद होगा आपको, इट वाज़ अ वेरी वेरी टेक्निकल स्टोरी, लेकिन मेरे पास बहुत बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस आए, एंड थैंक यू सो मच, मेरी मेहनत सफल हुई। और आज कुछ अलग कहानी है, आज हम समुद्र में चलेंगे ज़रा। तो एक बस प्रोमो के बाद मिलते हैं, आप मैसेज कर दीजिएगा कि आप लाइव सुन रहे हैं कि नहीं, अगर कर पाए तो 666-221-07। एक मैसेज क्या है, अमिताभ बच्चन ने ही ने अमिताभ बच्चन ने इनको देख के बोला होगा 7 करोड़। मुझे भी ऐसी लगता है, आया मैं।
6: हर आदत बदलती है एक अच्छी नियत से, और हर अच्छी नियत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महावश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड मैं कहानी सुनाने ही जा रहा हूँ, बहुत सारे प्रेजेंट लग चुके हैं, मैं भी शुरू करता हूँ। और बिफोर आई बिगिन, सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। सो इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती, FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है, एंड अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ध्यान से सुनने के बाद अच्छा भी लग सकता है। तो इस असली किस्से के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज इट हैज सम वेरी सरप्राइजिंग एलिमेंट्स। सो करते हैं शुरू। मैं हूं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, और आज का जो किस्सा है उसे सुनाने के लिए ज्यादा साल पीछे नहीं जाएंगे, लेट्स स्टे इन 2000s। सो आज के किस्से के लिए चलते हैं जरा साल 2013 में, अप्रैल का महीना था, 17 तारीख थी, और ये किस्सा है एक शख्स का जिसका नाम था ब्रेट आर्चिबोल्ट। ब्रेट जो था वो 50 साल का बंदा था, और 50 इयर्स होने के साथ साथ वो बहुत कामयाब थे, मतलब वो केप टाउन में रहते थे, अपनी वाइफ अनीता, 2 बच्चे थे उनके, जारा और जेमी, और एक बिजनेसमैन होने के नाते उन्होंने हर चीज कुर्बान कर दी थी अपनी फैमिली के लिए, लाइक नो टाइम फॉर एनीथिंग एट ऑल। बहुत मेहनती, मतलब ब्रेड के फैमिली वाले तो कहते थे कि क्यों टिकता ही नहीं है, अभी फैमिली का बिजनेस भी एकदम स्टेबल हो चुका है तब भी उन्हें चैन नहीं आता. ही इज सो माइक्रो मैनेजिंग एवरीथिंग कि वो किसी चीज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते. और फैमिली को देखते ही बुरा लगता था कि यार इतनी जिंदगी पूरी लगा दी हम सबके लिए, तो इनको हॉलीडे तो मिलना चाहिए. ब्रेड जो थे वो हॉलीडे की तलाश में शुरुआत से थे, मगर वो जाते नहीं थे. उन्हें डर था कि अरे मेरा बिजनेस है, मैं ऐसे कैसे छुट्टी पर चला जाऊं. मगर वाइफ अनीता जो थी वो ब्रेड को कहती रही थी, ब्रेड देखो बहुत हो गया, आई थिंक तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वाइफ ने अनीता ने जिद करके उनसे कहा नहीं ब्रेड छुट्टी लो अभी के अभी. और फिर वाइफ की जिद के आगे तो कौन बोल सकता है, और ब्रेड ने हाथ हथियार वहीं डाल दिए. और उसके बाद उन्होंने अपने 9 दोस्तों को तैयार किया, तो ये कुल मिला के 10 लोग थे एक साथ. इत्तफाकन सोचिया जब इसी बारे में बात भी कर रहे थे. सो 9 दोस्त तैयार हुए ब्रेड के, और उन्होंने प्लान किया कि ये लोग इंडोनेशिया जाएंगे और वहां जाके खूब मजे करेंगे. और एक काम करेंगे, जहाज वहाज से नहीं जाएंगे, आप समुद्री जहाज से जाएंगे. और स्पेसिफिकली एक बोट इन्होंने बुक करी, इस बोट का नाम था नागालॉट. ये जो बोट थी इसके अंदर इन्होंने डिसाइड किया आराम से जाएंगे, 10 घंटे की ओवरनाइट जर्नी है, क्रॉस करते हुए जाएंगे मेंटावेट स्ट्रेट, और फिर अपने सफर में आराम से मौज मस्ती करते हुए जाएंगे. दिस वॉज देयर प्लान. सबके घर वाले राजी, सब एकदम सेट, प्लान एकदम फिक्स. और ब्रेड की तो खुद की पत्नी ने बोला था कि तुम जाओ भाई, बहुत मेहनत कर ली. अभी लोग बोट पे चढ़े, एवरीबॉडी वाज रियली एक्साइटेड. एंड इस सफर में क्या क्या होने वाला है, किस तरीके का रास्ता है, इनको किसी ने पूरी तरह से बताया नहीं. ये उसके लिए आधे तैयार थे और आधा इन्हें पता भी नहीं था. बहरहाल ये जब बोट पे थे तो उन्होंने खाना पीना जब शुरू किया तो ना जाने क्या हुआ, सी सिकनेस थी कि क्या हुआ, लेकिन खाना खाते ही 6 लोगों की बुरी हालत हो गई. मतलब फौरन वहीं बीमार पड़ गए, और इतने ज्यादा बीमार पड़ गए कि किसी को वॉमिटिंग हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है. एंड ब्रेड की भी काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी. अब रात के 2 बज रहे थे, सब अपने अपने कैबिन्स में सो रहे थे इस बोट में, और ब्रेड जो था वो भी अपने कैबिन में था. उसकी तबीयत खराब हुई अचानक से, उसे अजीब सा लग रहा था, सर घूम रहा था उसका. तो उसने सोचा मैं काम करता हूं, जरा खुली हवा ले लेता हूं. तो वो निकला अपने कैबिन से बाहर निकल के बोट के डेक पे आ गया. जब वो बोट के डेक पे आया, जो उसने मंजर देखा वैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था. जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, आप ब्रेड को अपने आप को ब्रेड की जगह रख के देखिए. सो यू आर ऑन द डेक, एक बोट है

रात के 2 बज रहे हैं, पूरा समुद्र है, आसपास कोई लैंड मास नहीं दिख रहा है, कहीं से भी कहीं तक कहीं जमीन का नामो निशान नहीं है, इट्स ऑल सी। रात में एकदम गुप्त अंधेरा, यू कैन नॉट सी एनीथिंग, और ऊपर से अच्छा खासा तूफान आया हुआ है, मतलब लहरें उठ रही हैं, 10-10, 12-12 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं, और बोट जो है वो कभी राइट तो कभी लेफ्ट, और बिल्कुल तराजू की तरह इधर उधर हो रही है। ऐसे में ब्रेट जब ऑब्वियसली डेक पे आए तो उनको भी थोड़ा डर लगा कि यार ये क्या है, क्योंकि कैबिन के अंदर इतना अंदाजा हो नहीं रहा था। ऑफकोर्स एक बोट की आवाज सुनाई दे रही थी और बाहर बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर इस तरीके का एहसास नहीं था कि इतना खतरनाक दिखता होगा बाहर आके। बहरहाल ब्रेट जो थे वो बाहर आ चुके थे बोट के, मतलब बोट के डेक पे आ चुके थे, और उनकी तबीयत बहुत खराब थी, तो वो रेलिंग होती है ना, रेलिंग पकड़ के वो खड़े हुए थे, सामने देख रहे थे, हवा खा रहे थे, और उनको उल्टियां आई जा रही थी, वो रुक नहीं पा रहे थे। एकदम से क्या हुआ, जो बोट थी उनकी तरफ के जो साइड थी बोट की, वो थोड़ी नीचे की तरफ हुई, टिल्ट करने लगी समुद्र की तरफ, क्योंकि ऑफकोर्स तूफान आया हुआ था। तो जब ये टिल्ट हुई, टिल्ट होने के बाद ये रेलिंग पे इनको चक्कर आने लगे, और ये बोट से किसी वक्त रात के बोट से गिर गए समुद्र के अंदर, एंड ही वॉज अनकॉन्शियस एट दैट टाइम। जब ये गिरे हैं तो समुद्र पूरा वायलेंटली बिहेव कर रहा था, ऊपर से बारिश और हो रही थी, उनका दिमाग एकदम स्विच ऑफ हो चुका था, अनकॉन्शियस, और बोट आगे चली गई तूफान में। और इनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती, जिस बोट में थे नागालॉट, बोट में सब के सब सोए हुए थे अपने अपने कैबिन्स में, उनको कोई और तीसरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उनके लिए तो एक इंजन की आवाज थी, एक बाहर तूफान की बारिश की आवाज थी, कोई तीसरी आवाज सुनाई देना नामुमकिन था। ये जो बोट थी, आप सोचिए, बंदा एक गिर चुका है समुद्र में, नोबडी नोज अबाउट इट, और बोट अपने सफर पे आगे निकल गई। और इस बोट ने अपना सफर पूरा भी किया, और ये पहुंची हार्बर पे, उसे बांधा गया, बोट को वहां पे डॉक किया गया। अभी तक लोगों को होश नहीं है कि उनका एक साथी गायब है इस बोट से, ही इज मिसिंग, क्योंकि अभी सब अपनी आंखें खोल रहे हैं, नींद से उठ रहे हैं, सबको लग रहा है कि ब्रेट तो अपने कैबिन में ही होगा। और ब्रेट जब ये पहुंच चुके थे, ब्रेट अभी इनसे जहां पर ये हैं वहां पे 5-6 घंटे दूर समुद्र में कहीं है, नोबडी नोज। आप जरा सोचिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तब नहीं शुरू होता जब ब्रेट बोट से गिरा है, वो तो तब शुरू होगा ना जब किसी को एहसास होगा कि ब्रेट गायब है, और ब्रेट तो मिडल ऑफ द नाइट ओशन में गिर चुका था, वो तो घंटों से गायब है। दूसरी तरफ ब्रेट जो समुद्र में गिर चुका था, ब्रेट को जब होश आया, क्योंकि वो सिंकिंग होने लगा था, डूबने लगा था, उसकी हालत खराब होने लगी, वो मचलने लगा, उसकी जब आंखें खुली तो उसने जो आसपास देखा उसे समझ नहीं आया ये क्या हुआ। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ कि आपकी आंख खुलती है और आप अपने आप को समुद्र के बीचों बीच पाते हैं, एंड ही वाज स्केर्ड, ये क्या हुआ। ऑल ही कुड रिमेंबर, उसे सिर्फ इतना याद था कि उसे चक्कर आए थे और वो गिर गया था, एंड हिज माइंड जस्ट स्विच्ड ऑफ। अब वो तैर की किस तरफ जाए, उसे अब ऐसा होता ना कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो तैरने लगा, मगर तैर के जाएगा किस तरफ, बोट का पीछा तो वो कर नहीं सकता, 5-6 घंटे वो तैर सकता नहीं है, सब कुछ गायब उसकी नजरों से, जहां तक नजरें जा रही थी वहां तक समुद्र। उसने डिसाइड किया कि समुद्र से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, और वो वहीं पे रुक गया, वह लेट के फ्लोट होने लगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि ये उसकी जिंदगी का क्लाइमैक्स है। पर अब मसला ये था कि अभी भूख प्यास लगने लगी थी, क्योंकि इससे पहले वो काफी वॉमिट कर चुका था और उसका पेट खाली हो चुका था, और अभी समुद्र में था, भूख लगने लगी थी, बुरे हाल थे,
और उसकी आंख भी बार बार भारी हो रही थी। आंख भारी होती उसका, जब भी फेस गिरता पानी में तो वैसे ही एकदम से उठ जाता और मुंह में पानी भरने लगता, वो नमकीन ओशन का पानी। और जैसे ही पानी है समुद्र का मुंह में जाता वैसे ही बाहर निकालना पड़ता क्योंकि एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉल्टी। अर्ली मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा टाइम पहले समुद्र में वापस से हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और बूंदाबांदी धीरे धीरे बारिश में बदल गई। जब ब्रेट ने देखा कि बारिश हो रही है तो उसका दिमाग ये नहीं सोच रहा था कोई आएगा मुझे बचाएगा, मैं यहां से कैसे भागूंगा। ब्रेट से फ्लोट होते हुए उसने अपनी गर्दन को ऊपर किया और बारिश के पानी को जितना पीने की कोशिश कर सकता था उतना कोशिश करने लगा। ये आसमान से बरस रही ठंडी रहमत उसके लिए जानलेवा भी थी और यही फ्रेश वाटर था जो उसके लिए जीने की वजह भी था। 3.5 घंटों के बाद, वेरी अर्ली मॉर्निंग, काले बादल अभी भी जहां पर समुद्र के सेक्शन में ब्रेड था उसके सर पे थे। ये काले बादल सर्च करने वालों को उस तक पहुंचने नहीं देने वाले, बिकॉज कौन जाएगा तूफान में। और यही काले बादल उसे बचा रहे थे उगने वाले सूरज से, क्योंकि जब सूरज आएगा उसका सामना होगा तो वो इसी समुद्र के अंदर लिटरली जिंदा रोस्ट कर देगा, जला देगा ब्रेड को अगर सीधी रोशनी पड़ी। दूसरी तरफ डॉक पर जब इसके सारे के सारे दोस्त उसके साथ गए थे इस ट्रिप पे, वो हैरत में थे कि यार हम सब बाहर आ गए, ब्रेड कहां पर है। तो उन्होंने कैबिन पे नॉक करना शुरू किया, कैबिन अपने आप खुल गया, कैबिन खाली था। ब्रेकफास्ट का हेड काउंट किया गया, उसमें एक बंदा कम। एक लंबा पॉज लिया सबने क्योंकि एक्सेप्ट करना मुश्किल था कि यार वो कैसे गायब हो गया। सब एक दूसरे को देख रहे थे, कोई ये कहना नहीं चाह रहा था कि हुआ क्या है। मगर फिर जो कैप्टन साहब थे उन्होंने बहुत बहुत गहरी और डरती हुई आवाज में ये बोला कि ब्रेट को अब ढूंढेंगे कैसे, वो तो 9 घंटे की दूरी में इस सफर में समुद्र में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये सर्च लाइन अगर वो ढूंढने भी निकले तो तकरीबन 100 किलोमीटर की है। जब यही नहीं पता कि वो कहां खोया है तो कैसे ढूंढें उसको। और ब्रेट जो था समुद्र में ड्रिफ्ट हो रहा था, वो ड्रिफ्ट होके धीरे धीरे लहरें उसे कहां से कहां ले जा रही है, नोबडी नोज। मगर फिर भी कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया और नागा लॉर्ड जो बोट थी वो वापस निकली, वापस जिस बोट से लोग आए थे उसी रास्ते वापस निकले कि हो सकता है उन्हें ब्रेट मिल जाए। पूरे के पूरे आइलैंड जो आसपास थे सब चार्टर बोट्स वहां से तैयार हुए और इस मिशन में शामिल हुए ब्रेट को बचाने के लिए। मगर एक बहुत बड़ा मसला था, मसला वही है ना, पूरा समुद्र उसमें एक सर ढूंढना है, सर किसी का सर वहां लौटता हुआ। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि आपको एक नारियल तैरता हुआ इतने बड़े समुद्र में देखना है और उसे ढूंढना है। एक तो टाइम नहीं पता था कि वो अगर बोट से गायब हुआ है, गिरा है, कब गिरा है, इसलिए ये भी अंदाजा नहीं था कि वो अगर लहरें उसे बहा के ले भी जाएंगी तो किस तरफ ले गई होंगी, कितना दूर ले गई होंगी, एंड ड्रिफ्ट करके वो कहां जा चुका है। एरिया मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। अभी ब्रेट को नहीं, ब्रेट कहां हो सकता है वो गैस चल रहा है। और अंदाजा जिन सबने लगाया है वो अंदाजा भी 99% गलत है। ओशन करंट्स जो होते हैं वो हर सेकंड्स हालात बदल रहे थे। ये ऐसा था कि लोग उस इंसान की लोकेशन ढूंढ रहे हैं जो अपनी लोकेशन पर है ही नहीं। और दूसरी तरफ ब्रेट जो फ्लोट हो रहा था उसके सामने एक और खतरा खड़ा हुआ। वो खतरा था सूरज जो अब काले बादल छटने के बाद सामने आ चुका था। सूरज की चमकती हुई रोशनी गिरी और ऐसा लग रहा था कि अब ये उसे पका देगी क्योंकि वो कहीं भाग नहीं सकता और वो जल रहा था, झुलस रहा था, उसके सर पे लिटरली छाले पड़ चुके थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो यहां जिंदा रोस्ट हो जाएगा। मुंह सूज चुका था, जबान एकदम थिक हो चुकी थी, मोटी हो चुकी थी,
और उसके पूरे पूरी टांगों में, जिस्म में, गट में क्रैम्स आ रहे थे, बल पड़ रहे थे, मसल्स दुख रहे थे बुरी तरह से। ऐसा लग रहा था कि एक एक हिस्सा बस धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा है और हर जोड़ में दर्द हो रहा था। अभी उसके ये मसल्स उसके लिए करेंसी की तरह थे, उसकी बॉडी उसके लिए राशन राशन थी बिल्कुल, जिसे बचा के रखने की कोशिश करनी थी उसे जब तक उसके अंदर हिम्मत है तब तक, और वक्त तेजी से जा रहा था। और एक जुल्म जो उसके ऊपर कुदरत ढा रही थी वो था प्यास। उसे प्यास लग रही थी, वो था समुद्र में, घिरा हुआ था पानी से चारों तरफ, लेकिन एक बूंद पानी नहीं था उसके पास पीने के लिए, क्योंकि एक घूंट अगर उसने प्यास बुझाने के लिए पिया तो प्यास और ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये सॉल्टी वाटर है। एक एक बूंद जो पिएगा उतना ही मौत के करीब चला जाएगा। जब वो पूरी तरह से झुलस गया था तो कुदरत ने एक और मजाक किया। बादल वापस से आने लगे, वापस से छा गए और बारिश फिर से होने लगी। ब्रेट ने अपने आप को जैसे तैसे, जो अभी अनकॉन्शियस हो रहा था, फिर से फ्लोट होना शुरू किया और अपनी गर्दन को ऊपर रखे बस जितना पानी हो सकता है इस बारिश का फ्रेश वाटर पीने की कोशिश करी। बारिश लेकिन जल्दी रुक गई, सूरज अभी भी उसे जला रहा था। और नीचे नीचे पैरों के पास अंदर एक हलचल होने लगी। कुछ मछलियां एक साथ उसके पैरों के आसपास मंडरा रही थीं, घूम रही थीं, ऐसे जैसे ये मछलियां बस जांच रही थीं कि ये खाना बन चुका है या कब बनेगा। और उसकी जो डेड स्किन थी उसे बार बार वो कुरीद कुरीद के खा रही थीं, जिसका एहसास उसे हो रहा था और उतना ही डर लग रहा था। और ब्रैट कुछ भी नहीं कर सकता, नथिंग एट ऑल। उसे सिर्फ तैरना आता था और उसका भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर तकरीबन 1 बजे के करीब ब्रैट को कुछ दिखा। ब्रैट को बिल्कुल, मतलब ही इज ऑन द ब्रिंक ऑफ जस्ट डाइंग। उसे एक शेप नजर आया दूर से। उसे नोटिस किया कि अरे ये तो वही वाली बोट है, ये नागालॉट थी, ये बोट जिसमें सफर करके जा रहा था, ये वही बोट थी जिससे घिरा था। उसे वो बोट नजर आ रही थी, उस बोट को वो देख रहा था कि सच में मेरी बोट है, मैं धोखा तो नहीं हो रहा मुझे। और उसे वो रेल्स नजर आ रही थी, रेलिंग थी जिस जहां से घिरा था। वो बोट और उसके बीच में, ब्रेड के बीच में तकरीबन 500 से 600 मीटर की दूरी थी। उसे लोग दिख रहे थे, बोट के डेक पे थे और सबके चेहरे समुद्र में थे, क्योंकि सबके सब इस बोट पे समुद्र में ढूंढ रहे थे। नीचे सामने कोई नहीं देख रहा था, सब नीचे की तरफ देख रहे थे, सब ढूंढ रहे थे ब्रेट को, लेकिन सामने ब्रेट था 500-600 मीटर की दूरी पर। ब्रेट को अपने दोस्त भी उसी डेक पे नजर आ रहे थे, स्कैन कर रहे थे, ढूंढ रहे थे समुद्र में। ब्रेट ने चिल्लाने की पूरी कोशिश करी, अपनी सूझी हुई जुबान से 2 लफ्ज निकालने की कोशिश नहीं कर पा रहा था वो। उसे दिख रहा है कि उससे प्यार करने वाले लोग सामने उसे ढूंढने के लिए आए हैं। उसने डेस्परेशन में अपने बेजान जिस्म से तैरने की कोशिश करी, मगर जो ओशन करंट से जो लहरें थीं उसे बार बार पीछे की तरफ धकेल रही थीं, और वो बोट की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था एक ही जगह स्टिल तैर रहा है मगर तैर नहीं पा रहा है, जैसे समुद्र ने उसे इजाजत ना दी हो। और जो लहरें उसकी छाती पे पड़ रही थी इस तैरने की कोशिश में, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर से हाथ सीने पे मार रहा हो। उसने जो कुछ भी चिल्लाने की कोशिश करी वो पहुंचना नामुमकिन थी इस बोट तक। हवाएं तेज थी, ऊपर से समुद्र की लहरों की आवाजें, उसकी आवाज 30 से 50 फीट तक भी नहीं गई। उसकी नजरों के सामने से वो बोट जो उसे बचाने के लिए आई थी, जिसमें उसके दोस्त थे, वो पहले तो रुकी, फिर मुड़ी और पलट कर वहां से चली गई। जस्ट इमेजिन आप अगर ब्रेट हो, आपको बचाने के लिए एक बोट आई, आप घंटों से पानी में, समुद्र में, इट्स नॉट इवन ए स्विमिंग पूल, ये छोटा सा पॉन्ड नहीं है, ये पूरा समुद्र है। और सामने आपकी नजरों के सामने से वो बोट जब आपको बचाने के लिए आई है वो चली जाए। दिस एग्जैक्टली हैपन्ड विद ब्रैड। नजरों के सामने से तलाश करने वाले लौट गए। मदद आई, मदद का दीदार भी हुआ, मगर मदद मिल नहीं पाई।
ब्रेड बहुत बुरी तरह रोने लगा, बचे कुछ आंसुओं से बस वो फ्लोट होता रहा। दिन की रोशनी अब जा रही थी और शाम ढल रही थी। ढूंढने वाले अब आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि ढूंढने वालों को तो देखने की जरूरत है, आंखें चाहिए और आंखों को रोशनी चाहिए, और अब तो शाम हो रही है, कोई नहीं आने वाला। किताबों में कहा जाता ना, एक आदमी इतना इतना घंटे समुद्र में रह सकता है, वो रिकॉर्ड ब्रेड कब का तोड़ चुके थे, कब का ब्रेड के जो मसल्स थे वो एकदम काम करना बंद कर चुके थे। जैसे होता है कि फोन 5% बैटरी पे होती है, उनके मसल्स जो थे वो 5% बैटरी पे ही थे। और ब्रेड के पास अब कोई चारा नहीं था, ब्रेड ने अपना सर झुकाया और बस बॉडी को स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे, वो अपने आप को तैयार कर रहे थे। फिर एकदम से जब उनकी आंखें बंद थीं और वो सोच रहे थे कि कभी भी उनकी जान अपने आप निकल जाएगी, तो उन्हें बहुत जोर से एकदम से हमला हुआ सर के पीछे से। वो बहुत जोर से चिल्लाए और ये जो हमला हुआ, ये सीगल्स थी, वो बड़े से पंछी देखे उन्हें व्हाइट व्हाइट से समुद्र में नजर आते सीगल्स, उनका हमला था ये। एक आई, उसके बाद दो आई और दोनों सीगल्स ने बहुत जोर से अटैक किया उसके सर पे, जैसे पत्थर किसी ने मारा हो। उसके सर पे जब झपट्टा मारा, नोच दिया उसका सर, खून ही खून बह रहा था। आसपास का समुद्र तो शांत था, लेकिन सीगल्स वो नहीं। उसने जैसे तैसे अपने हाथ से सीगल्स को हटाने की कोशिश करी, जो हट नहीं रहे थे, उसे टारगेट बना रहे थे, उसे अंदाजा हो चुका था कि अब ये उसकी आंख पे हमला कर सकते हैं। मगर ब्रेड को एक और ख्याल भी आया, वो ख्याल ये था कि क्यों ना मैं इनको पकड़ के खा लूं, इनको पकड़ के खा भी तो सकता हूं। जरा सोचिए क्या खेल है कुदरत का। सर झुका के मरने की तैयारी में था ब्रेड, पर समुद्र ने कुछ नहीं करा। इतने में सीगल्स का हमला हो गया, मारने के लिए आ गए। वो दूसरी तरह सोचने लगा, उसका दिमाग, उसके जहनो दिल में उसकी बस वाइफ का नाम आ रहा था, अनीता, जो उसे साफ साफ कह रही थी कि देखो हार मत मानना। उसे अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था। ब्रेड लेकिन फ्लोट हो रहा था, उसकी बॉडी पूरी तरह से फूल रही थी, बस वो इस उम्मीद में था, इंतजार में था ये कोई मच्छी आए और उसे बस खा जाए, बहुत हो गया। ब्रेड का जो दिमाग था वो स्विच हो जाना चाहता था, क्योंकि सारे के सारे लॉजिक खत्म हो चुके थे, लेकिन ब्रेड का जो दिल था उसके दिमाग को काम करने से रोक रहा था और बीच बीच में कह रहा था कि कुछ करना है। ही वॉज बिकमिंग डिल्यूजनल एंड हल्यूसिनेटिंग स्टफ। पूरी रात पागलों की तरह खुद से बातें करने लगा, खुद ही से बहस करने लगा। ये बहस वो अपने आप से कर रहा था और दिलो दिमाग के बीच में जैसे लड़ाई चल रही हो। फिर एकदम से उसकी किडनी के पास एक धक्का सा महसूस हुआ ब्रेड को, और क्योंकि रात का वक्त था तो बहुत डर गया, वो बहुत डर गया। जब उसे वो धक्का सा महसूस हुआ, उसने इधर उधर देखना शुरू किया कि क्या है, पर उसने इधर उधर देखने की कोशिश करी तो अंधेरा था, तो उसने ऐसी बस बोला कि हाँ आ जाओ मुझे खा लो, प्लीज मुझे खा लो। और फिर उसकी नजरें इधर उधर घूमी अंधेरे में, जब उसका विजन शिफ्ट हुआ तो उसने देखा एक फिन, और ये फिन थी ब्लैक टिप्ड रीफ शार्क की। ब्रेट इस शार्क के बारे में कुछ जानता था, ब्रेट ये जानता था कि ये वाली जो शार्क है स्पेसिफिकली, ये हार्मलेस है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, कुछ नहीं करती, क्योंकि वो खुद साउथ अफ्रीका में बहुत सर्फिंग कर चुका था, सो ही न्यू। और शार्क के बारे में सोचती उसके दिमाग के हिस्से में, किसी एक हिस्से में एक अजीब सा आइडिया आया कि क्यों ना मैं शार्क को पकड़ लेता हूं और ये रीफ शार्क जो है मुझे घसीट कर क्योंकि मैं खुद तो तैर नहीं सकता, ये घसीट कर किसी रीफ के पास ले जाएगी। पर शार्क जो थी वो पास आई, इसके पास से गुजर कर चली गई, और ब्रेड का जो दिल था इस वाकये के बाद पूरी तरह से टूट गया। उसका दिल इतना बुरा टूटा जिसकी हद नहीं,
वो अपनी जिंदगी के सारे गम मिला के सोच रहा था कि इतना बुरा हाल तो मेरा कभी नहीं हुआ। अब जब वो शार्क

तैर के जाता तो वो चीज़ गायब हो जाती, मगर ब्रेड अभी एकदम पागलपन छा चुका था। उससे लगा मैं शायद अगर फ्लोट होके इधर रहकर मेरी जान नहीं जा रही तो शायद तैरते तैरते मेरी जान चली जाए। ही बिकेम अ मैड मैन और तैरता रहा। और दूसरी तरफ ब्रेड की तरह ही एक और मैड मैन था, एक ढीठ इंसान, और उसका नाम था टोनी एलिंगटन। टोनी ने ब्रेड के बारे में खबर पढ़ ली थी, उसे पता लगा था एक आदमी बीच बोट से न जाने कितने बजे रात में गिर गया है। टोनी एलिंगटन को लोग डॉरिस के नाम से भी जानते थे, वो अपने बोट के मास्टर थे, उनकी बोट का नाम था बैरन जॉय। टोनी के बारे में खास बात थी, टोनी को ओशन करंट्स के बारे में, जो आसपास के ओशन करंट्स हैं उनको जानते हुए 10 साल हो चुके थे, 10 साल का तजुर्बा था। ये इन ओशन करंट्स को ऐसे जानते थे जैसे लोग सड़कों को जानते हैं, मोड़ को जानते हैं, यूटर्न्स को जानते हैं, बिल्कुल वैसे ही टोनी को इस समुद्र के बारे में पता था। तो टोनी ने डिसाइड किया कोई कोशिश करे ना करे, लेट मी ट्राई। उन्होंने अपनी बोट निकाली और ढूंढने के लिए निकल गए। उनकी बोट पे 9 सर्फ पैसेंजर्स भी थे जो अब क्रू मेंबर्स की तरह काम कर रहे थे, इधर उधर समुद्र में नजरें फिरा रहे थे, ब्रेड को ढूंढ रहे थे। टोनी ने सबसे पहले सर्च करने वालों से कहा कि तुम सबका लॉजिक ही गलत है, तुम लोग सोच रहे हो कि वो एक ही जगह घूम रहा होगा, अपना टाइम जो है वो ढंग से इस्तेमाल करो। और उसने मैपिंग करना शुरू करी, दिमाग की मैपिंग, कि वो कहां तक ड्रिफ्ट होके लहरें कितनी तेज हैं, उसका कैलकुलेशन दिमाग में कर रहा था। और टोनी ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक रास्ता बनाया और उसे फॉलो करता रहा, और ये सबसे डेंजरस रूट था। टोनी और ब्रेड बिना एक दूसरे को जाने दोनों एक तरह से एक ही सोच में थे, दोनों का दिमाग अभी एकदम एक मैडमैन की तरह काम कर रहा था। पूरे मसल जो थे तैर तैर के ब्रेड की जान निकली हुई थी। ब्रेड की बॉडी अब बिल्कुल सुन पड़ रही थी। जब सुबह होने लगी, इट वॉज अराउंड 5 AM इन द मॉर्निंग, एक टाइनी फिशिंग बोट सामने से ब्रेड की निकल गई। उसके पीछे उसने देखा कि एक आइलैंड है। पहले उसे लगा मेरी नजरों का धोखा है, ये असली है कि नहीं यही नहीं पता, चलो मैं इस फिशरमैन को आवाज लगाता हूं। आवाज लगाने की कोशिश करी, नहीं लगा पाया, और वो फिशरमैन भी उसकी नजरों के सामने चला गया, जैसे नजरों का धोखा हो। ब्रेड फिर भी इस आयलैंड की तरफ तैरने की कोशिश करने लगा, उसने अपने हालातों से दोस्ती कर ली थी। और इतने में ब्रेड को एक और शेप नजर आया, और उसे पता था अभी मुझे किसी से उम्मीद नहीं रखनी, कोई भी आने वाला है बचाने, नहीं मेरे सब नजरों का धोखा है। और उसे कुछ दिख गया है, फिर भी वो तैरता रहा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मगर ये जहाज था बैरन जॉय, ये टोनी का जहाज था। एक पैसेंजर ने टोनी के जहाज पे जो थे उन्होंने स्पॉट कर लिया था सुबह के अराउंड 5:15। उन्होंने कहा सर देखिए वहां मूवमेंट है, और फिर ये लोग वहां पे पहुंचे। जब वो पहुंचे तो ब्रेड की हालत खराब थी, ब्रेड कुड नॉट बिलीव, उसे अभी भी लग रहा था कि वो शायद हलुसिनेट कर रहा है, और वो बोट पे चढ़ने को भी तैयार नहीं था, उसे लगा ये सब कुछ धोखा है। मगर फिर उसे संभाला, उसे बिठाया, 6-7 किलो तो उसका वजन पहले ही जा चुका था, पेट में एक दाना नहीं गया था, सूजा हुआ था वो। 1 घंटा तो उसे समझाने में लगा कि अरे तुम ठीक हो। उसे वहां से ले जाया गया और फिर हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ, एंड ही वॉज सेव्ड। बताया गया कि अगर ये 40-50 मिनट तकरीबन 1 घंटे के अंदर और इस पानी में रहता तो जिंदा बचने के कोई चांसेस नहीं थे। एक्सपर्ट्स ने भी कहा दिस वॉज इम्पॉसिबल। वो बीवी अनीता जो उससे कह रही थी ब्रेड से कि तुम जाओ जाओ जाओ ट्रिप पे, तुम्हें जरूरत है ट्रिप की, आज की तारीख में भी वो यही कहती आई है तब से लेकर कि भाई तुम किसी वेकेशन पे मत जाना। एक किताब भी लिखी उन्होंने अलोन, ये ब्रेड की ही किताब है जो उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस पे लिखी है। ब्रेड ने रिकवर किया और ब्रेड इसके अगले साल ही सर्फिंग पे भी गए, अपनी ट्रिप को भी पूरा किया।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जी, 6:17 हो चुके हैं। बहुत सारे मैसेज हम लोगों के बहुत हो चुके हैं। मनीष भाई ने तो लिखा है वो चाय लेने जाने वाले थे लेकिन तब से बैठ के गाड़ी में कहानी सुन रहे थे, मजा आया। मनीष भाई बहुत सारा प्यार, भाई चाय पी लीजिए भाईजान, कोई मसला नहीं है। मैं एक जरा कॉल उठा लूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी कॉल्स एक गाने का उठाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह भाई।
2: जी भाई, जी भाई, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए।
3: मैंने सुनी कहानी पूरी भाई, ऐसा लगा मतलब मैंने एक मूवी देखी थी अपनी लाइफ ऑफ पाई। हाँ, मुझे लगा सेम, अब मैं उसका पार्ट टू देख रहा हूँ। उसमें तो खैर दो चार लोग थे, मतलब लोग नहीं, मतलब एक अपना हीरो और एक शेर, बस ये दोनों की कहानी थी भाई, बहुत ही जबरदस्त फाइनली। और एक और मूवी, मतलब एक होता है ना होप, होप उसकी, होप ने उसको बचा लिया
2: बेशक
3: भाई।
2: मेरे भाई बेशक बेशक
3: बेशक, और उसकी मेहनत, वो तैरता रहा और फिर वो मतलब करता रहा, मतलब उसने चलो भाई अब कर ही रहे आखिरी तक।
2: हाँ, जो होगा देखा जाएगा। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको चॉइस ही नहीं है, पता नहीं करना क्या है इसमें। अगर चाहे आदमी अपने आप को खत्म करने का भी, तो वो भी नहीं कर सकता, कैसे करे
3: कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना लेफ्ट का पता ना राइट का पता नहीं, अप एंड डाउन ना कोई आ सकता है। हाँ। और वो लोग भी कैसे उसको ढूंढते हैं, क्योंकि समंदर है भाई, वो रोड थोड़ी है कि उसपे कोई एक लोकेशन मैप बनी हुई है।
2: हाँ एग्जैक्टली, तो वो मिल जाना बहुत बड़ी बात
3: है। वो बोट वो तो एक बार निकल गई रडार से।
2: हाँ, तो इनका मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है।
3: और बात ये भी है कि फवाद भाई सुन रहे हो ना, 10 लोगों के साथ आप भी जा रहे हो। अल्लाह खैर
2: भाई,
3: बदला ले लिया भाई तुमने भाई।
2: पता है आपको ये कितना अजीब इत्तफाक है, इनके बात करने से पहले, ये कहानी तो मैंने कल रात में तैयार करी थी, ढूंढी थी, इन्होंने इत्तफाकन आज ये बात कही है, समझ रहे हैं आप कि मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे।
3: वही तो भाई, मैं तो उसी टाइम कॉल करने वाला था जब आपने बोला कि 10 लोगों की कहानी मतलब है और ट्रिप पे जा रहे हैं। बोला अरे ये क्या हो गया।
2: हाँ भाई, मैं खुद हैरान था, मैंने कहा बाप रे, मुझे बाद में आता है मैंने, हाँ ये कहानी भी 10 लोगों की है, तो बड़ी हैरानी हुई मुझे कसम से यार।
3: फवाद भाई का कॉल का मैं वेट कर रहा हूँ।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी, मुझे भी इंतजार है, मैं कॉल करूंगा उन्हें, मैं खुद ही कॉल करूंगा
3: भाई। बहुत लेकिन बहुत मस्त कहानी थी भाई, मैंने मैसेज कर दिया है, मुझे भेज देना, मैं फिर से सुनूंगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: चले भाई,
2: जज़ाकअल्लाह, ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो या ये कहानी का जो कहते हैं ना उसे इफेक्ट, वो बड़ा ही तगड़ा हो सकता है अगर इसको और अच्छे से, एक भाई ने लिखा है कि भाई आपने कहानी बहुत अच्छी सुनाई है, इसका प्रोडक्शन भी कराइए भाई, इतना टाइम कहाँ। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई।
2: जी प्रिंस भाई, कैसे हैं आप?
4: बढ़िया एकदम।
2: जी भाई जान, बताइए कैसी लगी आपको आज की
4: भाई। हाँ। मेरे ये समझ नहीं आ रहा था, तुम बंदे को डुबाना चाह रहे हो, बचाना चाह रहे हो, डुबो डुबो के बचाना चाह रहे हो, बचा बचा के डुबोना चाह रहे हो?
2: वो खुद डूब डूब के बच रहा था बेचारा। डूब डूब के बच रहा था वो। और अच्छी बात पता क्या थी, इनकी कहानी की डिटेल की अच्छी बात ये थी कि इनकी, क्योंकि उन्होंने खुद एक किताब लिखी है, अलोन नाम है उस किताब का, तो उसका ऑडियो बुक
4: डूबने से उसका फायदा ही हुआ, सॉरी मतलब यानी सरवाइव करने से उसका फायदा ही हो गया।
2: बट यू नो उन्होंने किताब में लिखा कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अगर वो चाहते भी कि अपनी मैं जान ही ले लूं, मुझे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। इट्स लाइक कि आपको लगता है कि भाई मेरी कहानी खत्म हो चुकी है, अब मुझे कोशिश नहीं करनी चाहिए। बट वो भी नहीं हो रहा क्योंकि समुद्र ही नहीं कह रहा ना जी ना अभी नहीं, अभी तो और मजे लेंगे, तो वो वाला सिस्टम चल रहा था इनके साथ। सो ही जस्ट हैड नो ऑप्शन।
4: बहुत खतरनाक चीज होती है।
2: हाँ वही ना,
4: जिसको नहीं हुआ है उसको पता नहीं है, और जिसको हुआ है
2: हाँ
4: उसकी फीलिंग्स को कोई समझ ही नहीं सकता।
2: करेक्ट करेक्ट। तो वो डेस्पिरेशन को उन्होंने जिस तरीके से अपने किताब में मेंशन किया, क्योंकि मैंने ऑडियो बुक सुनी थी इसकी पूरी तैयार करने के बाद।
4: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत बहुत अमेजिंग लगी कहानी, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से कहानी है, सो इट वाज मोर क्या कहते हैं विविड बताने के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगी इनकी कहानी, इसलिए मैंने कहा चलो सुना देते हैं
4: भाई। कुछ दिन पहले जो कुर्सी की तारीफ हो रही थी, ये वाकई में उस तारीफ के काबिल है कि नहीं?
2: अरे बहुत आरामदायक है अल्हम्दुलिल्लाह, मजे आ गए भाई। मजे थोड़ी नीचे नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है मैं बाल कटवाने आया हूँ। बाकी ठीक है,
4: लगाओ फोन फजील को भाई, आजा पीछे।
2: तो बस कुर्सी नीचे करने नहीं मुझे आती, नहीं हो सकता इसका फंक्शन हो, मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ आपसे बात करते करते। बट
4: बिल्कुल
2: होती होगी, कहीं ना कहीं से तो होती होगी, मैं आज सर्च करके रहूंगा। मिल गया जी, मिल गया, हो जाएगी
4: अंडर द मैट्रिक्स।
2: आवाज हो गए मजा
4: आ गया।
2: क्या बात है, आज आपने आज आपने इन्वेंशन करवा दिया, थैंक यू सो मच। डिस्कवरी सॉरी इन्वेंशन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस भाई।
4: कोई बात नहीं भाई, वही होता है एक्चुअल। तो ऑफिस में जब हम बैठे रहते हैं तो नॉर्मली होता ही है, जब कुछ काम नहीं हो तो कुर्सी ऊपर नीचे करने में या फिर उसको सीधी लंबी करने में
2: टाइम पास
4: थोड़ी सी बड़ा मजा आता है।
2: एक आदमी अभी पानी से डूब के निकला है और आपको कुर्सी पे मजे आ रहे हैं, बताइए।
4: जब आप नए फोन से मजे कर सकते हो तो हम कुर्सी के मजे नहीं
2: ले
4: सकते।
2: ये तो है, ये तो है, ये तो है, बनता है।
4: वाह भाई वाह,
2: वाह रमेश बाबू बढ़िया है। ठीक है प्रिंस भाई, पर मुझे अच्छा लगा आपने आज कहानी सुनी, चलो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत
4: अरे हाँ भाई, मैं बस डेस्परेटली अपना काम खत्म करके बस कहानी सुनने की ही कोशिश कर रहा था।
2: थैंक यू भाई,
4: और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हो गया।
2: और आपके लिए तारीफ भाई, भाई ने लिखा है कि मोहम्मद भाई ने लिखा है कि प्रिंस भाई की आवाज माशाल्लाह, ये आपके लिए आया कॉम्प्लीमेंट।
4: जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया मेरे भाई मोहम्मद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया
2: जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस भाई,
4: भाई फिर जब वो बच गया
2: हाँ,
4: उसकी वाइफ उसको जाने नहीं दे रही थी
2: हाँ,
4: तो फिर ये गया कैसे मुझे बस
2: ये फवाद भाई ने कुछ देर पहले कॉल करी थी ना, वैसे कुछ हिसाब किताब बिठाया होगा उन्होंने, रिवर्स साइकोलॉजी खेली होगी।
4: तो फिर बंदे की साइकोलॉजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है,
2: बहुत ज्यादा भाई,
4: वाइफ ना जाने दे उसके बावजूद भी निकल जाए, वाह ये तो खतरों का खिलाड़ी है,
2: देख रहे हैं आप मतलब। है हिम्मत है, देखा सोच के डर लग गया हुआ,
4: अरे है भाई, बंदे में हिम्मत है इसीलिए बच गया, ये तो डूब जाता।
2: हाँ नहीं सही बात, तो वो उसकी विल पावर मेरे ख्याल से समुद्र ने काफी स्ट्रॉन्ग कर दी, इसलिए वो बाद में जा पाया, मना पाया आई थिंक।
4: उसके बाद उसने उसका इस्तेमाल भी कर लिया अपनी विल पावर का, सही सही वाला करना चाहिए।
2: हाँ तो ये यहाँ लगाऊंगा मैं, यहाँ अपनी विल का इस्तेमाल करूंगा मैं।
4: ये वही तो बोला ना, ये बढ़िया था गुरु।
2: ये बढ़िया था गुरु। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस भाई, आपके लिए एक और मैसेज आया है, ये मेरे लिए आपके लिए पता नहीं, इन्होंने मैसेज किया है, इनका नाम है सलमान, ये कहते हैं बिल्ली की आवाज निकालो है, बिल्ली की आवाज निकालो कह रहे हैं,
4: बिल्ली की आवाज निकाले
2: हाँ
4: चलिए निकाल लेते हैं, बूं बूं।
2: बीमार है ये बिल्ली, बीमार है, गले में थोड़ा सा दुख है इसके।
4: ये बिल्ली सर्वाइवल बिल्ली है।
2: अरे भाई ग्रेट है ना, ये बढ़िया था, ये बढ़िया था गुरु, बहुत शानदार, बहुत शानदार
4: भैया।
2: क्या वो आदमी लाइफ जैकेट पहना था, अगर पहना था तो विसल क्यों नहीं ब्लो, क्या नहीं पहना था भाई उसने, कोई लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी, जब उस आदमी को सी बर्ड अटैक करा तो वो खून बहना शुरू हुआ तो उसका ब्लड के स्मेल से शार्क अटैक भी हो सकता था, हो सकता था नहीं हुआ, ये दो सवालों के जवाब मैंने दे दिया आपको, बिकॉज लाइफ जैकेट पहने नहीं था भाई, वो सो रहा था, वो सो के उठ के बस डेक पे आया था, सो ही कुड नॉट एक्चुअली वेयर एनीथिंग। है कबीर भाई आपके लिए, भाई बिल्ली की आवाज़ निकालवाऊँ, घोड़े वोड़े की निकलवा लो, एक मैसेज है बहुत सारी स्टोरी मुझे स्टोरी कबीर भाई मजा आ गया, हम 10 लोग साथ में सुन रहे थे भाई, लव यू सेंड कर दीजिएगा। ऑफकोर्स संतोष भाई फ्रॉम नेपाल, भाई मैं फ्रीज हो गया था, क्या बात हो गई भाई, कैसे फ्रीज हो गए, एक कॉल आ रही है उठा लेते हैं भाई साहब एक सेकेंड, अरे कॉल ही कट गई। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम।
2: हाँ जी पार्टी बताओ।
5: अल्हम्दुलिल्लाह आप बताओ।
2: बस भाई बढ़िया
5: यार, ये वो जो भाई का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, जो भी जा रहे 10 भाई इकट्ठे,
2: अच्छा वो फवाद, फवाद फवाद फवाद
5: फवाद फवाद भाई, भाई एक तो हौसले की दात है भाई को, ठीक है कि बात करने का जिगरा रखा भाई ने, दूसरा यार प्रिंस भाई को ये मशवरे नहीं दो,
2: नहीं दूं क्यों,
5: वो अकेले नहीं भाई, उन्होंने बताया ना एक जगह से नहीं, उनको परमिशन लेनी है भाई,
2: अरे प्रिंस भाई धुरंधर भाई साहब,
5: भी डबल है,
2: अरे के समझ रहे हो भाई, प्रिंस भाई को हल्के में ले रहे हैं, प्रिंस भाई को हल्के में ले रहे हैं, प्रिंस भाई अभी रिप्लाई करेंगे देखना, अब भी देखना, हाँ और क्या,
5: मैं हल्के में ले रहा हूँ भाई, भाई मैं ही तो हूँ जो उनको सबसे बारी में बता रहा हूँ,
2: इंस्पिरेशन गुरु, गुरु जी, गुरु जी।
5: मैं तो इंस्पायर हूँ सबसे ज्यादा,
2: हाँ नहीं भाई? प्रिंस भाई परमिशन ले लेंगे मेरे हिसाब से आई थिंक, और मुझे लग रहा है माहिर हो चुके होंगे इसमें, वो ट्रेंड है
5: भाई, परमिशन जिस तरह प्रिंस भाई की आवाज है ना भारी, मुझे लगता है खाली ऑटो चलेंगे, सुनते हो, मैं जा रहा हूँ,
4: और
6: कोई मुझे कॉल मत करना, समझ
7: में आया?
6: दबदबा है भाई,
7: दबदबा है भाई।
6: मुझे लग रहा है ट्रिप पे भेज के मानोगे प्रिंस भाई को, प्रिंस भाई आज ट्रिप पे जाओ। और आपको
7: भाई जो जा रहा था उसके भी आपने सांस रोक दिए, कहानी ऐसे सुना दी उसके क्या बाकी होंगे। मैंने आज तक समंदर का सफर नहीं किया, मुझे शौक था कि मैं चलो कभी मैं बोर्ड में बैठूं।
6: पर कीजिए भाई,
7: वो भी थोड़ा बहुत था, वो भी मार दिया भाई।
6: नहीं नहीं नहीं भाई, सफर जरूर करना कभी यार, मौका मिले। ये जो समुद्र का सफर है बहुत बेहतरीन होता है भाई, इट्स एन एक्सपीरियंस, मजा आएगा।
7: ट्राई करना है क्योंकि मैं पहले सोच नहीं करता था कि पहले थोड़ा बहुत फोबिया है मेरे को पानी से भी।
6: हाँ,
7: ज्यादा अंदर नहीं जा सकता हूँ, ज्यादा देर पानी में रुक नहीं सकता।
6: तैरना आता है?
7: नहीं ना
6: भाई, फिर मत जाना भाई, नहीं मत जाओ भाई,
7: उसके बाद से नहीं गया।
6: एक टब खरीद लो,
7: समझने के बाद ऊपर से वाले साहब जो है उन्होंने बताया था कि वो एक टाइम पे गए थे समंदर के सेंटर तक, मैं इसके सेंटर तो नहीं, इसके काफी आगे तक गए थे और काम कर रहे थे, काम के सिलसिले में गए। तो वाले साहब बताया था मैं शरारती तो बहुत था, मुझे उस्ताद ने मना किया था कि बच्चा नीचे पानी में नहीं देखना, बाकी जो मर्जी करते रहो।

0: पोल को मैंने जोर से पकड़ा और मैं पानी में ना दूर से खड़े होकर देख रहा हूँ पानी के अंदर कि क्या क्या नजर आता है, और कश्ती चल रही थी
1: बढ़िया ट्यूब वाला फुला के उसमें पानी भर के बढ़िया बैठ जाना ठीक है, उसमें आपकी सर्वाइवल स्टोरी बताऊंगा।
0: बाहर से नहा कर आओ ना समंदर वगैरह से, सी साइड में जाओ, वाले साहब बोलते बेटा घर पे पानी खत्म हो गया है, वॉशरूम में नलकों में पानी नहीं आ रहा क्या?
1: नहीं मैं आप
0: वो वाली कहानी अपने
1: आप साथ कोई, आप कोई बर्मा ढूंढो उसके नीचे बैठो आराम से, फिर आपकी सर्वाइवल स्टोरी सुनाऊंगा मैं। एक भाई थे बर्मे के नीचे बैठे सांस नहीं आ रही थी यही करना पड़ेगा
0: सही है।
1: बताइए कि सोच मेरे भाई कॉल करने के लिए जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ठीक है ओके,
1: खुश रहे मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह
0: हाफिज़।
1: और भाई का अभी क्योंकि अजान का वक्त हो गया तो इंशाल्लाह अजान के बाद मुलाकात होगी। बहुत सारे मैसेजेस हैं, 666-22-107 भेजते रहिए एंड सारे मैसेज पढ़ूंगा ऑफकोर्स मैं। ये आज की जो स्टोरी थी भाई, मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज में से एक है, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज जितनी भी सुनाई, बट मिलते हैं कुछ देर में, जानेगा नहीं एंड स्टे ट्यून्ड।

0: के माथे पर लिखा होता है। और ये भी कहते हुए सुना होगा कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। अब रोजे अव्वल से तकदीर लिखी जा चुकी है, अच्छी या बुरी, तो इंसान उसे कैसे बदल सकता है। आपने मोहर तो देखी होगी, मोहर पर दर्ज अल्फाज उल्टे लिखे होते हैं और जब किसी कागज पर हम वो मोहर लगाते हैं तो अल्फाज सीधे हो जाते हैं। याद रखिए, तकदीर भी इंसान के माथे पर मोहर की तरह है और इस मोहर को सीधा सिर्फ हमारे सजदे ही कर सकते हैं। और यूं भी तकदीर में जो लिखा है लिखने वाले के लिए यानी अल्लाह ताला के लिए उसको बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी और अपने खानदान की बेहतरी के लिए अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होकर दुआ कीजिए। सजदे की हालत में मांगी गई दुआएं अक्सर कबूल होती हैं।
1: पैगाम ऑन एफएम 107।
2: एफएम 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

Michel, Michel are distinctive. भाई हल्के मत लेना, विशाल मिश्रा को बहुत बढ़िया सिंगर है ये. Jacqueline Fernandez.

0: सारा मैसेज पढ़ता हूँ सारे के सारे, लेकिन सबसे पहले मुझे फराज भाई ने मैसेज किया, वो कह रहे हैं कि आवारापन टू का टीजर। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ एक्साइटेड कोई नहीं है, पूरा कतर दोहा में बता रहा हूँ, मैं पूरे कतर में इनफैक्ट। अभी आवारापन टू के गाने ड्रॉप तो हो जाने दो भाई, आप फिर देखो फिर क्या होता है भाई साहब। अभी मैं टॉप 10 भी करता हूँ ना एक शो, टॉप 10 में सारे के सारे गाने भगते फिरेंगे भाई, भगते फिरेंगे। एक बार आ तो जाने दो आवारापन टू के गाने। एक कॉल आ रही, फिर मैसेज पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी कमाल भाई, कैसी रही कहानी?
1: भाई कहानी
0: हाँ
1: जबरदस्त कहानी,
0: थैंक यू सो मच
1: जिंदगी और मौत के बीच में पानी में
0: हाँ हाँ सोचिए यार बंदा, मतलब वहां पर भी
1: भाई
0: हाँ
1: जो आप सुना रहे थे ना
0: जी,
1: जो पानी में जो हाथ पैर आपने मारा है
0: हाथ पैर मारा
1: आप उस टाइम पे पॉज करके उसने दूर सुनिए आप
0: हाँ
1: जो कहानी आपने सुनाया जो हाथ पैर आपने मारा है
0: जी
1: ऐसा लग रहा था रियल में वही हाथ पैर मार रहा है।
0: थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मैं बस वही कोशिश कर रहा था, मैंने उसका इमोशन उतार सकूं, क्योंकि वो बंदा जिस जगह पे था वो मैं बता भी नहीं सकता। ऑल आई कैन डू इज ट्राई, तो बस वही कोशिश थी मेरा भाई। तो उम्मीद है
1: जैसा नया कोई सीखता है हाथ पैर मारता है अपने आप को बचाने के लिए, वैसे हाथ पैर आपने आज मारा है भाई।
0: जज़ाकअल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको इतनी अच्छी लगी कहानी। मैं ऐसी कहानी ढूंढता रहता हूँ, कोई ना कोई ऐसी बीच बीच में एक बार सर्वाइवल भी आ जानी चाहिए। तो इसलिए मुझे इनफैक्ट ये किताब मुझे इत्तफाकन सामने आई मेरे जब मैं ढूंढ रहा था, तो मैं पता नहीं ये क्या है, तो फिर मैंने उसको ऑडियो बुक सुनी, काफ़ी लंबी ऑडियो बुक थी, पर फिर मुझे फिर मैंने कहा चलो लेट्स स्ट्रक्चर इट। तो मुझे मिनट बाय मिनट उस बुक में एक एक चीज़ थी, तो फिर उसको थोड़ा शॉर्ट करके थोड़ा बताने की कोशिश करी बस। पर आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अच्छी लगी, थैंक यू
1: भाई। अच्छी कहानी शॉर्ट करना ही पड़ेगा ना भाई, आपके पास टाइम ही कितना, 2 घंटे
0: हाँ,
1: का टाइम
0: वो
1: मिलता
0: भाई
1: है।
0: वो किताब बहुत बड़ी है, तो उसमें बहुत डिटेल्स थी, तो मैंने कहा नहीं छोड़ो, बाकी लाइफ की डिटेल्स बाद में भाई की सर्वाइवल स्टोरी को सुना देते हैं, तो इसीलिए
1: नहीं वो अच्छी
0: थैंक यू
1: कहानी
0: सो मच,
1: भाई।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई।
1: अगले 2 दिन और
0: बिल्कुल बिल्कुल, अरे अभी थर्सडे को देखो अब क्या बढ़िया कहानी आएगी भाई साहब, एक नंबर कहानी है थर्सडे के लिए।
1: नहीं, हम तो इंतजार कर रहे हैं भाई, अभी तो आदत सी हो गई है भाई,
0: जज़ाकअल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जैसे गोली खाने की आदत होती है कि वो टाइम टू टाइम खाना, तो
0: खाने से पहले खाने के बाद
1: 5 बजे पहले ही याद आ जाता है भाई कबीर भाई का सोने होता
0: नेवर। इंशाल्लाह कुछ और भी कोशिश करेंगे, इसके ऊपर एक लेवल पे जाएंगे इंशाल्लाह, इस हफ्ते एक और लेवल छुएंगे, देखिएगा आप इंशाल्लाह, मजा आएगा आपको
1: इंशाल्लाह। कामयाबी दे भाई,
0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, ख्याल रखिए अपना कमाल भाई। और कमाल भाई के बाद एक दो और मैसेजेस है मेरे पास भाई, कॉल करने के लिए नंबर क्या है मैं कर देता हूँ कॉल, क्या दिक्कत वाली बात है भाई, मैं मिला देता हूँ, बाकी बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं एक भी मैसेज मिस नहीं करूँगा, डोंट वरी। लास्ट कॉल, उसके बाद फिर मैसेज की तरफ जाएंगे। खाजा भाई कॉल करें, खाजा मेरे एक मैसेज जैसे ओके अफजल उस्मानी भाई एकदम सही बात कह रहे हैं, इनकी बात को भी अभी बताता हूँ ये कह क्या रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम भाई, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैदराबाद।
0: बहुत सारा प्यार हैदराबाद को मेरा भाई। खाजा भाई क्या चल रहा है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, क्या आप इतना नंबर जल्दी बोल देते, कॉलिंग का समझ में नहीं आता भाई, उतना जल्दी टाइप
0: भाई, इतना स्लो मोशन में बोला ना भाई, मैं बोला 666 22 10।
2: और कैसा चल रहा है, सब खैरियत?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई एकदम शानदार भाई, एकदम बढ़िया।
2: डेली मैं 3 बजे से इंतजार करता हूँ आपकी स्टोरी का।
0: थैंक यू
2: आज जो है ना आए टाइम पे मेरे को काम, गाड़ी छोड़ के चले गए, स्टोरी मिस हो गई मेरे से।
0: नहीं भाई कोई मसला नहीं, मैं भेजूंगा ना आपको, एकदम बढ़िया मैं भेजता हूं आपको
2: इंशाल्लाह। और कैसी है तबीयत आपसे, तो बहुत दिन से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, हो रही नहीं, हो रही
0: भाई,
2: नहीं हो रही,
0: कोशिश करने का क्या भाई, नंबर एक बार बोल देने का कॉल करने के लिए भाई, कोई टेंशन ही नहीं भाई।
2: नहीं नहीं मैं बहुत टाइम से सुनता हूँ आपको, तकरीबन 4-5 साल से सुन रहा हूँ मैं, मगर कभी कॉल करने का इत्तेफाक नहीं हुआ मेरा।
0: कोई मसला नहीं भाई, आज बात हो गई, अब आप मैसेज कर देंगे ना, एक ऑर्डर कर दिया करें बस, कॉल करने कॉल कर लेंगे भाई
2: इंशाल्लाह। अच्छा ये कॉलिंग का नंबर भी यही है ना, कभी
0: कॉलिंग का नंबर ये है, कॉलिंग का नंबर ये है, ठीक है भाई।
2: दुआओं में याद रखना, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैदराबाद, हमारे लिए भी आप दुआ करें इंशाल्लाह।
0: बिल्कुल मेरा भाई, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई,
2: ओके भाई शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह कॉल करने के लिए कबीर भाई।
0: नो प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम भाई, ख्याल
2: रखिए, जिंदगी बाकी रहे तो मुलाकात करेंगे
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई,
2: इंशाल्लाह
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़ मेरे भाई,
2: ओके ओके अल्लाह हाफिज़।
0: और खाजा भाई के बाद कुछ मैसेज है, दानिश भाई ने लिखा है, दानिश भाई जरूर सेंड करेंगे, एक मैसेज है हुसैन साहब का, नहीं तारिक शाह साहब का, हेलो, फिर भाई अरबाज भाई आपको मिल जाएगी कहानी, डोंट वरी। फिर अफजल उस्मानी भाई लिखा है, उम्मीद ज्यादा है आवारापन से, कहीं नहीं नहीं फुस नहीं होगी भाई, आई एम प्रीटी श्योर आवारापन टू हिट जाएगी। और लेकिन जैसे हाल है बॉलीवुड का आजकल उम्मीद ना, नहीं विशेष बैनर जो है ना, मुझे विशेष फिल्म्स की मुझे उम्मीद है। जमान भाई लिखते हैं सेंड मी, अमन भाई लिखते हैं सेंड मी स्टोरी, ज़रूर भेजेंगे भाई। इनके बाद एक मैसेज आया है मेरे पास, थैंक यू सो मच, करामत भाई ने मैसेज किया, करामत। और एक भाई हमारे पाकिस्तान ट्रेवल कर रहे हैं, भाई बिल्कुल सात खरे से जाइए, सात खरे से आइए। तबस्सुम बहन, वालेकुम अस्सलाम, भेजता हूँ बहन। एक मैसेज है मलिक वकास साहब का, अस्सलाम वालेकुम, क्या लें, आज इंटरव्यू था, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। अरे क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई का, 30 तारीख को ही। एक और मैसेज आया है, कबीर भाई टुडे स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अलॉन्ग विद योर ग्रेट नरेशन बैकग्राउंड म्यूजिक। नफेल साहब थैंक यू सो मच, संतोष भाई थैंक यू सो मच। एक भाई ने मैसेज किया है, भाई आपको आपका मेजर सपना क्या है। भाई मैं चाहता हूँ, मैं ना, मेरा सपना था नहीं है, पर अभी एक एक बड़ा मोन्यूमेंटल सपना ये कि मैं किसी कैरेक्टर के लिए आवाज़ देना चाहता हूँ, मतलब कार्टून शार्टून या कोई भी करेक्टर, आई वॉन्ट टू डू वॉइस ओवर्स एंड

कतर के लिहाज से अगर सपना पूछेंगे, सो आई वॉन्ट केक, बड़ा सा ऑडिटोरियम हूँ और हम सब वहाँ पे इकट्ठा हूँ और अंधेरा करके पूरा, फिर मैं आपको कहानी सुनाऊँ. दैट इज़ वॉट माई स्मॉल ड्रीम इज, ये मेरा छोटा सा सपना है. सलमान भाई थैंक यू सो मच. एक और मैसेज है, ये मैसेज क्या है, कबीर भाई अच्छा हुआ बच गया, नहीं तो क्या करते हैं कुरेशी भाई, कह रहा अच्छा हुआ बच गया, शानदार से निकाल लेता बाल से पकड़ के. और एक बहुत प्यारा मैसेज है मलिक शब्बीर साहब का, उन्होंने मैसेज करके बताया कि सर वो कहते हैं कि कबीर जिस तरीके से आप बता रहे थे कहानी मुझे बहुत अच्छा लगा, एक एक डिटेल और एक एक अदा जो आपने उसके साथ वॉइस ओवर के साथ करी मुझे अच्छा लगा. थैंक यू सो मच भाई, लॉट्स ऑफ लव. एक और नहीं, इनफैक्ट काफ़ी मैसेजेस हैं. किधर गया, हाँ विवेक भाई कह रहे हैं सर जी लाइफ में मोटिवेशन आ जाता है ये सर्वाइवल स्टोरी सुन के, ग्रेट स्टोरी, थैंक्स अ लॉट कबीर भाई. नो प्रॉब्लम भाई, बहुत सारा प्यार क्या. एंड एक और मैसेज है, इट इज सिमिलर टू कास्ट अवे मूवी, रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अ फेडेक्स एम्प्लॉय, चार साल ही स्पेंट अलोन ऑन एन आइलैंड. हाँ बट ही वॉज ऑन एन आइलैंड ना, वो आइलैंड पे था, कास्ट अवे कहानी, ये बंदा तो समुद्र में था भाई. और माजिद भाई थैंक यू सो मच आने के लिए, जसविंदर पाजी थैंक यू, समीर भाई ने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम भाई, अटेंडेंस लगा दी आपकी भी. फलक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वालों को, मैं कहा सोने वालों को. सलाम, मज़ा आ रहा है बहुत आज की कहानी, पाकिस्तान जाते हुए और मेरे बच्चे सुनते हैं बहुत खुश होते हैं भाई, मैं भेजूंगा आपको. मलिक साहब थैंक यू सो मच इतनी मोहब्बत के लिए. एंड एक और मैसेज है, ये सिद्दीकी साहब का, व्हाट अ ग्रेट सर्वाइवल स्टोरी, रियली मेक्स मी इमोशनल एंड अबव ऑल योर स्टाइल ऑफ नरेशन इज सुपर ब्रदर. थैंक यू सो मच हिशाम साहब, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया. एंड या मुबीन भाई कह रहे हैं सलाम भाई, स्टोरी तो बहुत अच्छी है बट इसलिए वाइफ जाने नहीं देती ट्रिप पे, खैर मेरी तो है नहीं, मुझे मसला नहीं है. रुक जाओ बेटे कुछ दिन रुक जाओ. गुलाम राजिक साहब थैंक यू सो मच, हैरान कुन कहानी लिखा है उन्होंने. खादिर अब्दुल आदि भाई लिखते हैं, यू आर राइट, सीगल्स हैव स्ट्रॉन्ग बीक विच इज़ इक्वल टू पियर्सिंग, इट इज़ डिफिकल्ट टू कैच सीगल्स बाय बेयर हैंड्स, इट इज़ इम्पॉसिबल, ऑफ कोर्स इट इज़. एंड लेटेस्ट कोई मैसेज है भाई क्या, कभी भाई सेंड टिकटॉक लिंक, मैं भेजूंगा भाई नासिर भाई. बाकी वेरी एक्साइटिंग, कब स्टोरी और सुनाएंगे, कल वाली भी प्लीज़. ओके चलो जी, क्या कबीर भाई मूवीज़ लिंक सेंड करो, मूवीज़ लिंक केड़ी मूवी लिंक पाजी, मैं समझा नहीं, पता नहीं अब कौन सी, मैं नहीं जानता, मुझे मन नहीं ना पता भाई. ये मैसेज सुना भाई, अभी सुनने जा रहा हूँ, मोहम्मद भाई गणा कसूता लागे से भाई.

भाई क्या है, मुझे मोहम्मद भाई ने एक मैसेज किया, उन्होंने जो तारीफ करी है वो मैं दोहराना भी नहीं चाहूंगा, मुझे लगता है कि उसमें शान खराब हो जाएगी उस तारीफ की, ऐसी तारीफ करी मोहम्मद भाई, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग व्हाट यू सेड, यू रियली मेड मी इमोशनल मेरे भाई, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी, मुझे बोलते ही मुझे लग रहा है कि नहीं मैं ये खुद बोलूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पर थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू सेड। तबसुम मैंने मैसेज किया, उन्होंने जाके इमरान हाशमी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, कह रहे सबसे पहले लाइक आपका नजर आ रहा है। मैं बता रहा, जब से वारा अपन टू का टीजर ड्रॉप हुआ है मैं हर दिन देख रहा हूँ भाई टीजर, वो हर दिन मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, बस जल्दी से वारा पंटू के गाने आए और भाई दुनिया में आग लगा दे, बस जल्दी से गाने आ जाएं सारे के सारे, वो तो फिर आओ जो एंड में चल रहा है ना, ओ फो, जितने लोग अभी सैयारा को देख के थिएटर्स में तमाशे कर रहे थे वो इसको देखेंगे तो पता नहीं क्या ही करेंगे। एक और मैसेज है, इतने अस्सलाम वालेकुम भाई, आज पहली बार आपको शाम में सुन रहा हूँ, ये कहानी वाली दुकान शाम में चालू थी भाई, शाम में खुलती है हमारी दुकान, कर अच्छा भाई लगे रहिए, आपको सुबह मिस करता हूँ और मैं विश बाजी को सुनता हूँ। ये तो पूछना भूल ही गया कि आप कैसे हैं भाई, मैं एकदम बढ़िया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसे हैं। ये आरिफ अंसारी भाई ने मैसेज किया, अरे भाई एकदम बढ़िया भाई, भला चंगा क्या। ओके तो अभी वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, ये कहानी तैयार हो रही है आपके लिए, पका रहा हूँ मैं। एक और मैसेज है, भाई मैं बचपन से स्टोरी सुनने का शौकीन हूँ, बड़ी बहन नॉवल्स पढ़ा करती थी और मैं सुना करता था 2008-2009 के टाइम पे, जो आपने एक जगह आकर लाइट ऑफ करके स्टोरी सुनाई है, आप सुनाएं तो बहुत मज़ा आएगा। नहीं मैं लाइट ऑफ करके मैं कह रहा था, मेरा ये छोटा सा ड्रीम है, लाइक एक हम इन सबको ना, हम जितने भी सुनने वाले हैं, अब मैं सुनाने वाला हूँ, एक ऑडिटोरियम मिले, बड़ा सा ऑडिटोरियम है ना, अंदर समोसे और चाय का इंतज़ाम हो या कॉफ़ी का, कॉफ़ी पीने वाले, और फिर मुझे स्टेज मिल जाए, फिर मैं आपको जो लाइव कहानियाँ सुनाऊंगा भाई साहब, क्या समा सेट होगा। बट ठीक है, दुआ करते रहिए इंशाल्लाह। ऑन दैट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल नोट, 7 बजने वाले हैं तो न्यूज़ बुलेटिन आप सुनेंगे, एंड फॉर नाउ दिस इज़ दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, आपसे ज़्यादा चाहूँगा इंशाल्लाह, कल शाम आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और इंटरेस्टिंग और थॉटफुल प्रोवोकिंग एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट पर जो सिंपल लगता है लेकिन जिंदगी को बहुत ज्यादा चेंज कर देता है, यानी के मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं। सोचिए आप अपना रूम क्लीन कर रहे हैं, ड्रॉअर खोलते हैं तो पुराने रिसिप्ट्स, कभी यूज होने वाली कोई चीज, कपड़ों का स्टैक जो कभी पहना नहीं गया और एसेसरीज जो इस नाम पर रखी गई हो कि भाई इनकी कभी जरूरत पड़ सकती है। और क्लीनिंग के एंड पर आप सोचते हैं कि भाई इतनी सारी चीजें हैं फिर भी कुछ पहनने को मुझे यूजफुल क्यों नहीं मिलता। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। देखिए मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ वो चीजें रखें जो सच में आपकी यूजफुल हो, मीनिंगफुल हो और नेसेसरी हो। यानी क्लटर कम करें, क्लैरिटी ज्यादा रखें। अब इको स्विच क्या है सिचुएशन में भाई? आइडिया बड़ा सिंपल है, कम चीजें रखें लेकिन बेटर चीजें रखें। मतलब अननेसेसरी आइटम्स को रिड्यूस करना और अपनी लाइफस्टाइल को सिंपलीफाई करना। चलिए भाई अब बात करते हैं कि भाई ये मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल से आखिर फायदा क्या होता है। सबसे पहला फायदा होता है मेंटल क्लैरिटी, कम क्लटर होने से माइंड ज्यादा रिलैक्स और फोकस्ड रहता है। दूसरा फायदा है एनवायरमेंटल बेनिफिट, कम शॉपिंग और कम कंजम्पशन, इन दोनों का मतलब है कम प्रोडक्शन और कम वेस्ट। तीसरा फायदा है टाइम सेविंग, जब चीजें कम होती हैं तो सर्च और मैनेज करना आसान हो जाता है। चौथा फायदा है फाइनेंशियल कंट्रोल, आप अननेसेसरी परचेजेस से बचकर अपना पैसा सेव कर लेते हैं। अच्छा जरा सोचिए, आपके पास वार्डरोब में 30 शर्ट हैं, 30 शर्ट्स, लेकिन आप हमेशा सिर्फ 5 या 6 शर्ट्स आपकी कोई फेवरेट हैं वो ही पहनते हैं, बाकी कपड़े आपके सिर्फ स्पेस ले रहे हैं लेकिन यूज नहीं हो रहे। अब अगर आप मिनिमलिज्म अडॉप्ट करें तो सिर्फ वही कपड़े जो आपने रखे हुए हैं, जो

0: रेगुलरली पहनते हैं, अगर आप वही रखें तो वार्डरोब सिंपल, क्लियर और एफिशिएंट बन जाता है ना। साथियों, दोहा जैसे फास्ट मूविंग सिटी में लोग बिजी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जहां टाइम और स्पेस दोनों वैल्यूएबल हैं भाई। इसीलिए मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल यहां और भी रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि सिंपलिसिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे। अच्छा, अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दूंगी जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। टिप नंबर 1 है, डी क्लटर रूटीन बनाएं। हर 1 से 2 महीने बाद अपनी चीजों को रिव्यू करें। टिप नंबर 2, 1 in 1 out का रूल फॉलो करें, यानी कि अगर नई चीज लें तो पुरानी एक चीज रिमूव करें। आगे बढ़े तो भाई इमोशनल अटैचमेंट को इवैल्यूएट करें। हर आइटम को क्वेश्चन करें कि क्या ये अभी भी यूजफुल है या ये सिर्फ मेरी एक हैबिट है। तो भाई नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल शिफ्ट करें। फिजिकल क्लटर कम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स और नोट्स डिजिटल रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चूज करें। कम लेकिन ड्यूरेबल और यूजफुल आइटम्स प्रेफर करें। अच्छा, इसका एक इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव पता है क्या है? मिनिमलिज्म सिर्फ एक डिजाइन ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल अप्रोच भी है जो स्ट्रेस रिड्यूस करने और डिसीजन फिटीग कम करने में हेल्प करता है। एक और रिलेटेबल बात यह है कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि ज्यादा चीजें हों तो लाइफ बेटर हो जाती है, लेकिन जब चीजें ज्यादा हो जाती है ना तो भाई डिसीजंस लेने में मुश्किल हो जाती है और मेंटल लोड भी बढ़ जाता है। और अब अगर हम थोड़ा बिहेवियर चेंज एंगल से देखें तो जब आप मिनिमलिज्म अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ज्यादा इंटेंशनल बना लेते हैं। आप सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहते बल्कि माइंडफुल चूजर बन जाते हैं। तो भाई आज का इको स्विच बड़ा सिंपल सा है, कम चीजें रखें लेकिन मीनिंगफुल और यूजफुल चीजें रखें। आज का चैलेंज ये है कि आज आप अपने रूम, बैग या वार्डरोब से कम से कम 5 अननेसेसरी आइटम्स आइडेंटिफाई करें और उनको डोनेट, रिसाइकल या रिमूव करने का प्लान बनाएं। और अगर आप ऑलरेडी मिनिमलिज्म फॉलो कर रहे हैं तो किसी और को भी इंस्पायर करें ना भाई। साथियों, जिंदगी का मजा चीजों की क्वांटिटी में नहीं होता बल्कि उनकी क्वालिटी और क्लैरिटी में होता है। जब हम मिनिमलिज्म अडॉप्ट करते हैं तो हम सिर्फ स्पेस नहीं खाली कर रहे होते बल्कि अपनी जिंदगी को भी हल्का और बेहतर बना रहे होते हैं। इसी सोच के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इंपैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहे दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, घर की हिफाजत आपके हाथों में है। एयर कंडीशनर की सेफ्टी पर तवज्जो दें। हर साल कई घर सिर्फ इस वजह से आग के शिकार होते हैं कि लोग छोटी छोटी सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं। एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल और देखभाल आपको इस किस्म के हादसों से बचा सकता है। इससे मुताल्लिक कुछ एहतियात बरतें। एयर कंडीशन की सफाई में लापरवाही ना करें। अगर आप अपने एसी की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें धूल मैल वगैरह जमा हो जाता है। ये ब्लॉकेज गर्म हवा का रास्ता रोकता है, जिससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर आग लग सकती है। हर 2-3 महीने में फिल्टर की सफाई करें और एक दफा एसी का ओवरऑल चेक जरूर करवाएं। बिजली के लोड का ख्याल कीजिए। अक्सर लोग मार्केट से सस्ता और नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस या एक्सटेंशन ले आते हैं, जो एयर कंडीशनर का लोड बर्दाश्त नहीं करते। ये छोटी सी गलती शॉर्ट सर्किट या स्पार्क बन सकती है। हमेशा सिर्फ सर्टिफाइड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स का ही इस्तेमाल करें। हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से मशवरा लें। एसी से पानी टपकता है, वहां स्विच या सॉकेट लगाने से बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। याद रखें, हमेशा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करवाएं। अगर एसी से अजीब स्मेल, आवाज या ज्यादा गर्म हवा आ रही हो तो फौरन उसे बंद करें और चेक करवाएं। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात न सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई। बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: बस

0: बहुत हो गया रूटीन. नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन. यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है. बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक. ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
1: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se, desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: FM 107
2: दिल से देसी
3: One step to 2030
2: Welcome to our segment called One Step to 2030 मैं हूं आपकी होस्ट नासिया
3: One Step to 2030
2: आज के इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूं फ्यूचर इन मोशन मुस्तकबिल हमेशा आगे बढ़ रहा है मुस्तकबिल में हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं ये बड़ा सवाल हो जाता है देखिए आज की दुनिया जो है वो तेजी से बढ़ रही है फ्यूचर इन मोशन का कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है इसका मतलब है कि मुस्तकबिल स्टैटिक नहीं होता बल्कि हर वक्त चेंज होता रहता है हर नई टेक्नोलॉजी नया आइडिया और नई सोच इस मोशन का हिस्सा है जो हमें आगे लेकर जा रहे हैं अगर हम अपने आसपास देखें तो हर चीज बदल रही है पहले लोग बेसिक फोन यूज करते थे आज स्मार्टफोन्स ने जिंदगी को आसान बनाया है पहले सफर कितना मुश्किल था कितना टाइम टेकिंग था लेकिन अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ने इस डिस्टेंस को जो है वो छोटा कर दिया है ये सब चेंजेस दिखाते हैं कि फ्यूचर हमेशा मोशन में है और हमें भी इसके साथ चलना होगा फ्यूचर इन मोशन का सबसे बड़ा फैक्टर या सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स स्मार्ट सिस्टम्स ने दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया आज लोग घर बैठकर काम कर सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्टेड रह सकते हैं ये सब इस बात की मिसाल है कि हम एक फास्ट मूविंग फ्यूचर का हिस्सा हैं लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं इंसान की सोच भी इवॉल्व हो रही है आज लोग अपने स्किल्स इम्प्रूव करने नई चीजें सीखने और अपने गोल्स अचीव करने पर फोकस कर रहे हैं फ्यूचर उन्हीं लोगों का होता है जो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को अडैप्ट करते हैं जो लोग रुक जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं देखिए एनवायरमेंट भी इस मोशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आज दुनिया सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है लोग क्लीन एनर्जी ग्रीन प्रोजेक्ट्स और इको फ्रेंडली हैबिट्स अडॉप्ट कर रहे हैं ये सारे एफर्ट्स इसलिए किए जा रहे हैं ताकि फ्यूचर सेफ और हेल्दी हो अगर हम आज कॉन्शियस नहीं होंगे तो कल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी ही पड़ेंगी फ्यूचर इन मोशन का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं न्यू करियर्स स्टार्टअप्स और इनोवेशंस जो है वो लोगों के नए चांसेस उन्हें दे ही रहा है अगर आप इंसान अपने क्रिएटिविटी यूज करके अपनी पहचान बना सकता है तो फिर उस पर मजबूती से टिक भी तो सकता है ये एक पॉजिटिव साइन है कि फ्यूचर सिर्फ चेंज नहीं बल्कि ग्रो कर रहा है आखिर में समझना जरूरी है कि फ्यूचर किसी एक जगह नहीं रुकता ये एक कंटिन्यूस जर्नी है अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस मोशन का हिस्सा बन जाएं, तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं फ्यूचर ऑलरेडी मोशन में है सवाल ये है कि क्या हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं? चलिए आज इसी सवाल पे यहाँ पर आपसे इजाजत लूंगी आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी
3: One step to 2030
4: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। दिन भर की थकन, मसरूफियात और जिम्मेदारियों के बाद जब रात आती है तो इंसान सुकून और आराम की तलाश में अपने बिस्तर की तरफ जाता है। नींद अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है जिसके जरिए जिस्म ताजगी पाता है, जहन को राहत मिलती है और इंसान अगले दिन के लिए कुव्वत हासिल करता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले बिस्तर पर लेटने के बारे में भी एक खूबसूरत सुन्नत सिखाई है। ये कैसी सुन्नत है जिसके अंदर बेक वक्त हिफाजत, सफाई और एहतियात सब के सब मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे सोने से पहले बिस्तर को छाड़ने की सुन्नत पर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स बिस्तर पर लेटने का इरादा करे तो पहले अपना बिस्तर अपने इजार के अंदरूनी किनारे से झाड़ ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके पीछे उसकी बेखबरी में क्या चीज उस पर आ गई है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए हमें ये भी सिखाया कि बिस्तर पर लेटने से पहले उसका जायजा भी ले लिया करो, क्योंकि इंसान नहीं जानता कि उसकी गैर मौजूदगी में वहां क्या आया होगा। किसी कीड़े मकोड़े का आ जाना कोई नुकसानदेह चीज, ये कोई ऐसी चीज जो इंसान की नजर से ओझल हो। इस्लाम एहतियात सिखाता है, एहतियात भी इबादत बन जाती है जब वो सुन्नत के मुताबिक हो। एक वक्त यहाँ सफाई का मामला भी है, लेकिन एक मुसलमान के लिए उससे बढ़कर ये सुन्नत है। जब आप बिस्तर झाड़ते हैं तो सिर्फ गर्द नहीं हटा रहे होते, बल्कि आप अपने सर ताज खातम नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जिंदा कर रहे होते हैं, और यही नियत एक आम अमल को इबादत में बदल देती है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: What chumka?
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
0: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka. FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mahvish Khan. Aaj ka topic hai doston ke liye wahi pasand karna jo apne liye pasand karte hain. Islam हमें एक सिंपल लेकिन बहुत गहरी तालीम देता है कि जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वो ही दूसरों के लिए भी पसंद करें। ये एक ऐसा उसूल है जो जिंदगी में आ जाए तो रिश्तों में सुकून और ईमानदारी पैदा हो जाती है। अक्सर हम अपने लिए आसानी और अच्छा रवैया चाहते हैं लेकिन दूसरों के साथ वही बर्ताव करना भूल जाते हैं। ये रवैया सोसाइटी में दूरियां पैदा करता है। जब हम दूसरों के लिए भी वही सोचते हैं जो हम अपने लिए चाहते हैं तो हम ज्यादा इंसाफ पसंद बन जाते हैं और लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं। आज का अमल ये है कि हर सिचुएशन में ये सोचें कि अगर मैं दूसरी जगह पे होता तो क्या चाहता और फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
3: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने के नए स्कैम में इस्तकबाल है आपका। हम कई हफ्तों से बात कर रहे हैं नए जमाने के स्कैम्स के बारे में, फ्रॉडस्टर्स के बारे में, और

0: हम बात करेंगे ऑटोमेटेड एआई एजेंट्स और सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड के बारे में। 2026 में साइबर क्रिमिनल्स ने इंडिविजुअल आइडेंटिटी चोरी करने के बदले सिंथेटिक आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दिया है। इस फ्रॉड में एआई एजेंट्स रियल लोगों के थोड़े से डेटा जैसे कि आधार या पैन या कुछ हिस्सा या छोटी मोटी डिटेल्स को फेक एआई जनरेटेड डेटा के साथ मिक्स करके एक बिल्कुल नई झूठी आइडेंटिटी खड़ी कर देते हैं। ये फेक आइडेंटिटीज इतनी परफेक्ट होती हैं कि बैंक के ऑटोमेटेड केवाईसी सिस्टम्स और क्रेडिट स्कोरिंग एल्गोरिदम्स भी इन्हें पकड़ नहीं पाते। इन सिंथेटिक प्रोफाइल्स के दम पर फ्रॉडस्टर्स बड़े बड़े पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और शॉपिंग लाइंस अप्रूव करवा लेते हैं। जब लोन डिफॉल्ट होता है तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उस नाम का कोई इंसान दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका असर आम लोगों पर तब पड़ता है जब उनका रियल डेटा इस फेक मिक्स में यूज है और उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रेगुलरली चेक करते रहें। ये ऑटोनोमस एआई एजेंट्स हर रोज हजारों फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं, बैंकिंग पोर्टल्स पर ऑटोमेट अटैक्स रन करते हैं जिससे पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन एफएम 107 आपको इसका सॉल्यूशन भी देता है। सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड का शिकार होने से बचने के लिए आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड क्रेडेंशियल्स के लिए बहुत ही ज्यादा सतर्क या कहें होशियार रहने की जरूरत है। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर रखने के लिए सिबिल, एक्सपेरियन या इक्विफैक्स जैसे क्रेडिट ब्यूरोज से हर महीने अपने क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें। अगर आपको अपनी रिपोर्ट में कोई ऐसी लोन इंक्वायरी या क्रेडिट अकाउंट दिखता है जो आपने कभी खोला ही नहीं तो तुरंत उस बैंक और साइबर सेल को रिपोर्ट करें। अपने पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या QID, फोटोकॉपी किसी भी डॉक्यूमेंट की अनवेरिफाइड जगह पर ना दें और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा मास्क्ड आधार या QID या ऐसी डिटेल्स जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है मास्क्ड दें। मिसाल के तौर पे अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के आखिर के 4 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ही अगर आप दे देंगे तो आपके नाम से उसे मैच किया जा सकता है बजाय पूरे 16 या जितने भी नंबर हैं वो देने के, क्योंकि वो हो जाता है खतरनाक। उसके अलावा साइबर थ्रेट से अलर्ट रहने के लिए बैंक्स की तरफ से भेजे गए ट्रांजैक्शन अलर्ट्स और क्रेडिट अपडेट्स को भी इग्नोर ना करें। अगर आपका डेटा लीक हुआ है तो आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शन सर्विसेज का यूज करें जो डार्क वेब पर आपके क्रेडेंशियल्स का मिसयूज स्कैन करती रहती है। ये है सबसे सेफ तरीका। दोस्तों ये था आज का एफएम 107 पे खास फ्रॉड अवेयरनेस का एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहे एफएम 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि मर्द हजरात की सेहत के बारे में, कि अक्सर मर्द हजरात अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात, काम और ख़ानदानी जिम्मेदारियों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अच्छी सेहत ही एक कामयाब और बेहतरीन ज़िंदगी की बुनियाद है। मर्द हजरात में आम तौर पर पाई जाने वाली सेहत की मुश्किलात में दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती शामिल हैं। इन बीमारियों की खास बात यह है कि अक्सर उनकी जो इब्तदाई अलामात हैं बिल्कुल भी जाहिर नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि बाकायदगी से अपना ब्लड प्रेशर, खून में शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए। ख़ास तौर पर अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो या ख़ानदान में इन बीमारियों की जो हिस्ट्री है वो मौजूद हो। इसमें सबसे अहम बात यह है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाइए, वो इस तरह के रोज़ाना कम से कम 30 मिनट आप वॉक कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए। ताज़ा फल, सब्जियां और मतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए। फास्ट फूड और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ कीजिए। स्मोकिंग और शीशा नोशी से मुकम्मल दूर रहिए। मुनासिब मकदार में पानी ज़रूर लीजिए। बहुत से मर्द हजरात जहनी दबाव, परेशानी या डिप्रेशन के बारे में बात करने से गुरेज करते हैं। याद रखिए कि मेंटल हेल्थ यानी हमारी जो जहनी सेहत भी जिस्मानी सेहत जितनी अहम है। अगर मुसलसल उदासी, बेचैनी या नींद के मसाइल हों तो माहिर सेहत से ज़रूर मशवरा कीजिए। लिसनर्स, अपनी सेहत का ख्याल रखना कमज़ोरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। बाकायदा चेकअप और सेहतमंद आदत आपको तवील और बेहतर जिंदगी गुजारने में मदद देती हैं।
3: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
0: ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे कतर की विमेन स्विमर नादा मोहम्मद के बारे में। नादा मोहम्मद कतर की मशहूर स्विमर हैं, जिन्होंने बैन अक्वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करके खास मकाम हासिल किया है। बचपन से ही उन्हें स्विमिंग का शौक था और उन्होंने मुसलसल मेहनत और सख्त ट्रेनिंग के जरिए अपनी टैलेंट को निखारा। नादा ने फ्री स्टाइल और बटरफ्लाई इवेंट्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और अरब, एशियन और ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत की। उनकी कामयाबी ने कतर में खातीन के स्पोर्ट्स को भी नई पहचान दी और बहुत सी लड़कियों को स्विमिंग की तरफ मुतवज्जे किया। नादा रोजाना घंटों तक पूल में प्रैक्टिस करती हैं और अपनी फिटनेस, स्टैमिना और टेक्निक पर खास तवज्जो देती हैं। उनका यकीन है कि डिसिप्लिन और सब्र किसी भी एथलीट की सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, दोहा के जदीद स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग सिस्टम ने उनकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। नादा सिर्फ मेडल्स जीतने तक महदूद नहीं, बल्कि वो नौजवान जनरेशन को सेहतमंद जिंदगी और स्पोर्ट्स की अहमियत समझाने में भी कोशिश करती हैं। उनकी मेहनत और हौसला कतर के लिए फख्र का सबब है और मुस्तकबिल में भी उनसे मजीद कामयाबियों की उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.

0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी।
2: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराश ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
0: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
2: गेम ऑन,
0: वॉल्यूम अप,
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
0: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
2: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: Qatar's heard radio station FM 107
3: FM 107
1: Dil Se Desi।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: Authentic, original and veteran out.

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका आपके अपने दिल से जुड़े हुए प्रोग्राम में। भाई वो प्रोग्राम जहां रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे यादगार कहानियों में बदल जाते हैं, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, कभी शॉपिंग मॉल की रोशनियों में चमकती यादें, और कभी मेट्रो के सफर में वो पहले एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। हर शख्स के पास एक कहानी होती है, एक एहसास, एक याद जो उसकी अपनी वर्चुअल डायरी का हिस्सा होती है, और ये यादें ही हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाती हैं, एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती है। तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं और शेयर करते हैं वो कहानियां जो हम सबको एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब लाती हैं। यह है आपका अपना प्रोग्राम दोहा डायरीज, जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी। और इसी सिलसिले में दोस्तों हमारे साथ जुड़ते हैं प्रोग्राम में एक मेहमान, जहां हम उनसे उनकी कहानी सुनते हैं, कुछ सवाल जवाब के जरिए से उनको जानते भी हैं, ज्यादा पहचानते भी हैं, और उनकी उन यादों से खुद को कनेक्ट भी करते हैं जो अपनी वो हमारे साथ बयान करते हैं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका खास खास इस्तकबाल भी हम करते हैं। वो ऐसी बावकार और हर दिल अजीज शख्सियत हैं जिन्होंने दोहा के प्रोफेशनल, समाजी और अदबी हलकों में अपनी मेहनत, लगन और खिदमात के जरिए एक नुमाया मकाम हासिल किया है। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कम्युनिटी सर्विसेज, अदबी महफिलों, मुशायरों के इंतज़ाम और आपके जो खिदमत खल्क में तवील अरसे से सरगर्मियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, काबिल ज़िक्र भी हैं। सोशल मीडिया पर भी आपके हजारों फॉलोअर्स हैं और चाहने वाले मौजूद हैं जो उनकी समाजी और फर्दी खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। तालीमी एतबार से आपने MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की, जबकि पेशावर जिंदगी में वो इस वक्त MEP एंटरप्राइजेज में HR मैनेजर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। अपनी प्रोफेशनल सलाहियतों के साथ साथ समाजी और अदबी सरगर्मियों में भी इन्होंने एक मजबूत और मुस्तहकम पहचान कायम की है। दोहा के अदबी और समाजी हलकों में खास तौर पर QPL और बज़्म अहबाब के प्लेटफॉर्म पर उनका नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। तो खातिनो हजरात, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं एक मशहूर, मकबूल और काबिल एहतराम शख्सियत, जनाब सिराज अंसारी साहब। आइए उनके हुजूर चलते हैं और इस दिलचस्प गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनका कहना दोहा के हवाले से और जितना भी उनका आज तक का वक्त गुजरा है उसके हवाले से। सिराज अंसारी साहब, आपका प्रोग्राम में दिल से इस्तकबाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कैसे हैं आप लोग?
1: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। सर आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे।
2: बहुत ठीक, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हूँ मैं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने कीमती वक्त में से इतना वक्त निकाला कि हमें कुछ वक्त दे सकें और हमारे साथ अपनी स्टोरी और कहानी शेयर कर सकें।
2: सर ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने कॉल किया, आपने हमें याद किया। हम तो आपका रेडियो सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है, सबकी कहानी भी सुनते हैं हम। हमें लगता है कि हम हमारी होम कंट्री में हैं जब आप सबको सुनते
1: हैं। अहलन व सहलन। तो सर अब हम अपने सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप अपनी शख्सियत को तीन अल्फाज में बयान करें तो वो क्या होंगे?
2: तीन अल्फाज में सर मैं ये कहूँगा कि फ्रेंडली कह सकते हैं आप।
1: ओके।
2: लीडरशिप।
1: ओके।
2: पॉजिटिविटी।
1: क्या बात है, बहुत खूब। सर आपके नजदीक तो हमें एक परफेक्ट दिन कैसा होता है?
2: सर परफेक्ट दिन देखें आप, मेरे लिए परफेक्ट दिन वो होता है जब ऑफिस में कुछ अच्छा काम हो जाए, कुछ प्रोडक्टिविटी काम हो जाए, शाम को फैमिली के साथ घूमें, फिर दोस्तों के साथ गप्पे लगाएं।
1: क्या बात है।
2: और कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात करें, या फिर किसी लगता है कि सोशल वर्क में यार कुछ हिस्सा ले लें। अदबी प्रोग्राम की प्लानिंग चलते रहती है हमारी, तो मेरी नजर में ये थोड़ा सा अच्छा दिन गुजरता है।
1: क्या बात है,
2: परफेक्ट दिन इतना ही कह सकते हैं।
1: क्या बात है, खासम खास।
2: अगर किसी के काम आ जाए आप, ये भी बहुत अच्छा दिन होता है।
1: क्या बात है सर। अब खासम खास अगर बात करें आपसे मुतालिक, आप जिन बज़्म से जुड़े हुए हैं और जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, JPL की बात करें या JPL से QPL और फिर बज़्म अहबाब तक का सफर कैसा रहा दोहा की रोशनी में?
2: बड़ी अच्छी चीज याद दिला दी आपने, JPL
1: जी,
2: जद्दा प्रीमियर लीग से खतर QPL
1: जी।
2: सर ये सफर देखें आप, मेरे लिए सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का कफन नहीं था, बल्कि मेरी हमेशा से कोशिश रही कि लोगों को जोड़ने का सफर रहा कर। ये मेरे लिए लोगों को जोड़ने का सफर रहा। जिद्दा प्रीमियर लीग ने स्पोर्ट्स के जरिए सारे कम्युनिटी को जोड़ा, फिर QPL ने यहाँ पे उस को आगे बढ़ाया उस मिशन को, और बज़्म-ए-अहबाब अदब तहजीब ये एक्टिविटीज, मैंने सोचा कि यार बज़्म-ए-अहबाब उर्दू को जिंदा रखते हैं।
1: और कतर में तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह चाहने वाले बहुत हैं, उर्दू के चाहने वाले बहुत हैं, और एक्टिविटीज से मुतालिक तो काम होता ही रहता है।
2: बस उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सोचा कि यार उर्दू अदब को जिंदा रखा जाए, कुछ मुशायरा करा जाए, कुछ बड़े नामवर शायरों को बुलाया जाए, और कुछ अच्छे मियारी प्रोग्राम करवाए जाए।
1: बहुत खूब। सर अगर अब बात करूं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम दोहा से मुतालिक है और दोहा की यादों से मुतालिक है, तो एक बड़ा पर्सनल सवाल, शायद आप उसका जवाब दे सके, क्या जद्दा की याद आती है दोहा के अंदर?
2: दोहा के अंदर जद्दा की याद, देखे मैं तो कहूंगा कि याद उनकी आती है जिन्हें भूलते हैं।
1: ओ हो
2: मैं जद्दा के दोस्तों को कभी नहीं भूला और ना कभी भूल पाऊंगा। जद्दा के दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और बहुत बड़ा सर्कल था हमारा। और जब मैं लास्ट दिसंबर 25 में वहां गया था 4 दिन के लिए, मैंने कहा कि 4 दिन का स्टे करूंगा मैं, उसके बाद फिर मैं, मेरे इंडिया का वेकेशन था, हैदराबाद जाना था मुझे, तो मैं 4 दिन के लिए गया था। लेकिन वहां के दोस्तों की इतनी मोहब्बत मिली, इतनी इज्जत, इतनी प्यार, वही पहली तरह 15 साल बाद गया हालांकि मैं, लेकिन इतनी मोहब्बत उन्होंने दिया कि मुझे 15 दिन एक्सटेंड करना पड़ा।
1: क्या बात है। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर कि आप इतने टाइम बाद गए, तो दोहा में रहते हुए आपको उनकी कमी तो महसूस हुई हुई, बट यहाँ रहकर और जो आपका सर्किल बना है और जितने लोग आपको मोहब्बत से नवाजते हैं, उसमें एक बड़ा खुशगवार वक्त गुजरा।
2: जी बिल्कुल।
1: क्या बात है सर। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहां पर थोड़ी ओरिजिन स्टोरी आपकी हम जानना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहला मेरा सवाल कि आपने दोहा आने का फैसला किस वजह से किया?
2: देखिए सर, दोहा का फैसला मैं कुछ नई ग्रोथ चाह रहा था, नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश में था, और मैं दोहा के बारे में बड़ा अच्छा सुनता था, मतलब दोहा कंट्री बहुत अच्छी है, वहाँ की हुकूमत बहुत अच्छी है, मैं सुनता था, जितना सुना था उससे बहुत कहीं कहीं कहीं ज्यादा पाया। तो मैं नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, नए कंट्रीज, वो हिजरत कहना जिसे कहते हैं, हिजरत करके देखें।
1: क्या
2: तो हमने हिजरत की है, और हिजरत करना कभी भी कामयाबी की तरफ लेके जाता है।
1: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। सर क्या QPL का ख्याल पहले से था या कतर आकर ये ख्याल ज्यादा मजबूत हुआ या कतर आकर ही ये ख्याल पैदा हुआ कतर की स्पोर्ट्स से मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए और जिस तरीके से क्रिकेट के भी चाहने वाले यहाँ पर मौजूद है हम बरसगीर की बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारा दिल क्रिकेट में बसता है फुटबॉल तो है ही है सबका फेवरेट बट ये जो आप एक क्रिकेट में आपने यहाँ पर लोगों के लिए आसानियां पैदा करी और जितनी भी लीग्स वगैरह आप लेकर आए तो इसके हवाले से ये जानना चाहूंगा कि क्या QPL का ख्याल पहले से था या कतर आने के बाद यहाँ का शौक देखने के बाद लोगों के ये पैदा हुआ।
2: देखिए जब मैं ऐलान किया था जिद्दा में कि भाई मैं जा रहा हूँ कतर मेरा वीजा आ गया है तो वहाँ के दोस्तों ने कहा था कि यार

0: के साथ मिलना घूमना। लेकिन जब मैं कतर आया तो क्यूपीएल बनाने का कॉन्सेप्ट जो कतर आके मजबूत हुआ, तो यहाँ देखा कि मैं बहुत ही मोहब्बत के लोग हैं, बहुत मोहब्बत, बहुत चाहने वाले लोग हैं, और इनकी दिलचस्पी देखकर मुझे लगा कि यार यहाँ पे मेरी जरूरत है, इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तब मैंने शुरुआत की। मैंने क्रिकेट की शुरुआत यहाँ पे कतर में कितने, एक पूरी टीम भी नहीं बनती थी हमारी। जब मैं 2011 में आया था, 6-7 बंदे होते थे हमारे। लेकिन मैंने कहा कि यार जस्तुजू करो, मेहनत करो, तो आज क्यूपीएल के अंदर 50 टीमें खेल रही
1: है। क्या बात है, क्या बात है, और बहुत मुबारक हो आपको। और इतनी आसानी पैदा करना क्रिकेट के लवर्स के हवाले से, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मैं कहूँगा सभी की तरफ से आपको, सिराज अंसारी साहब। सिराज साहब, कतर में आपका पहला दोस्त कौन था? मुझे मालूम है ये सवाल जरा मुश्किल है, क्योंकि एक आदमी जिसके इतने चाहने वाले हो तो उससे ये सवाल कर लेना, तो अगर आप इसका जवाब देना चाहें।
0: ये सवाल बड़ा मजेदार, इसीलिए मुझे हंसी भी आ गई है
1: जी।
0: क्योंकि मैं जब यहाँ पे शुरू आया था, उतना बड़ा सर्कल मेरा जिद्दा का बहुत बड़ा सर्कल था वहाँ पे, अभी जितना यहाँ पे है उतना ही बड़ा वहाँ पे भी था। लेकिन जब मैं शुरू आया था तो मैं दोस्तों के लिए तरस गया था। मेरे जैसा बंदा देखें दोस्तों के बिना रह नहीं सकता। हमें जब ऑफिस में था, पहला दिन गुजरा यार बहुत बोरिंग, दूसरा दिन बोरिंग, मैंने कहा कि यार कोई बंदा दोस्त मुझे चाहिए, दोस्त
1: कोई तो
0: दोस्त चाहिए होता है।
1: सही।
0: तो फिर मैंने एक ऑफिस में टी बॉय था नेपाली, और जाहिर बात है बंदा जिस कम्युनिटी का है पहले उसी को पूछता है।
1: सही।
0: मैंने उससे कहा कि यार कोई हैदराबादी बंदा है यहाँ पे जिससे मैं दोस्ती कर सकूं? तो कहता है कि सब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक ऑफिस है, वहाँ पे एक हैदराबादी बंदा है। मैंने उसको 50 रियाल दिए, मैंने कहा कि उसको ले आ। तो बंदा अब्दुल कवी नाम था उसका,
1: अब्दुल कवी साहब, चलिए ये नाम हमें मिल गया जो पहले दोस्त बने यहाँ पे आने के बाद। क्या बात है,
0: अभी वो बंदा ऑस्ट्रेलिया चला गया,
1: ऑस्ट्रेलिया चले गया,
0: लेकिन बहुत अच्छा बंदा था, बहुत अच्छा बंदा, फ्रेंडली नेचर वो भी।
1: चलिए उनको याद किया आपने, और इंशाल्लाह जब वो ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो इंशाल्लाह खुश भी होंगे। कतर की कौन सी बात ने सबसे ज्यादा मुतासर किया सिराज साहब?
0: सर कतर की अगर मैं तारीफ करने बैठूं तो समझे आप दिन महीनों में, महीने साल में, और साल सदियों में गुजर जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह से तारीफ कभी कम नहीं होगी।
1: क्या बात।
0: कतर की डिसिप्लिन, कतर की तरक्की, यहाँ के लोगों का प्यार, यहाँ के लोगों के अखलाक, यहाँ की हुकूमत, यहाँ के लेबर लॉ, एक किन किन चीजों की मैं तारीफ करूँ बताएं आप कतर की, और यहाँ की नीटनेस।
1: क्या बात, बिल्कुल सब
0: बहुत बहुत बहुत प्यारा, बहुत बहुत, कतर की जितनी तारीफ करो कम है,
1: उतनी कम है। सिराज साहब, अगर आपका पहला वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से मैं बात करूँ तो वो कैसा रहा यहाँ आने के बाद?
0: सर पहला वर्क एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लर्निंग रहा, ओरिएंटेड रहा। एचआर फील्ड में मुझे थोड़ी सी अपने स्किल्स को निखारने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा।
1: अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कभी लगा कि दोहा आने का फैसला सही था या नहीं? ये मुश्किल सवाल कर रहा हूँ मैं, मगर फिर भी हिम्मत कर रहा हूँ।
0: देखिए शुरुआत में सबको लगता है, सवाल जहन में आते हैं कि मैं आया क्यों, किस लिए आया, लेकिन मेरी अपनी नजर में मेरे जिंदगी के बेहतरीन फैसलों में ये एक फैसला था दोहा आने का।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: तो मेरे जिंदगी का बेहतरीन फैसला था ये,
1: माशाल्लाह। क्या कभी आपने सोचा कि ये डिसीजन सही था या नहीं? जवाब
0: बिल्कुल,
1: जवाब आपने दे दिया है ऑलरेडी, मगर फिर भी थोड़ा और बारीकी से।
0: नहीं, ये डिसीजन बहुत सही था, बहुत अच्छा था, क्योंकि कतर यानी मैं आने के बाद मुझे कतर के बारे में बहुत कुछ मालूमात हुए, कितना यहाँ पे डिसिप्लिन है, कितना अच्छा है। मैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जाहिर बात है बंदा अकेला होता है,
1: बल्कि मैं तो कहूँगा कि अदबी जो लोग कनेक्टेड हैं अदबी महफिलों से और क्रिकेट से, तो उनके लिए ये फैसला बड़ा अच्छा रहा आपका कि आप यहाँ तशरीफ लाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा करी। सिराज साहब, कभी आपको दोहा में तन्हाई या होमसिकनेस महसूस हुई?
0: देखिए शुरुआत में हुई थी, फैमिली नहीं थी और दोस्त अहबाब नहीं थे, तो उस वक्त मुझे

0: हुई थी
1: मगर वक्त रहते रहते तो जैसे
0: हाँ, लेकिन कम्युनिटी एक्टिविटीज में मैं मुबतला हो गया। उसके बाद फिर ये सब नॉर्मल हो गया मेरे लिए और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा सर्कल बन गया, बहुत अच्छे बहुत प्यारे दोस्त मिले हैं यहाँ पे, बहुत चाहने वाले मिले हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: मैं तो कहूँगा कि मैं दुनिया में यहाँ के जैसा लोग, चाहे वो कतरीर हो, चाहे इंडियन रहो, चाहे पाकिस्तानी रहो, कोई भी रहो, यहाँ के अखलाक, यहाँ के लोग, यहाँ के दोस्त बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत मोहब्बत।
1: क्या बात है। तो जब घर की याद आती थी तो आप अपने आप को कैसे संभालते थे?
0: घर की जब याद आती है तो मैं दोस्तों में चला जाता था, कम्युनिटी एक्टिविटीज,
1: सही,
0: सोशल एक्टिविटीज, क्रिकेट, ये सब में मैं अपना दिल।
1: जी जी, तो नए एनवायरनमेंट में, नए माहौल में और वर्क प्रेशर को मैनेज करना कैसा रहा?
0: मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा टफ चैलेंजेस थे मेरे लिए, और मेरी बचपन की आदत है कि जब तक चैलेंजेस ना हो तो मुझे मजा नहीं आता है।
1: क्या बात है, क्या बात है। अगला सवाल मेरा यही था, इसका जवाब मुझे लगता है आपने दे दिया, मगर फिर भी अगर इसमें आप कुछ रोशनी डालें, क्या ऐसा लगा कि आपको सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी?
0: जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हर नए मुल्क में इंसान को अपनी पहचान और नेटवर्क दोबारा बनाना पड़ता है। और शुरुआत में थोड़ा सा टफ रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतना आसान होते गया कि भाई आप आगे बढ़ते जाओ, मंजिल खुद ब खुद मिलेगी।
1: क्या बात है। आपकी फैमिली का आपकी जर्नी में क्या रोल रहा सर आजता?
0: सर फैमिली बहुत बड़ा रोल रहा, फैमिली का। देखें, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत होता है, मेरे पीछे, मेरी कामयाबी के पीछे तीन औरतों का हाथ है, एक माँ, एक बीवी, एक बहन।
1: क्या बात है, माशाल्लाह।
0: इन तीनों का सपोर्ट, इन तीनों की दुआएं मुझे बहुत आगे बढ़ाई।
1: क्या बात है,
0: कामयाबी की तरफ हमेशा बुलाती गई हैं इनकी दुआएं। और मेरी यहाँ पे जो मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है, उसका सपोर्ट तो बहुत अच्छा रहा। उसके बिना देखें अगर फैमिली आपको सपोर्ट ना करे तो आप ये सब एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले सकते।
1: सही है, सही सही, किसी भी चीज में आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते जब तक अपनों का या घर वालों का साथ ना हो। अल्लाह ताला उन लोग को खुश रखे।
0: बिल्कुल, मेरे घर वालों ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, मेरी कम्युनिटी कमिटमेंट को उसने सपोर्ट किया है, ये मेरे लिए बड़ी खुश नजर। मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है।
1: अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को खुश रखे। सर दोहा में आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा?
0: टर्निंग पॉइंट ये रहा कि जब मैं इन चीजों में एक्टिव हो गया और QPL जो बनाया मैं
1: जी,
0: तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, अदर देन प्रोफेशनल की बात करूँ मैं।
1: जी जी जी जी, बिल्कुल,
0: मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए इम्पोर्टेंट। देखिए, तो काम तो होता रहेगा, हर इंसान की जिंदगी में काम चलता रहेगा, चाहे वो मैनेजर लेवल में हो या लेवल पे हो,
1: सही,
0: ये काम चलता रहेगा,
1: सही दुनिया।
0: लेकिन सबसे टर्निंग पॉइंट आपकी ये है कि कामयाबी आपकी किस तरफ ले जा रही है।
1: सही,
0: आपको मुझे बहुत अच्छे यहाँ पे दोस्त मिले हैं, बहुत अच्छी फैमिली मिली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा,
1: अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज पीछे देखते हुए सबसे बड़ी सीख की अगर मैं बात करूं, कुछ ना कुछ आदमी सीखता जरूर है एक नई जिंदगी में, नए सफर में, तो अगर ये जानना चाहूं तो क्या कहना चाहते हैं?
0: देखिए, इंसान तो हर कदम पे सीखना चाहिए उसको। मुझे सीख ये मिली है कि मैं क्या कहूँ, भरोसा किसी पे भी नहीं करना चाहिए।
1: ओ, अच्छा,
0: किसी पे आप रात उन भरोसा ना करें तो बेहतर रहता।
1: आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें, ये कहना है, ये एक सीख है।
0: बिल्कुल, मैं कहूँगा कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें और अपना सर्कल ऐसा रखें कि वो म्यारी रखें, आप ऐसे सर्कल में ना जाएं ताकि वो कुछ गलत काम कर दें और आपके सब पे आ जाएं,
1: सबको बर्दाश्त करना पड़े।
0: ये बहुत बड़ी सीख मुझे कुछ मतलब खासकर एक दो बंदों से मिली है कि मेरा फैसला उनसे दोस्ती करने का गलत था।
1: ओके,
0: जिसे मैं बहुत दूर कर दिया हूँ।
1: ओके, ओके।
0: आपका नाम भी खराब हो ना हो इसमें,
1: सही बात,
0: ये मेरी एक सीख थी। और मैं दूसरों को भी एक हिदायत दूंगा या फिर एडवाइस दूंगा कि अपना सर्कल, अपने दोस्त अहबाब मियारी रखें।

0: उसको फिल्टर करना, ऑफ कोर्स सब मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं बुरे भी मिलते हैं, लेकिन उसे फिल्टर करना चाहिए।
1: ऑलराइट देन, तो सर अगर दोहा के हवाले से और बात करूं तो आपके लिए आज दोहा का क्या मतलब है?
0: दोहा का मतलब ये है कि मेरे लिए सेकंड होम है, और दोहा का मतलब ये है कि कामयाबी की सहरा में, यानी क्रेडिट दोहा को देना चाहूंगा।
1: ऑलराइट, कोई वर्क प्लेस या डेली लाइफ का ऐसा मोमेंट जो आज भी यादगार हो?
0: देखें, वर्क प्लेस में आज भी मुझे याद है कि मेरी कंपनी में अल्लाह सुबहाना ताला के बाद जो मुझे साथ दिया है, इस कंपनी में मैं जब से आया हूँ आज तक इसी कंपनी में हूँ, इसका क्रेडिट जाता है मेरे जो लास्ट चेयरमैन थे अबू रशीद साहब, अल्लाह रसूल के बाद मैं उनको दूंगा, वो मेरे लिए लम्हा था कि उन्होंने बहुत साथ दिया था।
1: जिंदगी आज भी यादें हैं उनकी और
0: आज भी दुआ में याद है वो, बिल्कुल मैं उन्हें हर नमाज में जब दुआ करता हूँ तो उन्हें याद करता हूँ।
1: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे। आपकी जिंदगी में तीन खास चीजें या लोग अगर नाम लेना चाहते हैं तो, या खास चीजें ऐसी?
0: देखिए, तीन खास लोगों का नाम, देखिए मेरी फैमिली है, पहले तो फैमिली आती है ऑफकोर्स, दूसरा मेरे यहाँ के दोस्त अहबाब हैं, फिर जो मेरी पहचान बनी है वो क्यूपीएल और बज़्मे अहबाब से, तो जाहिर बात है फैमिली दोस्त और क्यूपीएल बज़्मे अहबाब।
1: ओके, तो दोहा में अगर आपकी डेली रूटीन की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा फेवरेट क्या है?
0: देखिए, सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा दोस्तों से शाम में ऑफिस के बाद गपशप करें।
1: ओके, ये तो अच्छी बात है। ऑलराइट, तो अगर जिंदगी
0: एक्टिविटीज में कोई
1: जी, जी,
0: कोई सोशल एक्टिविटीज
1: जी
0: में इन्वॉल्व हो या किसी की हेल्प कर दें, ये मेरे फेवरेट रूटीन में से एक।
1: क्या बात है, अल्लाह ताला खुश रखे। अगर जिंदगी एक डायरी एंट्री होती तो आप उसका टाइटल क्या रखते सिराज साहब?
0: इसका टाइटल देखिए आप, मैं इसका टाइटल रखना चाहूंगा, बड़ा अच्छा नाम अभी जहन में आया है। सफर हो तो लोगों को जोड़ने का सफर।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, और इसमें आप वाकई बाखूबी आप ये काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। बढ़ते हैं आगे सिराज साहब, और क्या आपके साथ कभी दोहा में कोई फनी या अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ जो शेयर करना चाहते हैं?
0: फनी तो हुआ है।
1: ओके, फनी तो रोज ही होते हैं, कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स दोस्तों के साथ कह सकते हैं। चलिए,
0: एक दफा बंदा मुझे कह रहा था कि मतलब वैन को उसने वो पता नहीं कुछ अच्छा वर्ड किया था, बड़ा फनी था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन होते हैं फनी तो
1: नहीं। इसमें एक और सवाल जो हम लोग अक्सर मैं करना चाहता हूँ, जो हम अक्सर देखते हैं दुआ में, क्या किसी अजनबी ने, स्ट्रेंजर ने कभी आपकी मदद की हो जब आपको जरूरत हो, आप रोड वगैरह पे हो? हम देखते हैं कि हमेशा माशाल्लाह हमारे कतरी यहाँ पर जो है वो लोग भी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो आपके साथ ऐसी कोई बात हुई है?
0: जी जी जी, मैं एक्चुअली देखें खतर में आमतौर पर लोग बहुत हेल्पफुल है, कोई भी नेशनलिटी कर दे रहे हैं बहुत हेल्पफुल है, लेकिन मैंने अभी कहा था आपके सवाल में कि मैं एक बंदे को हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखता हूँ, वो मेरे स्पॉन्सर है अबू रशीद साहब, जो चेयरमैन थे हमारे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की,
1: अल्लाह ताला खैर वाफियत का मामला करें। आपने यहाँ अपने क्लोज दोस्त कैसे बनाए ये तो हम जान चुके हैं, अब इसी के हवाले से वो कौन सा मोमेंट था जिसने आपको दिल से खुश या इमोशनल कर दिया?
0: देखिए, जब इमोशनल जब बंदा होता है, जब अगर आप कुछ मेहनत करते हो, कुछ जुस्तुजू करते हैं और कोई इवेंट आपका कामयाब होता है, उसके बाद लोगों ने कहा कि यार आपने हमें, घर से दूर हैं हम, लेकिन वो महसूस होने नहीं दिया कि हम घर से दूर हैं, अपनापन मिला हमको यहाँ पे आके, आपकी मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ मैं उस वक्त,
1: भाई वाह,
0: मैं चाहता हूँ कि कुछ और अच्छा करूँ।
1: क्या बात है, माशाल्लाह, ये चीज आपको और ज्यादा अच्छा करने पे मजबूर भी कर देती है और खुश भी कर सकती है। अगर आप दोहा को एक खत लिखें तो आप क्या लिखेंगे?
0: दोहा को तो खत लिखने बैठा तो मैंने कहा ना कि भाई डायरीज के डायरीज खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये है कि मैं कहूंगा कि शुक्रिया दोहा,
1: वाह,

0: तुमने मुझे सिर्फ रोजगार ही नहीं दिया बल्कि एक तुम्हाने मुझे एक नई पहचान दी है, नए दोस्त दिए हैं, कम्युनिटी की खिदमत करने का प्लेटफॉर्म दिया है, नाम इज्जत शोहरत दौलत बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ हासिल हुआ है दुआ से। दुआ से दुआ का जितना शुक्र अदा करे कम है।
1: माशाल्लाह। तो सर जो नए लोग दोहा आ रहे हैं उनके लिए आपका कोई पैगाम या उनको कुछ बताना सिखाना, कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं? आप भी दोहा नए आए माशाल्लाह, फिर यहाँ पर सेटल्ड हुए, जैसा कि आपने कहा कि दोहा ने आपको बहुत कुछ दिया, तो ये जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई एक पैगाम जो उनके लिए सीख भी बन सके?
0: देखिए मैं कहूँगा कि वो सबसे पहले तो लीगल तरीके से आए, जो इलीगल तरीके से आते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। लीगल तरीके से आए और बहुत अच्छे से अपने आप पे भरोसा रखें, अल्लाह रसूल के बाद ऑफ कोर्स
1: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
0: और खुद पे भरोसा रखें, सबर करें, सबर नहीं है हमारे लोगों में, सबर करें और मेहनत करें, कामयाबी आपके कदम चुके।
1: क्या बात,
0: हलाल रोजी कमाने की आपकी अगर नियत हलाल रोजी कमाने की है तो अल्लाह ताला ऐसे जगह से रास्ता बनाएगा जहाँ के आप सोच नहीं गए।
1: क्या बात है, बहुत खूब, क्या ही कहने। आखिर में सिराज साहब आप क्या कहना चाहेंगे, दोहा ने आपको ज्यादा बदला या आपने दोहा को?
0: बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। दोहा ने मुझे बदला।
1: क्या बात,
0: दोहा ने मुझे, आप यकीन माने कि मैं यहाँ आके बहुत चेंजेस आए मेरे में और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हासिल हुआ है। आप
1: क्या बात है,
0: आज यानी मैं जो कुछ भी हूँ ये अल्लाह रसूल के बाद और दोहा के ही देन, तो दोहा ने मुझे काफी बदल के रख दिया है। मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं पहले था लोगों को जोड़ने का, पहले का बहुत बचपन से था, लेकिन जो यहाँ पे जो अपने आपकी कहते हैं ना कि आपकी पर्सनालिटी में, बात करने के सलीके में जो चेंजेस आए वो दोहा आकर आए, क्योंकि दोहा के लोग बहुत ही मोहब्बती है, बहुत ही खुलूस वाले हैं, तो उनके साथ आपको बदलना पड़ेगा, आपको ऐसा ही रहना पड़ेगा।
1: क्या बात है, मैं इसके अंदर ये और ऐड करना चाहूंगा कि आप माशाल्लाह जैसे हैं आप बहुत ही अच्छे हैं और उतने ही ज्यादा सपोर्टिव भी हैं कम्युनिटी के लिए। आप जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं उसका कोई बदल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज अंसारी साहब, आज आप यहाँ तशरीफ लाए, हमारे साथ बातचीत करी, अपनी कहानी अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी, आपके जज्बात और आपकी लर्निंग से हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ हमें ज्वाइन करने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया सर, आप लोग का बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर।
1: कुछ और कहना चाहते हैं बस आखिर में?
0: बस मैं ये कहूँगा कि आपका, मैं एक्चुअली सच कहूँ तो मैं आपका फैन हूँ, आपने जो रेडियो को बराबर सुनते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सबकी कहानी एक मुख्तलिफ होती है। जब आप गाड़ी पे जा रहे हैं आप लगा के यार सफर कहाँ जाएगा, दुकान तक का सफर कहाँ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, मिनटों में गुजरा ऐसा लगेगा।
1: कोशिश ही रहती है
0: सर, कहानी सुनो आप
1: सबको एंटरटेन कर सकें, कोशिश ही रहती
0: है। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, अल्लाह आप लोग को खुश रखे, अल्लाह आप लोग से राजी रहें,
1: आमीन,
0: खुश रखें, आपकी फैमिली को खुश रखें, आपको सेहत से रखें, सेहत बड़ी नेमत है, सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें।
1: बहुत
0: फिर बात होगी आपसे,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सिराज अंसारी साहब वक्त देने के लिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे सिराज अंसारी साहब जिन्होंने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करी, और दोस्तों आप सब से भी बस इतना ही कहना है कि जिंदगी के हर सफर में हर नई मंजिल पर अपना हौसला जिंदा रखिए, अपनी पहचान को संभाल कर रखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ शहर नहीं लिखता, कहानी आप लिखते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
4: FM 107 दिल से देसी।
5: एब्सोल्यूट सिनेमा,
6: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना

0: भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: दोस्तों गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस एम्बुलेंसेस फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर लीजिए हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन एफ एम 107 दिल से देसी याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं।

0: मिलती है और इंसान अगले दिन के लिए कुव्वत हासिल करता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले बिस्तर पर लेटने के बारे में भी एक खूबसूरत सुन्नत सिखाई है। ये कैसी सुन्नत है जिसके अंदर बेक वक्त हिफाजत, सफाई और एहतियात सब के सब मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे सोने से पहले बिस्तर को छाड़ने की सुन्नत पर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स बिस्तर पर लेटने का इरादा करे तो पहले अपना बिस्तर अपने इजार के अंदरूनी किनारे से झाड़ ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके पीछे उसकी बेखबरी में क्या चीज उस पर आ गई है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए हमें ये भी सिखाया कि बिस्तर पर लेटने से पहले उसका जायजा भी ले लिया करो, क्योंकि इंसान नहीं जानता कि उसकी गैर मौजूदगी में वहां क्या आया होगा। किसी कीड़े मकोड़े का आ जाना कोई नुकसानदेह चीज, ये कोई ऐसी चीज जो इंसान की नजर से ओझल हो। इस्लाम एहतियात सिखाता है, एहतियात भी इबादत बन जाती है जब वो सुन्नत के मुताबिक हो। एक वक्त यहाँ सफाई का मामला भी है, लेकिन एक मुसलमान के लिए उससे बढ़कर ये सुन्नत है। जब आप बिस्तर झाड़ते हैं तो सिर्फ गर्द नहीं हटा रहे होते, बल्कि आप अपने सर ताज खातम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जिंदा कर रहे होते हैं, और यही नियत एक आम अमल को इबादत में बदल देती है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे कतर की वीमेन स्विमर नादा मोहम्मद के बारे में। नादा मोहम्मद कतर की मशहूर स्विमर हैं जिन्होंने बैन अल-अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करके खास मकाम हासिल किया है। बचपन से ही उन्हें स्विमिंग का शौक़ था और उन्होंने मुसलसल मेहनत और सख्त ट्रेनिंग के जरिए अपने टैलेंट को निखारा। नादा ने फ्री स्टाइल और बटरफ्लाई इवेंट्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और अरब, एशियन और ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत की। उनकी कामयाबी ने कतर में खातीन के स्पोर्ट्स को भी नई पहचान दी और बहुत सी लड़कियों को स्विमिंग की तरफ मुतवज्जे किया। नादा रोज़ाना घंटों तक पूल में प्रैक्टिस करती हैं और अपनी फिटनेस, स्टैमिना और टेक्निक पर खास तवज्जो देती हैं। उनका यकीन है कि डिसिप्लिन और सब्र किसी भी एथलीट की सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, दोहा के जदीद स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग सिस्टम ने उनकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। नादा सिर्फ मेडल्स जीतने तक महदूद नहीं बल्कि वो नौजवान जनरेशन को सेहतमंद जिंदगी और स्पोर्ट्स की अहमियत समझाने में भी कोशिश करती हैं। उनकी मेहनत और हौसला कतर के लिए फख्र का सबब है और मुस्तकबिल में भी उनसे मजीद कामयाबियों की उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
2: FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, रिक्रिएशनल और प्ले एरियाज में बच्चों के हिफाजती इकदामात को तरजीह देना उन्हें हादसात से बचाता है और खुशगवार और सेफ आउटिंग्स को यकीनी बनाता है। बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बराए मेहरबानी मुसलसल निगरानी को बरकरार रखें और बच्चों को अपने फैमिली मेंबर्स के इर्द गिर्द ही रहने की इजाज़त दें। गाड़ी को हमेशा सेफ पार्किंग में ही पार्क करें और बच्चों का गाड़ी से बाहर निकलते वक्त खास ख्याल कीजिए। उनका हाथ पकड़ के रखिए और दूसरी गाड़ी जब रिवर्स हो रही हो उस वक्त बच्चों को उसके पीछे जाने से रोकें।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: से देसी
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि मर्द हजरात की सेहत के बारे में कि अक्सर मर्द हजरात अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात, काम और ख़ानदानी जिम्मेदारियों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अच्छी सेहत ही एक कामयाब और बेहतरीन जिंदगी की बुनियाद है। मर्द हजरात में आम तौर पर पाई जाने वाली सेहत की मुश्किलात में दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती शामिल हैं। इन बीमारियों की खास बात यह है कि अक्सर उनकी जो इब्तदाई अलामात हैं बिल्कुल भी जाहिर नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि बाकायदगी से अपना ब्लड प्रेशर, खून में शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए, ख़ास तौर पर अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो या ख़ानदान में इन बीमारियों की जो हिस्ट्री है वो मौजूद हो। इसमें सबसे अहम बात यह है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाइए, वो इस तरह कि रोज़ाना कम से कम 30 मिनट आप वॉक कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए, ताज़ा फल सब्जियां और मतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए, फास्ट फूड और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ कीजिए, स्मोकिंग और शीशा नोशी से मुकम्मल दूर रहिए, मुनासिब मकदार में पानी ज़रूर लीजिए। बहुत से मर्द हजरात जहनी दबाव, परेशानी या डिप्रेशन के बारे में बात करने से गुरेज करते हैं। याद रखिए कि मेंटल हेल्थ यानी हमारी जो जहनी सेहत भी जिस्मानी सेहत जितनी अहम है। अगर मुसलसल उदासी, बेचैनी या नींद के मसाइल हों तो माहिर सेहत से ज़रूर मशवरा कीजिए। लिसनर्स, अपनी सेहत का ख्याल रखना कमजोरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। बाकायदा चेकअप और सेहतमंद आदत आपको तवील और बेहतर जिंदगी गुजारने में मदद देती हैं।
0: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और इंटरेस्टिंग और थॉटफुल प्रोवोकिंग एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट पर जो सिंपल लगता है लेकिन जिंदगी को बहुत ज्यादा चेंज कर देता है, यानी कि मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं। सोचिए आप अपना रूम क्लीन कर रहे हैं, ड्रॉअर खोलते हैं तो पुराने रिसिप्ट्स, कभी यूज होने वाली कोई चीज, कपड़ों का स्टैक जो कभी पहना नहीं गया और एसेसरीज जो इस नाम पर रखी गई हो कि भाई इनकी कभी जरूरत पड़ सकती है। और क्लीनिंग के एंड पर आप सोचते हैं कि भाई इतनी सारी चीजें हैं फिर भी कुछ पहनने को मुझे यूजफुल क्यों नहीं मिलता। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। देखिए मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ वो चीजें रखें जो सच में आपकी यूजफुल हो, मीनिंगफुल हो और नेसेसरी हो। यानी क्लटर कम करें, क्लैरिटी ज्यादा रखें। अब इको स्विच क्या है सिचुएशन में भाई? आइडिया बड़ा सिंपल है, कम चीजें रखें लेकिन बेटर चीजें रखें। मतलब अननेसेसरी आइटम्स को रिड्यूस करना और अपनी लाइफस्टाइल को सिंपलीफाई करना। चलिए भाई अब बात करते हैं कि भाई ये मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल से आखिर फायदा क्या होता है। सबसे पहला फायदा होता है मेंटल क्लैरिटी। कम क्लटर होने से माइंड ज्यादा रिलैक्स और फोकस्ड रहता है। दूसरा फायदा है एनवायरमेंटल बेनिफिट। कम शॉपिंग और कम कंजम्पशन, इन दोनों का मतलब है कम प्रोडक्शन और कम वेस्ट। तीसरा फायदा है टाइम सेविंग। जब चीजें कम होती हैं तो सर्च और मैनेज करना आसान हो जाता है। चौथा फायदा है फाइनेंशियल कंट्रोल। आप अननेसेसरी परचेजेस से बचकर अपना पैसा सेव कर लेते हैं। अच्छा जरा सोचिए, आपके पास वार्डरोब में 30 शर्ट हैं, 30 शर्ट्स, लेकिन आप हमेशा सिर्फ 5 या 6 शर्ट्स आपकी कोई फेवरेट हैं वो ही पहनते हैं, बाकी कपड़े आपके सिर्फ स्पेस ले रहे हैं लेकिन यूज नहीं हो रहे। अब अगर आप मिनिमलिज्म अडॉप्ट करें तो सिर्फ वही कपड़े जो आपने रखे हुए हैं, जो आप रेगुलरली पहनते हैं, अगर आप वही रखें तो वार्डरोब सिंपल, क्लियर और एफिशिएंट बन जाता है ना। साथियों दोहा जैसे फास्ट मूविंग सिटी में लोग बिजी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जहां टाइम और स्पेस दोनों वैल्यूएबल हैं भाई, इसीलिए मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल यहां और भी रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि सिंपलिसिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे। अच्छा अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दूंगी जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। टिप नंबर 1 है डी क्लटर रूटीन बनाएं। हर 1 से 2 महीने बाद अपनी चीजों को रिव्यू करें। टिप नंबर 2, 1 in 1 out का रूल फॉलो करें, यानी कि अगर नई चीज लें तो पुरानी एक चीज रिमूव करें। आगे बढ़े तो भाई इमोशनल अटैचमेंट को इवैल्यूएट करें। हर आइटम को क्वेश्चन करें कि क्या ये अभी भी यूजफुल है या ये सिर्फ मेरी एक हैबिट है। तो भाई नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल शिफ्ट करें। फिजिकल क्लटर कम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स और नोट्स डिजिटल रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चूज करें। कम लेकिन ड्यूरेबल और यूजफुल आइटम्स प्रेफर करें। अच्छा इसका एक इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव पता है क्या है? मिनिमलिज्म सिर्फ एक डिजाइन ट्रेंड नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल अप्रोच भी है जो स्ट्रेस रिड्यूस करने और डिसीजन फिटीग कम करने में हेल्प करता है। एक और रिलेटेबल बात यह है कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि ज्यादा चीजें हों तो लाइफ बेटर हो जाती है, लेकिन जब चीजें ज्यादा हो जाती है ना तो भाई डिसीजंस लेने में मुश्किल हो जाती है और मेंटल लोड भी बढ़ जाता है। और अब अगर हम थोड़ा बिहेवियर चेंज एंगल से देखें तो जब आप मिनिमलिज्म अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी

0: लाइफस्टाइल को ज्यादा इंटेंशनल बना लेते हैं। आप सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहते बल्कि माइंडफुल चूजर बन जाते हैं। तो भाई आज का इको स्विच बड़ा सिंपल सा है, कम चीजें रखें लेकिन मीनिंगफुल और यूजफुल चीजें रखें। आज का चैलेंज ये है कि आज आप अपने रूम, बैग या वार्डरोब से कम 5 अननेसेसरी आइटम्स आइडेंटिफाई करें और उनको डोनेट, रिसाइकल या रिमूव करने का प्लान बनाएं। और अगर आप ऑलरेडी मिनिमलिज्म फॉलो कर रहे हैं तो किसी और को भी इंस्पायर करें ना भाई। साथियों, जिंदगी का मजा चीजों की क्वांटिटी में नहीं होता बल्कि उनकी क्वालिटी और क्लैरिटी में होता है। जब हम मिनिमलिज्म अडॉप्ट करते हैं तो हम सिर्फ स्पेस नहीं खाली कर रहे होते बल्कि अपनी जिंदगी को भी हल्का और बेहतर बना रहे होते हैं। इसी सोच के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इंपैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है दूसरों के लिए वो ही पसंद करना जो अपने लिए पसंद करते हैं। इस्लाम हमें एक सिंपल लेकिन बहुत गहरी तालीम देता है कि जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वो ही दूसरों के लिए भी पसंद करें। ये एक ऐसा उसूल है जो जिंदगी में आ जाए तो रिश्तों में सुकून और ईमानदारी पैदा हो जाती है। अक्सर हम अपने लिए आसानी और अच्छा रवैया चाहते हैं लेकिन दूसरों के साथ वही बर्ताव करना भूल जाते हैं। ये रवैया सोसाइटी में दूरियां पैदा करता है। जब हम दूसरों के लिए भी वही सोचते हैं जो हम अपने लिए चाहते हैं तो हम ज्यादा इंसाफ पसंद बन जाते हैं और लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं। आज का अमल ये है कि हर सिचुएशन में ये सोचें कि अगर मैं दूसरी जगह पे होता तो क्या चाहता और फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी. One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया. One Step to 2030. आज के इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ फ्यूचर इन मोशन. मुस्तकबिल हमेशा आगे बढ़ रहा है. मुस्तकबिल में हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं? ये बड़ा सवाल हो जाता है. देखिए, आज की दुनिया जो है वो तेजी से बढ़ रही है. फ्यूचर इन मोशन का कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है. इसका मतलब है कि मुस्तकबिल स्टैटिक नहीं होता, बल्कि हर वक्त चेंज होता रहता है. हर नई टेक्नोलॉजी, नया आइडिया और नई सोच इस मोशन का हिस्सा है जो हमें आगे लेकर जा रहे हैं. अगर हम अपने आसपास देखें तो हर चीज बदल रही है. पहले लोग बेसिक फोन यूज करते थे, आज स्मार्टफोन्स ने जिंदगी को आसान बनाया है. पहले सफर कितना मुश्किल था, कितना टाइम टेकिंग था, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ने इस डिस्टेंस को जो है वो छोटा कर दिया है. ये सब चेंजेस दिखाते हैं कि फ्यूचर हमेशा मोशन में है और हमें भी इसके साथ चलना होगा. फ्यूचर इन मोशन का सबसे बड़ा फैक्टर या सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट सिस्टम्स ने दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया. आज लोग घर बैठकर काम कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्टेड रह सकते हैं. ये सब इस बात की मिसाल है कि हम एक फास्ट मूविंग फ्यूचर का हिस्सा हैं. लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इंसान की सोच भी इवॉल्व हो रही है. आज लोग अपने स्किल्स इम्प्रूव करने, नई चीजें सीखने और अपने गोल्स अचीव करने पर फोकस कर रहे हैं. फ्यूचर उन्हीं लोगों का होता है जो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को अडैप्ट करते हैं. जो लोग रुक जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं. देखिए, एनवायरमेंट भी इस मोशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. आज दुनिया सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है. लोग क्लीन एनर्जी, ग्रीन प्रोजेक्ट्स और इको फ्रेंडली हैबिट्स अडॉप्ट कर रहे हैं. ये सारे एफर्ट्स इसलिए किए जा रहे हैं ताकि फ्यूचर सेफ और हेल्दी हो. अगर हम आज कॉन्शियस नहीं होंगे तो कल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे ही पड़ेंगे. फ्यूचर इन मोशन का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं. न्यू करियर्स, स्टार्टअप्स और इनोवेशंस जो है वो लोगों के नए चांसेस उन्हें दे ही रहा है. अगर आप इंसान अपने क्रिएटिविटी यूज करके अपनी पहचान बना सकता है तो फिर उस पर मजबूती से टिक भी तो सकता है. ये एक पॉजिटिव साइन है कि फ्यूचर सिर्फ चेंज नहीं बल्कि ग्रो कर रहा है. आखिर में समझना जरूरी है कि फ्यूचर किसी एक जगह नहीं रुकता, ये एक कंटिन्यूस जर्नी है. अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस मोशन का हिस्सा बन जाएं, तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं. फ्यूचर ऑलरेडी मोशन में है. सवाल ये है कि क्या हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं?

0: आज इसी सवाल पे यहाँ पर आपसे इजाजत लूंगी. आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Scam alert. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दुहा वाला कबीर एफएम 107 से एंड वेलकम टू फ्रॉड अवेयरनेस। आज आपको अवेयर कराऊंगा एक ऐसे स्कैम के बारे में जो कि बड़ा यूनिक है। देखिए, अगर आपको स्कैम्स से मुकाबला करना है तो आपको इन्हीं की तरह सोचना पड़ेगा। ये जितने भी नक्कालों से सावधान कहते हैं ना, तो इनकी तरह सोचेंगे तभी आप इनसे बच पाएंगे। यही ट्रिक है, मगर वी विल मेक इट ईजियर फॉर यू। अच्छा, जिस स्कैम के बारे में आज बात करने वाला हूं, यह है ऑनलाइन मार्केट प्लेस से जुड़ा हुआ। आपको कई सारी चीजें आप लेने की आदत पड़ चुकी है, ऑनलाइन सेकंड हैंड चीजें तो खरीदने की आदत अब कुछ ज्यादा ही अपने उरूज पर है। आपको छोटे से छोटे एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर से लेकर बड़े से बड़ी चीज, सोफा टीवी सेट, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। और सेकंड हैंड चीजें आजकल कतर में माशाल्लाह बहुत बढ़िया मिलती है। लेकिन यहां पे होती है एंट्री, धमाकेदार एंट्री इन स्कैमर्स की, जो इस चीज का फायदा उठाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे पोस्ट को आप शक की नजर से देखें, लेकिन होगा दरअसल क्या, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप थोड़ा धोखा खा सकते हैं। होगा ये कि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बड़ा सा टीवी देख लिया 98 इंचेस फॉर एग्जाम्पल, और आपको उसका जो रेट है मार्केट में नजर आ रहा, भाई ये तो बहुत महंगा है। पर जब आपने इसे मार्केट प्लेसेस में देखा जहां पे सेकंड हैंड बिक रहा है, वहां आपको लगा ये तो बहुत फायदे का सौदा है, जरा मैं फटाफट मैसेज कर दूं। और आप जल्दी से मैसेज करेंगे, पूछेंगे क्या ये अवेलेबल है, फौरन 10-15 मिनट में आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। इससे भी पहले वो बोल देंगे हाँ जी अवेलेबल है, और आप बोलेंगे ठीक है मुझे ये देखना है, तो आपको बाकायदा एक लोकेशन भी दी जाएगी। मगर वो लोकेशन कोई घर वर ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, आपको बोलेंगे जी ये फलाना फलाना जगह पे पहुंच जाइए, और वो आपको नजर आएगा कि शायद यहाँ पे रहता नहीं है, बस आया हुआ है। आपको वो प्रॉब्ली एक लॉबी या फिर किसी जगह पे बुला के अगर दिखाएंगे तो, वर्रा तो आपको इससे भी बड़ा स्कैम का शिकार बनाने की कोशिश में वो आपसे बोलेंगे ठीक है तो आप एक काम करें, ये थोड़ा प्रोडक्ट जो है बाहर से मंगाना पड़ता है हमें, हमारे लोग ना रिफर्बिश करते हैं, ऐसी ऐसी बात करेंगे आपको रिझाने के लिए, और उसके बाद बोलेंगे कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, बस आप एक काम करो डिलीवरी के प्राइस मुझे अभी दे दो। ये प्रोडक्ट ना एक्चुअली बाहर बनता है। ऐसी ऐसी बातें करके आपसे एडवांस पेमेंट ये लोग ले लेंगे। आपको लगेगा ठीक है 1000 की चीज़ है तो मैं अगर 100 रियाल दे दूंगा तो क्या ही चला जाएगा, और आप 100 रियाल दे देंगे। उसके बाद आप कहेंगे भैया प्रोडक्ट, बोलेंगे हाँ हाँ बस पहुंच जाएगा, बस पहुंच जाएगा। ये छोटे छोटे निक्के जो स्कैम्स हैं ये बड़े खतरनाक हैं। आप शायद 100 रियाल देने के बाद थोड़ा लड़ झगड़ के, चिल्ला के, ब्लॉक करके या ब्लॉक होके आप शांत बैठ जाएंगे, लेकिन ये लोग चुप नहीं होंगे। आप की तरह बहुत सारे और 100-100 रियाल देने वाले लोगों को ये पकड़ेंगे और कमाई करेंगे। तो प्लीज जब आप सेकेंड हैंड चीज लेने के लिए जाएं तो बच के रहें। अब इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है? दूसरा आइडेंटिफिकेशन करने का आसान तरीका है सिंपल, जब आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं उस प्रोडक्ट पे अगर लिखा हुआ है कि भैया ये लोकेशन के बिना ही है, आपको फोन पे ही बात करके बुक करना पड़ेगा, तो बच के रहिए। यू नीड अ प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर मतलब प्रॉपर लोकेशन जहां पे आप जाके फिजिकली प्रोडक्ट देख सकें। उसके अलावा अगर आपको और सेफ्टी को डबल डाउन करना है, व्हेन यू मीट देम आस्क फॉर कतर आईडी, दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हैं। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन इसके अलावा एक और बड़ी खास चीज है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट, कोई नायाब प्रोडक्ट, नायाब का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई महंगा प्रोडक्ट काफी सस्ता मिल रहा है, तो आप उसे शक की नजरों से देखना शुरू कर दें। क्या वजह है, ऐसा क्यों है, और इसलिए आपका फिजिकली जाकर देखना जरूरी हो जाता है। सो घूम फिर के बात वहीं आ रही, पर अब बताता हूं अगर आप इसमें फंस गए तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने प्रोडक्ट के पूरे पूरे पैसे दे दिए और आप फंस चुके हैं, प्रोडक्ट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, आपको रिफर्बिश्ड ऑर्डर का वादा किया गया था, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने बैंक कार्ड को आपने कर देना है फॉरन ब्लॉक और चेंज। दूसरी बात, अगर आपने अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल यू माइट हैव यूज्ड योर कतर आईडी अगर आपसे मांगी गई है, क्योंकि लोग वो भी मांग लेते हैं, और इसके अलावा अगर आपने व्हाट्सएप पर अभी तक इन्हें ब्लॉक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि फिर ये एक और दूसरा स्कैम भी चालू कर सकते हैं। यूजिंग योर नंबर एंड यूजिंग अनदर नंबर दे विल सेंड यू थिंग्स, आपको अलग अलग चीज़ें भेजेंगे जो ओपन करते ही दे विल स्टार्ट फिशिंग योर अकाउंट। तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर तक अगर आप बात लेकर आ रहे हैं, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, डू नॉट शेयर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन टू देम। उन्हीं की तरह सोचे. ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर. सो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई सेकेंड हैंड चीज खरीदने के लिए जाएंगे, बी वेरी वेरी केयरफुल एंड खुला हर चीज मांगिए. आप कतर आईडी मांगिए, लोकेशन मांगिए, जाकर देखिए, कोई जल्दी नहीं है. प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपके मन में आएगा कि हाथ से निकल गया तो क्या होगा, निकल जाने दीजिए, लेकिन जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल. एंड अगर आप भी किसी नायाब फ्रॉड से आपका राब्ता होता है, लेट अस नो सोशल मीडिया हैंडल्स पे FM 107 Qatar.
0: Scam alert.

0: मेत्रा ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेत्राश ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
1: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
0: गेम ऑन,
1: वॉल्यूम अप,
0: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
0: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देश।

0: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ। छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: Assalamualaikum and welcome to Sustain the Future FM 107 कदर पे, जहां हम बात करते हैं environmental sustainability और अपने planet earth को future generations के लिए protect करने के बारे में। मैं हूं आपकी आरजे माविश और आज का शो डेडिकेटेड है एक बहुत ही बड़े इशू के लिए, द फूड वेस्ट क्राइसिस। आज हम डिस्कस करेंगे कि फूड वेस्ट कैसे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है और हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। सो अपना फेवरेट स्नैक या कॉफी लें और चलिए शुरू करते हैं। फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया @FM107Qatar और आइडियाज या क्वेश्चंस व्हाट्सएप करें ऑन 666-22-107। लेट्स मेक सस्टेनेबिलिटी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब चलिए डाइव इनटू टुडेस टॉपिक।
2: टॉपिक ऑफ द डे।
1: लिस्टनर्स, फूड वेस्ट यानी खाना बर्बाद करना सिर्फ एक छोटी सी आदत नहीं, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। हर साल दुनिया भर में लगभग 1.3 बिलियन टन्स खाना वेस्ट हो जाता है। सोचिए ये खाना कितने लोगों का पेट भर सकता है। कतर में भी हम अक्सर देखते हैं कि रेस्टोरेंट्स में बुफे कल्चर की वजह से लोग ज्यादा खाना प्लेट में ले लेते हैं लेकिन खा नहीं पाते। या फिर जब हम घर में कुछ पार्टीज करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, तो ओवर ऑर्डरिंग हो जाती है और बचा हुआ खाना बिन में चला जाता है। अब ये फूड वेस्ट एनवायरनमेंट को कैसे हार्म करता है? तो जब खाना लैंडफिल में जाता है तो वो डीकम्पोज होते वक्त मीथेन गैस रिलीज करता है, जो एक डेंजरस ग्रीन हाउस गैस है और क्लाइमेट चेंज को बढ़ाता है। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन के लिए ढेर सारा पानी, एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज यूज होती हैं। जब हम खाना वेस्ट करते हैं तो ये सारी रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाती हैं। सो हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर? सबसे पहला स्टेप है पोर्शन कंट्रोल। सिर्फ उतना ही खाना लें जितना आप खा सकते हैं। अगर रेस्टोरेंट में है तो लेफ्ट ओवर्स को पैक करवा के घर ले जाइए। दूसरा, कंपोस्टिंग। आपके किचन के ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे वेजिटेबल पील्स या बचा हुआ खाना कंपोस्ट बनाने के काम आ सकता है। ये आपके प्लांट्स के लिए एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। छोटी छोटी चीजें करके हम अपने प्लैनेट के लिए बड़ा फर्क ला सकते हैं। लेट्स मेक कॉन्शियस चॉइसेस फॉर अ ग्रीनर टुमारो। अब जरा डिटेल में इस टॉपिक को समझते हैं। खाना वेस्ट होना सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक बड़ा मसला है जो हर मुल्क में बढ़ रहा है। हर साल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बिलियन टन्स खाना वेस्ट होता है। ये खाना जिंदगी के लिए जरूरी रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहा है। हर दिन बहुत से लोग फूड वेस्ट करते हैं, चाहे वो घर में हो या रेस्टोरेंट्स में। लेकिन आप सोच सकते हैं अगर ये खाना वेस्ट ना होता तो कितने लोगों को इससे खाना मिल सकता था। कतर में या और मुल्कों में हम देखते हैं कि बुफे में लोग ज्यादा खाना प्लेट में डाल देते हैं लेकिन फिर खा नहीं पाते, ये खाना वेस्ट होता है। घर में पार्टीज के लिए फूड ऑर्डर करते वक्त भी हम अक्सर ज्यादा ऑर्डर कर लेते हैं जिससे बचा हुआ खाना वेस्ट होता है। इसके साथ ही जब हम खाना बनाते हैं तो वो भी बाज़ोकात अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बनाते हैं। और एक और जो बुरी आदत पड़ती जा रही है, मैंने काफ़ी लोगों में देखा है कि वो बचा हुआ खाना नहीं खाते। यानी अगर कोई चीज़ बच गई है और अगर आप फ्रिज में रख लेते हैं तो यकीन मानिए वो खाने के लिए सेफ़ है क्योंकि आप उसको रेफ्रिजरेट कर रहे हैं। लेकिन अक्सर लोग वो खाना भी ये सोच के फेंक देते हैं कि हमें ताज़ा खाना ही खाना है। चलें, अच्छी बात है अगर आपके जहन में ये सोच है कि आप फ्रेश फूड ही खाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने करना ये होगा कि जब भी आप कुकिंग करें तो उतनी ही क्वांटिटी में आप अपने लिए खाना बनाएं जितनी आपको ज़रूरत है। जब फूड लैंडफिल्स में जाता है तो डीकम्पोज होने पर मीथेन गैस रिलीज होती है जो क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने का सबब बनती है। फूड प्रोडक्शन के लिए पानी, एनर्जी और लैंड का यूज होता है। जब हम खाना वेस्ट करते हैं तो ये सारे रिसोर्सेज भी साथ में वेस्ट होते हैं, यानी हमने ना सिर्फ खाना वेस्ट किया बल्कि उसे बनाने में जो रिसोर्सेज लगी वो भी वेस्ट हो गई।
2: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाता है और फूड प्रोडक्शन के लिए ढेर सारी लैंड एरियाज को यूज किया जाता है। जब हम खाना वेस्ट करते हैं तो इकोसिस्टम्स भी इनडायरेक्टली वेस्ट हो जाते हैं। फूड वेस्ट का इकोनॉमिक लॉस भी है। जो खाना हम वेस्ट करते हैं उससे हमारी इकोनॉमी में पैसा वेस्ट होता है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो या फार्मर्स। अगर हम खाना वेस्ट कम करें तो इस पैसे को दूसरी प्रोडक्टिव कामों में भी लगाया जा सकता है। फूड वेस्ट को कैसे कम करें तो सबसे अहम तो यही है कि पोर्शन कंट्रोल करना होगा। खाना लेते वक्त पोर्शन कंट्रोल का ख्याल रखें। सिर्फ उतना ही खाना लें जितना आप खा सकते हैं। अगर बुफे में है तो अपनी प्लेट को ज्यादा ना भरें। अगर घर में ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे कि वेजिटेबल पील्स और बचा हुआ खाना तो कंपोस्ट बनाने के लिए उसे यूज कर सकते हैं। यह आपके प्लांट्स के लिए भी एक अच्छा फर्टिलाइजर है। कंपोस्टिंग से खाना वेस्ट कम होता है और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होता है। अगर खाना बच जाए तो उसे क्रिएटिवली यूज करें। लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स और मीट को नई डिशेस में यूज किया जा सकता है। आप इनको सूप्स या सैंडविचेस में डालकर फ्रेश मील बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका खाना आप ज्यादा नहीं खा पाएंगे तो वो खाना किसी फूड बैंक या चैरिटी को डोनेट कर सकते हैं। ऐसे आप दूसरों की मदद करते हैं और खाना वेस्ट नहीं होता। अपनी ग्रोसरीज को स्मार्टली प्लान

0: करें। ज्यादा फूड खरीदना जो बाद में वेस्ट हो जाए अवॉइड करें। शॉपिंग लिस्ट बनाएं और उस पर स्टिक करें। ऐसे आप ना सिर्फ खाना कम वेस्ट करेंगे बल्कि अपने बजट को भी मैनेज कर सकेंगे। फूड वेस्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। स्कूल, कॉलेजेस और लोकल कम्युनिटीज में कैंपेन्स चलाकर लोगों को एजुकेट किया जा सकता है कि फूड वेस्ट कैसे कम किया जा सकता है। हर एक छोटी कोशिश का असर होता है। रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेसेस को भी फूड वेस्ट को कम करने के लिए इंसेंटिव्स देने चाहिए। उनको लेफ्ट ओवर फूड को डोनेट करने या कंपोस्टिंग की फैसिलिटीज देने का सोचना चाहिए। कतर में फूड वेस्ट का मसला बढ़ता जा रहा है, खासतौर पे रेस्टोरेंट्स और इवेंट्स में। अक्सर लोग ज्यादा खाना ले लेते हैं या फिर फूड ऑर्डर करते वक्त ओवर ऑर्डरिंग करते हैं, जिसकी वजह से खाना वेस्ट होता है। इस मसले को दूर करने के लिए रेस्टोरेंट्स और होटल्स को अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लानी होगी, जिसमें पोर्शन कंट्रोल और फूड डोनेशन को इंक्लूड किया जा सकता है। आप एज एन इंडिविजुअल भी अपनी आदतों को बदल के इस क्राइसिस में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल, कंपोस्टिंग और लेफ्ट ओवर का क्रिएटिव यूज करके ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स अपनी डेली लाइफ में लें तो बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। खाना वेस्ट ना करना, अपनी शॉपिंग प्लान करना और कंपोस्टिंग करना ऐसे सिंपल एक्शंस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। खाने के वेस्ट को कम करके हम अपने प्लैनेट को बेटर बना सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
0: चलिए अब ग्रीन फ्लैश सेगमेंट में, जहां हम लाते हैं दुनिया भर से तीन लेटेस्ट सस्टेनेबिलिटी स्टोरीज।
1: ग्रीन फ्लैश।
0: पहली खबर है यूके से, जहां टू गुड टू गो रेस्टोरेंट्स और बेकरीज के अनसोल्ड फूड को कस्टमर्स तक पहुंचा रहा है एट डिस्काउंटेड प्राइस। ये फूड वेस्ट को कम करने का एक बड़ा ही शानदार तरीका है। दूसरी खबर है सिंगापुर से, वहाँ अगली फूड नाम का एक स्टार्टअप इम्परफेक्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रमोट कर रहा है, जो टेस्ट में परफेक्ट होते हैं लेकिन सुपरमार्केट्स में रिजेक्ट हो जाते हैं। तीसरी खबर मिडल ईस्ट से, यूएई में फूड रेस्क्यू यूएई इनिशिएटिव रेस्टोरेंट से एक्स्ट्रा फूड कलेक्ट करता है और जरूरतमंद कम्युनिटीज तक पहुँचाता है। इंस्पायरिंग है ना? लेट्स लर्न फ्रॉम दीज एफर्ट्स। अब वक्त हुआ है हमारे शो में ग्रीन इनोवेशंस का।
1: ग्रीन इनोवेशन।
0: अब हम ले चलते हैं आपको ग्रीन इनोवेशंस स्पॉटलाइट में, जहां हम देखते हैं नए आइडियाज जो सस्टेनेबिलिटी के फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। आज का स्पॉटलाइट है ओलियो पर। ये नेबर्स और लोकल बिजनेसेस को कनेक्ट करता है ताकि वो एक्स्ट्रा फूड शेयर कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक्स्ट्रा ग्रोसरीज हैं जो आप यूज नहीं कर पा रहे, तो ओलियो के थ्रू आप उन्हें अपनी कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं। ये फूड वेस्ट को कम करता है और साथ ही कम्युनिटी स्पिरिट को भी बढ़ाता है। कतर में भी ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत काम आ सकते हैं। Have you ever tried a food sharing app? हमें बताइएगा जरूर on WhatsApp 666-22-107।
1: Eco Living Tips।
0: अब हम चलते हैं Eco Living Tips segment की तरफ, जहां हम आपको देते हैं practical suggestions जो आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में यूज कर सकते हैं। आज के टॉपिक द फूड वेस्ट क्राइसिस के लिए ये रही कुछ अच्छी सी टिप्स। ग्रोसरी शॉपिंग से पहले एक लिस्ट बनाएं, ताकि सिर्फ वो ही खरीदें जो जरूरी हो। फ्रिज में फूड को ऑर्गेनाइज रखें और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए अलग कंटेनर्स यूज करें ताकि वो फ्रेश रहें। बचे हुए खाने से नई डिशेस बनाएं, जैसे सूप, सैलड्स या रैप्स। किचन वेस्ट को कंपोस्ट बिन में डालकर नेचुरल फर्टिलाइजर बनाएं। ट्राई दीज टिप्स एंड हमें बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। यहाँ लेंगे हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुनते रहें FM 107 कतर।

0: नमस्ते लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर और चलते हैं अब अपने सेगमेंट की तरफ। अब वक्त है वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट का। वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट में आज हम सुनेंगे एक इंस्पायरिंग वॉइस जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही है।
1: वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट।
2: Food loss and waste can be caused by so many different factors. And I'm talking about technological issues, economic factors, business considerations, and very important human practices, attitudes, and human behavior.
3: It is not an issue only of developing countries. It is an issue of transition and industrialized countries alike. We talk about an issue that globally impacts directly food and nutrition security for all.
2: But we have to realize that for this food to be produced anywhere in the world, a high amount of precious natural resources are being used, like land and water, and a lot of energy is being used with the equivalent emission of greenhouse gases. And if this is all done for nothing because the food is not being eaten, that is something that we cannot allow to happen.
0: अभी आपने सुनी हमारी वॉइस ऑफ द प्लैनेट। मुझे उम्मीद है कि इनकी आवाज ने और इनके मैसेज ने आपको बहुत हद तक मोटिवेट किया होगा और आप ये जान भी चुके होंगे कि फूड वेस्ट से बचना और फूड की रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है। लेट्स जॉइन हैंड टू मेक आवर प्लैनेट अ बेटर प्लेस।
1: वीकली चैलेंज।
0: चलिए अब टेक अवे चैलेंज की बारी है। इस हफ्ते का चैलेंज है जीरो फूड वेस्ट वीक। जी हाँ, पूरे एक हफ्ते कोशिश करें कि आप

0: कोई भी खाना वेस्ट नहीं करेंगे। पोर्शन कंट्रोल प्रैक्टिस करें, लेफ्ट ओवर्स को रीयूज करें और कंपोस्ट शुरू करें। और अगले हफ्ते के शो में हमें बताएं कि आपने ये चैलेंज कैसे पूरा किया। व्हाट्सएप करें 666-22-107 या सोशल मीडिया पर मैसेज भेजें @FM107 कतर। डियर लिसनर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ट्यूनिंग इन टू सस्टेन द फ्यूचर। आपका साथ हमें इंस्पायर करता है। अगले हफ्ते हम बात करेंगे सस्टेनेबल फैशन, ड्रेसिंग विदाउट स्ट्रेसिंग द प्लैनेट के बारे में। सो डोंट मिस इट। फॉलो अस ऑन FM107 कतर और मैसेजेस भेजें 666-22-107 पर। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
1: सस्टेन द फ्यूचर।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। दिल से देसी।
2: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में, हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो,
4: ठाकुर तो कियो
3: FM 107।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन

0: दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है। कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद। और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।